ओम शांति। बाबा हमें संपूर्णता की ओर ले चल रहे हैं और संपूर्णता की एक बहुत गहन परिभाषा है निर्दोष दृष्टि और निष्काम भावना। हम अपनी दृष्टि को निर्दोष बनाएं, जो दूसरों के दोष देखते हैं, जो दूसरों पर दोष आरोपित करते हैं, ब्लेम लगाते हैं, वे वास्तव में संपूर्णता के पथ के राही नहीं है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं इस ड्रामा में। सबका अपना अपना पार्ट निश्चित है। यहाँ सभी महान नहीं हो सकते, यहाँ सभी गुण संपन्न नहीं हो सकते। कलयुग में अवगुणों की खान भी अनेकों का जीवन बन चुका है, परंतु हमें तो सब में गुण ही देखने हैं। निष्काम भावना, किसी से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। न मान की कामना हो, न काम की कामना हो, ये दो कामनाएं ही मनुष्य को ढीला करती हैं, योग के पथ से विचलित करती हैं। उनमें रूहानियत का अभाव हो जाता है और मन असंतुष्ट रहने लगता है। काम की कामनाएं, कईयों ने काम वासना को तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी सूक्ष्म कामनाएं अभी भी बाकी हैं, जो कभी स्वप्न के रूप में उदय होती हैं, कभी संस्कारों के रूप में, कभी कर्मेंद्रियों की चंचलता के रूप में। हमें इन कामनाओं का भी त्याग कर देना है। अपने से बातें करें, जब मैंने पवित्रता का पथ अपना लिया तो फिर ये कामनाएं क्यों? त्याग करें इनका। मुझे तो संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण पवित्र आत्मा के महत्व को अच्छी तरह समझ लें। पवित्र आत्मा इस संसार के लिए वरदान है। उनका इस संसार में होना ही पर्याप्त है। वो चाहे कुछ भी ना करें, वो तो इस संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। मुझे बाबा के इस महान कार्य में पवित्रता के द्वारा संपूर्ण सहयोग देना है। ये सुंदर भावना अपने मन में रहे तो चेक करते रहें, मेरे मन में काम की सूक्ष्म भावनाएं क्या क्या हैं, कामनाएं क्या क्या हैं, उनका त्याग करते चलें। ज्ञान के बल से, योग के बल से, जैसे जैसे आत्मा को ईश्वरीय रस मिलता रहेगा, ये कर्मेंद्रियों का रस या और कुछ पाने की इच्छा समाप्त होती जाएगी। जब तक आत्मा अशरीरीपन के सुंदर अनुभव में नहीं आती, तब तक उसको ईश्वरीय सुख भी कम भासता है और ये काम की कामनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो जिन्हें संपूर्ण पवित्रता की मंजिल पर चढ़ना है, वो इन कामनाओं का त्याग कर दें। मान की कामना, ये भी बड़ी सूक्ष्म रूप से पीछा करती है। संगठनों में कंपटीशन रहता है, ईर्ष्या रहती है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा ही नाम हो, मुझे ही मान मिले, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरों को भी मिले, ये देखकर परेशानी क्यों होनी चाहिए? दूसरे यदि योग्य हैं, क्या वो मान के पात्र नहीं हैं? क्या उनका नाम नहीं होना चाहिए? और क्या ब्राह्मण परिवार में किसी का भी नाम होना हम सबका नाम नहीं है? आपके लौकिक परिवार में आपके एक बच्चे का बहुत नाम हो जाए, क्या वो आपका नाम नहीं होता? तो हम अपनी विचारधाराओं को जरा विशाल बनाएं और आज सारा दिन सूक्ष्म रूप से अपनी जांच कर लें कि हम में ये कामनाएं शेष तो नहीं रह गई हैं, नहीं तो ये कामनाएं हमारी सूक्ष्म शक्तियों को खाती रहेंगी और हम सेवाएं करते हुए भी, योग करते हुए भी, मुरली सुनते हुए भी पीछे रह जाएंगे। तो आइए आज सारा दिन बहुत तत्परता के साथ अभ्यास करें। मैं आत्मा इस तन में अवतार हूं, मैंने अवतार लिया है इस संसार को पावन बनाने के लिए।
विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान मुझे परम धाम से अपने साथ लाए हैं कि चलो बच्चे मेरे इस कार्य में सहयोगी बने। अपने इस स्वरूप पर एकाग्र होते हुए फील करेंगे कि परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। इस फाउंटेन के नीचे मानो मैं निरंतर स्नान कर रही

0: ओए रुक रुक, कुछ सुनाई नहीं देती। और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो आप। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। कुछ लोग अपनी ही भूल के कारण सफलता के अवसर खो देते हैं। इसका कारण होता है कि वे एक ही समय में अनेक काम करना चाहते हैं। अवसर मिलते ही एक काम हाथ में होने पर भी अधिक लाभ की इच्छा से दूसरा शुरू कर देते हैं। एक काम को करते समय ही उनके मन में यह भावना जन्म लेने लगती है कि उनके सामने जो दूसरा काम है उसे करने में अधिक लाभ हो सकता है। बस फिर क्या, वे लोग अपने हाथ वाले काम को छोड़कर उसके पीछे लग जाते हैं। इससे लाभ तो क्या होना है, हानि जरूर हो सकती है। पहला काम अधूरा रह जाता है, फिर दूसरे के बारे में तो क्या कहा जा सकता है। इसे कहते हैं आधी छोड़ पूरी को खाने के लिए दौड़ा, मगर हाथ से आधी भी गई। आप दूसरे काम को देखकर अपने काम को खराब न करें। केवल एक समय में एक ही काम करें और उसी में अपना पूरा मन लगाएं। अधूरे और बुझे हुए मन से किए जाने वाले किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें। यह आदत खराब तो है ही, परंतु इसके साथ साथ इसके परिणाम भी बुरे ही निकलते हैं। करो या मरो, आज भी भले ही यह बात आपको पुरानी लगेगी, मगर यह बात आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि आप जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं और उसे शुरू करते जाते हैं, उसे यही समझकर शुरू करें कि हमें इस काम को हर हाल में पूरा करना है। जब तक यह पूरा नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यदि आप इस प्रकार के दृढ़ धारणा के साथ काम शुरू करेंगे, तो फिर यह निश्चित है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके विपरीत यदि कोई मानव छोटी छोटी बातों को तुच्छ समझकर उनकी अपेक्षा करता है, तो यह उसकी सबसे बुरी आदतों में से एक मानी जाएगी, जो उसकी असफलता का कारण बन जाती है। यह असफलता उसके भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा सिद्ध हो सकती है। यदि आप सदा सफलता का मुंह देखने के लिए इच्छुक हैं, तो इन छोटी छोटी गलतियों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें। साथ में यह बात भी पल्ले बांध लें कि जैसे छोटे से बीज से जन्म लेने वाला पौधा एक दिन इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि उसे आप हिला भी नहीं सकते, ठीक वैसे ही आपकी एक छोटी सी भूल भी एक दिन इतनी बड़ी बन जाती है कि आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, ऐसी कोई भी भूल आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, आपके भविष्य को अंधकारमय कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी गलतियों को दोबारा न दोहराकर उससे कुछ सीखें। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी गलतियों को न दोहराएं और उससे सीख लेकर आगे के कार्य में उसकी सहायता लें।

नमस्ते ओम शांति, मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

उन्नति करने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप कठोर परिश्रम करें। इसके साथ साथ आपका व्यवहार लोगों से इतना मधुर हो कि वे आपकी हर बात को प्रेम से सुनें और आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएं। मधुर भाषी लोग ही लोगों के मन जीत पाते हैं। दो मीठे बोल बोलने में क्या कोई कीमत देनी पड़ती है? नहीं, यह तो आपकी जुबान का कमाल है जो केवल आपके मन के इशारे पर ही हिलती है। इससे आप प्रेम भी करते हैं, नफरत भी। प्रेम का फल मीठा और अच्छा होता है, नफरत का फल तो केवल नफरत ही होगा। जज की कलम तो एक ही होती है, उससे वह किसी दोषी को फांसी की सजा लिखता है और किसी को बरी करने के आदेश लिखता है। इसमें कलम का दोष मानने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? यही ना कि कुछ पागल लोग अपने हर फैसले पर अंतिम मोहर लगाकर यह निर्णय कर लेते हैं कि मैंने जो सोच लिया बस वही करूंगा, मेरा फैसला अंतिम फैसला है। ऐसे लोग बहुत बड़ी भूल का शिकार होकर असफलता के द्वार पर पहुंच जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, क्योंकि किसी से मुफ्त सलाह लेने वाला व्यक्ति ही अपनी त्रुटियों को जान सकता है। यदि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना होगा। इसके साथ ही यदि आप सरल स्वभाव वाले, मीठा बोलने वाले, धैर्यवान और सहनशील प्राणी हैं, तो आपके लिए इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं। आप जो चाहेंगे

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

कुछ लोग अक्सर यही शिकायत करते सुनाई देते हैं कि वे अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने से वंचित ही रहे हैं। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह उन्नति नहीं कर सके। लगता है हमारा भाग्य ही खोटा है। ऐसे लोग केवल शिकवे शिकायतें ही करते रहते हैं। आगे न बढ़ने का दोष वे भाग्य के सिर मढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? कैसा भाग्य? किसका भाग्य? क्या कभी सोचा आपने कि भाग्य में जो लिखा है उसे पाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है? बिना प्रयत्न के कुछ नहीं मिलता। भाग्य बनाया जाता है, बना बनाया कुछ नहीं मिलता। और भाग्य को बनाने के लिए जरूरत है प्रयत्न की, परिश्रम की। बिना प्रयास के किसी का भाग्य नहीं बनता। इसके लिए तो आपको परिश्रम की सीढ़ी पर चढ़ना ही होगा। यह सीढ़ी हर समय आपके लगी हुई रहती है। क्यों नहीं आप इस पर चढ़ जाते? उठो, हिम्मत से काम लो, अपने भाग्य को बदल डालो। हाथ की लकीरों और तांत्रिकों का सहारा एक ढोंग है, सबसे बड़ा धोखा है। जो लोग इनके जाल में एक बार फंस जाते हैं, वे कुएं के मेंढक की भांति छोटी सी जगह में ही छलांगे लगाते रहते हैं। मेहनत से ही आपका काम बनेगा। आपका परिश्रम ही आपका सबसे बड़ा साथी है। वफादारी, ईमानदारी, परिश्रम और काम करने की लगन, यही आपकी उन्नति के सबसे बड़े साथी हैं। यही आपको सफल कारोबारी इंसान बना सकते हैं। यही आपको ऊंचा पद

0: रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी

एक स्टोर में दो क्लर्क एक साथ काम करते थे। इनमें से एक सदा यही रोना रोता रहता था कि उसे जो वेतन मिलता है उसमें उसका गुजारा भी नहीं होता। कम वेतन की परेशानी तो दूसरे क्लर्क को भी थी। वह सोचता था कि वेतन तो कम है, मगर हाँ, इससे मुझे यह लाभ भी तो हो रहा है कि कारोबार के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यह तो एक प्रकार की शिक्षा ही है। ऐसी शिक्षा स्कूल कॉलेजों में हजारों रुपये मासिक खर्च करने पर भी नहीं मिलती। जीवन में लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, लोग धन कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, यह सब उसे इस स्थान पर आकर ही पता चलता है। वास्तव में यह तो बहुत बड़ा धन उसे प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा ज्ञान इस संसार में कौन देगा। उसे जो भी वेतन अब मिल रहा है वही काफी है। शिक्षा के साथ साथ ऐसा धन बुरा नहीं। यही सोचकर वह क्लर्क पूरे दिल से उस संस्था में परिश्रम करता रहा। वह काम करते समय कभी भी घड़ी की ओर नहीं देखता था, केवल अपने काम को देखता था। समय कितना हुआ है यह उसकी सोच नहीं थी, जबकि उसका साथी क्लर्क अपना काम घड़ी देखकर ही करता था। वह यही सोचता रहता था, मालिक मुझे जितने पैसे देता है मैं उससे कहीं अधिक काम कर देता हूँ। सारा दिन जानवरों की भांति काम करने पर भी वेतन उतना ही मिलेगा जितना मजे मार कर काम करने से मिलता है। फिर क्या जरूरत है मरने की। अरे, जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, उसे कौन रोक सकता है। बस थोड़ी मौज ले लिया करो, ऐश करो। अपने मालिक के पास करोड़ों की दौलत है, हमारे मजे मारने से कम नहीं होगी। दूसरा क्लर्क अपने साथी क्लर्क की बातें सुनता रहता था, मगर अपने काम में कभी कमी नहीं आने देता था। शुरू शुरू में तो उसने अपने साथी को यह समझाने की कोशिश की थी कि आदमी को अपने काम में सदा मन लगाना चाहिए, काम ही तो असली पूजा है। मगर वह क्लर्क उसकी बात को समझने के बजाय उसका ही मजाक उड़ाने लगा था। एक साथ होने के नाते उसे उसकी यह सब बातें सुननी तो जरूर पड़ती थी, परंतु उसे दुख इस बात का था कि उस आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही थी। वह दफ्तर की एक लड़की के प्रेम जाल में फंसकर अपना सब कुछ भूल गया था। काम के समय ही शराब पीते रहना उसकी आदत से बन गई थी। शराब पीने के पश्चात काम को अधूरा छोड़कर फिल्म देखने चले जाना उसकी आदत थी। उसके अधूरे काम को भी उसे ही पूरा करना पड़ता था। इस प्रकार दोनों को काम करते करते 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष के पश्चात जब कंपनी के मालिकों ने उस परिश्रमी क्लर्क के काम की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने उसे अपनी कंपनी का भागीदार बना लिया। मौज मस्ती मारने वाले उसके काम चोर क्लर्क ने जैसे ही यह

नसीब और ईश्वर को ना कोसें। जो बात आपके हित में नहीं सदती है, उसे ईश्वर पर क्यों छोड़ देते हो? ईश्वर ने जब तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया है, काम करने के लिए दो हाथ दिए, चलने के लिए दो टांगे, प्रगति करने के लिए बुद्धि, ऐसी कौन सी चीज है जो संसार के स्वामी ने आपको नहीं दी? इस पर भी आप बात बात में अपने स्वार्थ के लिए उसे अपने बीच में घसीटते हैं। आखिर क्यों? यह बात आपके सोचने की है, हर प्राणी के सोचने की है। आज ही इस विषय में सोचो, समय को नष्ट मत करो। यदि आप वह सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपकी इच्छा है, तो आज से ही अपने दिमाग का प्रयोग करना शुरू कर दें। उस बुद्धि को काम में लाने का प्रयास करें जो ईश्वर ने आपको दी है। आप दृढ़ निश्चय कर लें और दृढ़ निश्चय शक्ति का सहारा लें। आप यह प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे यह काम करना है और आगे बढ़ना है, तो फिर कोई कारण ही नहीं कि आपको सफलता न मिले। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पवित्रता का धान है तुमसे, हर सुकून के अरमान है तुमसे। ब्रह्मा मुख से जो वचन कही है, उन्हीं में जीवन का सार पाया है, उन्हीं में जीवन का

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूँ आपका दोस्त आजिश। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर हम इस बात को समझते हैं कि स्वस्थ रहना मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ा वरदान है। अगर स्वास्थ्य चला जाता है तो व्यक्ति जीवन के सारे सुख सुविधाएं होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर सकता, या वो चीजें होते हुए भी वो अपने आप को सुखी नहीं महसूस करता। ऐसे में स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है हम सभी समझते हैं। अक्सर इसके महत्व को न जानने के कारण हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं, या थोड़े समय के लिए हम रोगी बन जाते हैं और इस रोग से छूटने के लिए फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आइए आज स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे विषयों पर जानकारी लेते हैं जिससे ये समझा जाए कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, स्वास्थ्य का यह तोहफा हमेशा हमारे पास रहे। आज हमारे साथ इन विषयों पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य जगत से ही एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और दे रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पर जब भी हम कोई बातचीत करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसे एक बहुमूल्य कुंजी के रूप में लोग हमेशा से देखते आए हैं, मगर गौर करने वाली बात ये आज देखने को मिलती है कि व्यक्ति का ध्यान पैसा कमाने के लिए ज्यादा रहता है, जीवनोपार्जन के लिए ज्यादा रहता है, मगर जीवन को सुख से व्यतीत करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए, निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर, व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य आवश्यक है, वो पहली रिक्वायरमेंट है, इसे लोग भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है
1: भैया? अरबी में कहावत है कि जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास उम्मीद है, और जब उसके पास उम्मीद है तो उसके पास सब कुछ है। बहुत बार ये बोला जाता है, होप हैंग्स ऑन अ वेरी थिन स्ट्रिंग, बट इफ यू हैव होप यू कैन गेट ऑल द थिंग्स। तो मोटा मोटी उम्मीद को भी स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास ज्यादा मेहनत करने की ताकत है, आपको पास ज्यादा उम्मीद है। और ये बहुत बार लोगों को समझाया जाता है कि आप कृपा करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से दीजिए। और अभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या हमारे देश नहीं, पूरी दुनिया में जो बदलाव आया है सन 1990 सन 2000 तक, हमारे यहां नाइट ड्यूटी या रात का काम सिर्फ चौकीदार लोग किया करते थे, पुलिस वाले किया करते थे और अस्पताल के कर्मचारी किया करते थे। रेलवे स्टेशन पे भी आपको ये मिल जाता था। उस समय हमारी हवाई सेवाएं इतनी नहीं थी कि रात भर आपको दौड़ना भागना पड़े, और एक अमूमन ये था कि 10-11 बजे के बाद आपको रिक्शा मिलना, आपको टैक्सी मिलना, ये सब कम हो जाएगा। अब आप देखिए कि रात का काम करने वाले कितने सारे लोग हो गए, और जो दिल्ली एनसीआर है या हैदराबाद है, मुंबई है, बैंगलोर है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, जयपुर है, आप जो भी बड़े शहरों को देखिए, इवन सुदूर आसाम कोलकाता चले जाइए, आपको एक बहुत बड़ी जनसंख्या यंगस्टर्स की मिल जाएगी जो कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं और जो रात में काम कर रहे हैं, और वो उस रात में काम करने की वजह से अपनी पूरी जो लाइफ साइकिल है और स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर दिए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत दिन तक लोग ये काम कर ही नहीं पा रहे, और उन्हें ये काम साल दो साल तीन साल के बाद छोड़ना पड़ रहा क्योंकि उनको बीमारियां पकड़ ले रही। इवन भैया, अब आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखिए, वहां 2400 घंटे काम हो रहा है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो अपना न समय देख रहे हैं न वातावरण देख रहे हैं, और हम जब काम कर रहे हैं तो अपने भोजन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं किसी दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूं, मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब मैं मुंबई में मरीज देखता हूं और मेरे पास बहुत सारे मरीज रहते हैं, तो मेरा नाश्ता, मेरा जो दोपहर का भोजन है और मेरे शाम का जो भोजन है, वो सिर्फ एक चीज होता है, वो है वड़ा पाव। और आपका दिमाग क्या कहता है, जल्दी से जल्दी कुछ खा लो। और ये मेरे यंग डेज में मैंने बहुत किया। मैं जब ब्रिटेन में रहा तो जस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है, आप भी श्री भैया रहे हैं, ग्रैब अ सैंडविच एंड गो, या पिक अप अ कॉफी एंड गो। तो हम लोग क्या करते, और आप जितने भी बड़े स्टोर्स को देखिए, वहां पर एक मील कॉम्बो मिलता था जिसमें एक छोटा पैकेट ऑफ चिप्स या कुकी बिस्किट मिलता था, एक सैंडविच मिलता था और एक ड्रिंक मिलती थी। और ये आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप इसको 5 ही मिनट में खा के खत्म कर लेंगे। तो हम लोग अपने भोजन, उस समय दिमाग यही था कि बस पेट भर लेना है, स्वास्थ्य की तो हम बात ही नहीं सोच रहे थे। और जब उम्र बढ़ने लगती है, खासकर जब आप 35 साल को क्रॉस करते हैं और बहुत सारे लोगों में 40 साल तक, तो आपको ये जो आपने किया है अपने शरीर के साथ, आपने जो दुर्व्यवहार किया है, वो आपको दिखने लगता है, आपको लगने लगता है कि आपने गलत किया, आपको ये करना नहीं चाहिए था, आपको ठीक से भोजन करना चाहिए था, आपको ठीक से एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, आपको ठीक से हिलना डुलना चाहिए था। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि कृपा करके अपने स्वास्थ्य के प्रति जितनी जल्दी हो सके उतना जागरूक हो जाइए। और मैं सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शरीर, मन और हम सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, तीनों तरह से आपको स्वस्थ रहना है और अच्छा काम करना है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
0: डॉक्टर साहब, ये बात आप बहुत ही सहजता से हम सबको समझा रहे हैं कि कैसे हम इस एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर देने की वजह से दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देने से हम इसे खो देते हैं, और फिर उसे वापस पाने के लिए हमें कमाया हुआ पैसा, समय इत्यादि खर्चना पड़ता है। पिछले दिनों हम बातचीत कर रहे थे, हम ये चर्चा में समझ रहे थे कि कब्ज की जो बात हम कर रहे थे, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो हमारे ऐसे ही इग्नोर करने के कारण शुरू होती है। हम पानी पीना पर ध्यान नहीं देते, हम समय पर शौच पे जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम, हालांकि हमारा शरीर इशारा करता है तो भी हम उसे दबा दे रहे हैं कि हम शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम भोजन में भी हेर फेर कर लेते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस चीज पर ध्यान नहीं देते। ऐसे करते करते ये इसका स्वरूप बदलता चला जाता है। और आपने ये भी कहा कि पाइल्स जैसी समस्याएं भी इससे ही जुड़ी हुई होती हैं, कि इन्हीं गलतियों के कारण ये चीज ऐसे होती जाती हैं। अब समस्या एक ही चीज से जुड़ी हुई है वो समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे वो अलग अलग स्टेजेस पे आ रहा है। अब इसके इलाज के बारे में जब बात की जाती है तो प्रश्न उठता है, क्या इसके इलाज भी एक समान है कि इन सारी समस्याओं के लिए हम अलग अलग तरीके से इलाज करते हैं, क्योंकि आज लोग अलग अलग पैथीज इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रश्न उठता है स्वाभाविक रीति।
1: भैया, मोटापा हो, कॉन्स्टिपेशन हो या पाइल्स हो, मोटा मोटी सबका इलाज एकदम एक जैसा है। इन तीनों के विषय में आपने भैया खाने की बात की और शौच जाने की बात की, तो एक बड़ी, यहाँ एक लोकल बंगला में कहावत है कि जाए कि ना जाए तो जो जाए उचित, और खाए कि ना खाए, ना खाए उचित। मतलब अगर आपको, मतलब थोड़ा भी आपको, आपका पेट इशारा कर रहा है कि फ्रेश होने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको तुरंत जाना चाहिए। वो हल्के से भी सिग्नल को, वो हल्के से भी जो आपके शरीर के अंदर से आवाज आ रही है, उसे तुरंत आपको पकड़ना चाहिए। मतलब शौच आप जाएं कि ना जाएं, इस दुविधा में अगर आपका मन है तो आपको चुपचाप शौच चले जाना चाहिए। और इसी के विपरीत कि हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो इसमें नहीं खाना चाहिए ज्यादा उचित है। अगर आपके शरीर ने, आपके मन ने, आपके जीवा ने, आपके दिमाग ने एक बार भी ये सोच लिया यार ये खाएं कि नहीं खाएं, तो नहीं खाना उचित है। तो प्लीज अगर आप अपने पेट को ठीक रखना चाहते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं गर्दन को दाहिने बाएं घुमाइए, ना बोलना सीखिए खाने को, और अगर जरा सा भी आपके पेट में सिग्नल आए तो आपको तुरंत पेट साफ होने के लिए जाना चाहिए। हम लोग अभी पेट की बात कर रहे हैं और पेट साफ होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज आजकल बात की जाती है वो है इलाज में, अब उसको भी कंसिडर किया जा रहा है कि आपको सुबेरे जल्दी उठना चाहिए। हमारी ह्यूमन बॉडी को इस तरह से भगवान ने बनाया है कि उसमें जो भी नेचुरल जो बात फ्रेश होने के जो सिग्नल्स हैं वो सुबेरे के समय आते हैं। आप जान के अचंभित होंगे कि इस समय जितने भी इनफर्टिलिटी के मरीज हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी जो प्रोसेसेस हैं वो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि सुबेरे किए जाएं, और वो ये तक कोशिश कर रहे हैं स्पेशली बड़े शहरों में कि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, कि ये सबसे पॉजिटिव सबसे अच्छा समय है। मेरी माँ ये हमेशा कहती थी सुबेरे उठ के जो पढ़ाई होती है वो एक घंटे में हमें 2 से 3 घंटे का फायदा हो जाता है। सुबेरे उठ के मुंह हाथ धो के जब पूरा वातावरण शांत रहता है, कोई भी चीज सुनाई नहीं देती, उस समय अगर आप बैठ के पढ़िए तो आपको ज्यादा याद होगा, आपके शरीर के लिए अच्छा है और आपके मन के लिए भी अच्छा है। तो यही चीज अब मोटापा, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स तीनों में कहा जा रहा है कि आप प्लीज सुबेरे उठिए। और ये भी कहा जाता है कि सूर्य की जब किरण निकल रही है अगर आप उस समय उठ पाएंगे तो आपको सबसे अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी तांबे के या मिट्टी के या जो सामर्थ्यवान है चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी जो रात भर का रखा है उसे उठते ही पीते हैं तो आपके पेट साफ होने में वो बहुत मदद करेगा। सुबेरे उठते ही 2 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। अब इस पानी में हम चाहें तो जो सर मैंने पहले कहा था कि हमको इसमें जो नींबू का रस मिलाकर हम इसमें सुबेरे पी सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूंगा कि आप रात में पानी रखें और सुबेरे उसमें नींबू गार लें, कागजी नींबू, और पी जाएं। ये मत करिएगा कि रात में ही आप नींबू और पानी बनाकर आप उसको रख दें और सुबेरे पिए। हल्का फुल्का व्यायाम और गहरी सांस लेने वाली कसरत आपको करनी चाहिए, और अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन या आपको अच्छा खासा आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपको 4 से 6 किलोमीटर तक सुबेरे वॉक करना चाहिए। ये मोटा मोटी माना जाता है अगर स्टेप के हिसाब से माने कि हम हर मिनट 100 स्टेप चल लेते हैं, 10 मिनट में 1000 स्टेप चल लेते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम 10,000 स्टेप सुबेरे ही चल लें, क्योंकि यदि आप 10,000 स्टेप चल लेंगे तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जहां आप हल्के फुल्के व्यायाम, एक्सरसाइज या टहलना करेंगे तो आपका रक्त संचार जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपकी बड़ी आंत में भी अच्छा रक्त संचार होगा और इसकी वजह से आपका पेट ठीक से साफ हो जाएगा। इसके बाद हमें कोई भी फल का या रस का प्रयोग करना चाहिए। फलों में सबसे अच्छा जो फल है वो पपीता, अमरूद और बेल है, और पके हुए फल का प्रयोग करना चाहिए। अमरूद, पपीता या बेल, इन तीनों में से जो भी चीज आपको मिले आपको सुबेरे के नाश्ते में करनी चाहिए। अगर आप रस पीना चाहते हैं तो आपको गाजर का रस और पालक का रस, ये रस आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। दोपहर के भोजन में हमें चोकर समेत आटे की रोटी, हमको ताजा साग सब्जी, उबली हुई साग सब्जी का भोजन करना चाहिए, या हम कोई भी दलिया या कोई भी मिलेट जो है वो खा सकते हैं। मैं सबको ये राय और देना चाहूंगा, कृपया मिक्स्ड आटा या मिक्स्ड मिलेट इसका प्रयोग मत करिए, क्योंकि ये आपके जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर ज्यादा जोर डालता है। इसीलिए सिंगल ग्रेन या सिंगल मिलेट का प्रयोग करिए। मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्स मतलब बहुत सारे अन्न को मिला के खाने की कोशिश मत करिए। जिनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, मोटापा होता है, उनको ये तक कहा जाता है कि आप दालों को मत खाइए और जो भी भोजन जो गर्म होते हैं उन्हें मत खाइए, क्योंकि जैसे तेल, अचार, खटाई, मिठाई, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके पाचन तंत्र को और धीरा बना देते हैं। आप सुबेरे के नाश्ते के बाद अपनी पेट पे ठंडे पानी का कपड़ा रख सकते हैं। यदि आपको मिट्टी मिले तो आप पेट पे मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग को ये भी कहा जाता है कि आप अपने कमर पे एक ठंडे पानी में कोई पट्टी, जो कॉटन की कोई भी पट्टी है, उसको भिगो लें, और ये करीब 12 इंच मोटी कोई पट्टी आपके पास अगर कॉटन की है तो इसको भिगो लें और इसको अपने कमर पे बांध लें। नाभि के चार उंगल ऊपर, चार उंगल नीचे होना चाहिए। पट्टी नाभि के एकदम बीचों बीच से, अगर आप नाभि को बीच में माने तो जितना ऊपर नाभि के उतना ही नाभि के नीचे भी होनी चाहिए। इससे आपकी सारी जो आंत है उसमें ठंडक पहुंचेगी, आंतों की गर्मी निकलेगी और आंतों में फिर से नया जीवन आएगा और वो अपने आप चलायमान हो जाएंगी। हम लोग ने ठंडे पानी में बैठ मतलब पानी में बैठने की भी बात की थी, तो आप अगर आंतों को ठंडक पहुंचाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। करीब हफ्ते में एक दिन उपवास करने की कोशिश करनी चाहिए। 2-3 दिन तक अगर हम रसाहार या लिक्विड डाइट करते हैं तो वो भी हमको बहुत आराम देगा। सवेरे भारी नाश्ता करने की हमें आदत छोड़नी चाहिए कि हम मतलब हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतनी जल्दी निकलेगा।
0: डॉक्टर साहब, जब आप कहते हैं कि ये जो हैवी ब्रेकफास्ट करना है इससे बचना होगा, और आपने ये भी बात कहा कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना जल्दी निकलेगा शरीर से बाहर, ये एक अवधारणा हमारी कैसे बनती है वो मैं नहीं जानता। प्रायः ये चीज कहा जाता है कि लोगों को बोला जाता है कि भाई अच्छे से नाश्ता करो बेटा, बचपन से ये चीज सिखाया जाता है। तो हम सोचते हैं कि भाई एक किंग के समान नाश्ता होना चाहिए और एक मजदूर के जितना हमें भोजन करना चाहिए, और फिर बाद में एक बहुत ही गरीब आदमी जितना रात का भोजन होना चाहिए, ये कहावत मशहूर है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ब्रेकफास्ट तो हैवी होना ही चाहिए, जो मिल रहा सब कुछ ही खा लेना है, ऐसी ये चीज लगती है।
1: भैया, ये जो आपने बात की ये हेल्दी पीपल के लिए है। जब आपका पाचन तंत्र चल ही नहीं रहा है तो उसमें आप ऊपर से जो भी डालेंगे वो फंस जाएगा। अच्छा, हैवी ब्रेकफास्ट अगर ये जहां से भैया निकला वहां पर जो भी लोग थे वो सैलड बहुत खाते हैं, वो फ्रूट्स बहुत खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट में जैसे जो यूरोप है वहां से ये धारणा निकली, तो दे हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स, सैलड्स, ब्रेड्स, मिल्क, ये वहां से निकला। हमारी इंडिया में आते आते ये सुबेरे के पराठे में कन्वर्ट हो गया, और ये हैवी ब्रेकफास्ट जो है ये तला भुना वो सारी चीजें हो गई। आप खुद नोटिस करेंगे भैया कि हम आप विदेश में रहे हैं, वहां खाने के साथ पानी बहुत कम पिया जाता है, और हमारे यहाँ हम इतना भारी भोजन करते हैं कि हम खाने के साथ पानी का गिलास भी रखते हैं। बहुत सारे लोग जब आरोग्य मंदिर में चिकित्सा कराने आते हैं तो वो इस बात से अचंभित हो जाते हैं कि यहाँ पानी का गिलास ही नहीं भोजन के साथ मिलता है। हम आपको सिर्फ एक स्टील की प्लेट, दो कटोरी, एक चम्मच देते हैं, हम पानी का गिलास ही नहीं देते हैं। और अगर आपको कोई भी पाचन तंत्र की समस्या है, भोजन आपका ठीक नहीं है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप खाना खाने से पहले नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी ठंडक में पी सकते हैं, और भोजन करने के 1.5 से 2 घंटे बाद इच्छा अनुसार आप जल पी सकते हैं। खाने के साथ आपको पानी जो है वो अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि वो पेट और छोटी आंत का जो काम है वो बढ़ा देता है। एक्सरसाइज में ये भी कहा जाता है कि आप बेसिक सूर्य नमस्कार अगर करिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार में आगे झुकने और पीछे झुकने के जो आसन है वो आपके पेट को साफ करने में बहुत मदद करेंगे। ये अवधारणा है कि खासकर प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद ये कि आपको बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए अगर आप कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स के मरीज हैं।
0: व्यायाम की जब आप अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग इन सब चीजों से अवगत नहीं होते। जैसे आपने ये बात कहा, जैसे मैंने अभी ये सवाल पूछा, आपने कहा कि ये स्वस्थ लोगों के लिए चीज है, मगर वो लोग जो पाइल्स कॉन्स्टिपेशन जैसे कब्ज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको अपने इलाज में इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। कभी कभार हम एक्सरसाइज के बारे में भी जब करते हैं तो हम बिना चिकित्सीय सलाह के, बिना डॉक्टर से राय मशवरा किए, जो हम YouTube पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया रील्स पे देख रहे हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि मेरे शरीर में जो गड़बड़ियां चल रही हैं या कोई चीजें मुझे सूट नहीं करने वाली होंगी उसके हिसाब से मुझे ये चीज समझ कर करना है?
1: आपको अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपको वो भोजन जो आपकी जिह्वा पे आपको अच्छा लग रहा है पर आपको शरीर से कष्ट दे रहा है उसको पक्का छोड़ देना चाहिए। भैया राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में एक चटनी बनाई जाती है जिसमें हम लाल मिर्च का पाउडर लहसुन के साथ उसको पीसते हैं और ये बहुत तेज होती है। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति इसको अगर एक बार खा लेता है तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है, मेरे पेट में अगले दिन जलन होने लगती है और मेरी पूरे जो मुंह है सूख जाता है। तो मुझको मालूम है ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, मगर वो जब जिह्वा पड़ती तो बहुत एकदम एक तीखा सा स्वाद आता। तो मुझे मालूम चल गया मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैंने इसको एक बार दो बार खाया, उसके बाद से मैं पहले मना कर देता हूं कि मैं नहीं खाता और अगर सर्व भी हो जाती है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि वो चीज मेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही कोई एक फल होता है जिससे वो रिएक्शन हो जाता है, कोई एक दाल होती है, कोई मतलब प्रोटीन होता है, कोई सब्जी होती है, इनको खाने से परेशानी होने लगती है। ठंडक के समय लोग बहुत मटर खाते हैं तो गैस होने लगती है, इसलिए मटर को वो फिर ये होता बड़ा परेशानी हो रही, तो भाई छोड़ दीजिए आप। तो जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, आपको भले ही उससे स्वाद आ रहा है, तो प्लीज उसको तो जरूर छोड़ दीजिए।
0: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर साहब। एक और हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और जागरूक होने की कोशिश में हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हमारे शरीर के लिए, हमारी प्रकृति के लिए अनुकूल है और क्या चीजें अनुकूल नहीं है, क्या चीजें हमें सूट करती हैं, क्या चीजें हमारे शरीर के लिए विरोधी हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें समस्या ले आ सकती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीजें समझ के साथ जब हम करते हैं तब पता चलता है। दोस्तों स्वास्थ्य में जब भी गड़बड़ियां होती हैं तो इलाज मौजूद है, मगर उन इलाजों को करते समय सही राय लेना बहुत ही आवश्यक है। आजकल जानकारी के इस युग में रहते हुए हम हर कोई जो मन में आए वो करने लग जाए तो शायद ये हमारे लिए अहितकारी साबित होगा। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स जैसी बीमारियों के लिए इलाज के क्या तरीके हैं, उस विषय पर आज हमने डॉक्टर राहुल मोदी जी से सुना। आशा करते हैं कि ये सभी जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और आप इसका सही सही इस्तेमाल करेंगे। आज की चर्चा में यही रुकना होगा। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों आज की बातचीत में बस इतना ही। सहज स्वास्थ्य में अपने स्वास्थ्य को सहज करने के लिए क्या करने की जरूरत है, रेडियो मधुबन इसके लिए आपको आपके हाथ पकड़कर अच्छे स्वास्थ्य की ओर एक एक कदम बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमारे साथ इस सफर पे यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत है आप सबका। जब खुद को पहचान लेते हैं तो कितना आसान हो जाता है ये एक्सेप्ट करना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ जो प्यार करती है, और जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जिनके साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, वो भी तो वही आत्मा है जो शांत स्वरूप है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हमने खुद को पहचाना है, उस शिव बाबा से मुलाकात की है, उनके साथ कॉन्वर्जेशन, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, मेडिटेशन का एक पूरा आस्पेक्ट जो है उसे समझा है, जिंदगी में उतारा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और किस तरह से ये जो रिश्ता परमात्मा के साथ हमारा जुड़ा है, खुद अपने साथ जुड़ा है, ये किस तरह से हमें एम्पावर करेगा, क्या कुछ हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, और इस बातचीत के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
3: ओम शांति
2: जी।
3: अब आप ओम शांति बहुत डिफरेंटली बोलते हैं।
2: हाँ, क्योंकि इट्स लाइक
3: दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ आल्सो, यू नो, व्हेन यू कीप सेइंग एम आई ऑन द राइट पाथ, योर होल वे ऑफ स्पीकिंग एंड यू नो योर होल बिहेवियर तो चेंज होता है, बट इवन आवर वे ऑफ स्पीकिंग चेंजेस, क्योंकि जितना अंदर वो स्टेबिलिटी आती जाएगी, पहले जो बात करने का हमारा तरीका होता था दैट यूज्ड टू बी वेरी यू नो लाउड एंड बिकॉज दैट वाज It was emptiness inside, so it was more noise outside. जो कहते हैं ना, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, और भरा हुआ बर्तन, ये जब भर जाते हैं ना, तो आपकी जो बोलने का तरीका है वो भी अब it has so much of stability in that you can make out from the words, so you are definitely on the right path.
2: Okay, good, because I do feel good, you know. मैंने ये अपना सोचा था, मुझे लगता है कई लोग और भी होंगे, हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक पूरा परिवार बनता जा रहा है, कि अगर मैं कल से लेके आज में आनंद में हूँ, कल मैं जिसमें थी, जिस सिचुएशन में थी, आज अगर मैं अपने आप को बेटर फील करती हूँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते पे हूँ।
3: दैट इज ओनली द प्रूफ। और प्रूफ क्या है मेडिटेशन का? हल्कापन फील होता है, रिलेशनशिप्स इजी होते जाते हैं, ऐसे नहीं है वो परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसे भी नहीं है फर्स्ट डे में आई विल फील परफेक्ट, आई जस्ट हैव टू बी बेटर than yesterday. That's all. That's the constant process of change. Ke har roz kal se behtar, kal se behtar. Aisa na ho ki utna hi gussa jitna kal tha, utna hi pareshani hai, then I'm not on the right path. You know, either the path is not right or I am not walking the right way.
2: I'm not even understanding, you know, kitna superficially, kitna main andar leti ja rahi hu, kyunki ye bhi ek har pal pe conflict dikhta hai ki kahin ye aisa to nahi hai, then you check. And see what I started saying your words actually.
3: Yeah, because it's getting integrated inside. अच्छे तरह से वो बैठता जा रहा है सारा.
2: So अब empowerment का एक तो मुझे एक मुझ में खुद में दिखा. मुझे लगता है हम में बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो हमारे साथ share करते हैं अपने experience. उनमें भी दिख रहा है कि I'm feeling better.
3: Right.
2: What else is going to happen?
3: And that was healing, na? Meditation is healing. So you're feeling better. तो healing हो रही है अंदर से. मेडिटेशन का जब हम अभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो आत्मा के अंदर शक्ति भरती जाती है. बहुत सारी सारा दिन में कर्म करने के लिए, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है. ज्ञान तो मिल गया, लेकिन ज्ञान को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर चाहिए, एंड वो पावर हम में आती जाती है. जो फर्स्ट पावर जिसको हम कहें, जो हमारे में आती है या जो टेक्निक हम सीख लेते हैं, वो है पावर टू विथड्रॉ. यू नो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पावर है. जो हम ये टेक्निक प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि हर घंटे में एक मिनट के लिए, तो उससे क्या होता है, हमें एक आदत सी या कहें एक संस्कार बन जाता है कि कर्म करते करते करते सडनली एक मिनट में विथड्रॉ. मतलब हम अभी बहुत एक्टिविटी में थे, माइंड बिल्कुल किसी प्रोजेक्ट में या किसी एक्टिविटी में था, और एक मिनट में निकाला मैं आत्मा परम धाम. तो माइंड और इंटेलेक्ट के ऊपर
2: कंट्रोल,
3: जहां हम आज दिन तक कह रहे थे कि मन तो पता नहीं कहां कहां भागता रहता है, तो ये अभ्यास करने से अब क्या होगा, हम अपने मन को जहां लगाना चाहें,

0: जितने समय के लिए लगाना चाहे हम कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करते गए बहुत बिजी होते हुए एक मिनट में विथड्रॉ. टॉर्टोइस, कछुआ, उसके पास एक शेल है, वो सारा दिन काम करता है, लेकिन जहां उसको कहीं भी खतरा दिखाई देता है इट विथड्रॉज. सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट पिक्चर ऑफ द टॉर्टोइस, कि कहीं भी कोई खतरा दिखाई दे रहा है, कोई आ रहा है, उसका मूड अच्छा नहीं है, या ये व्यक्ति है इसे हमेशा थोड़ी सी मेरे से, उनसे बात करने से एक सेकंड पहले सिर्फ अपनी उस स्टेज में विथड्रॉ कर जाइए. उनसे विथड्रॉ नहीं करना है, यू नो कि ठीक है मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है. जो भी हम कर रहे हैं वो फिजिकल नहीं है कुछ भी, अब इट्स सटल, कि एक सेकंड फिर से वो याद करके कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, अब मैं इनसे बात करती हूँ, तो उनको देखने का दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा.
1: और वो भी तो वही है,
0: वो है ही. हाँ, तो वो है, बट आई हैव टू रिमाइंड माय सेल्फ, यू नो, सो दैट्स द प्रोटेक्शन आई गिव माय सेल्फ, कि रिमाइंड माय सेल्फ अगेन. तो कोई डेंजर आएगा भी तो मुझ पर वो इफेक्ट नहीं करेगा, आई एम इन दैट प्रोटेक्शन नाउ, क्योंकि मुझे एक शील्ड मिल चुकी है कि अपने आप को कैसे बचा कर रखना है. लेकिन वो तभी होगा अगर मैंने ये अभ्यास किया होगा. अगर ये प्रैक्टिस नहीं है और हम जब चाहे तब उस स्थिति में हो जाए, वो नहीं हो पाता. लेकिन कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं, जैसे बेंट करने की कोशिश करें, अगर एक्सरसाइज नहीं करते अब बेंट करके किसी चीज को उठाएं, तो उठाने में ही कहते हैं पीठ में दर्द हो गया, लेकिन जो रोज बेंट करते हैं तो वो जिस क्षण चाहे जितनी देर के लिए चाहे बेंट करके कोई भी चीज उठा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई. सो सिमिलरली दिस एक्सरसाइज, सो दिस इज पावर टू विथड्रॉ, कि विस्तार में आप हैं, बहुत एक्टिविटी है, विस्तार से एकदम एसेंस में आ जाए, तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आ जाती है. जैसे ये शक्ति आ जाती है हमारे अंदर, तो एक बहुत वंडरफुल कला जो हमें मिलती है, या पावर जो कहें, वो है पावर टू पैकअप. आफ्टर एवरी वन आवर पैकअप. पैकअप व्हाट? ऑल अननेसेसरी एंड वेस्ट थॉट्स. हम जब यात्रा पर चलते हैं, वी सपोज टू ट्रैवल लाइट, तभी यात्रा का आनंद आएगा. कई लोग आप देखो ट्रेन में चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है
1: सारा घर साथ,
0: पूरा घर अपने साथ लेकर चले हैं. और सबसे ज्यादा मुश्किल उनको होती है अपना सामान समेटने में, और औरों को भी सारी तकलीफ होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बर्डन लेकर चल रहे हैं. इसी तरह हमारे ऊपर भी बहुत बर्डन होता है सारा दिन, इसने ये कहा, इसने ये किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, सुन लिया, बात हो गई. अब जब साइलेंस में बैठते हैं, इवैल्यूएट, क्या ये थॉट मेरे लिए यूजफुल है, डू आई नीड इट इन द नेक्स्ट आवर, या रात को जब बैठकर अपना चार्ट चेक करें इंटरनल, क्या ये वाली थॉट्स मुझे कल जरूरी है, अगर नहीं, देर इज वेरी लिटिल स्पेस अप देर. इसीलिए लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट बात तो याद ही नहीं रही. इम्पोर्टेंट बात इसलिए नहीं याद रही क्योंकि बहुत सारी अनइम्पोर्टेंट बातें याद है. जब आपको पता है कि आपके पास इतनी स्पेस है, तो आप उस स्पेस को कैसे यूज करेंगे? बहुत केयरफुली यूज करेंगे. अब आप उसमें अननेसेसरी चीजें नहीं भरेंगे, तो ध्यान रखें यहाँ पर इतना ही सूटकेस है. अब इसमें वैल्यूएबल चीजें भरें और वो वाली चीजें भरें जो साथ में जाने वाली हैं.
1: दैट्स एक्चुअली यू नो, क्योंकि ये हम साथ लेके जाएंगे, यही कैरी करेंगे, जैसे संस्कार की आपने बात की थी.
0: सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ना. एक तो इस यात्रा के दौरान हमें ये बैगेज कैरी करना है, और फिर ये यात्रा यहाँ फिनिश नहीं होती है. एक कॉस्ट्यूम छोड़ा, दूसरा लिया, इट्स गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड. सो लेट मी बी केयरफुल कि मैं अपने सूटकेस में क्या भरती जा रही हूँ. सिर्फ पुण्य का खाता जमा करना है. वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, गॉसिप, जेलेसी, नो प्लेस. तो वो पहली बात तो धीरे धीरे क्रिएट ही नहीं होंगे, अभ्यास करते जाएंगे, लेकिन हर थोड़ी देर के बाद चेक कर ले. नहीं तो क्या होगा, आज आपने मुझे कोई बात कही, 10 साल के बाद भी आप मिलते हो ना, तो आपको देखकर इन्होंने मुझे वो कहा था. इतना हम हर्ट हो जाते हैं, इतना ज्यादा उस बात को हम पकड़ लेते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हम पूरी लाइफ फिर उनकी वो वाली बात भूल नहीं पाते हैं. तो ये दिस मीन्स दैट हम बहुत सारा बर्डन, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ कहने वाले हैं, यू नो, यात्रा के दौरान भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी. कैन आई कैरी एवरीथिंग? सो एवरी आवर या एटलीस्ट एवरी डे, एट द एंड ऑफ द डे चेक द होल डे, unnecessary, I don't need this for tomorrow. ये ऐसे लगता है कि ऐसे बोलने से होगा नहीं, लेकिन होता है.
1: लेकिन I do get attached to. हाँ. बड़ा मजा आ रहा होता है.
0: Right.
1: प्रॉब्लम क्या है, इवन अगर हम नेगेटिविटी देखते हैं, गॉसिप, आई टेल यू, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एक मैं किन्हीं को जानती हूँ, शी इज अ वेरी वेरी नाइस लेडी, वेरी हेल्पफुल, एवरीथिंग इज गुड, बट देर इज अ टेंडेंसी टू गॉसिप. यू नो अर्लियर आई यूज टू अंडरस्टैंड, ओके, क्योंकि उनको निकालना है तो मैं सुन लेती थी, बट देन आई ग्रेजुअली अंडरस्टूड कि नहीं, बिकॉज दैट्स अ नेगेटिव एनर्जी, व्हाट इज द यूज ऑफ वेस्टिंग योर टाइम. बट देन इवन इफ आई मीट हर आफ्टर अ मंथ, वो जो उनका जो एक गॉसिप का जो एक पूरी टेंडेंसी है, मैंने अपने आप को ऑब्जर्व क्योंकि अब किया है कि वी डू गेट कैरिड अवे, वी डोंट माइंड इट, यू नो, बिकॉज वी स्टार्ट एंजॉयिंग इट. या गॉसिप हो, या नेगेटिव एनर्जी हो, या नेगेटिव बातचीत हो, कहीं ना कहीं वो उससे आपको निकलना, वो विशेष सर्कल सा है जिसमें आप बंधते ही चले जाते
0: हैं. नहीं, कॉन्शियस अटेंशन, जैसे कि अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रख रहे हैं, तो आपने एक डाइट चार्ट अपने लिए बना लिया है, तो अब आप वो ही भोजन खा रहे हैं एंड यू आर सीइंग द रिजल्ट. अब हो सकता है कि आपके आसपास के लोग चटपटी चीजें खा रहे हैं, अब यही, दिस इज सेल्फ कंट्रोल. कुछ लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं और कुछ लोग कहते हैं खा लो ना, बाद में देखा जाएगा, जो होगा बीमार होंगे, कोई बात नहीं. बट दैट्स केयरलेसनेस. इसका मतलब हम अपना ही फायदा नहीं जानते, हम इतना हम यू नो गुलाम हो चुके हैं इन चीजों के, हमारा अपना पर उतना भी कंट्रोल नहीं है. तो जब वो ऑप्शन आएगी, देयर विल ऑलवेज बी टू थॉट्स, ये वाला करूं या नहीं करूं. क्विकली काउंसिल योर सेल्फ, इसमें मेरा फायदा है, एंड डू दैट.
1: बट देन हाउ टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड?
0: नो, वी आर नॉट हियर टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड, बिकॉज़ अगर कहीं मेरा नुकसान हो रहा है, आई कैन नॉट गिव अप सो मच एनर्जी, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके चार्ज कर रहे हैं, हम ऐसे ही उसको नहीं गवा सकते हैं. तो और अगर आपने सुन भी लिया है सारा दिन में, लेट्स से, फिर आप उसको जैसे ही बाहर आते हैं उस कमरे से, पहले तो सुनते समय ट्राई टू बी इन दैट सोल कॉन्शियस स्टेज एंड हैव दैट लिटिल डायलॉग इनसाइड बाबा के साथ, ताकि वो चीजें बहुत ज्यादा अंदर घर ही नहीं करेंगे, यू नो, फिल्टर उसको ब्लॉक कर लेगा. और फिर भी अगर कुछ आया, आने के बाद 5 मिनट अपने आप से बात करके, इनमें से कोई भी बात मेरे काम की नहीं है, आउट. जैसे जैसे हमें ये पैकअप करने की, समेटने की शक्ति आ जाती है, तो हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती जाती है. और जो बहुत इम्पोर्टेंट पावर है वर्तमान समय, वो ही शायद सबके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल लग रही है. सहन नहीं होता, सहन नहीं होता, उन्होंने ये कह दिया मुझसे, सहन नहीं होता. पावर टू टॉलरेट, मेडिटेशन से ये पावर बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हर एक का अपना रोल है, यू नो. सो डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, उनका अपना रोल है, वो अपने समय के अनुसार सही बजा रहे हैं. परिवर्तन भी हो सकते हैं, बट अभी जैसे हैं वैसे सही है, बट मैं कौन हूँ, यू नो, ऐसे करके अपने आप को बचा लेते हैं. अगर कोई कुछ कहता भी है, हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट टू टॉलरेट, लॉट ऑफ पीपल से हाउ टू टॉलरेट, बट इट्स वेरी सिंपल. अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, दो काम करने हैं जल्दी से. एक, चेक करना है बहुत डिटैच होके कि क्या वो बात जो कह रहे हैं वो सही है. यू नो, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने कहा ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे कर देना चाहिए था, तो हर्ट नहीं होना पहले, स्टॉप. हर्ट हो गए तो चले गए उन भावों में, डिटैच होकर क्या वो सही कह रहे हैं. अगर सही कह रहे हैं तो थैंक यू, मतलब आपने फिर मेरे भले के लिए ये बात कह दी. एंड आप अपने आप को फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस पे शुरू कर देते हैं. जो मेजोरिटी लोग फील करते हैं कि वो सही नहीं कह रहे हैं, क्यों ना, वो गलत कह रहे हैं, उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दिया है. अब अगर वो सही नहीं कह रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है.
1: That doesn't matter.
0: Yes. अगर वो सही कह रहे हैं, फिर तो एफर्ट करना, आई हैव टू चेंज. लेकिन अगर वो सही नहीं कह रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या,
1: क्यों फिर मेरे बारे में गलत क्यों कहा,
0: हाउ डज दैट मैटर.
1: But that's what the problem is.
0: But that's your opinion. See, I may say that I'm a very honest person, okay? मैं कहूँ कि मुझे पता है, मेरा संस्कार है sincerity का, honesty का. आप आकर कह देते हैं कि ये आपने काम बिल्कुल sincerely नहीं किया, ठीक है? Suppose you're my senior and you come and say, कितना carelessly ये काम किया आपने, बिल्कुल सिंसियरिटी नहीं।

0: ऑन इट, लेकिन अगर चेकिंग करने के टाइम पता चले कि नहीं मैंने पूरी सिंसियरली किया है, आई हैव पुट इन माई बेस्ट, देन इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्यूटली ओके, बी हैप्पी विद योर सेल्फ बिकॉज गुड, नो प्रॉब्लम, यू वर सिंसियर, आपने अपनी वो क्वालिटी को कायम रखा था, कहीं कोई लीकेज नहीं थी. लेकिन उन्होंने ऐसा कहा तो कोई बात नहीं, वो उनका दृष्टिकोण है. 700 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड, 700 करोड़ डिफरेंट ओपिनियंस.
1: एक्चुअली बात हुई है कि मैं वो उस इमेज से उतनी ज्यादा अटैच्ड नहीं रह जाऊंगी ना, यू नो, बिकॉज वो मेरी जिंदगी नहीं है. yeah. मैं वही नहीं हूँ.
0: नहीं, पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा अब मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए. मेरी ओपिनियन डिफरेंट है, आपकी ओपिनियन डिफरेंट है. अगर मैंने सिंसियरली किया लेकिन आपको नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आई डोंट नीड टू प्रूव माई सेल्फ बाय सेइंग इट, आई विल प्रूव बट विद माई एक्शंस. यू नो, ज्यादातर क्या होता है, या तो हर्ट हो जाते हैं तो अंदर ही अंदर क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, या फिर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे अपने आप को कि नहीं, आप देखो मैंने ठीक किया है. अगर सत्यता है तो सच को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता. ट्रूथ रिवील्स इटसेल्फ, ट्रूथ नीड नॉट बी प्रूव्ड टू एनीबडी. लेट इट टेक इट्स टाइम, नो प्रॉब्लम, बट इट विल रिवील इटसेल्फ. नोबडी कैन रिवील द ट्रूथ, इट रिवील्स इटसेल्फ ऑन इट्स ओन. तो इफ आई एम सिंसियर, अगर आपने पहचाना, नहीं पहचाना कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आप पहचान लेंगे. और अगर नहीं भी पहचानते कोई बात नहीं, फिर भी वो मेरी विशेषता है. सो आई विल नॉट गेट हर्ट बिकॉज आई नो माई सेल्फ नाउ. अर्लियर आई डिडंट नो माई सेल्फ, तो माई सेल्फ डिपेंडेड ऑन व्हाट पीपल थॉट अबाउट मी. तो अगर आपने कहा ओ वेरी गुड, यू आर वेरी सिंसियर, तो आई एम वेरी हैप्पी. अगर आपने कहा कि नहीं आप सिंसियर नहीं है, तो आई एम वेरी सैड. तो माई लाइफ एंड माई हैप्पीनेस डिपेंडेड ऑन एवरीबडी एल्स. एंड इसलिए मन की स्थिति सारा दिन, क्योंकि जितने लोगों से मिलेंगे, कोई ऊपर लेके जाएगा तो कोई नीचे गिरा देगा सारा दिन, तो बीमार हो गए, क्योंकि सारा दिन ऊपर नीचे. स्टेबिलिटी, एकाग्रता नहीं है. तो सहन करना, ये साउंड करता है जैसे कि
1: पता नहीं क्या
0: करना पड़ेगा, पूरा पहाड़ अपने ऊपर उठाना है. लेकिन कुछ भी नहीं करना है, इवैल्यूएट करके, चेक करके, स्टेबल. और इग्नोर भी नहीं करना है दूसरे को, उनके प्रति भी शुभ भावना, नफरत अंदर नहीं आनी चाहिए कि ऐसा क्यों कहा, तो आपसे नेगेटिव एनर्जी जाएगी उनको. कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, दैट यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल. So your opinion and my opinion is going to be different. And soul consciousness means respecting that everyone is going to have a different opinion. And then let them be with that opinion. And I stay with myself.
1: लेकिन अगर मेरा जो further course of action है वो उसी पर depend करता है कि मेरे बारे में सही opinion हो, तो मेरा आगे की जो जिंदगी है.
0: अगर आप पॉजिटिविटी अपने अंदर मेंटेन कर पाते हैं, तो आप उतने ही सिंसियरली काम करते जाएंगे. ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं, दूसरों के कमेंट के कारण से अपनी विशेषता को छोड़ देते हैं. मैंने तो इतनी सिंसियरली किया था, इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, जाने दो, कल से मैं सिंसियरली नहीं करने वाला, मेरी सिंसियरिटी की कोई वैल्यू नहीं है,
1: कोई फायदा नहीं है.
0: I do not have to have my qualities so that other people should value. Agar mujhe sincerity pasand hai, then I should use it. Jab logon ko pata chalega, to pata chalega. But what for me? But hum usko kitni jaldi se give up kar dete hain. To sahan karna matlab accept karna. Ki theek hai, you are entitled to your opinion, and that's fine. Let it be. Each soul has their own role. तो वो अपने रोल के अनुसार चल रहे हैं. और करना, कई लोग कहते हैं कैसे सहन करना, बहुत मुश्किल है. अगेन ये वही चीज है, इंटेलेक्चुअली सोचना नहीं है. क्या करना है उस टाइम, बस स्टेबल रहना. इसमें आपको कोई सिखाने जैसी बात भी नहीं है, यू डू इट एंड इट्स डन.
1: इनफैक्ट अगर ये सोल कॉन्शियसनेस या एक रियलिटी भी जो अपने बारे में जानना है, उसमें डू एंड डाई की सिचुएशन भी जब आ जाती है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, या मुझे ये नहीं मिला तो मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती या नहीं हुआ, वो सिचुएशन भी शायद कहीं कम हो सकती है.
0: बिल्कुल, बिकॉज अंदर बहुत स्टेबिलिटी है ना. योर डू एंड डाई नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन आउटर अचीवमेंट्स. वो सारा फर्क पड़ गया. नाउ इट्स ऑल फिल्ड इनसाइड. तो आपको बाहर से तो बहुत ज्यादा अंदर कुछ चाहिए ही नहीं होता. तो इसलिए सहन शक्ति जो सबसे आजकल लोग फील करते हैं, हम बहुत सेंसिटिव हो गए, पर सहन शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है.

0: एंड आप बहुत लाइट रहना शुरू कर देते हैं. और लेकिन सहन शक्ति जब अपने अंदर आ जाती है, उसके साथ साथ चाहिए समाने की शक्ति. सहन कर लिया, कई लोग इधर से सहन कर लिया, आपको पता है मैंने इतना सहन किया तो वो कोई सहन नहीं करना हुआ, वो तो जबरदस्ती आपने अंदर अपने रख लिया. सहन मतलब एक्सेप्टेंस. देयर इज नो नीड देन टू
1: यू डोंट हैव टू बी इन पेन. एक्चुअली हम अपनी पेन में आ जाते हैं.
0: तो वो कोई सहन करना नहीं हुआ, वो तो ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं था, आप कुछ निकाल ही नहीं पाए, तो आपने अंदर दबा
1: उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैंने सहन कर लिया, लेकिन वो रहा तो मेरे साथ ही.
0: तो फिर वो समा नहीं पाते हैं, तो फिर घर की बात बाहर करने लगते हैं, बड़ों की बात औरों को उससे फिर रिलेशनशिप्स और भी ज्यादा एंटैंगल होने लगते हैं. तो सहन किया, समा लो, फिनिश्ड. यू डोंट हैव टू यू नो गो एंड शेयर इट विद एवरीवन. जैसे सहन करना मतलब हमें जो सिंपल एग्जांपल लगता है ना, हम वृक्ष होता है, उस पर फल लगे हैं, हम उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन वो हमें क्या देता?
1: फल देता.
0: वो क्यों हमें फल देता है? वो पत्थर क्यों नहीं देता हमें? क्योंकि उसके पास फल ही है. हम कितनी भी जोर से मारे, वो उतनी जोर से फल ही गिरेगा नीचे. तो सिमिलरली आप एक शांत स्वरूप आत्मा है, आपको कितना भी गुस्सा अब कोई दे, लेकिन आपके पास देने के लिए रिटर्न में है ही क्या? आपके पास है ही नहीं गुस्सा देने के लिए. तो जब वो जो चीज अंदर भर जाएगी, वो ऑटोमेटिकली जाती जाएगी, और फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप सहन कर रहे हैं. यू नो इट विल नॉट लुक लाइक अ बर्डन.
1: दैट्स रियली अ नाइस सिचुएशन. यू नो अगर हम इस सिचुएशन पे रियली पहुंच जाएं,
0: इट्स वेरी सिंपल. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इजी टू अचीव. ओनली इट विल हैपन व्हेन यू एक्चुअली डू इट. तो आज ही अपने से प्रॉमिस करके, आज के ही दिन में या कल के दिन में इसको एक्सपेरिमेंट कर ले. सिर्फ एक बार करके देखे कि जब किसी ने कुछ कहा, लेट देम बी, इट्स ओके, सी हाउ यू फील. वेरी सिंपल. भी अननेसेसरली क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो तो कहकर चले जाते हैं. यहाँ बहुत हैवीनेस आ जाती है. सो लेट पीपल बी, और फिर उसको संभालो. डोंट हैव टू गो एंड शेयर इट विद एवरीवन, क्योंकि उससे फिर कहीं ना कहीं उन तक पहुंच जाएगा. लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपने कहा ना, कई लोग कहते हैं लेकिन कब तक सहन करें, कितना सहन करें, मैं ही सहन करूं,
1: कब
0: क्या
1: तक सहूंगी मैं.
0: यस, तो उसके लिए चाहिए परखने की शक्ति. कब सहन करना, कितना सहन करना, किसका सहन करना, कितने समय तक सहन करना. परख, discrimination, power to discriminate what is right, what is wrong, what is true, what is false. आजकल कई बार हम कहते हैं मैं तो धोखा खा गई. क्यों? क्योंकि वो ऊपर से तो इतना मीठा से बात किया, इतना प्यार से बात की, मैं तो धोखा खा गई. मेडिटेशन में हम दूसरे के भाव को समझ लेते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन कैच कर लेंगे, रिसीवर काफी एक्यूरेटली सेट किया हुआ है. तो अगर आप ऊपर से चाहे कुछ भी बोल रहे हो, अंदर का जो भाव है वो बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा, और उससे हमें धोखे से, क्योंकि आजकल की दुनिया में इस सब चीजों से भी बच कर रहना है, तो हम धोखे से बच जाते हैं. और सबसे बड़ा धोखा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये सबसे बड़ा धोखा है. इससे हम बच जाएंगे जब हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर होती रहेगी, और परख भी सकते हैं फिर. और फिर राइट निर्णय, पावर टू जज. आजकल डिसीशन लेना होता है तो सबसे पूछते हैं आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए मुझे, ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. फिर एक से नहीं पूछेंगे, बहुत सबसे पूछेंगे, फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सबने डिफरेंट आंसर दिया होगा,
1: और सबने इतनी कन्विक्शन से दिया होगा कि उस वक्त सबका सही लग रहा होता है.
0: एंड देन क्यों अपनी पावर टू जज, पावर टू डिसाइड बहुत वीक है. पावर टू जजमेंट में क्या करना है, एक बैलेंस रख के पहली बात तो अपने आप को जज करना है. हम बहुत ज्यादा औरों को जज करते हैं, सबसे पहले अपने आप को जज करना है कि क्या सही मैं कर रहा हूँ, क्या गलत, और एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है. जहां भी जजमेंट वर्ड आता है तो बुद्धि में बैलेंस का चित्र आ जाता है कि वो तराजू. तो बैलेंस हमेशा रखना है, लव और लॉ, प्यार से चलना है सबके साथ, और अपने साथ डिसिप्लिन में चलना है. औरों का जज नहीं बनना, अपना जज बनना. परख अगर राइट हुई तो फिर निर्णय भी. जब सही परख नहीं हो रही थी तो फिर निर्णय लेना बहुत मुश्किल.
1: और ये बहुत सुंदर आपने बात कही कि लव एंड लॉ, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद को मैं जान गया हूँ, जब मैं जब पहचान गई हूँ कि मैं क्या हूँ, तो फिर उस पर कायम तो रहना ही है. और प्यार देते ही रहना है, क्योंकि दूसरों पे जजमेंटल होने का हमें कोई अधिकार
0: नहीं। अपने ऊपर यस, क्या राइट क्या रॉन्ग, क्या करना है मुझे अभी, वो ही हमें फिर संभाल के ले जाएगा सारे रास्ते से। लेकिन हम अपनी जजमेंट छोड़ के औरों की जब जजमेंट करते हैं तो देन वी अगेन गेट एंटैंगल्ड इन दैट होल प्रोसेस। और फिर कई बार जो शक्ति की बहुत जरूरत पड़ती है वो है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। हमेशा सहन करना है ऐसे नहीं, कोई अत्याचार कर रहा है आप पे तो आप सहन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इन द वर्ल्ड टुडे इट्स बिकम द ऑपोजिट, जहां सहन करना चाहिए, सहन कहाँ करना चाहिए, लोगों के साथ संस्कारों में वो सहन करना है आपको, तब हम सामना करते हैं। उन्होंने ऐसा बोला, मुझे भी तो बोलना चाहिए था ऊपर से, तो मुझे सामना करना है उनका। लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है, कोई अनजस्टिस हो रही है, कहीं कहीं अत्याचार हो रहा है मुझ पर या किसी और पर, तब हम सहन करते हैं। ब्राइब तो देनी है, क्या करे, सिस्टम ही ऐसा, क्यों सामना करे सिस्टम का, तब वो, क्योंकि सामना करने की ताकत तब नहीं यूज करते, तब सहन। तो इसलिए यू सी सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, सब कुछ हम करते हैं, हम सहन भी करते हैं, सामना भी करते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस मीन्स राइट पावर एट द राइट टाइम इन द राइट सिचुएशन। अपनी लाइफ में आने वाली जो सिचुएशंस हैं उनको फेस, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, फेस करने की पावर। जो सबसे कठिन परिस्थिति हर एक के लिए होती है, व्हेन अ वेरी क्लोज वन, व्हेन अ वेरी डियर वन लीव्स द बॉडी, जब एक बहुत नजदीक का संबंध शरीर छोड़ता है, तो वो परिस्थिति फेस करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन उसमें भी ज्ञान से अपने आप को समझाना है कि मेरा प्यार आत्मा के साथ था, आत्मा चली गई, अब आत्मा ने दूसरी जगह दूसरा कॉस्ट्यूम ले लिया है। अगर सचमुच में मेरा प्यार था तो मुझे उस आत्मा को शांति की वाइब्रेशंस देनी है। अगर मैं यहाँ रोती रहूंगी, उदास रहूंगी, तो कौन सी वाइब्रेशंस पहुंचेंगे?
1: ऑल दैट नेगेटिविटी, सैडनेस।
0: तो फिर वो बच्चा जहाँ है, हम नॉर्मली देखते हैं ना, कई बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत हलचल में आ जाते हैं, क्योंकि दे आर गेटिंग ऑल दैट नेगेटिव एनर्जी। सो इफ यू वॉन्ट द सोल टू बी एट पीस वेयर इट हैज गॉन, Send it vibrations of
1: ये peace. एक बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात ये है एक्चुअली, ये एक्सेप्टेंस, अगेन सामना करना डेथ का। अभी हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि कितनी भी, खासकर अगर किसी आपका ये कहा जाता है कि किसी भी पेरेंट के लिए उनके बच्चे की डेथ सबसे मुश्किल होती है एक्सेप्ट करना, उसके बाद वो जी ही नहीं पा रहे, कितने कितने साल गुजर जाते हैं, वो कितना भी कुछ कर लें। अभी आई मेट मदर हुज डॉटर डाइड व्हेन आई थिंक 10 years ago, बट स्टिल अभी भी बात करते करते आंसू ऐसे झरझर। तो वो जो पेन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि
0: विद नॉलेज, विद अंडरस्टैंडिंग इट विल कम,
1: तो बिकॉज दैट्स नॉट गुड, अगेन आपने जो बताया, सो हाउ टू हैंडल दैट।
0: That's what meditation, that's what, जो हमने ये सारी powers discuss की, तो जितना हम meditation करते हैं, उस सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग जोड़ते हैं, ये सारी शक्तियाँ automatically हमारे अंदर आ जाती हैं, क्योंकि समझ मिलेगी ना, मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, वो दूसरे कॉस्ट्यूम में अपसेट हो गई है, उसको if I really love that soul,
1: let go.
0: Don't try to pull it back, because how much ever I try, it can't come back. So let go how? By creating vibrations of peace and positivity. तो वो भी वहां पर आत्मा सेट हो जाएगी। जितना हम उदास होंगे वो खिंचेगी इस तरफ से, तो let them set into their new role. तो लेकिन जितना ये कहने में ठीक लगता है, लोग कहते हैं करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जितना हम मेडिटेशन करते हैं तो ये जो ज्ञान है वो एक पावर बन जाता है, और वो शक्ति प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में आने लगता है।
1: बहुत सुंदर आज हमने बात की कि सशक्तिकरण की जो बात हम करते आ रहे हैं, महिला सशक्तिकरण या कहीं सशक्तिकरण, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी बातें हम सुनते आ रहे हैं सदियों से, किताबों में है, हमारे हर ज्ञान की किताब अगर देखें या हमारे जितने भी हुए हैं ज्ञानी लोग, वो यही बातें करते आए हैं, लेकिन रियल सेंस में हम उतार अभी तक नहीं पा रहे थे। सो वी कैन बी एक्चुअली एम्पावर्ड। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए, आज विशेष दिन है, बुधवार का दिन है, गणेश जी का दिन है, तो आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि गणेश जी को याद करते ही उनके अलंकार स्वरूप को हम याद करते हैं, और अभी अपने गणेश विसर्जन का कल जो है कार्यक्रम किया, बहुत सारी जगह पे अभी भी गणपति बप्पा है और उनकी पूजा अर्चना चल रही है। तो आशा करूँगा कि आप सभी गणपति के इस समय को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, एंजॉय करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप क्या अनुभूति किया है वो थोड़ा सा अगर आप बताते हैं तो और अच्छा हो सकता है, क्योंकि चार पाँच दिन हम गणपति बप्पा के साथ रहते हैं

गणपति जी के संग रहने का अनुभव अगर आप साझा करेंगे या पूजा करने के बाद जो अनुभूति हुआ उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। फ़ोन करके बताइए 2-94-1415-1415 इस नंबर पर। और आइए आप सभी को ले चलता हूँ मैं आज एक विशेष मुलाकात की तरफ ले चलूँगा जो आपके लिए अच्छा भी होगा और हम सभी डॉक्टर अंकुश जी को सुनेंगे थोड़ी देर में। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को और बढ़ा देते हैं। आज हम लोग बात करने वाले डॉक्टर अंकुश जी से, तो अगली आवाज आप सुनेंगे डॉक्टर अंकुश जी का, बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: वेरी गुड, आई एम वेरी गुड।
0: मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए, किस प्रोफेशन में आप काम करते हैं और कितने समय से हैं?
1: जी, मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ और मैंने रेटिना स्पेशलिटी किया है, सुपर स्पेशलिटी।
0: जी जी।
1: तो रेटिना इज लाइक बैक ऑफ द आई, आँख का पीछे का पर्दा होता है, उसका सुपर स्पेशलिटी किया हुआ है।
0: अच्छा।
1: और ये

0: प्रोफेशन में मैं लगभग मतलब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अभी 8-9 साल हो रहे हैं।
1: तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा बताइए हमें।
0: मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ।
1: जी जी जी। तो आई स्पेशलिस्ट बनना या रेटिना स्पेशलिस्ट बनना, इसके पीछे कोई कहानी है या आपको लगा कि इसमें भी काम करना चाहिए?
0: एक्चुअली बचपन से ही मतलब मेरे माइंड में कोई डाउट ही नहीं था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो उस हिसाब से ही पढ़ाई करते गए। MBBS होने के बाद हर एक के एक दो ऑप्शंस रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो एक वो मन में था एक तो कार्डियोलॉजिस्ट बने या तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बने।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बाबा ने चुन के दे दिया।
1: अच्छा, आई स्पेशलाइजेशन करते वक्त आपको यानी पहला जो ऑपरेशन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, या आप अंडर ट्रेनिंग में भी हम लोग काम करते हैं तो कभी हम लोग कुछ चीज़ें जैसे डेलीकेटेड ह्यूमन बींग्स को टच करना और उसके साथ ऑपरेट करना यार ऐसे माइंड में था कि नहीं? तो पहली बार जैसे ना किसी नए आदमी को अगर इंजेक्शन भी पकड़ लेता है, वो TT का इंजेक्शन हो या डायबिटीज़ का इंजेक्शन लगाने में सोचना पड़ता है। घर में किसी माँ को डायबिटीज़ हो जाता है, रोज वो इंसुलिन लेना पड़ता है, तो फर्स्ट टाइम लगाते वो सोचता है कि लगाओ कि नहीं लगाओ। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपका?
0: एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने बताया कि मुझे बचपन से मतलब डॉक्टर बनना था, तो इसलिए उस बारे में कोई फोबिया भी नहीं था।
1: अच्छा अच्छा।
0: या फिर माइंड में ही था कि अपने को अभी ये करना ही है, इसलिए वो बहुत स्मूथली हुआ।
1: अच्छा अच्छा।
0: और दूसरी बात जो आपने कहा कि फर्स्ट सर्जरी का,
1: जी जी जी,
0: तो एक्चुअली टीचिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये मेरी फर्स्ट सर्जरी और ये पूरी हो गई। वो दैट इज सो स्टेप बाय स्टेप, मतलब ऐसी कोई स्टेज नहीं है उसमें कि मुझे अभी सर्जरी नहीं आ रही और अभी आ रही है। इट इज वेरी स्मूथ। तो वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप
1: ट्रेनिंग में ही आपको सारी चीजें सीखने को मिल जाता है और वहीं पर।
0: और मेरा मतलब खुद का ही एक परसेप्शन था, जो भी मेरे सीनियर्स या टीचर्स थे, फॉर्चुनेटली बहुत रिनाउंड सर्जन थे, तो उनको देख के मेरे मन में वो रहता कि मुझे ऐसा करना है,
1: ऐसा करना है।
0: तो वो था कि मैंने सीखा भी अच्छे लोगों से, तो ऑब्वियसली अपने टीचर्स गुरु अच्छे होते तो हम भी वैसे ही बनते।
1: बहुत अच्छी बात है आपने बताया।
0: और मेरे टीचर्स का भी मतलब वो कॉन्फिडेंस था, पेशेंट आता है या सर्जरी शुरू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमारा दिमाग में क्या बोलते हैं उसको, एक अप्रोच या प्रोटोकॉल रहता है, तो वो एक बार आपको फिक्स हो गया तो आप स्मूथली वो सब चीज़ें करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपने सीखी है और उसको प्रॉपर माइंड में है। हाँ। और व्यवस्थित आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: और मतलब बचपन से स्पिरिचुअलिटी में है तो कभी वो चीज़ का भी कुछ प्रेशर नहीं फील हुआ।
1: डॉक्टर अंकुश जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप कुछ एक्सपीरियंस अपने ट्रेनिंग के समय के बताइए, यूनिक एक्सपीरियंस।
0: यूनिक एक्सपीरियंस मतलब बहुत ईगरनेस रहता था कि मैं कब ये करूँ। तो लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये स्मूथ ट्रांजिशन है, पहले दिन मैं फर्स्ट स्टेप करूँगा, फिर मेरे टीचर देखेंगे ये कर रहा है तो फिर नेक्स्ट स्टेप अगली स्टेप दूंगा।
1: जी जी।
0: तो क्योंकि ह्यूमन टिश्यू हैंडलिंग है तो इवन इफ आई एम डूइंग गुड, वो डायरेक्टली हरीली मतलब आगे नहीं बढ़ाते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, जब दे फाइंड इट कि ही इज वेरी फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इन वन स्टेप तो फिर सेकंड स्टेप में जाते हैं। तो काफ़ी स्मूथली मैं एक एक स्टेप वो लर्न करते गया। वीडियोस देखना, सीनियर्स के सर्जरी करते हुए मैं मतलब घंटों देखता था कैसे इंस्ट्रूमेंट पकड़ रहे हैं, किस एंगल से पकड़ रहे हैं, क्या थिकनेस हो रहा है, क्या आ रहा है, किस क्या चीज़ आ रही है। तो मतलब मैं करने से पहले वो सब चीज़ें दिमाग में
1: रख देती
0: बनी हुई थी। बस अभी सिर्फ वेट कर रहा था कि मेरे हाथ में कब आए। और सब कुछ अच्छा होते भी गया। तो यूजुअली मतलब फाइनल ईयर तक मुझे ऐसा था कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी मेरे टीचर्स मुझे करने देते थे क्योंकि अच्छा। उनको भी उतना कॉन्फिडेंस आ जाए था कि
1: बिल्कुल
0: कि ये कर सकता है। तो अच्छा। मतलब इसमें मेरा कहने का मुद्दा यही है कि अगर आप पहले से दिमाग में उसको प्रॉपरली एनालाइज कर ले, सीख ले, सोच ले, तो नॉट ओनली सर्जरी या आए लेकिन किसी भी फील्ड में आप स्मूथली।
1: बिल्कुल, हर जगह जो है आप सॉफ्टवेयर के साथ अच्छी तरह से आप मैनेज कर लेते हो तो फिर हार्डवेयर आसान हो जाता है। आपका मन अगर चीज़ों को करने के लिए तैयार है और आप में उत्साह है तो वो आसानी से फिजिकल एस्पेक्ट में आराम से हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताया। डॉक्टर अंकुश जी, मैं चाहूँगा कि आप, जैसे बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने देखा कि डॉक्टर होते हुए भी वो संगीत के साथ बड़े अच्छे जो है रैपो बनाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे सिंगर भी होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपका संगीत के प्रति क्या आस्था है और किस तरह के गीत संगीत आप सुनना पसंद करते हैं, और एक पसंदीदा गीत का एक लाइन ज़रूर बताइए हमें।
0: गीत संगीत तो सभी को अच्छा लगता ही है, क्योंकि वो माइंड को साइलेंट भी करता है, फ्रेश भी करता है। मेरा खुद का थोड़ा सा म्यूजिक से रुचि रहा है। मैं खुद एक कीबोर्ड
1: अच्छा
0: बजाता हूँ। हाँ, बट एजुकेशन और उसमें ज़्यादा थोड़ा ध्यान नहीं दिया। कीबोर्ड, फ्लूएट, ये सब मैं बजाता था अभी काफ़ी। लेकिन ये है कि स्टडीज़ है कुछ है, तो उसके दौरान अपन थोड़ा एक बैक ऑफ द माइंड म्यूज़िक रहता है। जैसे बाबा भी हमको मिला है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो लगता है, और लौकिक में भी वो चीज़ है। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ए जाने वफा तुम खूब मिले।
1: चलिए डॉक्टर अंकुश जी, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लगेगा। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये खूबसूरत पुराना गीत आपने याद कराया। तो लीजिए अब ये गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर अंकुश जी से बातें करेंगे। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, डॉक्टर अंकुश जी से बातें हो रही हैं और बड़ा ही प्यारा सा मोहम्मद रफ़ी का गीत आपने सुना और दिल आज खुशी से पागल है। बड़ा ही मोटिवेशन वाला गीत है जहां पर हम सभी को एक मोटिवेशन मिलता है पुराने गानों से। तो आइए डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बीच बीच में बोल रहे थे हम बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में हैं, कौन सा संस्थान से आप जुड़े हैं और कैसे इस संस्थान में आप अभी तक जुड़े हुए हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पकड़ के रखी?
1: मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा।
1: और बचपन से ही मतलब माता जी के साथ, हमारी माता जी संस्थान से जुड़ी थी तो उनको, उनके साथ जाते जाते हमको भी उसमें रुचि आने लगी। और काफ़ी एक बाल विकास व्यक्तित्व शिविर होता है, उसके अंदर हम मधुबन में आए थे पहली बार और तभी से इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ता गया। और ये चीज़ इतनी मेरे जीवन में अच्छी रही कि ऑब्वियसली डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई भी काफ़ी करनी होती है, तो स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन ये मुझे उसमें भी फ़ायदा करता था।
0: बिल्कुल। तो कौन सी एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट किया ब्रह्म कुमारी में?
1: कैसा है कि ये

0: स्पिरिचुअलिटी और फिर इसी संस्कार के साथ आप जिए, पले बड़े, अच्छा लगा आपको, और जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते थे उनका कंसंट्रेशन जो है आपका बढ़ता गया, और लाइफस्टाइल में ये पहले से ही इनबिल्ट होता गया आपके पास। फिर आपको एक्स्ट्रा, जैसे किसी नए व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, समझना, उसे एक्वायर करना लाइफ में या संस्कार में लाना, ये बड़ा एक पुरुषार्थ लगता है, जो पुरुषार्थ आपको नहीं करना पड़ा क्योंकि कई बार हमारे पास जो लोग आते हैं कि ब्रह्म कुमारी में जाने के लिए, उनको जो है कुछ चीज़ें बड़ी बाधित कर देती है, खाने पीने को छोड़ना है, ना ये करना है, ना वो करना है, तो वो चीज़ें उन्हें जो है बार बार जो है पीछे ढकल देती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इन चीज़ों को वो समझ लेते हैं तो वो अपने नेचर को बदलते हैं और उसे एक्वायर करके अपने लाइफ को स्पिरिचुअल बनाते हैं, और ये आप लकी हैं कि बचपन से वो चीज़ आपको गिफ्ट में मिल गई
1: तो एक एक चीज है एक्सेप्ट करना, हाँ। और दूसरी चीज है आगे चलते रहना।
0: बिल्कुल,
1: तो भले ही वो एक्सेप्ट करना मेरे लिए इजी रहा होगा, लेकिन चलते रहना जो है वो भी इजी रहा है।
0: इजी रहा,
1: हाँ। मतलब जहाँ भी हम गए, अभी मेडिकल की एजुकेशन होती है काफी लंबी होती है, MBBS होता है, फिर बीच में प्रैक्टिस होती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, बीच में कोर्स होते हैं, तो अपना अलग अलग सिटीज में जाते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली रेगुलरली फॉलो करते रहे तो उसको आपको अलग से कुछ करना है, ऐसी बात नहीं है, इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, होते रहते।
0: सही बात है डॉक्टर अंकुश जी। जाते जाते मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज, आपको बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: दो संदेश बताता हूँ मैं, एक तो मेरे दिल रिलेटेड आंखों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ। तो आंखों की कई सारी बीमारियां जो है आजकल वो अच्छी तरह से ट्रीटेबल है, मतलब विद द टाइम, जो मेरा स्पेशलिटी है रेटिना, इसमें काफ़ी सारी बीमारियां जो पहले जिसके इलाज होते नहीं थे, तो आजकल उसके इलाज होते हैं, बस यही है कि उसका अर्ली डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है, तो जल्द जल्द अगर निदान होता है तो उसका ट्रीटमेंट संभव है, विजन सेव किया जा सकता है। इसलिए आपको आँखों के लिए कोई भी अगर परेशानी महसूस हो रही है
0: जी,
1: तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को एक बार तुरंत दिखाइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और दूसरा स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं कहूँगा कि ये चीज़ हर एक ने एक बार करके देखनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: तो, हाँ, जब करने के बाद ही ये चीज़ अपने को समझ में आती है। ऐसा नहीं है कोई, मतलब चीज़ नहीं कि मैंने आपको दे दी और आपने ले ली। तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, तो आपको एक बार अनुभव करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अंकुश जी, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि आज समय ऐसा आ गया कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई, और मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी जो है हमेशा जो है अपग्रेड होता रहता है, और आँखों के इस सर्जरी में आपने बताया कि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजियाँ हैं जिसके लिए पहले हम लोग असंभव समझते थे, वो चीज़ें आज संभव हो गई हैं, और आसानी से आप थोड़ा सा जो है अवेयर खुद को होना है कि आपको अगर कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो तुरंत आप विद इन टाइम ना गंवाते हुए डॉक्टर से आप कंसल्ट करें तो आपका इलाज संभव है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे लेट करते जाएंगे तो संभव चीज़ें भी असंभव में बदल सकती हैं, तो आपके ऊपर है कि आप कितना जागरूक है और कितना अपने लिए समय निकालते हैं। और दूसरा, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा बताया कि वो मेडिटेशन करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, क्योंकि आपके पास नॉलेज है और लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो वो नॉलेज भी आप दे नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप नॉलेज लेने के बाद एक्सपीरियंस करते हो तो वो आप आसानी से दूसरों को दे सकते हैं, आप दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर स्पिरिचुअलिटी आपके पास है तो सीमित नहीं रहती है, वो दूसरों को स्प्रेड होती जाती रहती है।
1: एक बार अनुभव करना,
0: बिल्कुल एक बार एक्सपीरियंस आपको कर लेना है। तो आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में ज़रूर जाएं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं अभी तो मैं चाहूँगा कि आज शाम को ही आप ज़रूर पहुँचिए सेंटर पे और वहाँ पर जाइए, सुने, समझे और एक्सपीरियंस करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार डॉक्टर अंकुश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, मंगल कामनाएं करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आप सुन रहे हैं, थैंक यू, आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा। भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9 बज चुके हैं और आप सभी जानते हैं 9 बजे हम लोग समाचार सुनते हैं, बस डाउनलोड हो रहे हैं दिल्ली से समाचार। अब सीधे हम समाचारों की तरफ चलेंगे। तो चलिए, आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं।
1: शांति जग में लानी
2: है। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रवाह, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
3: India's engagement with the Global South.
4: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
3: In determining the future of the international system.
2: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है जहां व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
6: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
2: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
7: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
2: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वतम से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
2: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
9: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को योगा को अपनाइए।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
10: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
11: आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
10: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
12: मैंने पास पीजीवीसीएल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
10: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
13: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम हैं। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉयस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नव भारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपनी जीवन और अपनी मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए आज 23 सितंबर 2026 आज का तारीख है और हैफा दिवस आज है। हैफा दिवस के बारे में बातें करते हैं। और हैफा दिवस ये एक ऐसा फेस्टिवल है और एक ऐसा जो है क्या कहते हैं इसको, तुर्की के जवानों पर बनी ये कहानी है। भारतीय जवानों ने तुर्की सेना के खिलाफ लड़ते हुए इसराइल के हैफा शहर को आज़ाद कराया था और हैफा पर कब्जे के लिए एक तरफ मशीन गन और तोपों से लैस तुर्की और जर्मनी की सेना थी, तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की तरफ से भाले और तलवारों वाली हिंदुस्तान की तीन रियासतों की फ़ौज थी। इसके बावजूद भारतीय सेना तुर्की और जर्मनों पर भारी पड़ी और उन्हें हैफा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसराइल में आज भी इस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में भी सेना इस दिन को मनाती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, एक्चुअली में हुआ क्या था, है ना। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। 9:30 हो रहे हैं और चलिए हैफा दिवस की कहानी आपको बताते हैं। भारत का सैनिक सेना में नौकरी करने के उद्देश्य से भर्ती नहीं होता, ये भर्ती होती है मातृभूमि पर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग और अनुशासित रहते हुए देश की मिट्टी की रक्षा करने के लिए। भारतीय सेना के इतिहास में अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जिनमें विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन को नाको चने चबाकर हमारे जवानों ने किले फतेह किए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशी धरती पर भी भारतीय जवानों ने अपने रक्त से शौर्य गाथाएं लिखकर इस धरती की आन बढ़ाई है। भारत में ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्होंने इसराइल के फिलिस्तीनी से सटे हैफा शहर की आज़ादी के संघर्ष में तीन भारतीय रेजिमेंट जोधपुर लार्सन्स, मैसूर लार्सन और हैदराबाद के अप्रतिम योगदान के बारे में पता होगा। ब्रिटिश सेना के अंग के नाते लड़ते हुए इन भारतीय रेजिमेंटों ने अत्याचारी दुश्मनों के चंगुल से हैफा शहर को आज़ाद कराया था और इस संघर्ष में 900 से ज़्यादा भारतीय योद्धाओं ने बलिदान दिया था, जिनके स्मृति शेष आज भी इसराइल में 7 शहरों में मौजूद है और मौजूद है उनकी गाथा सुनाता एक स्मारक जिस पर इसराइल सरकार और भारतीय सेना हर साल 23 सितंबर को हैफा दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन वीरों को नमन करती है। हैफा मुक्ति की गाथा कुछ इस प्रकार है। पहला विश्व युद्ध 1914 और 18 के बीच के समय ऑटोमन यानी उस्मानी तुर्कियों की सेनाओं ने हैफा सेवर शहर को कब्जा कर लिया और यहूदियों और यहूदियों पर बहुत अत्याचार कर रही थी। उस युद्ध में करीब 1.5 लाख भारतीय सैनिक आज के इजिप्ट और इसराइल में 15वीं इंपीरियल सर्विस कैलेवरी ब्रिगेड के अंतर्गत अपना रण कौशल दिखा रही थी। आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार। बढ़िया बढ़िया सुरेश जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: आज अच्छे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं और बहुत अच्छी हमारे बातें भी हुई है हमारे डॉक्टर साहब से और अच्छा कार्यक्रम भी सुना, बहुत अच्छा लगा सर। और सभी हमारे मित्र भी सुन रहे हैं और बुधवार है तो सभी को आज के दिन की भी शुभकामनाएं और हो सकते तो दादा का भाई खाना भी सुना देना आपकी तरफ से सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और हमारे सभी साथी मित्र को नमस्ते, हमारा बुरा राम जी है, बुरी राम जी है, हमारे किशन भाई है, हमारे सभी साथी है तो सुभाष भाई है, तो सभी बस खुश रहे, अच्छे रहे और हर दम आपका कार्यक्रम सुनते रहे। हम तो सुनते हैं लेकिन हमारे सभी मित्र भी सुनते हैं और बहुत खुशी होती है सर। नमस्ते सर। नमस्ते
0: नमस्ते श्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए बात करते हैं आगे और भालों और तलवारों से लैस भारतीय घुड़सवार सैनिक हैफा में मौजूद तुर्की मोर्चे और माउंट कर्मल पर तैनात तुर्की तोपखाने को तहस नहस करने के लिए हमले पर भेजे गए। तुर्की सेना का वह मोर्चा बहुत मजबूत था, लेकिन भारतीय सैनिकों की घुड़सवार टुकड़ियां जोधपुर लैंसन और मैसूर लैंसन के शौर्य दिखाया, जिसका सशस्त्र सेनाओं के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। खासकर जोधपुर लैंसन ने अपने सेनापति मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत के नेतृत्व में हैफा मुक्ति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वही आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हैफा दिवस के बारे में बात करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो चलिए एक और सुंदर गीत आपको सुनाते हैं, गणपति बप्पा का ही, क्योंकि आज बुधवार भी है और गणेश का फेस्टिवल भी चल रहा है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मन दिन मनचला का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। मैं थाने सिमरू हूँ बन चले राम रघुराई। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं। बातें चल रही थी हैफा शहर के बारे में, जहाँ पर बालों और तलवारों से लैस भारतीय घुड़सवार सैनिक हैफा में मौजूद तुर्की मोर्चा और माउंट कारमल पर तैनात तुर्की तोपखाने को तहस नहस करने के हमले में भेजे गए थे। और फिर तुर्की सेना का मोर्चा बहुत मजबूत था, लेकिन भारतीय सैनिकों के घुड़सवार टुकड़ियों पर खास करके जोधपुर और मैसूर लांसर ने शौर्य दिखाया, जिसका सशस्त्र सेनाओं के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। खासकर जोधपुर लॉरेंस के सेनापति मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत, उनके नेतृत्व में हैफा मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और 23 सितंबर 1918 को तुर्की सेना को खदेड़कर मेजर ठाकुर दलपत सिंह ने बहादुर जवानों ने इसराइल के हैफा शहर को आज़ाद कराया। ठाकुर दलपत सिंह ने अपना बलिदान देकर एक सच्चे सैनिक की बहादुरी का असाधारण परिचय दिया था। उनकी उसी बहादुरी को सम्मानित करते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें मरणोपरांत मिलिट्री क्रॉस पदक अर्पित किया था। ब्रिटिश सेना के एक बड़े अधिकारी कर्नल हर्वी ने उनकी याद में कहा था, उनकी मृत्यु केवल जोधपुर वालों के लिए नहीं बल्कि भारत और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ी क्षति। मेजर ठाकुर दलपत सिंह के अलावा कैप्टन अनूप सिंह और सेलेस सगत सिंह को भी मिलिट्री क्रॉस पदक दिया गया। और इसके साथ ही कैप्टन बहादुर अमन सिंह जोधा और दफादार जोश सिंह को उनकी बहादुरी के लिए इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पद दिए गए। तो आज भी हैफा, यरूशलम, रामले और ख्यात बीच सहित इसराइल के 7 शहरों में भारतीय जवानों की याद बसी है। इतना ही नहीं, हैफा नगर निगम और उसके उप महापौर के प्रयासों से इसराइल सरकार वहाँ की स्कूली किताबों में भी इन वीर बंकरों और विशेष सामग्री प्रकाशित करने का फैसला कर चुकी है। इसके अलावा हैफा के उप महापौर आमोग की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। दिल्ली के बहुत ही कम निवासी ये जानते हैं कि 3 मूर्ति भवन के सामने सड़क के बीच लगी 3 सैनिकों की मूर्तियां उन्हीं 3 घुड़सवार रेजिमेंट की प्रतीक है, जिन्होंने अपनी जान निछावर करके हैफा शहर को उस्मानी तुर्की से मुक्त कराया था। तो ये थे इतिहास के पन्नों में हैफा शहर के बारे में। आशा करूँगा आप सभी को ये इतिहास जानकर कहीं ना कहीं फिर से एक बार अपने भारतीय जवान और भारतीय सेना का शौर्य याद आ गया होगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, तो चलिए एक और सुंदर गीत आपको सुनाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, देशभक्ति का ये खूबसूरत गीत आपने सुना, आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं। और इस बीच मदन जी ने आप सभी को बड़े प्यार से याद किया है और ड्यूटी पर है, ड्यूटी के बाहर आकर बात करते हैं और फिर ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो रेडियो से बड़ा उनका लगाव है, तो निश्चित तौर पर आप सभी को अपनी बात ज़रूर सुनाते हैं और सभी को याद करते हैं और एक गाना गुनगुना के चले जाते हैं। तो आइए, 23 सितंबर की बात अगर कहें तो 23 सितंबर को जन्मे उन लोगों की बात अगर हम करें तो श्रीनिवासन शास्त्री महान देशभक्त और राजनेता थे। आज ही के दिन 1862 को इनका जन्म हुआ था। आज़ादी के रहनानी तथा समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली, 1903 को आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और हिंदी जगत सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आज ही के दिन 1908 को हुआ था। हिंदी और पंजाबी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा का जन्मदिन भी आज ही के दिन 1935 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदाचार्य पी आर कृष्ण कुमार, 23 सितंबर 1951 को इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो प्रेम चोपड़ा की बात करें तो ये हिंदी फिल्मों के एक ऐसे कलाकार रहे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। और 23 सितंबर 1935 को पंजाब में इनका जन्म हुआ था और 50 से अधिक वर्षों में, यानी पूरे 50 साल तक फिल्मी दुनिया में उन्होंने 320 फिल्मों में अभिनय किया। प्रेम चोपड़ा ज़्यादातर फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाते रहे और 1973 में आई फिल्म बॉबी प्रेम चोपड़ा के सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। भारतीय सिनेमा के पहले शोमैन राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक मवाली गुंडे की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में उनका बोला गया एक ही संवाद जो प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, दर्शकों के जहन में आज भी ताज़ा है। तो यहीं से उनकी जो है खलनायकी की और फिल्म में खलनायकी का रोल अदा करने की जो एक मील का पत्थर बना वो यहीं से बना और इस वजह से वो पूरे इस समय जो है फिल्मी दुनिया में एक विलन के रूप में छाए रहे। वो कौन

दिल्ली, शहीद, तीसरी मंजिल, अराउंड द वर्ल्ड, झुक गए आसमान, डोली, दो रास्ते, पूरब और पश्चिम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये उनके मुख्य फिल्में रहे जिसमें उन्होंने खलनायकी का खूबसूरत अदाकारी कर दिया था। और इनके डायलॉग डिलीवरी के लिए आज भी उनको खास करके एक ही डायलॉग उनकी जो है फेमस हुई, लेकिन उसके बाद वो हर जगह जो है अपनी कामयाबी और अपने पहचान छोड़ने में जो है कामयाब रहे। 1976 में आई फिल्म दो अनजाने के लिए प्रेम चोपड़ा को अभिनेता के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार का अवार्ड दिया गया था। तो चलिए इसी के साथ आज के दिन जन्मे उन सारे लोगों को जिनका भी जन्मदिन है, उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खबा गणेशा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।
1: अभी बजे हैं सुबह के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

समय सुबह का, तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा। अपनी विशेषताओं पर कभी भी अभिमान नहीं करना है, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, तिल हमारी हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है, जरूर जानेंगे। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो रेसिपी में आप क्या पसंद करते हैं, चलिए मैं बहुत स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने वाली हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट, जो बच्चे तो बहुत ही पसंद करेंगे, सभी करेंगे वैसे तो, लेकिन बच्चे विशेष करके, ठीक है। लेकिन कौन सी वाली, वो आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, अपनी विशेषताओं पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका पतन ही होता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण बहुत ही सुंदर दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। जब बाली को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा। सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा के ओरस वरदान द्वारा प्राप्त पुत्र है और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और भी बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांध कर 6 महीने तक पूरी दुनिया में घुमाया। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड का तो कोई सीमा ही नहीं रही। रावण जैसे योद्धा को इस तरह हराया, अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था बाली, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। अपने ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनकों के समान उखाड़ कर फेंक रहा था, हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर दे रहा था, अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिलाकर किचड़ कर दे रहा था। एक तरह से अपनी ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उखाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था। हे कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो, हे कोई जो अपने माँ का दूध पिया हो, जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे। इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोगवश उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे हुए थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न लगा और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मांश, हे राजकुमार बाली। तब बाली किष्किंधा के युवराज थे। तो हे राजकुमार बाली, क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर उन्हें नष्ट कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे ओरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम्हें समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कपि राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर और नाम नाम का जाप कर। इससे तेरे मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मद चूर हनुमान जी से बोला, ए तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़े से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ वानर, जा और तू ही भक्ति कर अपने राम की, और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने आज दिन तक किसी के मुंह से नहीं सुना ये नाम और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी है, उनकी महिमा अपरम अपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले वो भवसागर को पार कर जाए। बाली इतना ही महान है राम, बाली कहता है कि इतना ही महान है राम तो बुला जरा, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान जी ने कहा, ए बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। बाली ने कहा, तब तो ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जा करके घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच हनुमान जी और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझे से एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सूत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए न जाओ। हनुमान जी का, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम जी के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दिया है जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारा विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान जी कायर है जो ललकारने पर युद्ध करने इसलिए नहीं जाता है क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ न लेकर जाए, केवल दसवां भाग का बल ही आप लेकर के जाइएगा, बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दीजिए, युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर लीजिए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकले। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था उसने और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और दो महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगा। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा। उसके शरीर फटकर खून उससे निकलने लगा। बाली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी बाली के समक्ष प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ लगा दिया। 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देख कर बोला, यह सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर का फटने के हद तक फूलना, फिर आपका वहां अचानक आना और ये कहना कि वहां से जितना दूर हो सके चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम्हारे अंदर समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति के सागर लहरें ले रही है। ऐसे लगा जैसे समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी का अभी फट पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल दसवां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने को कहा, पर तुम तो उनके दसवें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपना समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते, तब वो तुमसे युद्ध करने के लिए घर से निकले। इतना सुनकर बाली तो पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोच कर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां है तो वे इसका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के दसवें भाग को नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वही हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करे प्रभु। और आत्मग्लानि से भर कर बाली ने राम जी का तप किया और आगे चलकर अपने मोक्ष का मार्ग भी उन्हीं से प्राप्त किया। इसीलिए कहते हैं कि अपनी विशेषताओं पर कभी भी अभिमान नहीं करना है, नहीं तो वो ही पतन का कारण बन जाती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से एक बहुत सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। तिल कौन सी बीमारियों को ठीक करता है जानेंगे आप। बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय है और तिल तो आसानी से हमारे घर में मिल ही जाएंगे क्योंकि रखते ही है, अनाज भरते हैं तब। तो देखिए, अगर वो कहते हैं कि भाई चोट लग गई, घाव हो गया, ठीक है, तो पानी में तिलों को पीस करके पुल्टिस बांध दिएगा, इससे अशुद्ध घाव साफ होकर के शीघ्र ही भर जाएगा। तो किसी भी कारण से घाव हो गया हो तो पानी में तिल को पीस करके उसके पुल्टिस बांध दिएगा, इससे अशुद्ध घाव भी साफ होकर के शीघ्र भर जाएंगे। गर्भाशय की पीड़ा है तो तिलों को बारीक पीस करके तिल के ही तेल में मिला करके किंचित गर्म करिएगा, फिर नाभि के भाग में धीरे धीरे लेप करिएगा। इससे जो गर्भाशय की पीड़ा होगी वो शांत हो जाएगी, शीतजन्य जो पीड़ा है वो शांत हो जाएगी। तो क्या करेंगे, तिलों को बारीक पीसिएगा और तिल के तेल में इसको किंचित मात्रा में गर्म करिएगा, किंचित बहुत मतलब नवसेका, और फिर नाभि के भाग में धीरे धीरे लेप करिए, हल्के हल्के हाथों से मलिए, इससे शीतजन्य पीड़ा शांत होगी। अगर शीघ्र प्रसव होता है तो इसके लिए 30 ग्राम की मात्रा में काले तिल कूट करके 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, सुबह उन्हें छान कर प्रसव वाली महिला को पिला दीजिए, बच्चा शीघ्र हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, आसानी से शीघ्र प्रसव हो सके इसके लिए 70 ग्राम की मात्रा में काले तिल कूट करके 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, सुबह उन्हें छान करके प्रसव वाली महिला को पिला दीजिए, बच्चा शीघ्र हो जाएगा। और भी सुनेंगे, अगर पेट दर्द है तो 20-25 ग्राम साफ तिल चबा करके ऊपर से गर्म पानी पीजिएगा, इससे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। क्या करेंगे, 20-25 ग्राम तिल एकदम बिने हुए एकदम साफ होने चाहिए, इसको चबा करके आप खाइएगा, ऊपर से गर्म पानी पीजिएगा, इससे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। साथ ही देखो, तिलों को पीस करके लंबा सा गोला बनाकर उसे तवे पर सहन करने योग्य करके मतलब सेक करके पेट के ऊपर फिराने से मतलब कितने भी कष्टदायी पेट दर्द हो शांत हो जाता है। क्या करेंगे, साथ ही साथ जैसे आपको चबा कर तो इस तरह खाना ही है, ठीक है, और फिर तिल को पीस करके लंबा सा गोला बनाकर उसे तवे पर आप सहने योग्य गरम करिए, फिर पेट के ऊपर फिराइएगा, इससे तो आप कैसे गोला करोगे, एक पोटली बांध दीजिए, है ना, फिर ऐसे फिराइएगा तो कितना भी कष्टदायी पेट दर्द है ठीक हो जाएगा। और लास्ट उपाय भी बहुत अच्छा है, अगर भगंदर की बीमारी है, भयंकर व्याधि भगंदर या वेदना युक्त वात जन्य घावों में तिल या फिर अलसी को भून करके दूध में बुझाकर उसी दूध में पीस करके लेप करिएगा, भगंदर रोग मिट जाएगा। भगंदर व्याधि मतलब भयंकर व्याधि वाला भगंदर या फिर वेदना युक्त वात जन्य घावों में तिलों को या तो तिल लीजिएगा, ये अलसी को भूनिए और उसको दूध में पहले तो पीस लीजिए, फिर दूध में मिला करके लेप करिएगा, तो भगंदर रोग मिट जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताया है, आप आजमा सकते हैं और स्वयं को ठीक कर सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी कौन सी चीज है मेरे प्यारे श्रोता बंधु जो बांटने से बढ़ती है, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, यह आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और यही पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में भूराराम जी और से जुड़ चुके हैं। राम राम भूराराम जी।
2: हाँ जय राम जी के उषा बहन जी, राम जी बताइए कौन सा है।
1: हाँ जी, आज का प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, और आज का विषय है एक हल्का सा हवा का झोंका जलते दीपक को बुझा सकता है पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है वही पूरा जीवन आनंदित रहता है और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। क्या कहेंगे आप?
2: इसका पहले का तो आपको जवाब देता हूँ, ज्ञान है, ज्ञान देने से बढ़ता है।
1: अच्छा, और विषय के बारे में क्या कहेंगे?
2: विषय के बारे में मेरे को ब्रोकर साफ नहीं सुनाई देता, मैं बाद में फोन लगा, ये बंद करके थोड़ा बाहर जाके फोन लगाता हूँ, ब्रोकर आवाज नहीं सुनाई दे रहा, तो मैं बोलता हूँ।
1: अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भूराराम जी ओर से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर बातें चल रही है, मतलब बातें तो अब चलेगी, प्रश्न पूछा है, विषय भी आपके समक्ष रख चुकी, बहुत ही सुंदर विषय है आज का, एक हल्का सा हवा का झोंका जलते दीपक को बुझा सकता है पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है वही पूरा जीवन आनंदित रहता है और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। क्या कहेंगे आप? बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे जीवन से ही है ये। तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना बांटो उतनी बढ़ती है। तो दोनों में ही जुड़ने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। हेलो, मेरी आवाज ही लौट के आ रही है। हेलो
3: जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
3: बस हम तो बहुत अच्छे थे, आप कैसे हो?
1: हम भी अच्छे हैं।
3: तो बस सब अच्छे, तो हम भी अच्छे, हमारे सभी मित्र भी अच्छे, अभी अभी हमारे भूराराम जी भी खाके गए, अच्छे
1: जी
3: बातें बताते गए
1: जी।
3: और बहुत अच्छा विषय भी दीदी है कि जलता दिया तो दीदी बहुत ही पता, लेकिन अगरबत्ती कभी बुझते नहीं है, चाहे कितने ही हवाई और तूफान आए, चाहे कितने ही
1: जी
3: तो बस मैं तो दीदी एक ही बात करूंगा कि जो लोग अच्छे होते हैं वो अच्छे ही रहेंगे
1: जी।
3: क्योंकि कहते हैं कोई भी कोई इंसान होता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई किसी भी परिस्थिति में भी खुश रहता है, लोगों की सेवा करता है, लोगों को काम में आता है और खुद खुश रहता है। तो ऐसे कोई कोई चाहे कुछ भी बोले, चाहे कुछ बोले, कोई कितने ही दाने दाने मारे, लेकिन उसको कोई असर नहीं होगा दीदी, क्योंकि अच्छे इंसान तो अच्छे ही रहते हैं
1: जी।
3: लेकिन जो बुरा करने वाला दीदी, वो तो बुरा करेंगे, चाहे जलते ही रहेंगे, कितने भी जलते रहेंगे तो सामने वाले को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है
1: जी। जी,
3: तो ऐसे कई लोग होते ही दीदी कि जो कोई अच्छा काम करते हैं तो सामने वाले जलते हैं, और कई सारे ऐसे ताना ताना भी बोलते हैं सामने
1: जी।
3: लेकिन हमने तय किया है कि चलो हम अच्छा ही करेंगे, तो हमको क्या डर है कि चाहे कितनी बोले, बोलने तो इसे
1: बिल्कुल।
3: तो बस हम तो दीदी ऐसा ही कहेंगे, अच्छे लोग अच्छे ही रहेंगे और बुरे तो बोलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है अच्छे वाले को
1: जी।
3: जी नमस्ते,
1: चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई छोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, तो आज के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है यह, हमारे जीवन से ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। जैसे सुरेश भाई ने कहा कि जलने वाले जलते रहते और खुश रहने वाले खुश रहते हैं, बिल्कुल सही है। मुझे मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा एक बहन को कि वो हर एक की मदद करती है, ठीक है, वो अपने ससुराल में रहती है, ससुराल वाले उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, फिर भी वो सभी की मदद करती, अलग हो गए लेकिन मदद करने के लिए दौड़ी जाती है। मदद करने के बाद वो लोग वापस भूल जाते हैं, जब मदद की आवश्यकता होती बुलाते हैं कि आओ भाई ये ज़रूरत है, ये हो गया, वो हो गया। चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
4: गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हैं आप? ओम शांति।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओम शांति, हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? आपका शुभ नाम बताएंगे?
4: वंदना, दिल्ली से।
1: ओहो वंदना जी, कैसे हो?
4: जी एकदम अच्छी हूँ मैं।
1: जी जी जी।
4: दीदी एक तो ये जो आज आपने पोल्टिस वर्ड यूज किया ना, कभी हमने बचपन में यूज करते थे पोल्टिस ना, जो आपने बताया बहुत पुरानी याद आ गई मुझे।
1: अच्छा,
4: तिल की पोल्टिस, अब तो लोग जानते भी नहीं है इस बारे में ना, पोल्टिस के बारे में।
1: जी जी जी।
4: हाँ तो और बहुत इफेक्टिव होती है क्योंकि हम लोगों ने यूज किया है बचपन में इसको।
1: क्या बात।
4: और दूसरे आपने सवाल पूछा था वो दान, तो गुणों का दान होता है, विद्या का दान होता है, गुण दान करने से हमेशा बढ़ते हैं।
1: अच्छा ठीक है, बाकी कैसे हैं आप?
4: एकदम अच्छी हूँ दीदी।
1: अच्छा, और परिवार में सब अच्छे?
4: दीदी अभी?
1: हाँ जी हम ठीक है।
4: ओके,
1: हाँ जी, और आज के विषय के बारे में भी आप जुड़े हैं तो जरूर अपनी राय व्यक्त करिएगा।
4: दीदी क्या था बता दीजिए, अभी बताया।
1: हाँ जी हाँ जी, विषय को हम फिर से दोहरा रहे हैं। एक हल्का सा हवा का झोंका जलते दीपक को बुझा सकता है, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है वही पूरा जीवन आनंदित रहता और जो जलता है वह खुद ही बुझ जाता है।
4: जी हाँ, तो इस बारे में तो दीदी यही बोलेंगे कि जो महकता है, एक्चुअली महक बनाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अंदर खुशी पैदा करने के लिए।
1: जी,
4: जो बुराइयां हैं, जो खराब चीजें हैं, उनको हमें निकालना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
4: और जलने का जैसे बताया वो तो ऑब्वियसली है, जो जलेगा खुद को जलाएगा, दूसरे वाला उसके जल से जले ना जले वो डिपेंड करता है दूसरे की शक्ति के ऊपर। लेकिन जहाँ तक अगरबत्ती की बात है, वो हमें गुण अपने अंदर वो खुशबू पैदा करनी होती है और उसमें डेफिनेटली मेहनत लगती है, तभी हम किसी को खुशबू दे सकते हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल।
4: थैंक यू सो मच
1: जी,
4: ओम शांति।
1: बहुत बहुत आभार वंदना जी आपका।
4: थैंक यू दी,
1: ओम शांति। जी ओम शांति। तो ये थे वंदना जी दिल्ली से, इनको आप सभी जानते ही हैं, रेडियो में आते रहते हैं कभी कभी। तो बहुत ही सुंदर आपने भी स्पष्ट किया है विषय को, अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, तो आज का विषय भी बहुत अच्छा है। हेलो
5: हेलो, ओम शांति।
1: हाँ जी ओम शांति, नमस्कार सुभाष भाई। हाँ जी कैसे हो? हाँ जी आपकी भी आवाज पहुंच रही है।
5: ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी,
5: और प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है, और सवाल का जवाब तो मेरा रॉन्ग हो सकता है, मैसेज भेजा पन बुरा राम जी ने जो जवाब दिया है वो राइट है, राइट है। और आज का विषय के बारे में बताना चाहता हूँ, तो देखो दीदी, जो अपनी विशेषताओं से, अच्छा कर्म से दूसरों को सुगंधित और महका रहा है, तो कभी भूल नहीं सकता है। पर जिसको अभिमान है, गर्व है और खुद को बड़ा समझ रहा है
1: जी,
5: लेकिन उसका गर्व उजाला छोटे से हवा से या छोटे से बादल तूफान से बुझ सकता है। और आपको रेडियो मधुबन परिवार और सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया
1: जी। बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, और आइए अब इस विषय को और भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे गीत, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अभय सिंह जी जुड़ चुके हैं जयपुर से। नमस्ते अभय सिंह जी।
2: जी नमस्ते मैडम जी, मधुबन में सभी श्रोताओं को राम राम
1: जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आज का विषय बहुत ही सुंदर है। एक हल्का
2: जी,
1: सा
2: जी, मैडम बहुत
1: हाँ जी,
2: बहुत ही सुंदर विषय आपने ये उपमा अलंकार का आपने प्रयोग किया है, तो उजना है वो ईर्ष्या को लेकर के है मैडम जी। जो आदमी घमंड ईर्ष्या देश प्राउड जिनको होता है वो दीपक के माफक होते हैं मैडम जी। वो क्या है, झोंका आएगा इन सभी चीज से जो ग्रसित है वो ये झोंका है, और इसमें वो बुझ जाता है
1: जी।
2: अगरबत्ती है वो प्रेम का धीरे धीरे सौहार्दपूर्ण वातावरण बढ़िया, तो वो क्या है, ये जो झटके हैं ईर्ष्या प्रेम देव देश वाले प्राउड वाले इनको सबको सहन कर लेता है, और वो धीरे धीरे चलता रहता है। जो आदमी अच्छा काम करता है, अच्छाई करता है, ये अच्छाई से जुड़ा हुआ है, तो अच्छा धीरे धीरे सबको अपनी ओर प्रभावित करता हुआ चला जाता है
1: जी।
2: और दूसरे का उसमें जनहित की भावना होती है, इस वजह से

0: वो दूसरे को अपने प्रति आकर्षित कर लेता है और वो सभी जो बुराइयों के झोंके हैं उनको सहन करता हुआ चलता रहता है, वो बुझता नहीं है मैडम।
1: जी
0: तो
1: तो
0: आपने उपमा के माध्यम से सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है मैडम जी।
1: थैंक
0: आदमी
1: यू।
0: को अच्छा विनम्र बनने से सब कुछ काम सुलभ हो जाते हैं, उसको कभी आंख नहीं आती है, उसको कभी परेशानी नहीं आती है, जीवन उसका खुशहाली सुख में हो जाता है।
1: जी
0: और जो ज्यादा बड़े हैं, जो बिल्कुल भगवान के प्रति दूसरे के दुख दर्द को अपने दुख दर्द से भी ज्यादा महत्व देते हैं, वो जब ज्यादा कुछ ऐसी विपत्ति आ जाए जिसमें कि उसको नष्ट होने का खतरा हो, तो वो खुद उस जीवन से समा जाते हैं। वो संत महात्मा जो उस दुख दर्द को नहीं सहन सकते, वो जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो वो फिर दुनिया में जिंदे नहीं रहते मैडम जी, वो समा जाते हैं खुद ही, उनके हाथ में खुद, जैसे भीष्म पितामह जी थे, इच्छा मृत्यु वो उनके हाथ में होती है मैडम।
1: चलिए
0: ऐसा
1: ठीक है।
0: उनके जीवन में कष्ट आता नहीं है, लेकिन बाय द वे आ जाए मैडम जी तो वो उस इच्छा मृत्यु को ले लेंगे, मगर दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे मैडम
1: जी बिल्कुल,
0: जी। मैडम
1: बहुत बहुत आभार आपका अभय सिंह जी।
0: जी मैडम, राधे राधे जी।
1: राधे राधे। तो ये थे अभय सिंह जी जयपुर से। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो दूसरों का हित चाहते हैं वो खुद जलेंगे लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे, और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो क्या करता है, वो तो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाने की कोशिश करता है। वो बात अलग है कि सामने वाला जलता है या नहीं जलता अपने नेचर पर डिपेंड करता है। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
2: हेलो उषा बहन जी, कंचन भाई
1: हाँ जी कंचन भाई नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: नमस्ते जी, नमस्कार भाई।
1: जी
2: दुकान पे है आज तो, खेत में नहीं गए
1: अच्छा
2: तो अभी अभी चालू किया है रेडियो, थोड़ा घर पे गया था, दुकान पे आ गया, तो क्या है विषय तो
1: जी आज का
2: आज का?
1: प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना बांटो उतनी बढ़ती है, और विषय है एक हल्का सा हवा का झोंका जलते दीपक को बुझा सकता है पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है वही पूरा जीवन आनंदित रहता है और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है, क्या कहेंगे आप?
2: जीवन सुगंधित बनाना है,
1: कैसे बनाएंगे? हाँ हाँ हाँ
2: तो प्रभु गण से मारो अभिजेत सुदुराचारो, एक जीवन है बहनी सुगंधित बनाना है, अच्छे विचार लाने हैं,
1: जी
2: करना है प्रभु को याद करना है, घर परिवार को अच्छा सा संस्कार देना है। क्या है कि दीपक की तरह है, एक हवा का झोंका है और बुझ जाए, ऐसा मैं ये नहीं रखता।
1: जी
2: सुगंधित अगरबत्ती जो जलती है लेकिन हवा का झोंका आता है लेकिन बुझ नहीं जाती, सुगंधित फैलाती है, सुगंध फैलाती है, ऐसा जीवन हमें बनाना है।
1: जी
2: तो इसके लिए तो क्या करेंगे, सबको पता है कि भाई अच्छे विचार जीवन में लाना चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए, अच्छी बातें सुनना चाहिए, तो सुखद जीवन बनेगा। और कोई अपने जीवन की कोई ये लेंगे कि गई देखो ये जीवन जी गया लेकिन कैसा जीवन जिया, लोग
1: जी
2: याद करते हैं
1: जी
2: कई संतों महापुरुषों को जो याद कर रहे हैं, तो ये ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए।
1: जी
2: सभी दोस्तों का नमस्कार और सवाल का जवाब तो मैं थोड़ी देर बाद।
1: ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी सुंदर बात कही है। देखिए, विषय बहुत ही सुंदर है। मैं आपको उदाहरण दे रही थी कि एक बहन है, वो कहते हैं ना कि जब दुर्जन व्यक्ति दुर्जनता नहीं छोड़ता है तो सज्जन व्यक्ति को भी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। तो बहन भले परिवार वाले पीछे कुछ भी कहे, वो उनकी सबकी मदद करती थी। अड़ोस पड़ोस सब कहते, अरे क्या करती हो, तुम्हारे परिवार वाले तुम चाहते नहीं, जब तुमको ज़रूरत पड़ती है तब वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, तुम क्यों हेल्प करते हो। बोले, वो उनके संस्कार है, मेरे संस्कार हेल्प करने के हैं, मैं अपने संस्कार को नहीं छोड़ सकती। कितनी बार उस बहन के करीबी रिश्तेदारों ने भी कहा कि क्यों आप उनके पीछे आप पिटती रहती हो, घिसाती रहती हो, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। उसने बात की मेरे से तो बोल रही कि बहन जी कैसे छोड़ दूँ अपने संस्कारों को, मेरे संस्कार में नहीं है किसी को मना करना, तो मैं कैसे मना कर दूँ। बस आधी रात को फोन आता है, पहुँच जाती हूँ हेल्प करने के लिए, चाहे वो करे ना करे कोई बात नहीं, ईश्वर देखता है। मतलब कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। तो बिल्कुल सही है, जैसे आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि एक ऋषि जो नदी में नहा रहे थे, एक बिच्छू डंक मार रहा था, तो ऋषि उस बिच्छू को बार बार हटा रहे थे, बार बार बिच्छू आकर के डंक मार रहा था। तो किसी ने कहा कि अरे महात्मा जी, आप बार बार इसका डंक सह रहे हैं और फिर भी इसको मार नहीं रहे, मार के ख़त्म कर दो ना। ऋषि ने कहा कि नहीं, जब उसके संस्कार है डंक मारने के, वो अपने संस्कारों को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं कैसे छोड़ दूँ अपने संस्कारों को। मुझे तो एक किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, तो नहीं करनी है। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि देखिए, दिया एक हवा का झोंका आया नहीं और बुझ जाता है, लेकिन अगरबत्ती देखो जलती रहती है और महकती रहती है। तो हम किसी और के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जीते हैं, तो वो खुशबू हमें खुद कहने की ज़रूरत नहीं, वो खुशबू अपने आप चारों ओर फैलेगी और लोग खुद कहेंगे कि अरे भाई फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो आधी रात को भी मदद के लिए तैयार रहता है, उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, उनसे हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो भी जिस सिचुएशन की बातें होती है, कहते हैं कि उनसे हम कर सकते हैं, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। और जो व्यक्ति बार बार गुस्से में चिढ़ता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसका भी पता चल जाता है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फलाना ऐसा टिकड़ा ऐसा नहीं, उसके व्यवहार से, उसके स्वभाव से पता चल जाता है कि हाँ ये जलेसी रखता है, तो लोग 10 हाथ दूर रहना पसंद करेंगे। ठीक है भाई, सामने आमने सामने टकरा गए वो बात अलग है, हाय हलो करके राम राम करके निकल गए, बाकी दूर रहना पसंद करेंगे कि नहीं भाई नहीं, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति से हमें तो संबंध रखना ही नहीं। और ईश्वर से प्रार्थना करके निकला, फलाना बंदा हमें मिले ही नहीं, ऐसे प्रार्थना करके निकलते लोग घर से, है ना, तो क्या फ़ायदा हुआ। और जैसे कि हमारे श्रोता बंधु बता रहे थे कि खुशबू ऐसे ही नहीं फैलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल, अपमान सहना पड़ता है, निंदा सहनी पड़ती है, और बहुत कुछ सहना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जा कर के उस व्यक्ति की कहीं पर जा कर के तारीफ होती है। बाकी कौन आजकल किसकी तारीफ करता है, बिना कहते ना, बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता, बिना त्याग के कोई तारीफ नहीं करता। आप घर में भी देख लो, अगर बहू 9 बजे उठेगी तो कोई तारीफ करेगा कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, वही 6 बजे उठ करके अगर काम में लग जाती तो कहेंगे भाई हाँ बहू बहुत अच्छी है। स्वाभाविक है, गुणों से ही पहचान होती है, अवगुणों से नहीं होती है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो दूसरों को जलाने की कोशिश में पहले खुद जलता है, क्योंकि ईर्ष्या कर रहा है लेकिन पहले तो वो जल रहा है ना कि खुद का स्वभाव को बिगाड़ रहा है, कुढ़ रहा है और अंदर ही अंदर घुट रहा है, उसके बाद होठों पर लब जा रहे हैं, फिर सामने वाले को बोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जले, और ठीक है चलो सामने वाले को परेशान करने की कोशिश में हम जलेसी रखते हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं ना, क्या फ़ायदा मिला, कुछ भी नहीं। अरे भाई सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा भाई, तू तेरे और मैं मेरे, किनारा कर लेगा आपसे, रिश्ता कट कर देगा, और क्या, उससे ज़्यादा आप क्या कर पाओगे। इसलिए अपने स्वभावों को अच्छा रखो और अगरबत्ती की तरह महकते रहो। अरे मैं तो कहूँ आप किसी के लिए कुछ मत करिए, अच्छा नहीं कर सकते बुरा भी मत करिए, किसी के लिए बुरा संकल्प भी मत चलाइए, किसी के भी प्रति जेलेसी मत रखिए, सबका भला हो सब सुख पाए, यही अगर हम शुभ भावना रखते हैं तो बस न तो जलेसी रहेगी किसी से, न ईर्ष्या में हम जलेंगे, न ही लोगों को जलाने की कोशिश करेंगे, अगरबत्ती की तरह खुशबू फैलाते रहेंगे। ठीक है, तो यही आज के विषय का सार है। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बांटने से वह बढ़ती है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिएगा, आज आपको सिखाएंगे अरवी के कोफ्ते। ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और सभी बहुत पसंद करेंगे। तो सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ, आप ले लीजिए अरवी, फिर ले लीजिए थोड़ा सा आलू। जैसे आप एक किलो अरवी लेते हैं तो पाव भर आलू लीजिए, पाव भर अरवी ले रहे हैं तो एक आलू लीजिए। ठीक है, और फिर आप हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, टमाटर, राई, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काजू आप लीजिएगा, नारियल, फिर आप लीजिएगा मूंगफली के दाने, मीठा नीम और हींग, तेल तो लेना ही है, और बेसन, फिर लीजिएगा थोड़ा दही, टमाटर लेना है। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, अरवी, आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च, राई, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, बेसन, फिर आप लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, हींग, काजू, और फिर लेना है आपको सिंगदाने और नारियल कद्दूकस किया हुआ, तेल लेना है। ठीक है, तो ये हो गई सामग्री। बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, आप अरवी की धुलाई करिएगा अच्छी तरह, क्योंकि मिट्टी बहुत होती है इसमें। धुलाई करने के बाद इसको बॉईल करिएगा, आलू भी साथ ही साथ बॉईल कर लीजिए धुलाई करके अरवी के साथ ही। ठीक है, और फिर निकाल दीजिए। निकालने के बाद जब ये ठंडे हो जाए, बॉईल होने के बाद जब लगे कि बॉईल हो गया, तो फिर गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडे हो जाए तो इनके छिलके हटा दीजिए। छिलके हटा करके भले तो आप इनको कद्दूकस कर लीजिए, ताकि ये बूर बूर बिखर जाएंगे। भले आप मैश करिएगा हाथ से, अब जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप करिएगा। ठीक है, तो मैश कर दिया। अब आलू और ये दोनों मिक्स कर देना है आपको। इसी में आप अदरक, हरी मिर्च की धुलाई करके पेस्ट करके इसमें डाल दीजिएगा। आलू अरवी जो हमने मैश करके रख रखी है, इसी में ही मसाला डालना है। आप अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट करके अच्छी तरह डालिएगा इसमें। फिर स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा, धनिया पाउडर डालना है, और थोड़ा सा बेसन डालिएगा, हरा धनिया भी डाल दीजिए, और सभी को अच्छी तरह मिक्स करिए। ठीक है, सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसको ऐसे गोल गोल सेव करिएगा, अंडाकार कोफ्ता की तरह। ठीक है, सारे बना के रख दीजिएगा। फिर धीमी आंच पर तेल में इनको तल के रख लीजिए। धीमी आंच में तलना है, धीमी मध्यम करते जाना है, तलते जाना है। ठीक है, इन सबको हल्के हल्के ऊपर से सब तरफ से ब्राउन हो जाए तब तक आपको तलना है। फिर तल करके निकाल दीजिए। अब जो काजू लिए है, सिंगदाने लिए है, इन सबको आप पीस लीजिए। कालू मिक्सर में काजू को पीस लीजिए, फिर सिंगदाने को पीस लीजिएगा, और नारियल अगर कद्दूकस नहीं किया हुआ है तो उसको कद्दूकस कर लीजिएगा। टमाटर मिक्सर में इसके भी पेस्ट बना लीजिएगा। फिर से आपको अदरक, हरा धनिया की ये पेस्ट अलग बनानी है, हरा धनिया नहीं, अदरक और हरी मिर्च की। ठीक है, ये सब पेस्ट तैयार करिएगा। अब आप रखिएगा कढ़ाई के इस पर, आप तेल डालिएगा, तेल गर्म हो जाए। जैसे हमने कोफ्ता तला है वही कढ़ाई ले लीजिए, ज़्यादा तेल है तो निकाल दीजिए, आवश्यकता के अनुसार रखिएगा कढ़ाई में। जब ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरा का तड़का लगाइए। राई जीरा तड़क जाए तो फिर आप इसमें ये आप सिंगदाने जो पीस रखे हैं वो डालिएगा, आप काजू जो पीस रखे हैं वो डालिएगा, फिर आप नारियल का भी कद्दूकस किया हुआ छीन आप डाल दीजिएगा, और हल्का सा इसको आप फिर फ्राई करिएगा। ठीक है, हींग भी थोड़ी डाल देनी है पहले ही तड़के में, और जब ये मसाला हल्का सा फ्राई हो जाए फिर आप टमाटर की
पेस्ट भी डाल दीजिएगा, साथ ही साथ आप नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ये भी डाल दीजिएगा। और अब इसको अच्छी तरह होने दीजिए पेस्ट को। जब ये पेस्ट आपको लगे कि हाँ ये ग्रेवी अच्छी हो गई है और तेल ग्रेवी से ऊपर आ गया है, क्योंकि जब हम ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी पकाते हैं ना, तो तेल और ग्रेवी अलग हो जाता है, तब जा कर के सही मायने में वो ग्रेवी हमारी तैयार होती है। ठीक है, ये ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें आप थोड़ा सा दही डालिए और दही डाल करके तुरंत हिला दीजिए, दही फटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो दही डालिएगा आप जितना चाहे उतना। फिर दही डालने के बाद एक आध और उबाला ले लीजिए, उसके बाद आप पानी डाल दीजिए आवश्यकता के अनुसार। और पानी का जब ये अच्छा उबाला आ जाए तो बस ये कोफ्ते बना रखे वो डाल दीजिए और गैस बंद कर दीजिए। तो ये बन गए अरबी के कोफ्ते। बहुत स्वादिष्ट ये सब्जी है, बड़े बुजुर्ग, युवा, बच्चे सब पसंद करेंगे इस सब्जी को। ठीक है, ऊपर से हरा धनिया डाल देना है, इसके साथ आप चपाती खा सकते हैं, गेहूँ की, आप दूसरी भी बाजरी की रोटी जो भी पसंद करते हैं खा सकते हैं, लेकिन ये शाही सब्जी है तो आप पूरी, परोठा या चपाती के साथ खा सकते हैं, चपाती सबसे बेस्ट रहेगी, फिर भी वो आपके ऊपर छोड़ा। ठीक है, तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन चुकी है और आप अपने इष्ट देव को भोग लगा करके स्वीकार करिएगा। ठीक है, और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना बांटो उतनी बढ़ती है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जी क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और उसके भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। तिल खाने के क्या फायदे है, कौन सी बीमारी ठीक करते हैं, आप सभी ने जाना है। फिर खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई और रेसिपी में जो अरबी के कोफ्ते बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। तो आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है। अलका जी काबरा कपासन से, सुरेश भाई जोटाना से, अभय सिंह जी जयपुर से, दीपा सोमानी कपासन से, भुराराम जी ओर से, वंदना जी दिल्ली से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, संगीता जी कपासन से, कंचन भाई मंडाली से। आप सभी का सही जवाब है, आप सभी ने कहा है शिक्षा, ज्ञान, खुशी, प्रेम। बिल्कुल, आप सभी का सही जवाब। और आप सभी विषय में भी जुड़े, इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह है परमात्मा दरवाजा। सब उम्मीद परमात्मा से रखिए, दुनिया से नहीं। अब मैं आपको गणपति पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सी पहेली के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। गणपति आजा मेरे मन भाजा, सभा में रंग बरसा देना,

ना, लौंग सुपारी देवा पान का बिड़ला, मोदक भोग लगा देना। उषा प्रभु तेरा जस गा।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाईसा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे है, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
6: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
7: शांति, सब ठीक कह रहे हैं, चलो हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
1: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
8: क्या?
9: क्या?
8: क्या?
9: क्या?
1: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
10: हाँ जमाईसा, तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
3: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
6: मैं तो बहुत खुश हूँ।
3: बढ़िया,
10: बहुत अच्छी बात है,
3: सब लोग मिलकर रहेंगे।
11: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
1: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर।
12: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
13: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
11: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
3: जमाई सा परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपके ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
5: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
13: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
14: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
5: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है ये खुशी न दामाद की।
3: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
10: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
11: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
3: अरे माँ, खतरा है ना?
12: क्या?
3: राजकुमारी के हाथ का खाना।
7: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
14: क्या, करेले के लड्डू
6: या मिर्ची का हलवा?
10: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊं, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
5: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
13: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
9: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
10: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
9: हाँ हाँ वही।
11: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
13: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या, अंधेरों में साथ निभाता है दिन में भला क्या खूबी है, मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या।
10: वाह वाह वाह वाह
3: वाह वाह। किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
5: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
9: चंद्रावती तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
5: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
9: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
3: भाई साहब जाने दीजिए ना।
7: भाभी जी मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
9: जमाई साहब आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो, एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
3: भाई साहब बस कीजिए, जमाई साहब के सामने ये सब शोभता नहीं।
5: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है और ये कहते हैं।
10: भाभी जी, भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी भी है दिल नहीं।
14: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
13: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
5: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
11: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
1: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
7: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
1: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है, रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
3: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार, कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है लेकिन दिल में नहीं।
11: चलिए जमाई साहब अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
10: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाईसा के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था, वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाईसा रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
15: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाईसा का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए। उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां? वो प्यार कहां खो जाता है? खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई सा को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना? बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
16: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।
17: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
18: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
17: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता, स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। पिछले सप्ताह मैंने आप सबसे कहा था कि अब कोशिश करेंगे कि दोबारा जल्दी जल्दी प्रोग्राम रिकॉर्ड हों और आप सब सुनें और कुछ न कुछ सीखें, जानें, समझें, अलग अलग जिंदगियों के बारे में, अलग अलग कहानियों के बारे में और अलग अलग फैमिलीज के बारे में। हमरा ही एक संघर्ष का नाम है, हमरा ही एक जज्बे का नाम है, हमरा ही एक जुनून का नाम है और हमरा ही एक हौसले का भी नाम है। तो चलिए, आज की कहानी से आपको बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के रूबरू करवाते हैं। आज एक बार फिर से हम देश की राजधानी में हैं और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, तो आपको मिलवाते हैं। स्वागत है हमरा ही कार्यक्रम में अजंता जी और परमेश्वर जी, आप दोनों का
1: नमस्कार।
2: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, सुना आपने, परमेश्वर जी जरा हमारे सुनने वालों को बताएं अपने बारे में, आपकी दिव्यांगता कौन सी है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस तरह से आप दिव्यांग हुए और आजकल क्या कर रहे हैं।
1: मेरा तो नाम परमेश्वर प्रसाद है
0: जी,
1: और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ
0: जी,
1: और मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई पटना से
0: जी।
1: उसके बाद 11-12 हमारा वाराणसी यूपी इलाहाबाद बोर्ड से
0: जी।
1: तत्पश्चात मैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हम जॉब के लिए प्रयास किया और पहली बार में मैंने जॉब में सक्सेसफुल हो गया।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MES में मैं कार्यरत हूँ
0: जी,
1: हेड ऑफ क्लर्क के पद पे
0: जी।
1: और इस समय मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी में जुड़ा रहता हूँ। मेरे बचपन से आंखें थी, 10 साल के बाद हमारा आंख जो है रोशनी धीरे धीरे घटता गया। घटने का कारण यह है कि बचपन में क्या हुआ कि जैसे आई फ्लू होता है तो गांव में क्या होता है कि झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना।
0: बिल्कुल होते हैं जी।
1: तो हमारे पेरेंट्स दिखा दिए, इधर उधर दवा डाल दिए, जबकि आंख कान नाक इतना नाजुक होता है,
0: बिल्कुल
1: बिना अच्छे डॉक्टर से सलाह लिए बिना दवा नहीं डालना चाहिए कोई
0: जी।
1: इसी के वजह से हमारा रिएक्शन आंख में जो है इन्फेक्शन हुआ, इसी से रोशनी चली गई।
0: अच्छा,
1: तो ब्लाइंड होने के बाद घर वाले सोचे कि अब क्या होगा, इसका लाइफ कैसे जाए गुजरेगा। तो फिर धीरे धीरे ब्लाइंड स्कूल के बारे में पता चला, पहले पटना में, उसके बाद उत्तराखंड में देहरादून।
0: अच्छा,
1: तो वहां तो मेरा नामांकन नहीं हुआ लेकिन मैं पटना में ही अपना शिक्षा दीक्षा शुरू हुआ। तो आज मैं पटना से वाराणसी और उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली में ही मैं अभी जॉब में लगा हुआ हूँ। और हमारा फैमिली और मैं दिल्ली कैंट में ही है, गवर्नमेंट फ्लैट है यहाँ।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है पर जी। परिवार में एजुकेशन का स्तर कैसा है आपके?
1: मिला जुला ठीक है, ना ज्यादा हाई फाई है।
0: घर में इतनी समझ थी कि भाई अब इसकी आंखों की रोशनी चली गई है तो इनकी पढ़ाई करवाना जरूरी है, या फिर किसी ने सलाह दी तो फिर पता चला?
1: नहीं, हम लोग तो गांव में रहते थे, हालांकि हम जहाँ रहते वहाँ गांव नहीं है, टाउन ही है, लेकिन गांव का मानसिकता तो आप जानते ही हैं
0: जी। हाँ,
1: बहुत लोग बोलते थे कि इसको कुछ इधर उधर भेजा करो, गाने में ना गवाओ, 2-4 पैसे मिल जाएंगे, घर में बैठ के क्या करेगा
0: जी।
1: तो हमारे घर में केवल हमारे पापा थे वो पढ़े लिखे थे, बाकी सब शिक्षा से वंचित थे
0: जी।
1: तो उनका प्रयास रहता था कि इनको कहीं ना कहीं हम जुगाड़ करेंगे। तो वो इस जुगाड़ में रहते थे कि इनका कहीं जुगाड़ लगे और कोई व्यवस्था हो
0: जी।
1: तभी पता चला कि एक ब्लाइंड स्कूल भी इन लोग का है
0: जी।
1: तो हम पहले देहरादून गए, वहाँ बहुत छोटे थे, एडमिशन हुआ नहीं, तो एक साल मुझे बैठना पड़ा। फिर दोबारा पटना में एडमिशन हुआ, तब हमारी शिक्षा वहां से आगे बढ़ा।
0: जी। और बनारस में आप कहाँ, दुर्गा कुंड में पढ़े हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी, वहाँ मेरा 11th 12th हुआ है
0: पोद्दार स्कूल में।
1: जी।
0: आजकल तो सुना है वो 8वीं तक कर दिया है स्कूल।
1: हाँ, वो स्कूल का मामला क्या है कि वो कोई ट्रस्ट चलाता है उसको, और वो ट्रस्ट वाले मड़वाड़ी हैं, तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये बिल्डिंग, उनका उनका मानना है कि ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी के लिए यूज किया जाए। एक अच्छे जगह में है और बढ़िया बिल्डिंग है, जगह भी पर्याप्त है। आज वो स्थिति ऐसी हो गई कि 12वीं से स्कूल जो अब 8वीं तक चली गई है।
0: बिल्कुल, मुझे भी एक बार मौका मिला है उस विद्यालय को जानने समझने का, 2019
1: अच्छा,
0: में। खैर, तो श्रोताओं, अब आपको अजंता जी से भी मिलवा देते हैं। जी अजंता जी, अभिवादन का जवाब तो दे ही दिया है, लेकिन अब श्रोता चाहते हैं जरा जाने समझें आपकी जिंदगी के बारे में। जी बताएं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर आपका, आपने हमें मौका दिया कि हम लोगों से जुड़ सके। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग क्लब को बहुत बहुत थैंक्स है मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से, और आपको भी स्पेशली। मैं बेसिकली मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ, काठमांडू से। मेरी वेल एजुकेटेड फैमिली है। मेरे फादर मदर दोनों पढ़े लिखे थे, मेरे दादा दादी भी थोड़ा बहुत ही सही उस जमाने का। दादी मेरी 5th पास थी और मेरे दादाजी 8th पास थे। तो ब्लाइंड में बाय बर्थ नहीं हूँ, लेकिन 6 मंथ की जब मैं थी तो मुझे मेनिनजाइटिस हो गया, और
0: अच्छा
2: ड्यू टू मेनिनजाइटिस मेरे ब्रेन में पानी भर गया, और
0: अच्छा
2: डॉक्टर की थोड़ी सी लापरवाही कह सकते हैं कि पानी की जगह ऑप्टिक नर्व का ब्लड सूख गया, बिकॉज उन्होंने ब्लड निकाल लिया मतलब पानी की जगह पे, तो मैं ब्लाइंड हो गई। ब्लाइंड हुई तो पहले मैं टोटली ब्लाइंड हुई। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी ना, 1.5 2 साल की रही होंगी, तो मैं दीवार
0: अच्छा
2: को छू छू के चला करती थी। मुझे बचपन बस इतना याद है, लेकिन मेरे फादर मदर हारे नहीं, उन्होंने सब जगह घुमाया मुझे।
0: जी
2: यूएसए भी डॉक्टर्स आया करते थे, नेपाल, क्योंकि आप सबको पता है कि उस कंट्री को सब मदद करते रहते थे पहले, तो
0: जी
2: नेपाल में आईज के लिए भी स्पेशलिस्ट आते रहते थे।
0: जी
2: तो वहां उन्होंने, मेरे जो ग्रैंडफादर है उनके एक फ्रेंड थे, वो भी एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट थे नेपाल में, काठमांडू में, तो उनकी हेल्प से कहो या सोर्स फोर्स से उन्होंने मुझे बाहर के डॉक्टर्स को भी दिखाया। उनका यही
0: जी
2: कहना था कि नर्व्स पैरालाइज लाइट फॉलोज, रिपोर्ट
0: अच्छा
2: हमेशा यही रहती थी, क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स तो पैरालाइज हो ही गई ना, ब्लड है ही नहीं।
0: बिल्कुल
2: लेकिन सबका ये भी कहना था कि जैसे जैसे ये बड़ी होगी ना, थोड़ी बहुत तो इसकी विजन आएगी, तुम
0: अच्छा
2: इसको ग्रीन वेज, और तुम अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एग फिश वगैरह खिलाओ। तो ऐसा ही मेरी फैमिली भी करती थी। तो धीरे धीरे फिर मेरी ना रोशनी मुझे दिखने लगा। फिर मेरे, मुझे
0: अच्छा
2: याद है पापा ने ना मेरे को सबसे पहले ब्लू कलर का टूथब्रश दिखाया और मुझे बताया कि ये नीला है, इसको ब्लू बोलते हैं, तो तुम ब्लू जानते, तब तो मैं स्कूल जा चुकी थी, तो ये ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा थोड़ी देर बाद और भी चीजें दिखाने का, फिर चीजें पूछी, तो मैं सही पहचान पा रही थी। वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उन लोगों को था कि भले ही फुल साइटेड ना हो, बच्ची को कुछ तो दिखे। फिर सर ब्लॉक्स वगैरह से भी जो कैपिटल लेटर होते हैं ना, वो सब भी थोड़ी थोड़ी, मैं जब बड़ी हुई एकदम से नहीं, तो मैं 6th 7th में आई, तो पापा ने मेरे को ब्लॉक से ABCD की भी पहचान करा। मैं ब्लाइंड स्कूल से तो नहीं पढ़ी हूँ, मैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन से काठमांडू में पढ़ी हूँ, नर्सरी से ही, टाइम से। और फिर 7th 8th में आते आते मेरी विजन और अच्छी हो गई, जब तो उन्होंने मुझे ये ब्लॉक्स वगैरह से पढ़ना सिखाया, फिर बड़े बड़े साइन बोर्ड पढ़ना सिखाया। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे करके मतलब मेरा एजुकेशन भी हुआ। मैं 8th तक नेपाल में पढ़ी हूँ। फिर क्लास 9 में, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है और नेपाल में मैथमेटिक्स का कुछ अच्छा सोर्स भी नहीं था उन दिनों में ब्लाइंड के लिए,
0: अच्छा
2: तो
0: जी,
2: मुझे ना वहां से भाग के, कह सकते हो मतलब मैं मस्ती में बात करती हूँ, छुआना
0: भागे भी तो
2: चाहती
0: अच्छे
2: थी।
0: काम के लिए भागे ना जनता जी।
2: हाँ, तो मैं जो है इंडिया आई कि इंडिया में मैथ्स जो है 8 तक होता है, अगर 9th से आप कोई और सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो पता
0: जी
2: नहीं क्या था, जुनून था कि सितार सीखूं, सितार
0: ओ
2: सुनती थी कभी कभी ना, अच्छा लगता था। तो मैं
0: जी
2: आई थी, तो मैंने यहाँ राष्ट्रीय ब्रजानंदन कन्या विद्यालय है विकासपुरी में, दिल्ली में, वहाँ एडमिशन लिया 9th से। और मैं सितार तो खैर नहीं सीख पाई ज्यादा, क्योंकि वहां पे भी इतने सोर्सेस नहीं रहे, रिसोर्सेस नहीं रहे, जो भी है। फिर मैं उस सपने को भी तोड़ दिया, फिर मैंने पढ़ाई की वहां 12th तक, फिर लक्ष्मीबाई कॉलेज जो डीयू का है वहां से मैंने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स इन सोशल वर्क करना चाहा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई।
0: वो भी सपना टूट गया।
2: हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि उन दिनों रिलैक्सेशन थे नहीं, और आपको पता है कि पहले परसेंटेज बनाना बहुत मुश्किल होता था, है ना। अब तो बहुत इजी रह गया पढ़ाई, पहले के टाइम में 2001-2 के टाइम में हमारे लिए पढ़ना और सब कुछ बहुत थोड़ा टफ सा था, तो उतने परसेंटेज बना ही नहीं पाई मैं कि उसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो फिर मैंने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से कंप्यूटर ट्रेनिंग की, और फिर उसी की वजह से 2003 में, छोटी एज थी मेरी, मैं वहां पे जनता आदर्श अंध विद्यालय नाम का स्कूल है सादिक नगर में, 8th तक,
0: क्या नाम
2: तो जनता आदर्श अंध विद्यालय।
0: है? जनता में
2: हाँ बिल्कुल,
0: अजंता।
2: जनता में अजंता पहुंच गई एज अ पार्ट टाइम कंप्यूटर ट्रेनर। फिर शायद उन्हें मेरा काम अच्छा लगा, वट एवर, उन्होंने 2005 में मुझे रेगुलर किया, और कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश भी।

0: मेरे लिए दिया कि आपकी इंग्लिश ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ाओ यहाँ पे. तो फ्रॉम दैट डे आई एम वर्किंग एज अ कंप्यूटर ट्रेनर एंड इंग्लिश एजुकेटर इन जनता आदर्श विद्यालय. मीन वाइल फिर मैंने शालिनी खन्ना मैम को किसी की एडमिशन के लिए एक बार कॉल किया 2003 में ही. तो उन्हें भी पता नहीं थोड़ा ठीक लगा वाट एवर. उन्होंने बोला तुम काम कर सकते हो, इंग्लिश क्लास ले सकते हो. मैंने बोला यस. बोले अच्छा आओ मिलो मुझसे जरा. तो फिर नवंबर 5 में मैंने जनता आदर्श ज्वाइन किया था और दिसंबर 31 को मेरा फर्स्ट डे था नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज में एज पार्ट टाइम इंग्लिश टीचर.
1: करीब करीब आप मतलब 23 सालों से जॉब कर ही रहे हैं एक तरह से, है
0: बिल्कुल
1: ना जी?
0: जी
1: बताएं, आगे बताएं जी।
0: बिल्कुल. बस तो पहले मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी नैब इंडिया सेंटर में. फिर 2015 से मैं मोबिलाइजेशन पर्सन और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर बनी और अब मैं साथ में एडमिशंस भी देखती हूँ. मेरी अगर हॉबी की बात करूँ तो मुझे ट्रैवल, कुकिंग ये सब बहुत पसंद है. और मैं मूवीज भी देखना पसंद करती हूँ, पुराने कम देखती हूँ नए. और गाने भी मेरे को ज्यादातर पॉप टाइप के ज्यादा पसंद आते हैं. और बस, और मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, ठंडा मौसम पसंद है. हाँ
1: आप नेपाल की जो हैं,
0: कह सकते हैं.
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अजंता जी, फिर मतलब ये जो स्कूल में पढ़ाने का और नैब से जुड़ने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
0: बहुत बढ़िया. शुरू में थोड़ा लगा, जब मैं स्कूल में टीचर बनी ना तो मुझे लगा मैं तो एमएनसी के लिए बनी हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर फील्ड से थी, टेक्नोलॉजी से थी. लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कंप्यूटर टीचर बनूँ. हाँ बचपन में जब खेलते हैं ना घर में तो मैं टीचर टीचर खेल ज्यादा खेलती थी. तो पापा बोलते थे तो बाद में ना टीचर बनेगी. मैं बोलती थी नहीं मैं डॉक्टर, मेरे को ये तो पता नहीं था ना मैं ब्लाइंड तो डॉक्टर नहीं बन सकते. मैं बोलती थी मैं डॉक्टर बनूंगी. लेकिन बाद में मुझे भी लगा कि मैं किसी एमएनसी में जाऊंगी, किसी बढ़िया कॉल सेंटर में कहीं अच्छी जगह पे जाऊंगी. फिर जब मैं टीचर बनी तो शुरू में मुझे थोड़े दिन लगा लेकिन बाद में मुझे बहुत मजा आया क्योंकि वहां पे हमेशा आप यंगस्टर्स से जुड़ते हो. और जब आप यंगस्टर्स से जुड़ते हो ना तो हमेशा यंग रहते हो. आपकी जो भी फीलिंग्स होती है ना वो बूढ़े होने ही नहीं देते आपको.
1: अच्छा, गवर्नमेंट जॉब का भी सपना था आपका?
0: नहीं सच बताओ ना तो थोड़ा थोड़ा था. लेकिन मेरा एक चीज था कि मुझे ना बैठना नहीं है. अगर मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊं तो मुझे काम मिले. बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से ये सिखाया है कि आप अपने लिए सेल्फ हेल्प पे बिलीव करो. मुझे उन्होंने कभी ब्लाइंड बन के रहने ही नहीं दिया. जो पनिशमेंट भाई को मिली वो मुझे मिली. जो चीज वो भाई से एक्सपेक्ट करते थे कि वो सीखे वो चीज उन्होंने मुझसे भी की. उन्होंने कभी इसको बैरियर बनने ही नहीं दिया मेरे ब्लाइंडनेस को ना. तो मुझे भी था कि भाई मैं अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी तो फिर मुझे काम मिले. ऐसा नहीं कि भाई आप आ रहे हैं बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है. मैं ये नहीं कह रही गवर्नमेंट जॉब वाले ऐसा ही करते हैं. लेकिन अपनी जो भी आपकी एबिलिटी है उस हिसाब से काम मिले ना तो मजा आता है. फिर जॉब पे जाने का एक अलग वो रहता है. तो प्राइवेट जॉब में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क देते हैं ना तो मुझे मजा आता है. गवर्नमेंट जॉब की एक दो एग्जाम्स दिए मैंने, बैंकिंग के दिए और एक बार मैंने ESIC का भी दिया था और एक बार मैंने EEO का दिया था. पर मैंने इतने सीरियसली दिया ही नहीं था कि मेरा हुआ ही नहीं. फिर मैंने सोचा चलो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है ही तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की शादी के बाद. तो और भी हाँ जी
1: जी, तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा ही प्रोग्राम। आज अजंता जी और परमेश्वर जी के साथ। देखिए श्रोताओं, यही इत्तफाक होता है, यही जिंदगी है। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे सपनों के सच होने की, और इस प्रोग्राम में कुछ कुछ बात ये हो रही है कि सपने अधूरे रह गए। ऐसा ही होता है हम सबके जीवन में भी। चलिए आगे अब बढ़ाते हैं बातचीत को। तो अजंता जी, बताएं अब फिर मेन मुद्दा जो है हमारे इस प्रोग्राम का, जिसके लिए श्रोता भी इंतजार करते हैं। ये सब तो एक जरूरी हिस्सा होता है कार्यक्रम के उस हिस्से तक पहुंचने का, जिस हिस्से के पीछे कोई ना कोई किस्सा छुपा हो। तो अब मुद्दा
0: बिल्कुल
1: ये है कि आप दोनों के मिलने का क्या किस्सा है, ये बताएं जरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल. उससे पहले मैं आपसे एक आपको एक बार करेक्ट कर दूं. सपने सर मेरे अधूरे नहीं रहे क्योंकि मुझे सोशल वर्कर बनना था ना.
1: नहीं, आपने कहा ना लेकिन कि आपको सितार का
0: हाँ
1: सपना और मैथ्स का सपना।
0: यस यस यस हाँ, सितार का तो टूट गया, लेकिन
1: हाँ
0: आज बीइंग सोशल वर्कर मैं बहुत
1: जी,
0: खुश हूँ। मैं आज
1: बिल्कुल
0: लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला पाती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी मतलब एडमिशन के लिए मुझे अप्रोच करते हैं, और बड़े बड़े लोग भी करते हैं, है ना। तो
1: बिल्कुल
0: ये है कि मुझे मजा आता है। और जो आपने पूछी है, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, तो आप किससे पहले सुनना चाहेंगे, मुझसे या परमेश्वर जी से? ओके,
1: आप ही से अभी तो हम बात कर रहे हैं
0: तो
1: जी।
0: मेरे पेरेंट्स को था कि अब जॉब भी कर रही है, चल ठीक है, प्राइवेट जॉब ही सही। और ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि ना, नेपाल में जल्दी ब्लाइंड लड़कियों की ब्लाइंड से शादियां नहीं होती है ना। अब थोड़ा होने भी लगा, पहले नहीं मैंने देखे। सबको रहता है कि एक्साइटेड, चाहे ब्लाइंड लड़का भी हो चाहे ब्लाइंड लड़की हो, एक्साइटेड चाहिए, है ना। और मैं थोड़ी सी अलग थी, मेरे मन में ये था कि अपने जैसा होगा तो हमें ज्यादा समझेगा, क्योंकि एक्साइटेड होगा तो थोड़ा सा उसको लगेगा कि ठीक है, ये काम मैं जल्दी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लाओ ये मेरे को दे दो, ये कर दो। वो हो सकता है सिंपथी ना दे रहा हो हमें, लेकिन कभी कभी ऐसा लगने भी लगता है कि नहीं यार, हम भी तो साथ साथ में काम करेंगे ना, जब पार्टनर है तो फिर हम ऐसा क्यों सोचें। तो मेरा शुरू से ही था कि मुझे, अगर मैं शादी करूंगी तो मेरे को ब्लाइंड चाहिए। तो ऐसे ही फिर मैंने पेरेंट्स को मनाया। पहले तो वो साइटेड के लिए कह रहे थे कि मतलब थोड़ा तो होता ही है हर किसी का मन में। तो फिर एक फ्रेंड है हमारे, मतलब मेरा एक फ्रेंड है मनीष, मनीष गुप्ता, वो भी लेट ब्लाइंड थे, हम AICB में मिले थे। तो एक दिन उनका फोन आया कि और अजंता क्या हाल चाल, शादी वादी नहीं करोगे? मैंने बोला इतना बोल रहे हो तो ढूंढ के दिखाओ।
1: मनीष जी आपके, मनीष जी आपके मित्र थे और AICB में मिले वो आपको?
0: हाँ मिले थे, तो फोन पे बात होती थी हमारी। AICB में
1: ये
0: हम
1: कौन से
0: टू
1: सन की
0: थाउजेंड
1: बात
0: टू
1: है?
0: थ्री में ये 2002-03 से मतलब हम लोग जानते थे एक दूसरे को।
1: ओके okay.
0: तो वो क्राइसिस यूनिट में थे और मैं कॉलेज गोइंग के लिए थी AICB में। तो हमारी बातचीत बीच बीच में होती रहती थी। तो वो बोल रहे थे अब तो शादी वादी कर लो, ये 2012 की ही बात है, अप्रैल की। तो मैंने उन्हें बोला अच्छा ढूंढो लड़का कोई हो। तो फिर उन्होंने वाकई में परमेश्वर जी को ढूंढ निकाला, और फिर हमारी फोन पे बात कराई। परमेश्वर जी की अपना बताएंगे, उनके थ्रू, एक मीडिएटर के थ्रू ही वो भी मिले मनीष जी तक। और बस फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर पहले फोन पे बात हुई, फिर उसके बाद लगा कि सुइटेबल कैंडिडेट है, तो हम मिले भी। और बहुत सारी चॉइसेस हम दोनों की मिलती जुलती है, खाने पीने से लेके सोच में भी, और कुछ कुछ चीजें अपने हॉबीज में भी। तो लगा कि हाँ, ही इज गुड कैंडिडेट फॉर मी। तो बस
1: क्या परमेश्वर जी के अलावा कोई और भी बातचीत हुई थी किसी और के बारे में भी, या बस इन्हीं के बारे में बात हुई और इन्हीं को अपना लिया?
0: नहीं, पहले भी और दो चार लोगों के बारे में लोगों ने बताए थे, लेकिन उनसे ना बात बनी नहीं, जमी नहीं, मुझे लगा नहीं कि हाँ। लेकिन परमेश्वर जी की सबसे अच्छी बात है कि उनका मन बहुत अच्छा है, मन के बहुत साफ पर्सन है ये। और इनका मन ही देख के, बस मैंने और कुछ नहीं देखा, सिर्फ इनका मन देख के शादी किया था।
1: अच्छा, तो
0: हाँ जी
1: आप दोनों को मिलवाने में, मतलब ये कहना चाहिए, मनीष जी का हाथ है।
0: हाँ, मनीष जी और एक प्रवीण जी है परमेश्वर जी के दोस्त, इन दोनों का।
1: ओके, तो जब आप हौस खास से जुड़ गए थे तो
0: हाँ जी
1: फिर वहां भी प्रयास हुए होंगे शालिनी मैम वगैरह के माध्यम से भी?
0: हाँ, देखो लाइफ में क्रश सबका होता है, मेरा भी, मेरे भी क्रश थे, मुझे भी कुछ लोग अच्छे लगते थे। लेकिन ये था कि लोगों की, सबकी थिंकिंग अलग होती थी, है ना। उन लोगों को था कि नहीं, ब्लाइंड से नहीं करना है, ब्लाइंड को पता नहीं चीजों की पता नहीं चलती, जो भी है व्हाटएवर। तो फिर शालिनी मैम लोग मुझे एक दो कैंडिडेट उन्होंने भी बताए हैं, और अच्छे अच्छे कैंडिडेट बताए उन्होंने भी। बट वही वाली बात है ना, संयोग जहाँ होता है ना वही होता है। मुझे इतना इंटरेस्ट आया नहीं, इंटरेस्ट मुझे सीधा परमेश्वर जी के ऊपर आया जब उनसे मिली, मैं बात किया मैंने तब।
1: मेरा पूछने का मतलब खैर वो नहीं था, हालांकि आप उस ओर भी ले गए
0: हाँ
1: तो अच्छी बात है। मतलब मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि मैम ने भी कहीं ना कहीं बात की होगी, आप आपसे पूछना शुरू किया होगा कि भाई शादी वगैरह का
0: हाँ
1: क्या
0: अरे
1: हुआ।
0: नहीं, बहुत शालिनी खन्ना मैम का ये है कि वो मेरी बॉस, बहुत कम, मेरी एक एल्डर सिस्टर कह सकती हूँ। मैं उनसे हर तरह की बातें कर लेती हूँ, मैं उनकी एम्प्लॉय जरूर हूँ, लेकिन मैं उनको उस नजर से, मतलब रेस्पेक्ट है मेरे मन में उनके लिए पूरा पूरा, लेकिन मैं उनसे ना अपनी कुछ भी कह सकती हूँ। कल को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम भी हुई तो मैं उनके सामने जाके रो सकती हूँ, गुस्सा आया तो मैं अपना गुस्सा भी दिखा सकती हूँ उनको, और वो समझती भी है कि ये गुस्से में है ना। मतलब हमारी जो पहचान है, हमारी जो बॉन्डिंग है, वो इतनी अब डीप हो चुकी है कि मैं उनसे कुछ भी कह दूंगी या कुछ भी उनको बोल दूंगी तो वो मुझे समझ लेती हैं। उन्होंने बिल्कुल सोचा है मेरे लिए, मतलब सोचा था तब, और ट्राई भी किया था, लेकिन वही कि परमेश्वर जी से होनी थी ना, इसीलिए परमेश्वर मिलना था तो फिर और कहीं
1: मिल
0: कोई
1: जब
0: और ईश्वर
1: बात ही
0: मिला ही नहीं।
1: परमेश्वर परमेश्वर पे ही जब बात आ गई तो फिर उससे आगे बचा कौन।
0: सही बात है,
1: आपने कहा क्रश की बात की आपने अजंता जी, फिर आपने
0: बिल्कुल
1: किया कि ब्लाइंडनेस कहीं ना कहीं आड़े आ गई,
0: हाँ
1: इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि वो जो भी थे जो लोग वो दृष्टिवान थे, मुख्य धारा के लोग थे।
0: नहीं, थे तो वो भी हमारी तरह विजुअली इम्पेयर्ड, बातें तो उनकी भी अच्छी थी, लेकिन उनका ये था कि शादी नहीं, टाइम पास, और टाइम पास मुझे करना नहीं था। हाँ मतलब बातचीत करो ऐसे ही।
1: बिल्कुल
0: हाँ वो मैं उस टाइप की लड़की शुरू से नहीं रही। हाँ मेरा था कि भाई बातचीत मीन्स ठीक है, मतलब गुड फ्रेंड्स अलग चीज होती है, अगर आप पर वैसे बात कर रहे हो घंटों घंटों फोन पे करना चाहते हो ये सब है तो फिर नहीं, अगर आप मैरिज के हिसाब से सोचते हो उस हिसाब से बात करो। पहले मैरिज के हिसाब से बात करते थे, फिर उनको लगता था कि नहीं।
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आप की ऐसी इच्छा है तो परमेश्वर जी से भी पूछ लेते हैं को इतनी जनता के बीच में अपनी अजंता को ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई या नहीं हुई
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल,
1: परमेश्वर जी बताएं जरा।
0: मुश्किलें नहीं थी। मेरा भी जो दोस्त था प्रवीण, तो उन्होंने मनीष से बात की होगी, तो उन्होंने बोला कि एक लड़की है, तो मतलब ठीक है बात कराओ फिर मेरी। तो उसने बोला कि मैं नंबर दे रहा हूँ तुम कॉल करो। मैं बोला नहीं, मैं ही नंबर दे रहा हूँ, तुमने बोला वो कॉल करी।
1: अच्छा
0: तो मुझे बहुत सुनकर मुझे बहुत शर्म आता था, पहले शादी वादी प्यार प्रसंग ये सब सुनकर मुझे बहुत शर्म आता था, लड़कियों से मैं जल्दी बात ही नहीं करता।
1: आपने ऐसा कहा कि भाई वो आगे से फोन करें आपको ऐसा।
0: हाँ
1: अच्छा
0: मैंने बोला
1: अच्छा अच्छा फिर
0: मेरा नंबर दे दो, वो खुद कॉल करे। तो जब मैं दिल्ली आया था पहली बार, तो लड़कियों के प्रति हमारा कोई रुझान था नहीं, जैसे कभी कभी बसों में यात्रा करते थे तो हमारे पैर वैर दब जाते थे, तो आम लड़कों की तरह मैं लड़कियों के पास भी थप्पड़ जड़ देता था। बाद में लोग समझाए कि नहीं, ये सब पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, सब ये दिल्ली में थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा।
1: नहीं ये दिल्ली है, ये पटना ना ही।
0: बोले
1: हाँ
0: नहीं किसी लड़की वड़की पर हाथ मत उठाया करो, फिर महंगा पड़ जाएगा, सोचो समझो। फिर मैं समझ में आ गया मुझे कि ये अपराध है लड़कियों पर हाथ उठाना। तो फिर इन सब चीजों से मैं दूर ही रहता था ज्यादातर, लेकिन सोचा अब जब जॉब लग गया है तो कुछ करना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: तो 1-2 महीना हमारी बातचीत चलती रही, फिर
1: नहीं पहले
0: मैंने
1: तो ये
0: थोड़ा कॉल
1: बताइए कि फिर अजंता जी का कॉल आया या आपने ही किया।
0: देन का ही आया। तो
1: इनका ही आया था, ठीक है। 1-2 महीने बातचीत हुआ फिर।
0: बातचीत होती रही, तो बोले मिलने आओ कभी। तो मैंने बोला कि ऐसा है, बाहर ही मिलते हैं, कहीं चाय वाय पीते हैं।
1: जी
0: घर में एक कमरा लेकर आती थी और मैं दिल्ली कैंट में था, तो मुझे लगता था कि भाई मिलना एक अलग ठीक नहीं है, हम बाहर ही मिलते हैं कहीं।
1: बिल्कुल
0: हाँ तो हम एक लड़के को लेकर गए थे कि चलो जरा मिल के आते हैं, कैसा क्या व्यवहार है। तो लेकिन हमको जाना था कहीं और चले गए, जहाँ रह रहे थे कमरे में वहीं चले गए।
1: अच्छा
0: हमारे साथ एक मीडिएटर था, वो बात करता रहा करता रहा करता रहा। मैं कहा ठीक है, बातचीत से लगा कि हाँ हमारी यहाँ जो है विचार स्वभाव मिल रहा है, मन भी मिल रहा है, फिर आगे बात बढ़ानी चाहिए। फिर हम 1-2 महीना बात करते रहे करते रहे, और घर वालों को सूचित किए। उस बीच में बोली कि क्या हुआ क्या सोचा जल्दी करो। मैं कहा इतना जल्दी है तो कहीं और देख लो।
1: अच्छा
0: फिर मेरे पेरेंट्स थोड़ा गांव में रहते हैं ना, तो यहाँ आने में तो उनको दिक्कत थी, तो मेरा विचार था कि वो यहाँ आए सब कुछ देखें समझे।
2: सब अपना राय सलाह दे, करना तो मुझे ही था क्योंकि वो तो चाहेंगे नहीं कि ब्लाइंड ब्लाइंड से करे, उनका भी सोच
1: बिल्कुल।
2: यही था कि साइटेड से करे, क्योंकि वो दिल्ली में तो थे नहीं, तो अपने हिसाब से चाहते थे ना। फिर पेरेंट्स जैसे तैसे आए, बातचीत हुई, उन्होंने खुद अपने से देखा के बाद तब हाँ में हाँ मिली, तब बात बढ़ी आगे शादी की।
1: आपकी जॉब कौन से साल में लग गई थी?
2: जॉब मेरी 2010 में लगी थी, 12 मई 2010
1: दस में लगी थी। अच्छा, फिर ठीक है। और शादी तो खैर 12 में हुई ना आप दोनों की,
2: में, हाँ दिसंबर में।
1: तो 1-2 महीना बातचीत में फिर आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये आपकी जीवन संगिनी, जीवन साथी बन सकती हैं।
2: बन सकती है जी। नहीं, मेरा एक ये था कि पेरेंट्स एक बार खुद से देख ले, क्योंकि बिना पेरेंट्स के हम आगे नहीं बढ़ते थे, जो भी सोचते थे पेरेंट्स की अनुमति के बगैर हम काम करते नहीं थे। तो उनको आने तक इंतजार किया, आए भी, बातचीत भी हुई, देखे भी, तब फिर आगे बढ़ी बात है।
1: शादी दिल्ली में हुई कि बिहार में हुई?
2: नहीं, शादी तो दिल्ली में हुई थी, हमारा वो चौपाल धर्मशाला है वहाँ, ये फिल्म स्थान यहाँ दिल्ली में ही, वहां पर हमारी शादी हुई। और वही मंदिर है आर्य समाज मंदिर, वहां शादी हुई, और धर्मशाला में हम लोग पार्टी वार्टी थी।
1: लेके जाते हैं बिहार कभी?
2: अभी तो रक्षाबंधन में घूम के आए वहां, चलता
1: अच्छा, अभी घूम के आए हैं, मतलब आना जाना वहां भी लगा हुआ है।
2: रहता है।
1: बहुत बढ़िया। और
2: नेपाल भी
1: वो
2: जाना
1: लोग
2: आना होता है, बिहार भी जाना आना होता है।
1: बहुत बढ़िया, नेपाल और बिहार को दिल्ली ने जोड़ के रखा हुआ है
2: जी,
1: ना? तो
2: लेकिन नेपाल जाना थोड़ा, अब वहां तो वाई यार जाना पड़ता है, तो थोड़ा बिहार इतना तो नहीं जा पाते हैं, पर हाँ जाते रहते हैं, साल में 2 बार तो यात्रा हो जाती नेपाल की।
1: 14 साल हो गए आप लोगों की शादी को, तो कोई मुश्किल, कोई कठिनाई शादी के बाद जीवन में महसूस हुई?
2: नहीं, शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, और हम एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह भी रहते हैं, घर परिवार की तरह भी रहते हैं, मौज मस्ती में है, अच्छी चल रही है।
1: अच्छी चल रही है।
2: हाँ जी,
1: तो आपकी हिम्मत नहीं हुई और इनकी हिम्मत हो गई कुल मिला के, मतलब ये जो ज्यादा श्रेय है वो तो अजंता जी को जाना चाहिए एक तरह से।
2: कह सकते हैं।
1: आप तो सोच के बैठे थे, अब इनका कॉल, ये भी अगर ऐसा सोच लेते मान लो फिर
2: हाँ, तो फिर तो हमें और ढूंढना पड़ता, फिर थोड़ा और टाइम लगता, तो 12 नहीं बल्कि फिर 14 में होता।
1: हाँ। अच्छा परमेश्वर जी, ये बताइए कि शादी के बारे में कभी कोई ऐसी बात आई थी आपके परिवार में, जीवन में, मन में, शादी गांव में करनी है, ब्लाइंड से करनी है, या साइटेड से करनी है, या करनी ही नहीं है, कुछ इस तरह के विचार भी थे क्या मन में कभी?
2: नहीं, ये सब प्लान हम स्कूल में बना लिए थे, कि
1: अच्छा पहले ही, वाह क्या
2: हमें
1: मना
2: शादी पहले,
1: बताएं जरा।
2: हमें जॉब करना है, 2 साल तक हम खुद खाएंगे खिलाएंगे, जितना मौज मस्ती करना हो तब करेंगे, क्योंकि ये मौका परिवार में बनने के बाद नहीं मिलता है, जो अकेले में एंजॉय होता है ना, फैमिली लाइफ में वो नहीं होता है।
1: अच्छा।
2: और वैसा ही हमने किया भी, 10 में हमारी 2010 में जॉब लगी, 2 साल तक हमने खूब खाया पिया, उड़ाया, कुछ सेव भी किया।
1: बचाया नहीं।
2: उसके बाद लगा कि अब जो है,
1: हाँ
2: अब हमारा काम पूरा हो गया है, तो अब परिवार के विषय में भी सोचना चाहिए। फिर हम अपने दोस्तों को इधर उधर बोलने लगे कि अब ढूंढो देखो। और मुझे तो ब्लाइंड से करने का था, मन था, क्योंकि हम ब्लाइंड के विषय में जान चुके थे, लेकिन ये घर वाले का केवल दबाव था कि ब्लाइंड हो कैसे, अगर दोनों ब्लाइंड हो तो कैसे चलेगा, और कैसे चलेगा। और उनका कहने का मतलब ये था कि वो अपने पास देखते नहीं थे ना, क्योंकि हम दिल्ली में रहते थे, वो बिहार में थी, उनको लगता था कि कैसे काम करेगा, कैसे जाएगा आएगा। उन्होंने हम बहुत कन्विंस किया कि नहीं, दिल्ली में अगर हम साइटेड से करते हैं तो कल को क्या कर रही है नहीं कर रही है हमें तो कुछ पता नहीं चलेगा,
1: सही है।
2: तो कल को कुछ हो जाएगा तो फिर हाथ पे हाथ धर के रोते रहोगे, और ब्लाइंड जो है ब्लाइंड की फीलिंग जानता है,
1: बिल्कुल।
2: तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, 2 दिन 4 दिन भाग के जाएंगे, फिर तो आना ही है ब्लाइंड के पास। साइटेड तो अगर जो कर दिया तो कर ही देगा। तो क्योंकि हम और दो तीन घटना हम सुन चुके थे, दिल्ली में देख ही
1: मैं
2: चुके थे।
1: वही पूछने वाला था कि भाई ऐसे केस सुने क्या आपने? जी
2: हाँ जी, मैंने बुराड़ी में सुना था एक दो केस,
1: चलिए चलिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल उसकी चर्चा तो रहने देते हैं अपन, लेकिन
2: हाँ
1: चलिए
2: लेकिन
1: कुछ
2: ठीक है
1: अच्छी
2: जी।
1: बात है। अच्छा, कोई और भी जीवन में किसी और के बारे में भी प्रस्ताव आया था या सीधा बस मैडम के बारे में ही प्रस्ताव आया था
2: नहीं शुरू
1: शादी?
2: शुरू में हमारे दोस्त लोग थे, वो थोड़ा इन सब चीजों में एक्टिव थे पहले से ही,
1: जी
2: शादी वादी तो नहीं, प्यार प्रसंग में थे वो लोग।
1: नहीं, आपके जीवन में सीधा जो आपको आपके दोस्तों ने बताया जनता मैडम के बारे में बताया या कोई और भी किसी के बारे में आपको बताया था कि भाई ये भी है वो भी है ऐसे?
2: हाँ अब हल्का फल्का एक दो लड़कियों से मुलाकात हुई थी पहले, लेकिन जिनसे मुझे नहीं करना था वो मुझे जोर लगाया, लेकिन उसके हुआ नहीं, उसे करना ही नहीं था मुझे, उसमें बहुत सारी कमियां थी। और जिसको जिसको हम चाहे उसकी शादी कहीं और हो गई, इसलिए
1: बहुत बढ़िया।
2: मैंने फिर सोचा जब होगा तब होगा, देखा जाएगा।
1: तो ये सब अजंता मैडम को पता है कि नहीं पता?
2: हाँ, हम जो भी करते हैं ओपनली करते हैं।
1: अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुन रहे हैं आप हमारा ही प्रोग्राम अजंता जी और परमेश्वर जी के साथ। उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बाकी वो तो खैर आपकी प्रतिक्रियाएं बताएंगी। चलिए बातचीत को अब आगे लेकर के चलते हैं। जी अजंता जी, तो ये कब सोच लिया आपने, चलिए मैथ्स पढ़ना और सितार सीखना, आगे की एजुकेशन लेने के लिए इंडिया आ गए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये फिर कब आपने तय कर लिया कि अब रहना तो दिल्ली में ही है, भारत में ही है, वापस नहीं जाना है?
0: हाँ देखिए, कभी कभी ना मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो है चाहते ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो मेरा ना इंडिया में रहने से मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन हर किसी को लगता है ना अपने पेरेंट्स के आसपास रहें, है ना, ताकि हम जल्दी से उनके पास प्रॉब्लम में भी जा सके और वो भी हमारे पास आ सके, खुशी में भी जा सके। बट थोड़ा सा इस बात का दुख मुझे हमेशा से ही है, लेकिन ये सच्चाई भी मैं जानती थी कि बेटर लाइफ अगर जीना है तो हर कोई आजकल ब्लाइंड ही क्यों, साइटेड लोग भी तो अब्रॉड में जाके कर रहे हैं, इधर जाके कर रहे हैं। तो मैं इंडिया में अब सेटल हो जाऊंगी तो एटलीस्ट इंडिया में ब्लाइंड के लिए फैसिलिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, इसीलिए फिर मैंने ये मन में सोच लिया था कि नहीं मैं यहीं पे करूंगी। और जहां तक रही बात शादी की, तो मुझे पता था कि इंडिया में लड़के ज्यादा मिल जाएंगे, मतलब नेपाल के कंपेरिजन में ब्लाइंड
1: बिल्कुल।
0: लड़के मिल जाएंगे। तो फिर बस वही था मेरे मन में, और मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, नो डाउट। मेरा ससुराल सच बताऊं तो मेरा दूसरा मायका है, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, और दीदी जो इनकी हैं दोनों बहुत अच्छी, मतलब फैमिली मेरे को एकदम अच्छी मिली है। इनके मन के साथ साथ अच्छी फैमिली भी ब्लेस की है गॉड ने मेरे को।
1: नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई ये फैसला आपने कब कर लिया था कि मुझे अब वापस नेपाल जाना नहीं है। आपने बताया कि जाने का मन तो था पूरी कि भाई अब तो यार इंडिया में ही रहते हैं चलो, ये कब तय हो गया था, जब आपकी जॉब लगी तब हुआ था या उससे पहले ही ये तय हो गया
2: नहीं,
1: था?
2: थोड़ा सा उसके बाद जॉब लगी और मैंने फिर भी सिचुएशन देखे लोगों को करते हुए, और यहाँ पे मतलब नेपाल से और भी मेरे सीनियर, एक मैं आई हूँ डॉक्टर श्वेता सिंह है, एक विजुअली इम्पेयर्ड, उनकी मम्मी की वजह से, मतलब श्वेता दीदी मेरी नेपाल में सीनियर रही हैं।
1: असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शायद वे, है ना?
2: हाँ नहीं, प्रोफेसर नहीं, वो रीजनल असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं।
1: डायरेक्टर हैं इग्नू में, है ना?
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही।
1: जी
2: हाँ तो उन्हीं की हेल्प से मैं यहाँ आई हूँ, और उसमें आंटी ने बहुत हेल्प की मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने में, कि समझाने में कि भेज दो कुछ नहीं होगा ये वो। पहले थोड़ा पेरेंट्स को लगता है मैं अकेली बेटी हूँ, मेरा एक भाई है बस, हम दो भाई बहन हैं।
1: जी
2: तो पेरेंट्स की बचपन से ही मैं बहुत ही एकदम क्या बताऊँ, मतलब लाडली बोलते हैं ना हिंदी में, एकदम एडोरेबल चाइल्ड हूँ।
1: बिल्कुल
2: उन्होंने
1: बिल्कुल
2: हाँ मुझे प्यार भी उतना ही दिया, सब कुछ दिया, मतलब मेरे को बैरियर मेरी लाइफ में कोई सी भी चीज को बनने नहीं दिया, तो उनको लग रहा था। बट आंटी ने बहुत कन्विंस किया कि नहीं जाने दो कुछ नहीं होगा, चलो आप लोग। फिर मैं आई यहाँ पे इंडिया, तो मतलब तब तो था कि नेपाल वापस जाना है, लेकिन फिर जॉब लगने के बाद देखा अरे छोड़ो यहीं रहते हैं यहीं पे। और मतलब सब फ्रेंड्स भी मेरे यहाँ बन गए, अच्छी अच्छी मेरी सब फ्रेंड्स हैं, स्कूल की फ्रेंड्स भी हैं और बाकी लोग, क्योंकि मेरा ना मिजाज ही ऐसा है, मतलब मेरा नेचर फ्रेंडली है तो तुरंत दोस्त बना लेती हूँ मैं। हाँ लेकिन ये जरूर है कि मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स वही हैं
0: जो कि मतलब पॉजिटिविटी को लेके चलते हैं। अगर किसी में नेगेटिविटी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी नेगेटिविटी को मार सकूं।

0: अगर नेगेटिविटी
1: वो
0: को मैं किल नहीं कर पाती हूँ उसकी, तो फिर उसे हाय हेलो तक ही मैं सीमित रहती हूँ।
1: अच्छा, बहुत खूब। अच्छा अजंता जी, बताइए मुझे कि देखिए काम तो लगभग सबके जीवन में ही है ना,
0: हाँ
1: और अपने अपने तरीके से हम लोग वक्त निकाल लेते हैं सारी चीजों के लिए, सारी चीजें हम मैनेज भी करते हैं, लेकिन
0: हाँ
1: कभी
0: जी
1: कभी कोई मामले आपसे, जब अभी आपने बात की निराशा की है ना, तो कभी आप जब अकेले में सोचते हैं या कभी वक्त मिलता है खुद से जब बात करते हैं, तो क्या आपको भी किसी बात का दुख होता है या कोई निराशा आप पर हावी होती है या कोई चीज है ऐसी जो आपको परेशान करती है?
0: देखो, जो रियलिटी है ना वो ये है कि मैं, जब सच बताऊं आपको भी हंसी आई और श्रोताओं को भी, मैं ना सबसे ज्यादा निराश तब होती हूँ जब मैं बस का वेट कर रही हूँ और मेरे को थोड़ा बहुत विजन है, तो जैसे मैं एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज हेल्प मी टू टेक दिस बस बोल रही हूँ और लोग धीरे धीरे पीछे सरक रहे हो, एकदम से नहीं सरकते, जैसे धीरे धीरे करके ना स्टेप बाय स्टेप पीछे हटते हैं, कुछ नहीं बोलते, एकदम क्वाइट से पीछे हटते हैं। और फिर मुझे लगता है कि यार मैं ब्लाइंड नहीं होती ना तो ये चीज नहीं देखने को मिलता आज, है ना। मेरे को ब्लाइंडनेस कभी, मेरे मतलब बुरा नहीं लगता है, मुझे सिर्फ बुरा लगता है कब, जब लोग आंखों के सामने सामने ना डिच करना चाहते हैं। जैसे कभी कभी वर्क प्लेस में मैं देखती हूँ कि लोग इशारे में कई चीजें बोल जाते हैं, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है कि कुछ ऐसे मेरे कलीग्स होंगे जो कि इशारों इशारों में ही बहुत कुछ मेरे से, मतलब चुप चुप, अरे छोड़ो, रहने दो, मत बचाओ टाइप के इशारे करते हैं, है ना। तो मेरे को इतना नहीं दिखता, लेकिन मेरे साथ वाले अगर देख के मुझे बताते तो मुझे लगता हाँ ये है, अगर मैं ब्लाइंड नहीं होती तो ऐसा होता। बाकी तो निराशा मेरी लाइफ में है नहीं, मैं निराशा को भी तुरंत हटा, डिलीट करने में बिलीव रखती हूँ, और निराश होना तो लाइफ में है नहीं ना। देखो चैलेंज है, चैलेंज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो।
1: जी, तो जब आप दोनों बैठे होते हैं तो फिर किस तरह की चर्चाएं होती हैं?
0: हम लोगों में ज्यादातर तो कभी न्यूज को लेके होती है, कभी किसी प्लेस को लेके होती है, कभी अपनी फैमिली के, दोनों की फैमिली के बारे में भी बातचीत होती है, और फिर कभी ये भी बात होती है कि चलो अब ऐसा करना है वैसा करना है, फ्यूचर के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। और कभी कभी फिर ये भी होता है कि जैसे हमने ये नहीं किया, है ना, मतलब हर तरह की बातें होती है हम लोगों में।
1: अच्छा, आपने तो ब्लाइंड फील्ड के सारे तौर तरीके इंडिया में ही आके सीखे होंगे मेरे ख्याल में, है ना?
0: सॉरी,
1: आपने जैसे ब्लाइंड फील्ड में कैसे एडजस्ट होना है, क्या सीखना है, ये सारी चीजें तो आपने इंडिया में आके ही सीखी होंगी ना?
0: रियली रियली यू कैन से, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ ना नेपाल में, वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन था, और मैं हॉस्टल में भी नहीं रहती थी, मैं डे स्कॉलर थी। सुबह 35 to 40 minutes का मेरा ट्रैवल होता था बस से, स्कूल बस से, तो मैं हॉस्टल में मतलब ब्लाइंड लोगों के साथ ज्यादा रह, मतलब क्लास में ही जो ब्लाइंड फ्रेंड्स थे वो होते थे, हॉस्टल के लोगों से मैं बातचीत करती थी, मिलती भी थी, पिकनिक वगैरह भी स्कूल ले जाता था तो तब मिलते थे, बट सही तरीके, सही मतलब एक जो रियलिटी है कि ब्लाइंड के साथ कैसा लगता है, वो मैंने यही इंडिया में आके ही सीखा है।
1: यही आके सीखा है ना?
0: यस
1: तो घर में जो जैसे कामकाज नॉर्मल जो होते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाना, ये सब, तो ये सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं कि सर भी कुछ कुछ संभाल लेते हैं चीजें?
0: अरे ये बहुत संभालते हैं, ही इज वेरी गुड कुक, ही इज
1: अच्छा
0: वेरी गुड इलेक्ट्रीशियन, इनके अंदर तो बहुत टैलेंट है। हमारे घर
1: अच्छा
0: में हाँ छोटे मोटे बल्ब लगाने हो, ट्यूब लगानी हो, या फिर फैन गंदा होता है तो खोलना है, फिर उसको धो धा के वापस लगाना, परमेश्वर जी के अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं। कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, इन्होंने मुझे कुछ चीजें बनाना भी सिखाया है, जैसे कढ़ी, कढ़ी ना मुझे खाना पसंद था ना बनाना, इन्होंने मुझे खाना भी सिखा दिया और बनाना भी सिखा दिया, और भी बहुत
1: वाह,
0: सारी चीजें हैं। जब
1: क्या
0: ये
1: बात।
0: कभी हाँ चाय बनाते हैं, मैं जब घर आती हूँ इनके हाथ की चाय पीती हूँ ना, तो सारी मेरी थकान जो है खत्म हो जाती है, मैं एकदम रिचार्ज हो जाती हूँ।
1: ये तो मैडम हर पत्नी का है ना, चाहे मतलब चाय अच्छी भी ना हो तो भी पति के हाथ की मिल जाए तो फिर, ये तो मेरे ख्याल से ज्यादातर घरों में होता होगा ये तो।
0: हो सकता है, लेकिन मेरा तो मतलब मुझे तो मजा आता है इनके।
1: ये तो मजाक की बात रही, लेकिन वाकई में आप जब इतना कह रहे हैं तो परमेश्वर जी बनाते ही होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है रोज की ड्यूटी इन्हीं की लगा रखी है आपने?
0: नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है,
1: जी
0: हम लोग मिल के करते हैं सब कुछ,
1: जी
0: है ना। हाँ, और हमारी एक आप कह सकते हैं एडॉप्शन हमने लीगली तो नहीं की है, हमारी फैमिली से ही है। परमेश्वर जी की तीन
1: जी
0: सिस्टर है, तो बीच वाली सिस्टर की डॉटर है, उसको अब
1: जी
0: हमने अपना बेबी बना लिया है। 12th में
1: क्या
0: पढ़ती है अभी।
1: वाह,
0: हाँ,
1: वो
0: 12th
1: आप
0: में
1: दोनों
0: पढ़ती है
1: के साथ पूरा एकदम एडजस्ट हो गई है?
0: एकदम। अब वो वापस उन लोगों के पास जाना ही नहीं चाहते, हम जाते हैं तभी जाती है वो बिहार,
1: सालों से
0: नहीं
1: है
0: तो नहीं।
1: आपके?
0: 2013 में नवंबर से हमारे साथ है।
1: वाह, बहुत खूब, ये बहुत नेक काम किया है
0: हाँ,
1: आपने।
0: छोटी सी थी तो मैंने ऐसे खेल खेलने वाला, रहोगी हमारे साथ, बोली हाँ। तब उसको मगी आती थी, मुझे हिंदी कम्युनिकेशन भी इतने अच्छे से नहीं होती थी, पर हाँ टूटी फूटी मैं भी मगी समझती थी और थोड़ी बहुत वो भी हिंदी। और मामा जी तो थे ही साथ में, मेरे मदर इन लॉ वगैरह आए थे। तब हमें नेपाल जाना था, पहला दशहरा था शादी के बाद ना, तो हम नेपाल जा रहे थे, तो मम्मी
1: जी
0: लोग आए थे, तो दीदी भी आई थी, वो बेबी भी आई थी। तो फिर
1: जी
0: मैंने उसको ऐसे ही खेल खेल में बोला, तो इसने बोला हाँ मैं रहूंगी। अब दीदी जब जाने लगी तो उसके कपड़े वगैरह पैक करने लगी, तो जोर से रोने लगी, क्योंकि
1: अच्छा।
0: उसको उम्मीद थी कि मामी रोक लेगी। और तब से वो हमारे साथ है, और मेरे लिए मेरी मतलब जो संतान कहना चाहिए वो यही है, मतलब हम
1: वाह,
0: दोनों
1: बहुत
0: के लिए।
1: बहुत खूब। तो मतलब कुल मिला के आप दोनों का जीवन उसको भी संभालने में और पालने में और बड़ा करने में एक तरह से
0: बिल्कुल
1: बीत रहा है ना?
0: बिल्कुल
1: ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर जी,
0: यस
1: काफी कुछ तारीफ कर दी अजंता जी ने आपकी है।
0: जी सर।
1: तो ये क्या आपको शौकी शौक था या आपने ये मजबूरी में सीखा सब?
0: नहीं, मेरा शौक है, क्योंकि मैं बचपन से ही रेडियो सुनना, टीवी देखना बहुत पहले से ही है। तो
1: नहीं, कुकिंग
0: कुकिंग
1: वगैरह करना खासकर?
0: वगैरह, कुकिंग वगैरह में क्या हुआ कि मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट है होम साइंस, तो होम साइंस वहाँ अनिवार्य है, लेना पड़ता है, तो 9th से। तो होम साइंस में मुझे इंटरेस्ट था, वहाँ थ्योरी थ्योरी प्रैक्टिकल वगैरह सब कराते हैं बढ़िया से, इस वजह से हमने सीख लिया। तो अशोक भी था,
1: अच्छा।
0: हम लोग सारा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। अब गड़बड़ी कुछ हो गए घर में तो मैकेनिक को बुलाओ, या अभी तो हम गवर्नमेंट फ्लैट में हैं तो कंप्लेन करो कब आएगा नहीं आएगा। मुझे सारे काम आते हैं, मतलब लाइट इंजीनियर से लेकर इलेक्ट्रिशियन, प्रेस करना, सिलाई करना।
1: ये बहुत सारे लोगों का एक एक जिज्ञासा रहती है परमेश्वर जी, कि ब्लाइंड व्यक्ति मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कामकाज कैसे कर लेता है, तो थोड़ा आप
0: हाँ,
1: समझा पाएं तो कुछ लोगों
0: एक
1: को
0: बार
1: हो
0: मैं
1: सकता
0: घर में,
1: जैसा
0: एक
1: हो
0: बार मेरी
1: मदद।
0: मम्मी बोली, उनको कुछ सिलना था, तो बोले सुई में धागा डालना है, मुझे थोड़ा कम दिख नहीं रहा है, बड़े लोग को थोड़ा हो रहा है ना कि आँख कम दिखता है, तो थोड़ा एजेड होने के बाद, तो मैं कहा दिखाओ मुझे। मैं डाल रहा था, हमारे अगल बगल जितने भी पड़ोसी थे छत पर से देख रहे थे, मैं वही पकड़ा और डाल के दे दिया। अब उन लोग सोचने लगे कि भाई कैसे डाल दिया, तो बिना हाथ से ही कुछ लिए, बिना हाथ से कैसे डाल दिया। हम लोग को देख रहा है, दो दो आंख फिर भी नहीं डाल पा रहे, ये तो बिना देखे हाथ से, कोई भी सुई हो मैं हाथ से डाल के धागा सिलाई करता हूँ,
1: जी,
0: कोई नीडल नहीं, कोई थ्रेडर नहीं, हाथ से
1: हम
0: ही।
1: पूछ रहे थे जो लाइट संबंधित बिजली संबंधित जो कामकाज हैं
0: जी
1: वो आप कर लेते हैं, तो कभी करंट वरेंट आने का डर नहीं लगता है?
0: हाँ, पहले एक दो बार करंट खाए हैं, तब से यह सबक मिल गया कि हमें पहले उधर से पहले लाइट काट के करना है,
1: अच्छा, तो वो सब कुछ आप कर लेते हैं, काटना, जोड़ना, लगाना, सब?
0: सब कर लेते।
1: बहुत अच्छी बात
0: अगर
1: है।
0: देखना पड़ता है कि पहले हमारे यहाँ वायरिंग कैसी है, तो वहां से हम लाइट को पहले डिस्कनेक्ट करके ही करते हैं। कई जगह वायरिंग ठीक नहीं होता, तो इधर से लाइट आ रही है, उधर से लाइट आ रही है, इधर हाथ फंस जाए, तो ये सब का ध्यान रखना
1: थोड़ा
0: पड़ता है।
1: थोड़ा बहुत आपको शायद दिखाई भी देता है ना?
0: लाइट वाइट थोड़ा दिखता है, मतलब मुझे 2012 तक भी थोड़ा बहुत दिखा है, धीरे धीरे रोशनी चली गई, अब तो लगभग केवल लाइट दिखता है बस। दिन रात का बस अभी पता लग जाता है कि दिन है रात। थोड़ा पहले सब कुछ मैंने देखा है, दुनिया पूरी, तो कभी कभी लगता है कि हाँ, अब जो वो लोग नहीं देखे होंगे उनको तो कोई बात ही नहीं है, हमने देख रखा है सब कुछ। तो कभी कभी मन के अंदर आ जाता है उसका तस्वीर कि 500 का नोट ऐसा है तो ऐसा होगा, इस तरह होगा।
1: पुरानी बातें याद आ जाती हैं।
0: हाँ,
1: अच्छा,
2: तो अब हमने ब्लाइंडनेस

0: बहुत बढ़िया। कब दिल्ली आ गए, कब अपने लिए लड़की पसंद कर ली चलिए, बहुत खूब, आप दोनों से मजा आया बात करके। तो
1: और हम
0: श्रोताओं
1: लोग, हमें भी मजा आया बोला।
0: जी, आपने सुना हमराही कार्यक्रम में अजंता जी और परमेश्वर जी को, तो अब लगभग कार्यक्रम के अंत में हैं हम लोग। परमेश्वर जी, कुछ सुनने वालों को कहना चाहते हैं आप अपनी ओर से?
1: मैं यही कहूंगा कि अपने आप को ब्लाइंड ना समझे, और जो ब्लाइंड है और डिपेंडेंट ना रहे किसी पर, प्रयास करें, आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा।
0: वाह, जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा, ये परमेश्वर प्रसाद जी का कहना है। जी अजंता जी, आप भी अपनी
1: जी
0: जिंदगी के कुछ अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ चाहें तो साझा कर सकते हैं, जो भी देखा है, समझा है, जाना है दृष्टिबाधित समाज के बारे में। जी
1: बिल्कुल। देखो, मैं ये कहूंगी कि ब्लाइंडनेस को लेके ना, सबसे पहले तो अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करो, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे वो लेट ब्लाइंडनेस आई हो। एक्सेप्टेंस जहाँ होती है ना, फिर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी बात, पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चे को आप बेचारा मत समझो, बेचारा, अरे क्या होगा। वो कोई बेचारा नहीं होता, वो भी बहुत बदमाशियां करता है, बहुत चीजें सीखता है, बहुत अच्छा होता है, पर बेचारा नहीं होता है ना। अपने बच्चे को और बच्चों की तरह समझो, और उसको बस चांस दो कि वो चीजें करे। उसको घर में मत बिठाओ, कोने में मत रखो, और अपने जैसे लोगों को बस ये, मैं यही कहूंगी कि काम से मत घबराओ, काम पकड़ो और काम करो। लाइफ में काम करने में बहुत मजा है, और मस्त रहो।
0: क्या बात है, मस्त रहो, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजंता जी और परमेश्वर जी, आप दोनों का प्रोग्राम के लिए, वक्त निकालने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें साझा करने के लिए। जी
1: हाँ, आपको भी और रिकॉर्डिंग क्लब को, पूरी टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम भी लोगों से जुड़े। कभी हम भी औरों की सुनते थे और लोग हमें सुनेंगे।
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये हमराही प्रोग्राम का काम यही है।
1: मुझे रिकॉर्डिंग क्लब के लिए मुझे ये कहना है कि मैं आपका सारा मैसेज सुनता हूँ, तो मुझे कभी लगा कि एक बार कंट्रीब्यूशन के बाद हो रही थी, तो
0: जी
1: मैंने भी कोशिश सोचा कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन मैं
0: जी
1: जान पहचान था नहीं किसी से, तो मैं कंट्रीब्यूशन दूँ किसको दूँ, किसे कहूँ।
0: जी
1: मैं केवल मैसेज सुन के रह गया, लेकिन मुझे मेरा भी इच्छा था कि आप लोग के साथ जुड़कर मैं भी योगदान करूँ।
0: जी
1: आपका
0: बहुत
1: कार्यक्रम बढ़िया है, बहुत
0: करेंगे,
1: सारे कार्यक्रम मुझे अच्छा लगा, मैं सुनता रहता हूँ।
0: जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत बहुत खूब। बस ऐसे ही अब बातचीत हो गई है तो जुड़ गए हम सब आपस में,
1: हाँ
0: और श्रोताओं यही बस रिकॉर्डिंग क्लब ऐसे ही चलता है हमारा, लेकिन फिलहाल ये रेडियो मधुबन का कार्यक्रम है हमराही, और हमराही कार्यक्रम भी आप लोग सुनते होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप दोनों ने भी सुने होंगे हमराही कार्यक्रम तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुने हैं। और रेडियो मधुबन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारा ही प्रोग्राम चला के, मतलब उन लोगों ने और लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। कई लोग अभी सोचते हैं शादी कैसे होगी, जैसे मेरे में तो हर यंगस्टर्स के साथ जुड़ी हूँ, वो कॉलेज वाले बच्चे हों, स्कूल वाले, तो
0: जी
1: मैं उन्हें भी कहती हूँ कि तुम लोग ना कभी मौका मिले रेडियो मधुबन का हमारा ही सुनना, मजा आएगा तुम्हें, बहुत
0: ये
1: एक्सपीरियंस मिलेगा।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। तो चलिए परमेश्वर जी, अजंता मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इस कार्यक्रम के लिए, वक्त निकालने के लिए हमारे साथ, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। श्रोताओं
1: हाँ,
0: जी
1: तो हमारी तरफ से भी आपको, टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक स्पेशल धन्यवाद मैं यहाँ हसीबा को करूंगी। हसीबा मेरी स्टूडेंट रही है नैब इंडिया सेंटर की, और उसी ने मुझसे पहले कहा था कि मैम आप जुड़ोगे, मतलब आओगे, इंटरव्यू दोगे। तो मुझे भी शुरू में लगा कि बात करना चाहिए, लेकिन जो क्रेडिट है ना, मतलब हम तीनों को मिलाने का इस प्रोग्राम के जरिए, उसमें हसीबा का भी हाथ है, तो हसीबा को भी बहुत बड़ा थैंक्स।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। और एक बात और, आप में से भी कोई भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके।

0: करते हैं आप दोनों में से, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों में से कोई भी एक बस केवल दिव्यांग होना चाहिए, तो फिर आपकी भी कहानी हमराही के माध्यम से दुनिया तक लाने का वादा हमारा रहा। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ, तब तक रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ 1 घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से 1 घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो 1 घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: जी नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह हम लोग ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सुना जो खास डाइट पर था और कैसे हम गर्मी को मत दे सकते हैं यानी गर्मी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर जूसेस के बारे में आपको बताया गया और वो भी आसानी से आप घर में निकाल सकते हैं और जिसका आनंद लेकर आप गर्मी को विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा कुल कुल रह सकते हैं। तो आज हम लोग अब बात करेंगे, डॉक्टर संगीत राजवंशी जी हमारे साथ है जिनसे खास इस विषय को लेकर बात करेंगे। वो विषय है इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी मेडिटेशन आप करते हैं तो उसका असर हमारे शरीर पर और मन पर कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर संगीत राजवंशी जी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं?
1: ठीक है, ओम शांति।
0: ओम शांति। आइए, डॉक्टर संगीत राजवंशी सर जो हैं डेंटिस्ट भी हैं, प्रैक्टिस करते हैं, संगीत के प्रेमी भी हैं, गीत भी गुनगुनाते हैं, गाते भी हैं और साथ ही साथ रिसर्च जो होते हैं या मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस वो कर रहे हैं उसका क्या क्या हमारे ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च होता है या इफेक्ट होता है उसके बारे में भी उन्होंने स्टडी शुरू की है और जिसका अनुभव आज हमारे साथ साझा करने वाले। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं?
1: सब कुशल मंगल है, सब अच्छा है, सब प्रभु की
0: जी जी हैप्पी संडे। और मैं चाहूंगा कि आज जिस विषय को लेकर आपको ये थॉट कैसे है कि आज हम लोग इस विषय को लेकर बात करेंगे। जी,
1: एक साल पहले मैं इस ज्ञान से जुड़ा था कुमारी इसके
0: जी,
1: और उसमें फिर इस पे एम्फेसिस देते थे कि आप योग करो, राजयोग करो, राजयोग मतलब मेडिटेशन करना है भगवान को, बाबा को याद करके, और उससे आप लोगों को शांति मिलेगी, आप लोगों के अंदर बहुत चेंजेस आएंगे, जो डेफिनेटली हमने काफ़ी महसूस किया इस चीज़ को। और उसके बाद फिर मैंने कुछ स्टडी पेपर्स वगैरह देखे नेट पे, उसको थोड़ा अध्ययन किया और तभी दिमाग में मेरी ये चीज़ आई कि इस चीज़ को हम शेयर कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि कैसे हम लोग अभी जैसे कि मेडिटेशन की शुरू शुरू में प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो इतना तो कुछ ये नहीं चलता कि हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारे साथ में, तो धीरे धीरे हमें जो है उसके आंतरिक हमारे स्वभाव में हमारे विचारों में बदलाव आता है तो निश्चित तौर पर तभी हमें लगता है कि कुछ हुआ है और अच्छा है तो लोग टिके रहते हैं उसमें। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आते जरूर हैं लेकिन उन्हें कुछ असर नहीं होता है, शायद उनके लिए थोड़ा टाइम लंबा लगता है। तो मैं चाहूंगा कि ये दो फेजेस में आपके विचार क्या है जरा शेयरिंग की।
1: सबसे पहले तो देखिए मेडिटेशन है क्या? है क्या सिर्फ मेडिटेशन?
0: बिल्कुल,
1: मेडिटेशन है किसी से जुड़ना या उस चीज पे ध्यान लगाना, ठीक है
0: जी, जी।
1: और बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पर, पहले पुराने टाइम में भी था, जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे सबके अपने अलग अलग टाइप के मेडिटेशन होते थे। कोई लोग अपने श्वास सांस लेने पे, आप लोग इस पे मेडिटेट करते हैं, उस पे ध्यान लगाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और अब जैसे ब्रह्मा कुमारीज में है कि आपको ध्यान लगाना है भगवान से, आपको डायरेक्ट अब जुड़ना है भगवान से, तो इस मेडिटेशन को, योग को वो बोलते थे राजयोग, ठीक है। तो आप ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके अंदर चेंजेस आएंगे, मेंटली मेंटल रूप में भी चेंजेस आएंगे, शारीरिक रूप में भी चेंजेस आपके अंदर आएंगे। आप और ये जो चेंजेस हैं ये ओवरनाइट नहीं है, ये जो चेंजेस हैं वो आप फील करेंगे कुछ समय के अंतराल के बाद, थोड़ा टाइम लगता है इस चीज में, ठीक है। और इसमें जो बेसिक है, जो बेसिक आप लोगों को लाभ मिलता है, सबको लाभ मिलता है मेडिटेशन से, एक तो है आपका सेल्फ अवेयरनेस है, आत्म जागरूकता, आप अपने को अच्छी तरह से जान सकते हो, अपने सराउंडिंग्स को अच्छे से पहचान सकते हो जितना आप करेंगे इसको। एक आपका है आप जो प्रेजेंट है, जो आपका वर्तमान है, इस पे आपको आपका फोकस बढ़ जाता है जितना मेडिटेट करेंगे। अगर इस पे आपका फोकस बढ़ेगा तो आपकी एकाग्रता, जो आपकी कंसंट्रेशन है, उसकी जो आपकी लेवल है वो आपकी एनहांस कर जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना आप मेडिटेट करेंगे, जो आपके इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं आपके, वो
0: जी
1: सप्रेस
0: जी
1: करेंगे, वो नीचे आएंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी उभर के आएगी, काफी अच्छी पॉजिटिविटी, काफी आपके जो थॉट्स हैं वो काफी पॉजिटिव होंगे। आप सब जगह पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकते हैं इस पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक है, इमेजिनेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपकी बहुत बढ़ती है इसमें। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन, जितना आप कॉन्सेंट्रेट करोगे उतना आप इमेजिन कर सकते हो चीजों को। ये दोनों वाइस वर्सा है दोनों, या जितना आप इमेजिन करोगे कोई भी चीज उतना ही आप कॉन्सेंट्रेट होके कर सकते हो। टॉलरेंस है आपकी, पेशेंस है वो आपकी बढ़ जाएगी। जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसको मैनेज कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप मेडिटेशन
0: जी।
1: अच्छा बना सकते हैं आप लोग।
0: डॉक्टर संगीत राघवंशी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, अब इनिशियली हमें जब इन सारी चीजों को, मेडिटेशन को कैसे शुरू किया जाए, किस तरह से, क्या विधि है, कितने दिन के बाद हमें जो है इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है?
1: देखिए, मेडिटेशन के दो हैं। एक तो कुछ लोग बताते हैं कि आपको आंख बंद करके मेडिटेशन करना है, कहीं है कि आप आंख खोल के करोगे। आंख अगर आप बंद करते हो तो आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी। ठीक है, जिस चीज पे आपको फोकस करना है सिर्फ आपको वो चीज दिखाई देगा, बाकी आप हर एक से कट ऑफ हो जाओगे। और आंख खोल के करने का ये मतलब हो गया कि आप सराउंडिंग्स के बीच में हो आप, और आपको सब पता है सब सराउंडिंग में क्या है। लेकिन उसके होते हुए भी अगर आप मेडिटेट करते हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत काफी जबरदस्त है आंख खोल के करने में।
0: बिल्कुल
1: ठीक
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: और जो इस पे चेंजेस आते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये ओवरनाइट चेंजेस नहीं आएंगे कभी भी, इसमें टाइम लगता है। कोई भी चीज है आपने कई साल तक नहीं की, अगर आपने कोई चीज स्टार्ट की है तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। ये ओवरनाइट आप नहीं कर सकते इसको, कोई भी चीज अचीव नहीं हो सकती ओवर टाइम। आप मेहनत भी करते हो, आप स्टडीज करते हो, पढ़ाई भी करते हो, तो ओवरनाइट पढ़ाई करके तो यू कैन नॉट क्रैक मार्क्स। ठीक है, और अगर आप उसको थ्रू आउट द ईयर और काफी लंबा अगर आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तभी आप उस चीज को अचीव कर सकते हो, अपने टारगेट को। ये चीज मेडिटेशन के लिए है। और जहां तक हमारे बॉडी में आपका इसका सिस्टम में इसका प्रभाव है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जैसे आपका तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उस पे इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। आपका हार्ट से रिलेटेड होता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, या रेस्पिरेटरी श्वास वाला सिस्टम है आपका, या रीनल किडनी रिलेटेड है, या जीआई ट्रैक्ट है, जो भोजन की नली वगैरह जो भी है आपका। इन सब में मेडिटेशन का काफी ज्यादा प्रभाव होता है। जितना मेडिटेट करेंगे उतना अच्छा प्रभाव इसमें होगा। इसमें मैं एक एक करके आप लोगों को बता सकता हूं। जैसे
0: जी
1: नर्वस सिस्टम ले लेते हैं, सपोज हम पहले
0: हाँ
1: जो भी
0: जी
1: आपका नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में जो ब्रॉडली डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं ये। और एक जो सेंट्रल है उसमें आपका ब्रेन आ गया, मस्तिष्क, और एक स्पाइनल कॉर्ड आ गया जो पीछे की रीढ़ की हड्डी के साथ ट्रेवल करती है, स्पाइनल कॉर्ड। और जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना ब्रेन भी शांत होता है। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है, किस तरह से होता है, आगे चलता हूं। और जो पेरिफेरल है उसमें दो टाइप्स बन जाते हैं आपके, सिंपैथेटिक है और एक पैरासिंपैथेटिक है। इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं आप बताना चाहता हूँ। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा नॉन मेडिकल्स के लिए ये चीज, लेकिन ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, सपोज हमारे को कोई खतरा होता है, डेंजर होता है, उस केस में जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है। अगर कोई भी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा तो उससे हमारा जो मन है अशांत होगा, हम स्ट्रेस में आएंगे। और मेडिटेशन से क्या होता है, जो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सप्रेस कर जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। एक्चुअल टर्म इसका डीएक्टिवेट है, सप्रेस नहीं है, डीएक्टिवेट कर जाता है। अगर डीएक्टिवेट करेगा तो इसका मतलब है कि कोई स्ट्रेस हार्मोन्स वगैरह कोई रिलीज नहीं हो रहे, उसके जो जो भी रिलीज होना है वो बहुत कम हो गया। उस केस में आपका जो डिप्रेशन से है, आपके स्ट्रेस एंग्जाइटी है या इमोशनल एक्टिविटीज हैं वो काफी ज्यादा सप्रेस हो जाती है। और एक चीज और इसके अंदर, जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैसेस फॉर्म में होता है, वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो आपके पूरे बॉडी में आपको एक अच्छा इफेक्ट लाता है। अब जैसे नर्वस सिस्टम में ही है आपका, जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपका एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का मतलब है कि जो आपकी मैसेजेस है, जो मैसेज होता है, जो आपके सपोज हमारे हाथ में सुई चुभ जाती है तो
0: हाँ
1: उसका
0: जी,
1: जो भी मैसेज है वो ब्रेन में जाता है और ब्रेन उसको एक्ट करता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको हाथ को हटा देना चाहिए उस जगह से। ठीक है, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स बेसिकली होते हैं, वो इसको ये एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर भी एक्ट करता है। ठीक है, और सेकेंडली और है कि आपका जो जितना मेडिटेट करेंगे बेसिकली उतना ही ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। और उससे क्या होता है, जो आपका सेरेब्रल ब्लड फ्लो है, मतलब ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, जो आपका मस्तिष्क है उसमें जो आपका रक्त का फ्लो है वो बढ़ जाता है। और अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो उतना ही ऑक्सीजन हमारे को ब्रेन को मिलेगी, तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो शांत रहेगा।

0: एक्टिव रहेगा, पोषित रहेगा। ये है हमारा जो मेडिटेशन से जो हमारा नर्वस सिस्टम है,
1: जी
0: ठीक है ना, वो इस तरह से एक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा रोल है इसका। अब पहले क्या था, अभी भी लोग बोलते हैं कि नॉर्मली क्या है कि हम ये खाते हैं आपका गार्लिक वगैरह लेते हैं सपोज,
1: जी जी जी
0: तो उसका इफेक्ट होता है कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं या कोलेस्ट्रॉल है ये आपका डाउन आ जाता है, ठीक है। तो ये क्यों खाएं, मतलब इसको सॉरी ये क्यों छोड़ दें, ये खाएंगे
1: हाँ,
0: तो
1: ये क्यों छोड़ दें, ऐसे कई लोग पूछते हैं,
0: रहेगा।
1: और ये
0: हाँ,
1: मेडिसिनल इफेक्ट
0: इसको
1: देखना है तो क्यों छोड़ें।
0: जी, इनको ये नहीं, इस चीज की नॉलेज नहीं है कि मेडिटेशन से ये चीजें अपने आप ही कम हो जाती हैं, ठीक
1: अच्छा
0: है जी। अब ये इसको ये आपका जो आता है, ये आता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो आपका हार्ट वाला सिस्टम है।
1: जी,
0: मेडिटेशन से आपको मैंने क्या बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है।
1: हम्म,
0: ये जो रिलीज होता है इसका सबसे बड़ा काम होता है जो आपकी रक्त की नसें हैं, धमनियां वगैरह होती हैं या ब्लड वेसल्स हैं, ये उनको फैला देता है, वाइड कर देता है, मतलब उसको डायलेट कर देता है। अगर ये डायलेट करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, नीचे आएगा ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर इसमें आपके प्रेशर नहीं पड़ेगा, जो आपके रक्त कैपिलरीज हैं, आपके ब्लड वेसल्स हैं, तो आपका जो एंजाइना है या पेन है, ठीक है, ये आपका कम हो जाएगा।
1: बिल्कुल
0: और अगर ये आपका डायरेक्ट करेगा, वाइड होंगे आपके जो आपकी आर्टरीज हैं, तो उससे क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह अंदर है वो भी नहीं होंगे, बहुत कम हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो
1: बिल्कुल,
0: अगर हम मेडिटेट करते हैं तो आपको इन चीजों को खाने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज की। द मोर यू मेडिटेट द मोर यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। और एक
1: बिल्कुल
0: चीज और भी है इसमें, जो इसमें जो एग्रीगेशन प्लेटलेट बेसिकली आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक थक्का बन जाता है जिसको थ्रोम्बोस बोलते हैं। तो ये इस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी कम करता है। अगर ये कम करेगा तो आपको अंदर ब्लड में कोई आपका कोई जमाव नहीं होगा। जैसे जब जमाव हो जाता है तो हम किस में जाते हैं, हम एंजियोप्लास्टी कराते हैं अपनी, तो ये चीजें आपकी काफी रिड्यूस हो जाती हैं आपकी मेडिटेशन से।
1: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये तो मेडिसिनल यूज़ के लिए हम लोग लेते हैं तो इसे तो लेना ही चाहिए। तो आपने इसको क्लियर किया कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ऑलरेडी उसका इफेक्ट जो है, जिस तरह से इन चीज़ों को करने से हो जाता है खाने से, तो वो ऑलरेडी आपको मेडिटेशन से उसका बेनिफिट मिल जाता है, तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप खुद भी मेडिटेशन 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप में एज ए डॉक्टर क्या प्रॉब्लम थी, मतलब किस तरह की सोच थी, और आप धीरे धीरे मेडिटेशन करते हुए आपको क्या चेंज महसूस हुआ जो आपको अच्छा लग रहा
0: सबसे बड़ा चेंज तो है कि
1: है?
0: गुस्सा कम हो गया, बहुत कम।
1: अच्छा
0: पहले होता था मैं थोड़ा रिटेलिएट करता था कई चीजों में, कोई कुछ बोलता था, लेकिन ये चीज डेफिनेटली काफी कम हो गई है।
1: जी,
0: स्ट्रेस तो देखिए डे बाय डे स्ट्रेस तो लेवल कोई ना कोई तो ऐसी चीज होती है जो कि एज ए कैटलिस्ट वर्क करती है आपके ऊपर। इसको आपको कैसे सामना करना है, अपने को शांत रखना है, ठीक है। तो जितना मेडिटेट करते हैं उतना ही आप ये चीजें सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स आपको मिलता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आप विधिवत इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलता है।
0: बिल्कुल है, इसको हमें रेगुलर करना है। अगर हम रेगुलर नहीं करेंगे तो वही चीज आ रही है कि जैसे योगा करते थे सर, हमको योगा करना तो आता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। आता है कैसे करते हैं ये चीज इसके अंदर है। अगर आप नहीं करेंगे, अब आपने आपको सब ज्ञान है, ठीक है, मेडिटेशन करना आता है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है, ये तो आपको करना ही
1: बिल्कुल
0: पड़ेगा।
1: चलिए,
0: बल्कि
1: बहुत
0: ये
1: अच्छी
0: आपका
1: बात।
0: एक चीज और होती है, आपका एक सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपका सांस लेने वाला होता है, जिसमें लंग्स वगैरह आते हैं, उसमें भी यही है सारा। आप जितना मेडिटेट करते हैं उतना आपका एक एक चीज होती है, आपका वाइटल कैपेसिटी होती है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि आप जो है मैक्सिमम इनहेलेशन कर लेते हैं, काफी ज्यादा आप सांस अंदर ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप जो अमाउंट जितना आप निकालेंगे एयर का, जैसे जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, आप लोग एक्सेल करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी जो कैपेसिटी है मेडिटेशन से वो बढ़ जाती है, ठीक है। और क्यों बढ़ती है, जो वही चीज मैंने आपको बताई कि मेडिटेशन से जो चीज रिलीज होती है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड, उससे जो लंग्स के वेसल्स हैं, जो आपके हार्ट के फेफड़ों के जो वेसल्स हैं, वो डायलेट करेंगे, डायलेट करेंगे तो बन नेचुरल है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, जो भी आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो ज्यादा होगा आपका फेफड़ों तक जाने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही एक होता है टाइडल वॉल्यूम, इसमें क्या होता है कि जो आपके एयर अंदर जा रही है और जो बाहर निकल रही है वो भी आपका बढ़ जाता है मेडिटेशन से। और थर्डली है, आप सांस लंबा रोक सकते हैं, जैसे इसको बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी, इट इंक्रीजेस आफ्टर द मेडिटेशन। तो ये भी इसमें आपका जो सांस लेना और फिर ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन के अंदर जाना, CO2 जब बाहर निकलेगा तो बट नेचुरल है, तो इसको बोलते हैं टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स आपके साथ में बाहर निकल जाते हैं काफी, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे बॉडी पे
1: अच्छा
0: मेडिटेशन का। ऐसे ही आपका आता है एक GI सिस्टम होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, वो
1: जी जी
0: खाना
1: जी
0: खाने का होता है, जो नली होती है खाना खाने की जो होती है, इसका भी जितना मेडिटेशन करेंगे जो उसकी गट की जो नली होती है, इसकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं, वो जितने रिलैक्स करेंगी उतना खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो आप नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जो हमारी बीमारियां हैं सारी सारी पेट की वजह से होती हैं, एक एक कहावत है, और ये बात भी ठीक है। अगर आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं और आपकी वाइड ओपनिंग रहती है सब जगह, तो आपका एक प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, IBS बोलते हैं उसको, इरिटेबल
1: जी
0: बोल, अब बहुत कॉमन है आजकल ये, और ये स्ट्रेस से ही होता है सब कुछ, जो ये आपका इरिटेबल बोल सिंड्रोम है, या गैस्ट्राइटिस है जिसको कि एसिडिटी वगैरह बोलते हैं, जितनी आपको टेंशन होगी स्ट्रेस होगा उतना ये बढ़ेगा आपका। तो अगर आप मेडिटेट करते हो, आपकी मसल्स भी आपकी जो होती है रिलैक्स कर जाती हैं गट की, और आपकी IBS से और ये गट इन्फ्लामेशन वगैरह, ये गैस्ट्राइटिस है, इन चीजों से भी आप बचे जाते हैं, ये इसका बहुत फर्क पड़ता है
1: जी
0: मेडिटेशन
1: जी
0: चीजों पे। तो ये है जो बेसिक है आपके, जो आपके शरीर में जो आपके सिस्टम्स हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है काफी ज्यादा। इसी
1: जी
0: तरह से आपका, आपको जैसे अभी मैं प्रोग्राम से शुरू में बताया था कि रीनल में भी इसका, रीनल मतलब किडनीज में भी बड़ा फर्क पड़ता है, किडनीज में भी कैसे होता है आपका कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करेंगे, फैलेंगे, ठीक है, उसमें होगा कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा किडनी की तरफ, जितना ब्लड फ्लो किडनी पे बढ़ेगा उतना यूरिन का प्रोडक्शन आपको बढ़ेगा, जितना अब यूरिनेशन आपका ज्यादा होगा उतने आपके बॉडी से टॉक्सिन्स वो बाहर निकल जाएंगे, जितने टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे उतना आप अंदर से प्योर रहोगे, ये सारी की सारी इफेक्ट्स
1: इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर।
0: हैं बॉडी
1: चलिए, काफी अच्छा आपने स्टडी किया है, इसके बारे में आपने बताया। तो मैं चाहूंगा कि एंशियंट में जब मेडिटेशन की शुरुआत हुई, और कुछ अलग अलग पोजेस हैं, जैसे आपने ब्रीथिंग की बात बताई थी, उसके साथ में कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग आसन वगैरह करते हैं, तो ये और फिर ये विदाउट आसन, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, और कौन सा दी बेस्ट हो सकता है?
0: देखिए, कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। ये वो पद्धति अपनी अलग थी जिसमें लोग आजकल भी करते हैं, जो योगा है वो आपके दो, देखिए ये दो टाइप के हैं आपके, उसमें आप, उसमें आपका जो मन है जो वो आपका क्या बोलते हैं उसको, प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होगा,
1: अच्छा
0: ठीक है, वो आपके बेसिकली उसे आप अपने हेल्थ वगैरह है, या जो मैंने आपको बताया सारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो डेफिनेटली उनसे क्योर होते हैं, फर्क पड़ता है उसका इन चीजों का। लेकिन ये हम जो करते हैं आपका राजयोग, ये जो मेडिटेशन है, इसमें आपको सबसे बड़ी प्राप्ति होती है, इसमें आप भगवान से जुड़ जाते हैं, आपको पूरा पता चल जाता है भगवान कहाँ पर है, किस तरह से है, किस लोक में रहते हैं, आप पूरा का पूरा वहां ध्यान लगा सकते हैं। और प्लस आपकी बाकी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको काफी कम हो जाती हैं। जो दूसरे योगा है उसमें आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते, उसमें आप जैसे आप दौड़ रहे हैं, जिम में जा रहे हो, रनिंग वगैरह है, आप नॉर्मल वो करते हो या फिर योगा करते हो, अप्रोक्सीमेट मतलब देखा जाए तो एक जैसी चीजें हैं दोनों, बट ये जो है आपका राजयोग मेडिटेशन है, ये इन लोगों से थोड़ा फर्क है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो साइमल्टेनियसली रिजल्ट तो हमें बॉडी के ऊपर जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, लेकिन आसन में और योगा में, या योग एंड योगा, राजयोगा एंड योगा, इसमें क्या डिफरेंस है ये थोड़ा बता पाना मुश्किल है, ऐसा आपने कहा। और निश्चित तौर पे जब हम लोग थोड़ा सा और गहराई में उतरेंगे तो निश्चित तौर पे दोनों का अपना अपना इफेक्ट है, तो दोनों का अपने अपने रिजल्ट्स हैं, तो
0: रिसर्च है,
1: निश्चित
0: काफी
1: तौर।
0: रिसर्च चल रहे हैं अभी भी, जो ये जो बॉडी सिस्टम वगैरह था ये भी काफी रिसर्च है, लोगों ने काफी रिसर्च किए हैं, उसी के बेसिस पे ही आज मैं बोल रहा हूँ सारा, वही थोड़ी स्टडी करके। तो वही सारी चीजें हैं आपकी, जो आपका आपने बताया योगा है और एक राजयोग है ना, तो इसमें भी रिसर्च चल रहा है, आगे चल के बहुत काफी सारी चीजें निकलेंगी। और
1: जी, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब। और मैं चाहूंगा कि आप जी, किन लोगों को आप एज ए प्रैक्टिशनर, डेंटिस्ट होने के बावजूद लोग आपके पास काफी आते हैं, तो किन को आप मेडिटेशन या योगा के बारे में या राजयोग के बारे में उनको प्रिस्क्राइब करते भी हैं क्या?
0: नहीं, मेरे इसमें तो ऐसा नहीं है प्रिस्क्राइब करने का, ये है कि हाँ कुछ मैंने ये राजयोग वगैरह की कुछ बुक्स वगैरह हैं जो है वो मैंने रिसेप्शन पे रखी हुई है, वो पेशेंट्स
1: अच्छा।
0: आते हैं वो उसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर कोई पूछता है तो मैं बता देता हूँ कि ये सेंटर्स से, है सेंटर्स में आप जाके ये चीजें
1: सीख सकते हैं
0: हाँ सीख सकते हैं।
1: जी। चलिए, काफी अच्छी बात आप कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आपके एरिया में, जैसे आप गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ किस तरह का जो है लोगों की मेंटेलिटी है, या फिर उनके अंदर, जैसे कि आपके पास, आप तो स्पेशलिस्ट हैं डेंटल के, तो वहाँ पर अभी डेंटल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कौन सा है?
0: डेंटल में ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो है कैविटीज, मैक्सिमम तो ये है, क्योंकि यहाँ का जो अब फूड हैबिट्स हैं आपके, चॉकलेट्स हैं, जंक फूड है, ठीक है, पिज्जा बर्गर चाउमीन वगैरह जितना भी है, जो जो भी मैदा होती है, तो ये है, प्लस बच्चे खाते हैं, तो और इवन अब तो क्या बड़े लोग भी बहुत खाने लगे, सभी खाते हैं, तो कैविटीज वगैरह है वो बट नेचुरल काफी ज्यादा है आजकल।
1: अच्छा, तो इसको क्या रेगुलर ब्रशिंग करते हैं तो उससे वो कम नहीं होता है, या फिर इसको
0: रेगुलर
1: दो
0: ब्रशिंग करते
1: दो
0: हैं
1: बार
0: लोग,
1: करना पड़ता
0: जी लोग करते हैं, बोलते हैं कि रेगुलर ब्रशिंग करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, उसके बाद भी क्यों हो रहा है
1: है? हाँ
0: भैया, ब्रशिंग कर रहे हो तो उसके बाद भी क्यों हो रहा है, तो
1: वही मेरा
0: दो रीजन है,
1: सुना।
0: या तो प्रॉपर वे में ब्रशिंग नहीं कर रहे हो, और प्रॉपर वे में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो खाना फंस ही जाता है, खाना अगर फंसेगा तो अपन नेचुरल कैविटी तो क्रिएट करेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, डेंटल फ्लॉस का जो है सबको प्रॉब्लम है, कैविटी का, और इसके लिए काफी अच्छे जो ट्रीटमेंट्स क्या क्या है, थोड़ा सा वो भी बता दें ताकि हमारे लिसनर्स जो
0: इसमें
1: हैं।
0: कैविटी होती है, आपको कोई आता है पेन में आता है, कोई आता है बिना पेन में आता है,
1: हाँ
0: अगर आपके जो दांत के अंदर जो नर्व्स होती है अगर उससे दूर है जो कैविटी है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम उसको फिलिंग करते हैं, फिलिंग करके उसको रेस्टोर कर देते हैं, उसको चलाते हैं दांत को। और अगर पेन है काफी ज्यादा है या कुछ दांत के अंदर इन्फेक्शन है, तो उस केस में फिर प्रिस्क्राइब करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसमें कर देंगे, और चांसेस हैं, काफी ब्राइट चांसेस होते हैं कि दांत बच जाता है, कुछ साल चल जाते हैं इसमें। तो यही है, और बाकी तो कोई और ट्रीटमेंट इसका है नहीं इसमें।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इसका ट्रीटमेंट है, बस थोड़ा जल्दी से आप डॉक्टर के पास आ जाइए।
0: जी
1: तो कोई भी चीज़ के लिए जल्दी डॉक्टर से अगर कंसल्ट करते हैं तो इलाज संभव है, नहीं तो देर होने से मुश्किलें आती हैं, देर
0: वही है,
1: होने से।
0: दो चीज बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, एंड अर्ली डायग्नोसिस अगर है किसी का तो उसकी प्रोग्नोसिस, इसका मतलब है ट्रीटमेंट उसका जो ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो बेटर होगा
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अर्ली डायग्नोसिस में।
1: चलिए, काफी अच्छी बातचीत हो गई है आपसे, और मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा गीत भी सुनाइए और एक मैसेज भी जरूर कोट कीजिए क्योंकि आप आए और डॉक्टर
0: गीत
1: संगीत राजवंशी जी आए, और संगीत ना हो तो मजा नहीं आएगा कार्यक्रम
0: देखना पड़ेगा।
1: जी। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को, और कोई अगर सवाल है आपको पूछना हो तो यू कैन आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेशन में, यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो कमेंट सेशन में आप जो है आप सवाल पूछ सकते हैं इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन इस विषय को लेकर, या फिर आप डेंटल कोई प्रॉब्लम हो दांतों से रिलेटेड तो भी मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके पास अभी और 5 मिनट है, जब तक डॉक्टर साहब जो है एक गीत गुनगुनाएंगे और एक मैसेज देंगे, आपके पास समय है तो आप जरूर मैसेज कीजिएगा जी।

0: वाह क्या बात है। चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें ताकि सबको खुशी मिले उस मैसेज।
1: आप लोग सुबह सुबह उठें, सुबह उठ के मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं। जितना मेडिटेट करेंगे आगे के टाइम में, मैं आप दोबारा बोल रहा हूँ, 3 बार बोल चुका कि ओवरनाइट आपके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, बट आफ्टर से अबाउट आफ्टर फ्यू मंथ्स और इवन किसी किसी को 1 साल भी लग जाता है, काफ़ी टाइम लगती है इन चीज़ों में, लेकिन आपको बहुत चीज़ें आप गेन करोगे इसमें। तो मेरा यही है आपसे कहना, यही विनती है कि आप जितना करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा।
0: चलिए डॉक्टर साहब, काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, आज हमने बात किया इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन ह्यूमन बॉडी। जो भी आपने सजेशन सुने हैं, जो भी आपने डॉक्टर साहब से बातें सुनी हैं, निश्चित तौर पे वो उसी तरह इफेक्ट करते हैं। आप एक बार करके देखिए, है ना, विधिवत अगर आप करेंगे तो विधिवत आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कुछ चीजों को आपको अगर नहीं करना है तो अगर नहीं करते हैं तो उससे बेस्ट रिजल्ट्स ही मिलते हैं आपको। तो थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन जो है फॉलो करेंगे तो उतना ही आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। और अगर आप रूल एंड रेगुलेशन को छोड़कर अपने तरीके से और योग भी कर रहे हैं, अपने तरीके से जीवन भी जी रहे हैं, तो उसमें रिजल्ट शायद लॉन्ग टर्म हो सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप प्रिकॉशन लेना है और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उसको जरूर फॉलो करें और मैसेज को ध्यान में रखिए। सुबह उठ के मेडिटेशन जरूर करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और मैं हूँ आरजे उषा। विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक विशेष मेहमान से मिलाएंगे जिनका नाम है नीरव जी सोक्टा और आप अहमदाबाद से पधारे हैं। आप केंद्रीय GST विभाग में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत है और पढ़ाई में आपको शुरू से गहरी रुचि रही है। आप शुरू से इंटेलिजेंट रहे हैं, साथ ही साथ जॉब के साथ इतनी ऊंची पोस्ट के बावजूद भी घर का कार्य में हाथ बटाना और सभी के साथ मिलनसार व्यवहार है आपका। तो आइए मिलेंगे हम नीरव जी सोक्टा से। नमस्कार नीरव जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में।
1: जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो अभी आप वर्तमान में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत है, लेकिन हम थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ जाना चाहेंगे। आपका बचपन कैसे बीता और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किस तरह स्ट्रगल करना पड़ा?
1: जी, मैंने बचपन से राजस्थान में पढ़ाई करी थी। बचपन में मैं 6th क्लास से नवोदय विद्यालय मंडफिया, जो कि जहाँ पे थानवा जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पे मैंने 6ठी से लेके 12वीं तक की पढ़ाई वहां से करी थी। उसके बाद मैंने फूड टेक्नोलॉजी के अंदर इंजीनियरिंग करी
0: जी।
1: उसके बाद मैंने 6-6.5 महीने कैडबरी कंपनी में एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम भी किया, परंतु फिर मुझे ऐसा लगा कि प्राइवेट जॉब से बेहतर है कि मैं सरकारी नौकरी में कार्य किया जाए,
0: गवर्नमेंट की तैयारी की जाए।
1: तो उसके बाद मैंने फिर इस एग्जाम की तैयारी करी और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें।
0: जी जी, तो नवोदय में जाने के लिए मतलब क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के आधार पर आप नवोदय में पहुंचे, ताकि हमारे जो भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं उनको भी नॉलेज मिले।
1: जी, नवोदय विद्यालय के अंदर एडमिशन के लिए एग्जाम होते हैं 5th क्लास में एंड 8th क्लास के अंदर। तो अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो अगली क्लास, यानी कि अगर 5वीं में एग्जाम दे रहे हैं और आपका नंबर आता है तो आप 6ठी क्लास से, या फिर आप 8th क्लास के एंड में आप जब एग्जाम देते हैं आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 9th क्लास से आप नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं।
0: इसमें परसेंटेज का कोई टारगेट है कि भाई इतने परसेंटेज आएंगे तो ही आप नवोदय में पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है?
1: नहीं, ऐसा नहीं है, बस उस एग्जाम के ऊपर डिपेंड है कि एग्जाम में आप कैसे नंबर ला रहे हो, आपकी रैंकिंग क्या बन रही है एग्जाम में, उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है।
0: जी जी, तो कंपटीशन फाइट करते हैं, उसमें भी जैसे बहुत सारे बच्चे बैठते होंगे और उसमें भी एक टारगेट होगा कि इतने बच्चों को ही निकालना है।
1: मेरे टाइम पे लगभग एक क्लास के अंदर, जैसे कि मैं 6th क्लास में मैंने एडमिशन लिया तो 80 बच्चे लेते थे उस समय।
0: जी,
1: आज के टाइम क्या चल रहा है मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है उसका, लेकिन उस समय 80 का टारगेट रहता था, 80 बच्चे लेने हैं
0: और
1: एक जिले में। हर एक जिले के अंदर एक नवोदय विद्यालय होता है, उसका सेपरेट एग्जाम होता है और वो लगभग उस समय 80 बच्चों को लेते थे।
0: तो एग्जाम देने वाले तो बहुत बैठते होंगे।
1: जी, एग्जाम तो देने वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन सिलेक्शन फिर
0: जैसे जॉब में कंपटीशन फाइट करते हैं ऐसा ही होता होगा।
1: जी जी, बिल्कुल।
0: तो आपको नवोदय विद्यालय का माहौल कैसा लगा, जैसे घर से दूर रहे आप, 6th क्लास से आपने नवोदय में पढ़ाई की, उस समय शायद इतना आत्मनिर्भर नहीं बन पाते बच्चे, है ना?
1: जी,
0: और वहाँ टीचर की निगरानी में रहना पड़ता है, बच्चों के साथ रहना पड़ता है, तो घर के माहौल से दूर रहे तो आपको कैसा लगा?
1: देखो, ये तो ऐसा तो है ही है कि मैं 6th क्लास में नवोदय में गया तो स्टार्टिंग में तो जाहिर सी बात है मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि घर परिवार से दूर नई जगह पे जहाँ कोई अपने पेरेंट्स नहीं, अपने फ्रेंड्स नहीं, तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे फिर उस माहौल के अंदर ढल गए, फिर टीचर्स से और फिर वहां पे जो फ्रेंड्स बने उनसे फिर अच्छा एक प्यार और सहानुभूति मिली, तो फिर धीरे धीरे वहां पे सेट हो गए।
0: जी जी जी, और कहते हैं ना कि कभी कभार जैसे पिकनिक में जाते हैं बच्चे तो बड़ा अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ रहने का मिलता है, घूमने का मिलता है। आपके तो पिकनिक की तरह ही हो गया कि सभी बच्चों के साथ ही रहना है, हम उम्र वालों के साथ ही रहना है, तो हर दिन नया लगा होगा।
1: नहीं, ये तो है, एक ये बात तो है कि आप वहाँ पर निरंतर अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, जैसे कि वहाँ पे स्कूल के बाद भी आपको वहीं हॉस्टल में रहना है, तो निश्चित रूप से ये तो है ही कि फ्रेंड्स के साथ रहने का एक अलग माहौल मिलता है, एक अलग उसका आनंद है, तो वो तो मिला ही। बिल्कुल,
0: आज आपको बहुत साल हो गए होंगे नवोदय से निकले हुए, लेकिन वो लाइफ याद आती है?
1: हाँ, नवोदय की लाइफ भी बिल्कुल याद आती है, वो एक बहुत क्रूशियल टाइम था लाइफ का और बहुत अच्छे से निकला, और आज जहाँ पे हम खड़े हैं वो कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में जो मेहनत कर ली और जो सीखे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, बस आज भी ऐसा
0: जी
1: है।
0: जी, नवोदय में आपने पढ़ाई की, ठीक है, तो वहाँ कौन से बच्चे टिक पाते हैं, जो पढ़ाई में होशियार हैं या फिर रिजल्ट डाउन किया तो रखते हैं या निकाल देते हैं?
1: नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मतलब आपको इतने मार्क्स लाने ही है कि 60% से नीचे आ जाएंगे तो आपको निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ का माहौल ऐसा है कि आपको वहाँ पे अच्छी खासी सुविधा मिलती है आपको पढ़ाई के लिए, अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे, आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे, हर एक सुविधा है जो केंद्र सरकार आपको मुहैया कराती है। केंद्र सरकार के अंडर में ये स्कूल है, हर एक जिला में एक स्कूल होता है, तो पढ़ाई का काफी अच्छा वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है बच्चे को, और ओवरऑल टीचर्स भी अच्छे होते हैं जिसके बेसिस पे बच्चे भी अच्छा पढ़ाई करके और अच्छा अपना आगे का समय मतलब अच्छे से पास हो जाते हैं, और जो नहीं हो पाता है उसको ट्राई करते हैं कि अगली क्लास के अंदर मतलब क्या बोलते हैं, शायद अगर जो फेल हो जाते हैं उनको शायद निकाल देते होंगे, बट मेरे टाइम पे सारे लगभग पास होते थे और हम अगली क्लास में प्रमोट होते थे।
0: जी, आज तो फिर भी नवोदय काफी कॉमन हो गया, लेकिन पहले जब आपके समय था, नवोदय सुन करके सबको आश्चर्य होता, अच्छा नवोदय में पढ़ते हैं, अरे भाई नवोदय में पढ़ते तब तो जरूर होशियार होगा, तो ये एक अच्छी छाप थी।
1: जी जी बिल्कुल, उस समय नवोदय विद्यालय का काफी नाम था, आज भी है खैर, अच्छा है वहाँ पढ़ाई की, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है और अच्छा आपका स्कूलिंग होता है।
0: जी, 12th तक आपने पढ़ाई की, और आपका रिजल्ट कैसा रहा 12th का?
1: जी मैंने 12th साइंस मैथ्स के अंदर मैंने पास आउट करी, मेरा लगभग 83.8% थे 12th में।
0: अच्छा,
1: जी
0: उसके बाद आपने कौन से कंपटीशन दिए?
1: उसके बाद मेरा RPT का एग्जाम होता था, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, उसके अंदर मेरे को फूड टेक्नोलॉजी की ब्रांच इन कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी उदयपुर में मेरा एडमिशन हुआ, तो फिर आगे की पढ़ाई मैंने वहां से करी।
0: अच्छा,
1: जी
0: और आप बता रहे थे कि कैडबरी में आपने जॉब भी की,
1: जी
0: तो फिर आपने जॉब क्यों छोड़ी? गवर्नमेंट में जाना चाहते थे या और भी आपको कोई दिक्कतें आई?
1: वहाँ पे बेसिकली एक तो प्राइवेट जॉब में वो एज ए मैं फूड प्रोडक्शन इंजीनियर था वहाँ पे, तो लगभग वहाँ पे 24 आवर्स पूरी फैक्ट्री चलती थी जहाँ 5 तरह की चॉकलेट बनती थी, इक्लेयर्स, जैम्स, शॉर्ट्स, पर्क और 5 स्टार बनती थी, ये 5 चॉकलेट वहाँ पे बनती थी। 24 घंटे वहाँ पे मशीनें वगैरह जो 24 आवर्स के लिए प्लांट चालू रहता था, और हमारा शिफ्ट्स में नंबर आता था, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी इवनिंग शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट, ऐसा आता था। तो एक तो मेरे को ये भी लगा कि इतने लंबे टाइम के लिए लाइफ में फिर शिफ्ट्स में जॉब करना, मुझे थोड़ा पर्सनल लेवल पे थोड़ा ऐसा लगता था कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि उसमें बॉडी की एक साइकिल होती है, स्लीप साइकिल होती है, वो सारी डिस्टर्ब होती है, जैसे आपकी शिफ्ट चेंज होती है, आपका उठने सोने का समय थोड़ा चेंज हो जाता है, आपका खाने पीने का टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है, तो एक तो उस चीज़ ने मेरे को थोड़ा डिस्करेज किया। और एक जॉब सिक्योरिटी भी होती है कि प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी कंपेरेटिवली कम है, और प्लस ये भी है कि आपको फिर लाइफ लॉन्ग ट्रेवल करना है, आपको लाइफ लॉन्ग फिर एक कंपनी को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना है करना है, तो वो चीज़ भी मेरे को डिस्करेज किया। और साथ ही साथ में ऐसा भी लगा कि शायद अपना जो व्यक्तित्व और अपनी जो स्किल्स है वो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे और वो ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है सर्व करने के लिए, तो फिर ये सोच के फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके फिर गवर्नमेंट एग्जाम दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया।
0: जी, तो आपने जॉब के साथ साथ पढ़ाई की या फिर जॉब छोड़ करके की?
1: नहीं मैंने जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद मैंने तैयारी करी।
0: जनरल वालों को बड़ा मुश्किल है, कहते हैं कि भाई एक निश्चित होते कि इतने परसेंट ही गवर्नमेंट सीट मिलती है। पढ़ाई छोड़ करके आपने कंपटीशन फाइट करने की तैयारी की, तो आपका अंदर से ये डर नहीं लगा कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, तो मैं इधर से भी गया इधर से भी गया?
1: नहीं, मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं अगर तैयारी करूंगा तो मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ, इसी के लिए मैंने अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ी थी और मेरा सिलेक्शन हो गया।

0: हंड्रेड्स में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भले पेपर इजी है, परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन आप टॉप 100 में नहीं आ सके तो उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपका कंपटीशन के अंदर आप कितना अच्छा बेहतर कर पा रहे हैं, आप टॉप जो रैंकिंग्स है उसके अंदर आ पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होता है।
1: तो आपके कितने रैंक बने होंगे उस समय?
0: अभी तो याद नहीं है मेरा कितना रैंक बना था, लेकिन ये था कि मेरे को सेंट्रल एक्साइज मिला था और फिर मैंने गुजरात के लिए अप्लाई किया तो मेरे रैंक के हिसाब से मुझे गुजरात मिल गया।
1: जी जी जी इसमें आपने कितने समय तैयारी की? और हमारे जो भी श्रोता बंधु सुन रहे, मान लीजिए वो भी इस लाइन में जाना चाहे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? कोई सब्जेक्ट अलग से लेना पड़ता है या कोई भी सब्जेक्ट के तौर पर आप कंपटीशन फाइट कर सकते हैं?
0: इसके अंदर खाली बेसिक एलिजिबिलिटी में ऐसा है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होने चाहिए। इसमें भले बैकग्राउंड कोई भी हो आपका, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। इसके अंदर एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, उसमें से एक एग्जाम का नाम है कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, CGL एग्जामिनेशन। तो इसके अंडर में बहुत सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर सिलेक्शन करती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सिलेक्शन करके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को नए फ्रेश कैंडिडेट्स अलॉट करती है। तो आप ये एग्जाम फाइट करेंगे तो आप वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेंट्रल GST डिपार्टमेंट है, या फिर कस्टम्स डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, CBI है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। डिपेंड्स ऑन कि आपका रैंक क्या है, आपके प्रेफरेंस क्या है, उस सब पे डिपेंड करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है इस एग्जाम के थ्रू, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है।
1: इसमें कड़ी मेहनत चाहिए या फिर इजी वे में निकल जाते हैं?
0: देखिए ये तो वेरिएबल है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। अगर किसी का बेसिक्स या फिर पढ़ाई का होल्ड बहुत अच्छा है तो वो हो सकता है कि थोड़ा टाइम पढ़ के भी वो एग्जाम निकाल दे, और किसी को हो सकता है कि लंबे टाइम के लिए तैयारी करनी पड़े, वो सबका अपना अपना एक है।
1: जी
0: जी
1: तो इसमें एज का बाउंडेशन है कि कितने एज तक आप कंपटीशन देकर के जो
0: फाइट
1: कर सकते
0: किया
1: हैं?
0: था तब लगभग 27 साल तक के जनरल कैंडिडेट की एज थी, 27 इयर्स। उसके अलावा कैटेगरीज में जो OBC ST SC है उनको थोड़ा रिलैक्सेशन था, अभी क्या है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उस समय 27 साल था।
1: जी जी जी
0: जी
1: और आपके कितनी एज थी और आप जॉब लगे?
0: मैंने अपने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था 24 साल में।
1: अच्छा, 24 इयर्स में।
0: जी
1: आपके डिपार्टमेंट में आप ही सबसे छोटे थे या और भी आपके?
0: काफी जने मेरे एज ग्रुप के ही थे, कुछ एक दो साल बड़े थे तो कुछ मेरी एज के थे। ऐसा
1: अच्छा अच्छा तो पहली बार आप एग्जाम क्लियर किया और इस मुकाम तक पहुंचे तो कैसा फील हुआ, और घर वालों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा?
0: जी बिल्कुल, जब मैंने प्राइवेट की जॉब छोड़ी थी तब घर वाले बड़े परेशान थे कि मल्टीनेशनल कंपनी की प्राइवेट जॉब छोड़ दी है, तब बहुत सब डिलेमा में थे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब एक बार सिलेक्शन हो गया तो सबको बहुत अच्छा लगा, सबको लगा कि चलो अच्छा है, इसने जो सोचा था वो हो गया, और बहुत ही खुश थे, मैं भी खुश था कि चलो ठीक है, जो मैंने सोचा वो हो गया। तो जाहिर सी बात है सबको बहुत खुशी थी।
1: जी जी जी और अभी जैसे कि आप सुपरिटेंडेंट है
0: जी
1: केंद्रीय विभाग में,
0: जी
1: तो क्या जिम्मेदारियां रहती है आपके ऊपर?
0: एज ए अधीक्षक केंद्रीय GST विभाग में हूँ अभी कार्यरत। जस्ट रिसेंटली मेरा पिछले महीने प्रमोशन हुआ है, मैं इंस्पेक्टर था पहले, अभी जस्ट पिछले महीने मैं सुपरिटेंडेंट बना हूँ, तो अभी सुपरिटेंडेंट का कार्यभार संभालूंगा। इसके अंदर बेसिक काम ये होता है कि जैसे कि कोई, अगर मैं फील्ड की जॉब में हूँ, जैसे कि किसी पर्टिकुलर रेंज में अगर मैं बैठा हूँ, तो उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं तो उनका अगर कोई डे टू डे में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी को कुछ, जैसे कि किसी का कुछ चेंज करवाना है या फिर कोई कैंसलेशन करवाना है या फिर कैंसिल हो गया उसको रिन्यू करवाना है, ये सारे बेसिक कार्य के लिए वो ऑनलाइन ही हमसे अप्लाई करते हैं और हम ऑनलाइन ही उनका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अगर किसी का जो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं उनका स्क्रूटिनी करते हैं हमारे ज्यूरिसडिक्शन में जो टैक्स पेयर्स आते हैं और जो सिलेक्ट गवर्नमेंट ने करके दिए हैं कि इनकी स्क्रूटिनी करनी है, तो उसकी हम स्क्रूटिनी करते हैं, यानी कि उसको जांचते हैं कि बराबर टैक्स वगैरह भरा है कि नहीं, तो वो भी करते हैं, और अगर बराबर नहीं भरा है तो उसके फिर आगे की कार्रवाई जो भी रहती है, आगे की कानूनन कार्रवाई वो हम करते हैं। इसके अलावा अगर कोई नया टैक्स पेयर

0: कोई अपना नया बिजनेस ओपन किया है जिसको नया जीएसटी नंबर चाहिए, या फिर वो पर्टिकुलर पुराने बिजनेस जो कि उसका पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उसके ऊपर अगर वो आ गया है और उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो वो अप्लाई करते हैं। फिर उसका हम एज पर गाइडलाइंस अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, जो भी करना है, आगे की कार्रवाई हम करते हैं। तो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में ऐसा आप मान सकते हैं कि फर्स्ट इंटरफेस है हम टैक्स पेयर्स के लिए, ऐसा है।
1: जी। और हमारे जो यूथ सुन रहे हैं, अगर वो इस लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको भी थोड़ा मार्गदर्शन जरूर दीजिएगा।
0: जी, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में कार्य करना है तो उसमें दो तरीका है। अगर आप ग्रुप ए सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है वो आपको फाइट करना पड़ेगा। उसके सिलेक्शन के थ्रू आप सीधा आईएएस, आईपीएस या फिर आईआरएस या फिर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप ए की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। और जैसे कि मेरा सिलेक्शन हुआ ग्रुप बी में, तो ये एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्टों पे सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा।
1: जी। और जैसे आप बता रहे थे कि आपने कैडबरी कंपनी से जॉब छोड़ी, तो वहाँ के मैनेजर, वहाँ के लोग मान गए या पूछा नहीं कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं?
0: नहीं, एक हर एक कंपनी में एग्जिट इंटरव्यू भी होता है कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्या है। तो छोड़ तो आप सकते हैं, लेकिन वो 1 महीने का जो नोटिस पीरियड है वो आपको सर्व करना होता है। तो वो उतना सर्व करके मैंने फिर छोड़ दिया था।
1: अच्छा, और ये आप किसको श्रेय देना चाहेंगे इस मुकाम तक पहुंचने तक? परिवार में किसी का सपोर्ट मिला होगा अच्छी तरह?
0: जी बिल्कुल, एक तो मेरे नाना जी थे, उन्होंने अभी तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन बचपन से उनका गाइडेंस बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा मेरे जीवन में, चाहे आर्थिक रूप से या फिर मतलब गाइडेंस के रूप में उनका मार्गदर्शन हमेशा मिला। और मेरे मामा जी, माता जी, इनका भी बहुत अच्छा गाइडेंस रहा शुरू से। तो इन सब के आशीर्वाद से तो मैं लाइफ में तरक्की कर पाया।
1: अच्छा, और भी इस लाइन में आप आगे जा सकते हैं या बस सुपरिटेंडेंट तक ही रह सकते हैं?
0: समय समय पर केंद्रीय सरकार हमारा प्रमोशन करती है, तो अभी जैसे कि मैंने 10 साल का निरीक्षक का कार्यकाल पूरा किया तो मेरा प्रमोशन हुआ। ऐसे ही आगे जब वैकेंसी डिपेंड्स ऑन की वैकेंसी कितनी है आगे और कितने कैंडिडेट हैं, उस हिसाब से आगे फिर प्रमोशन होता है। तो शायद 10-12 साल में वापस मेरा प्रमोशन असिस्टेंट कमिश्नर पे हो सकता है।
1: अच्छा, तो इसमें 6 से 10 साल बाद होंगे आप, ठीक है, और कंपटीशन के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं।
0: डिपार्टमेंट का इंटरनल एग्जामिनेशन का कोई प्रोसीजर नहीं है हमारे विभाग में। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपका एज आपका 32 ईयर्स या उससे कम है, अगर जनरल कास्ट में है या फिर कैटेगरीज में है, तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको यूपीएससी के एग्जाम देने पड़ेंगे अगर आपको आगे बढ़ना है। तो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, तो उसके थ्रू आप ग्रुप ए की पोस्ट में सीधा भर्ती आपकी हो सकती है।
1: जी। तो चलिए नीरज जी, बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपना बहुत ही सुंदर जॉब के अंतर्गत, अपने करियर के अंतर्गत आपने सभी को अपना परिचय दिया और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे सुपरिटेंडेंट बनने तक पूरा सफर आपने सभी के समक्ष रखा है। तो बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम के अंत में हमारे जो यूथ सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कितनी बार ऐसा होता है कि आज के युवा है, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद कंपटीशन में मान लो रह जाते हैं तो निराश हो जाते हैं जीवन से, तो ना तो वो कुछ काम करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं 10-15 हजार की प्राइवेट जॉब तो हम करेंगे, कंपटीशन में नहीं निकल पाते। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने जीवन में निराश हो जाते हैं?
0: जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। अगर सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक वो रास्ता हमेशा खुला होगा। उस रास्ते को बस आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो रास्ता है कहाँ। तो निराश होने पे आपको कोई उस चीज का फायदा नहीं है, उस चीज का कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना ही पड़ेगा और आपको वो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा कि जहाँ आपका संयम, जहाँ आपके अंदर स्किल्स है, वो आपको आपका रिजल्ट दे सके। वो आपको रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा और ऊपर वाले पे हमेशा विश्वास रखिए, कुछ ना कुछ तो उसने आपके लिए भी सोच ही रखा होगा, बस प्रयास आपको करना है।
1: बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है नीरव जी, बहुत बहुत आभार।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष मुलाकात, और विशेष मुलाकात में नीरव जी सोक्टा हमारे साथ बने हुए थे जो अहमदाबाद से पधारे हैं और अभी आप वर्तमान में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत है जीएसटी विभाग में। और आपका पूरा ही सफर हम सभी ने सुनाई है। तो अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है मुझे आप सबसे मिलना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपसे मिलके मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ खेलना, साथ में पढ़ना, इकट्ठे होके खाना खाना, वही स्कूल की बात ही कुछ और है ना? वो देखो, मीना भी दीपू और मोनू के साथ अपने स्कूल में है। आओ वहीं चलते हैं।
1: क्या हुआ मोनू, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो?
2: मीना, दीपू की शक्ल देखो, बिल्कुल बूढ़ा बाबा लग रहा है।
1: बूढ़ा बाबा
2: और क्या। दीपू, शीशे में जाके देखो, तुम्हारे मुंह पे सफेद मूछे हैं।
1: ओह, अब समझा। मैं अभी घर से दूध पी के आया हूँ ना, तो जल्दी में अपना मुंह साफ करना भूल गया था।
2: दूध पी के? मुझे तो दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो दूध का नाम सुनते ही कुछ होने लगता है।
3: कुछ होने लगता है, मोनू रोने लगता है।
1: भाई, मैं तो रोज दूध पीता हूँ। माँ कहती है कि तभी मैं इतना लंबा और तगड़ा हो गया हूँ। अरे मोनू, अगले महीने तो तुम्हारा मुकाबला है ना?
4: कैसा मुकाबला दीपू?
1: मीना, साथ वाले गांव के रमेश ने मोनू को पंजा लड़ाने की चुनौती दी है। मुकाबले की तैयारी कर रहे हो ना मोनू?
2: अरे, उस रमेश को तो मैं एक ही मिनट में हरा दूंगा।
0: और अगले दिन।
4: अरे मोनू, तुम इस पेड़ की शाख को पकड़ के क्यों लटके हुए हो?
2: मीना, पंजा लड़ाने के लिए अपनी बाजुओं को तगड़ा बना रहा हूँ।
1: मोनू, बंदर की तरह लटक के।
2: दीपू, तू लटक के देख, तब पता चलेगा तुझे।
1: इसमें कौन सी मुश्किल बात है?
2: अच्छा ठहर जा, अब मैं नीचे उतरता हूँ और तू हमें लटक के दिखा।
5: पता नहीं क्या समझता है।
2: ये मैं कूदा नीचे, जा अब तू लटक के दिखा।
1: हाँ, पहले मेरे हाथों से ये थैले तो पकड़ो।
2: हाँ हाँ, पकड़ता हूँ।
4: अरे बाप रे, इतने भारी थैले मैं तो नहीं उठा सकता। इसमें है क्या?
2: अरे मीना, दीपू कहाँ गया?
1: मैं यहाँ हूँ मोनू, पेड़ पर।
2: अरे, तुम तो एक ही हाथ से पेड़ की शाख पकड़ के लटक गए।
3: लटक गए? तू जो गटक गए।
2: दीपू, इन थैलों में क्या है?
1: बाप रे बाप, इतने भारी। मोनू, इनमें दालें हैं घर के लिए।
2: इतनी सारी दालें?
1: हमारे घर में रोज एक ना एक दाल जरूर बनती है।
2: आय हाय, दाल?
4: क्या हुआ मोनू, तुम्हारे घर में दाल नहीं बनती?
2: बनती तो है, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ।
3: नहीं खाता हूँ, नखरे दिखाता हूँ।
1: मोनू, माँ कहती है कि दाल खाने से हमें ताकत मिलती है और हमारे शरीर का विकास भी होता है। बल्कि माँ तो कई बार आटे में दाल डाल के उसकी रोटियाँ भी बनाती हैं।
2: ठीक है ठीक है, मुझे क्या।
4: अब नीचे उतरो दीपू, वरना तुम थक जाओगे।
1: थकूंगा तो नहीं मीना, लेकिन हाँ, मुझे नीचे उतरना ही होगा। माँ मेरा रास्ता देख रही होंगी।
2: तुम थके नहीं दीपू?
1: थकूंगा क्यों, लाओ ये थैले मुझे दो। अच्छा मीना, अब मैं चलता हूँ।
2: अरे, ये दीपू तो इतने भारी थैले उठा के बिल्कुल आराम से जा रहा है। भाई, मैं तो बहुत थक गया, चलो मीना।
0: मीना और मोनू आपस में बातें करते हुए घर की तरफ चले।
2: एक बात समझ नहीं आई मीना, दीपू इतने भारी भारी थैले उठा के आया, फिर झट से पेड़ पर भी चढ़ गया, एक हाथ से लटका भी, और फिर नीचे उतर के वही थैले आराम से उठा के चला भी गया।
4: कितनी ताकत है ना उसमें।
2: काश मुझ में भी दीपू जैसी ताकत होती। एक काम करते हैं मीना, पहलवान चाचा के घर चलते हैं।
4: वो क्यों?
2: उनसे उनकी ताकत का राज जानने।
0: मीना और मोनू पहुँचे पहलवान चाचा के घर।
6: नमस्ते चाची।
7: अरे मीना, मोनू, खुश रहो बच्चों।
2: चाची, चाचा नजर नहीं आ रहे।
7: बेटा, तुम्हारे चाचा तो किसी काम से पंचायत घर गए हुए हैं। आओ बैठो।
2: नहीं चाची, वो ये क्या चाची, इतना सारा दूध?
7: हाँ मोनू, ये दूध तुम्हारे चाचा के लिए है।
2: पहलवान चाचा इतना सारा दूध पीते हैं?
7: तुम्हारे चाचा दिन में 3-4 बार दूध पीते हैं।
4: चाची जी, क्या पहलवान चाचा को दाल खाना भी अच्छा लगता है?
7: बहुत, उन्हें तो खाने में रोटी और चावल के साथ दाल जरूर चाहिए।
3: दाल जरूर चाहिए, जितनी चाहिए खाइए।
5: अच्छा चाची, अब हम चलते हैं। नमस्ते।
7: बच्चों, कोई काम था क्या अपने पहलवान चाचा से?
4: चाची वो
5: जो काम था वो हो गया चाची।
7: हो गया?
5: चलो मोनू।
4: लेकिन मीना।
5: चलो तो।
0: पहलवान चाचा के घर से बाहर निकलते ही मोनू ने मीना से कहा,
4: क्या मीना, तुमने चाची से ये क्यों कहा कि हम जिस काम के लिए आए थे वो हो गया?
5: क्योंकि हमारा काम हो गया था।
3: काम हो गया था, लगता है मोनू सो गया था।
5: चुप मिट्ठू, शरारती कहीं के।
4: मैं समझा नहीं मीना, हम तो यहाँ।
5: तुम पहलवान चाचा से उनकी सेहत और ताकत का राज जानना चाहते थे ना?
4: हाँ
5: मोनू, पहलवान चाचा की सेहत का राज है सही भोजन, जिससे उन्हें मिलती है ताकत, जैसे कि दाल और दूध।
4: क्या, दाल और दूध?
5: हाँ मोनू, अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही कहा था ना कि काश तुम में दीपू जैसी ताकत होती।
4: हाँ कहा तो था।
5: और दीपू को भी पहलवान चाचा की तरह दूध और दाल बहुत पसंद है, समझे?
4: अब समझा। मीना, आज से मैं भी दीपू और पहलवान चाचा की तरह रोज दूध पीऊंगा और हर एक दाल खाऊंगा बिना मुँह बनाए।
3: बिना मुँह बनाए? मोनू जी मुस्कुराए।
0: और फिर अगले एक महीने तक मोनू ने रोज दूध पिया और खाने में रोटी और चावल के साथ दाल भी खाई। और मुकाबले के दिन रमेश और मोनू ने पंजा लड़ाना शुरू किया। उन दोनों के दोस्त उनका उत्साह बढ़ा रहे थे।
6: हरा दे रमेश, उसे हरा दे।
8: ए, मोनू हरा दे उसे। मोनू, मोनू हरा दे।
3: आ, तू कर सकता है।
9: अरे वाह, मोनू जीत गया, मोनू जीत गया।
5: मोनू, तुम में तो सचमुच बहुत ताकत आ गई। कमाल है।
3: कमाल है, इसका राज दूध और दाल है।
0: देखा दोस्तों, है ना चतुर और चपल अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता।
5: बनेगी सेहत, मिलेगी ताकत, होगा खूब कमाल,
3: लंबे तगड़े बन जाओ तुम, पी के दूध, खा के दाल।
0: क्या बात है, छोटी सी कविता में कितनी बड़ी बात कह गए अपने मीना और मिट्ठू। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।
10: पहले खाना फिर गाना।
11: नहीं भैया, पहले गाना फिर खाना।

0: खाना गाना मजेदार। अरे भाई आपसे कह रहा हूँ, कमाल है दोस्तों, आप गाना ही गाते रहोगे या कुछ खेलना भी है? जल्दी से चलो खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। मैं आपको तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और आपको मुझे बताना है उसका सही जवाब, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो, पहली कड़ी, छोटा सा हूँ लेकिन सबके आता बहुत मैं काम, जेब से मुझे निकालो जब हो खांसी या जुकाम।
3: क्या हो सकता है उसका जवाब?
4: क्या हो सकता है?
3: सोचो सोचो।
5: लल्ला,
6: तुम सब हंस क्यों रहे हो? सही तो कहा है मैंने, लल्ला अभी छोटा सा है और वो हम सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, यानी हमारे बहुत काम आता है ना बहन जी?
1: दीपू, तुम्हारा कहना ठीक है कि लल्ला हम सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन क्या हम लल्ला को जेब में रखते हैं? भूल गए, जेब से मुझे निकालो जब हो खांसी या जुकाम।
7: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है मिली, दूसरी कड़ी सुनो बच्चों, हूँ सफेद रंगीन भी हूँ, चौकोर मेरा आकार, साफ सफाई मुझको भाती, इससे मुझको प्यार। सोचो सोचो।
8: ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है,
9: तीसरी कड़ी भी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है सोमा, ये रही तीसरी कड़ी, पास में रहता हूँ तुम सबके, जरा ध्यान से सोचो, खेल के या फिर कुछ खा पी के मुझसे हाथ मुंह पोंछो।
2: रुमाल।
1: शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया बच्चों?
2: बहुत।

0: आपको भी मजा आया ना। फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
1: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का नवा पाठ डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। 4 फरवरी सन 1984 पहाड़ पर चढ़ने का कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थीं, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थीं। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी संकरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज सुनाई दी,
3: मैडम नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा।
2: सर सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप?
4: जी सर।
2: यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ।
4: पृष्ठ 77।
2: मैं मुंह लटकाए जल्दी तैयार होने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज सुनाई दी,
3: सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर होंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है यह सबको बताया जा चुका है।
2: बताओ, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो?
4: कब और कहाँ?
2: तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो?
4: कितना चल सकते हो?
2: कल्पना करो, पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे?
4: चित्र बनाओ।
2: एक बड़ी जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थीं, वो ये थीं, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, और सबसे बड़ी बात तो यह कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा।
4: ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी यह दुख है कि मैं मिजोरम की खोनदोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे।
2: पृष्ठ 78। बताओ, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो?
3: अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं? क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे? क्यों? जब नदी पार की। रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला, ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए। सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता, पट्टियां बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन यानी खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गए तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग जो एक तरह का हुक होता है वो डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। पृष्ठ 79। बर्फीले पानी में छप छप छप करते हुए वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नजर से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता ना था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 cheers फॉर संगीता मैम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किट किट किट मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लगा अब तो बह जाऊंगी पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्सी से बंधी हुई पानी पर खड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाजें मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। पृष्ठ 80। पता करो और लिखो। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज में होते देखा है? कहाँ? पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहाड़ों पर ज्यादा शक्ति की जरूरत क्यों होती है? क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है? क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ। उसे अपने शब्दों में भी लिखो। रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थीं। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। पृष्ठ 81। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। मैं एक बार फिर चढ़ी। चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। बताओ, क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो? कैसा लगा? पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं? क्या कभी गिरे भी? क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है? दीवार पर चढ़ने और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है? एक मजेदार घटना। शाम हो चली थी। खोन दोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म था। मेरे देखते ही देखते वह कंटीली तारें पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहां से वह दो बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खोन दोनबी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खोन दोनबी बीच बीच में मिजो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ न आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। पृष्ठ 82। इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने जोर से आवाज लगाई, कहाँ हो तुम? पहाड़ों पर मेरी आवाज गूंजने लगी। हमने जोर जोर से सीटियां बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीटियां बजने लगीं। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाए हुए हाथ पकड़े, पसीने से तर बतर, हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। खोन दोनबी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मिजू भाषा में जोर जोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया। तब जाकर हमारी जान में जान आई। बताओ, क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम क्या करते हो? क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? खोन दोनबी ने ऐसी स्थिति में जोर जोर से गीत क्यों गाया होगा? क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? क्या और कब? करके देखो। बिना बात किए अपने दोस्त से किताब या कुछ चीजें मांगो। इसी तरह
2: कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो। पृष्ठ 83। एक खास मुलाकात। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थीं बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थीं। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडू पाको बारा मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेगी। कैंप। हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की दो तह वाली शीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियां इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे, जिनसे गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी, क्या इसमें मैं सो पाऊंगी? लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह जागे तो बर्फ गिर रही थी। पृष्ठ 84। सफेद सफेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ। वाह, देखते ही मजा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़, सभी कुछ सफेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियां दी गईं। हम छड़ी के सहारे पैर जमा जमा कर बढ़ रहे थे, बार बार फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ से ढके पहाड़ों पर थे। वहां हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ के गोलों से भी खेले। कैंप का आखिरी दिन। कैंप फायर, आग जलाने की तैयारियां चल रही थीं। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। चर्चा करो, पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी? पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है और क्यों? पृष्ठ 85। कल्पना करो और लिखो। तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहां कैसा लग रहा है? क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या करने को मन कर रहा है? खेल खेल में। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहां अपनी सहेलियों के साथ वह खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहां था
3: केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं, और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगीं। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। एक धमाका। 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान

15 मई की रात को टीम जब लगभग 7,300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ धड़ धड़ की आवाज के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बचेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गईं। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आईं। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट आए, लेकिन बचेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ीं। बचेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली नाम सागरमाथा है, वहां पर कदम रखा। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर दो लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को एक हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थीं, पर खुशी से झूम भी रही थीं। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गईं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। पृष्ठ 86। सोचो, बचेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा? झंडा कब कब फहराते हैं? अपने देश के झंडे के बारे में जानकारी इकट्ठी करें। अब 6 या 8 बच्चों के समूहों में बंट जाओ। अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिजाइन बनाओ। झंडे का यह डिजाइन तुमने क्यों चुना? क्या तुमने किसी और देश का झंडा देखा है? कहाँ? हम क्या समझे? लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? कोई दो उदाहरण देकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है? तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते तो क्या तैयारी करते? अपने साथ क्या क्या ले जाते? अपने शब्दों में लिखो। डायरी, कमर सीधी, ऊपर चढ़ो। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये नवा पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: किसान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया, और बच्चों की दुनिया यानी कैसी होगी उनकी दुनिया अगर कोई ऐसा चश्मा मिलता दोस्तों कि वो लगाया और सच में दुनिया अपनी नजर से नहीं बच्चों की नजर से दिखाई देने लगे तो कितना अच्छा होता, कितनी आसान हो जाती जिंदगी, कितनी सुंदर हो जाती और मतभेद भी फटाफट मिट जाते, क्योंकि बच्चे जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी ही जल्दी एक दूसरे से प्यार से बात भी करने लगते हैं, है ना बच्चों?
2: हाँ।
1: लंबी लड़ाई चलती है किसी के यहाँ पे?
2: नहीं,
1: फटाफट सॉरी बोल देते हो।
2: हाँ।
1: अरे वाह, तो यानी बच्चों की दुनिया है सबसे अच्छी दुनिया, है ना?
2: हाँ।
1: तो आज हमारे साथ कौन कौन है इस दुनिया में बातें करने के लिए, एक बार अपना नाम और अपना क्लास बता दीजिए हमारे दोस्तों को।
3: मेरा नाम है खुशी सरकार और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम है याना रावत, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम है देवेश्वरी बयानी, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मैं हूँ हसी सरकार, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ।
1: ओके, तो हमारे दोस्तों का हेलो कर दीजिए आप सभी।
2: हेलो।
1: तो ये प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे चेहरे आज हमारे साथ हैं, और आज हम करने वाले हैं थोड़ी बड़ी मगर मजेदार बातें अपने इमोशंस के बारे में। आप लोगों ने शब्द सुना है इमोशंस?
2: हाँ।
1: क्या होता है इसका मतलब?
2: मींस मूड स्विंग्स।
1: मूड स्विंग्स, ओके।
2: मूड या फिर
1: मूड,
2: कभी भी सैड हो जाना, हैप्पी होना,
6: मूड ऑफ होना।
1: मूड ऑफ होना,
2: हाँ।
1: आपको क्या लगता है क्या होता है इमोशंस का मतलब?
3: इमोशंस का मतलब मुझे लगता है सैड होना, हैप्पी होना, फिर मूड ऑफ होना।
1: मतलब हमारी जो भावनाएं होती है,
2: हाँ।
1: है ना, हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं होती है, एक इमोशन नहीं होता ना।
2: हाँ।
1: बहुत सारी भावनाएं होते हैं, हम कभी बहुत खुश होते हैं, कभी थोड़े खुश होते हैं,
2: कभी बहुत सैड भी होते
1: कभी
2: हैं,
1: कभी सैड होते हैं, कभी ओके ओके भी होते हैं, है ना?
5: मैं ज्यादातर तो खुश ही रहती हूँ।
1: ज्यादातर खुश रहते हो?
2: हाँ,
5: बस सुबह थोड़ा सा
2: हैप्पीनेस इज एवरीथिंग।

0: अचानक वाली चीज में बहुत अच्छी
1: लगती है, सबको अच्छी लगती है।
0: हाँ
1: अच्छा, और अगर पूछ के आपको गिफ्ट दिया जाए कि क्या चाहिए, वो
2: बोरिंग
0: बोरिंग बहुत बोरिंग,
1: बहुत ही बोरिंग,
0: मतलब जैसे हम
2: सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं रहा पूछ के देने,
0: हमको ये चाहिए तो वही दिलाएगा, ऐसे होता है।
2: हाँ
1: अच्छा,
0: हमको जो चाहिए वही दिलाएंगे, मतलब
1: आपसे पूछ के कि आपको क्या चाहिए फिर वही दिलाए, तो
2: बोरिंग गिफ्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा,
1: आपको क्या लगता है?
0: कोई मतलब नहीं,
1: कोई मतलब नहीं है,
0: लेकिन खुशी तो होगी
1: थोड़ी खुशी
2: कि हाँ जो चीज चाहिए थी वो आ गई। हाँ, जो चीज चाहिए थी।
0: मम्मी पापा को तो पता रहता है पहले से कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए,
1: क्या चाहिए, है ना। सबसे अच्छा सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों को क्या मिला अभी तक, कुछ मिला?
0: मुझे मिले
1: क्या?
0: मम्मी पापा, मुझे बाबा,
1: ओके,
0: मुझे मम्मी पापा, बाबा और मेरा बड़ा भाई।
1: फैमिली तो सबसे अच्छा गिफ्ट है,
0: हाँ।
1: है ना, उससे अच्छा तो कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं होता। दैट्स ट्रू। और भगवान,
2: ये बाबा का ज्ञान,
1: नॉलेज, भगवान जो हमें नॉलेज देते हैं, वंडरफुल। अच्छा, आप ये बताओ गुस्सा किस किस को आता है?
0: मुझे
1: आता है ना,
0: थोड़ा थोड़ा आता है।
1: मुझे भी आता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है।
0: मुझे आज सुबह ही आया था क्योंकि मैं जब नहा रही थी तो मम्मी मुझे रूम में से छोड़ के चले गई डाइनिंग में।
1: ओ, फिर तो मम्मी पे गुस्सा आया होगा
0: बहुत ज्यादा,
1: है ना?
0: लेकिन बाद में नॉर्मल हो गया।
1: फिर क्या किया, मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे गुस्सा आ रहा है?
0: नहीं
1: नहीं,
0: मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी अगली बार से मुझे छोड़ के मत जाना अकेला, मुझे डर लगता है।
1: डर लगता है ना?
0: अच्छा,
1: तो आपको पहले डर लगा, मतलब आपको गुस्सा नहीं आया,
0: पहले डर लगा,
1: डर लगा, दो अलग अलग इमोशन है।
0: पहले डर लगा फिर जाके गुस्सा,
1: मतलब हमारा जो कोर है, आपने इमोशन फील किया उस वक्त।
0: और मैंने बोला भी था मत जाओ मत जाओ, तो भी कोई जाए तो बहुत गुस्सा,
1: तो फिर गुस्सा आएगा जब बोला है, बताया है, तो फिर मम्मी ने बोला नहीं कि वो क्यों गई थी, ऐसा रीजन नहीं बताया?
0: तो छोड़ के चला जाता है, उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है,
1: गुस्सा आता है
0: क्योंकि लिए मुरली क्लास इम्पोर्टेंट थी तो जल्दी जाना था,
1: जल्दी जाना था, कुछ इम्पोर्टेंट था।
0: उसमें हमारी भी गलती होती है, हम जल्दी क्यों नहीं उठते,
2: और सारा काम फटाफट क्यों नहीं करते।
1: लेट उठे आप, मम्मी ने पहले उठाया होगा आपको मॉर्निंग में?
0: नहीं
1: नहीं उठाया,
0: पहले मम्मी ने नहा लिया फिर बाद में उठाया।
1: तो मम्मी को बोलना अगली बार से आप मुझे जल्दी उठा दीजिएगा, तो मैं फटाफट तैयार हो जाऊंगी, है ना। आप लोगों को गुस्सा कब आता है या कब आया था, कोई इंसिडेंट याद है ऐसा?
0: मुझे सुबह ही आया था।
1: क्यों?
2: मुझे भी सुबह आया था बहुत,
0: मेरे को दोपहर को आया था।
2: Okay. मुझे पता है इसको गुस्सा क्यों आया, क्योंकि ये कॉल कर रही थी और मैंने कॉल नहीं उठाया इसलिए।
0: हाँ, ये ऐसी करती है, हर बार ये ऐसी करती है।
1: क्यों कॉल नहीं उठाती, कभी नहीं उठाती?
0: कभी भी नहीं, कभी कभार। सुबह भी एक बार गुस्सा आया था, दोपहर भी एक बार गुस्सा आया था।
1: फिर क्या किया आपने जब उसने कॉल नहीं उठाया?
0: फिर बाद में जब मिली ना, मैंने बहुत बोला इसको कि क्यों कॉल नहीं उठाई, मैं तो फिर वो कॉल करती है ना तो मैं नहीं उठाती हूँ, फिर बाद में उठाती हूँ, फिर बोलती है देखा ना मैंने भी तेरा बदला ले लिया।
1: अच्छा, ऐसा क्या?
0: मैं मेरे मतलब मैं कभी बाहर रहती हूँ और कभी मेरे फ्रेंड का फोन आता है और कोई फंक्शन चालू होता है तो मम्मी के पास फोन रहता है, मुझे नहीं पता, फिर घर पे जाके देखती हूँ चार्जिंग को लगाना होता है मोबाइल तो देखती हूँ तो मिस कॉल आ जाता है, फिर मैं बाद में कॉल करती हूँ, और ज्यादा रात हो जाए तो सुबह कॉल करती हूँ।
1: तो आप तो को अगर इन पे गुस्सा आता है, फोन नहीं उठाया, तो क्या करते हो आप वो गुस्सा दिखाने के लिए?
0: गुस्सा दिखाने के लिए
2: फोन पे गुस्सा निकालती हूँ, तो
1: बोलती हूँ नहीं,
0: जब सामने आती है तब मैं उससे 10-15 मिनट बात नहीं करती,
2: बात नहीं करती तो ये
1: 10-15 मिनट,
2: इसका मतलब मन ही नहीं लगता, फिर
1: मन नहीं लगता,
0: ये बात अकेला अकेला इरिटेट लगता,
2: बिना बिना बहनों के कुछ
1: अच्छा
2: है नहीं,
0: रोने टप का हो जाती है, ये
1: रोने जैसे हो जाते हो, फिर
0: बात नहीं करने से रो जाती है,
1: फिर आपको बात करनी पड़ती होगी, अब रोएंगे तो करनी होगी,
0: सुबह भी मेरे को
1: बिना रोए भी कर लेते हो आप, तो बोल रहे हो ना बोर हो जाते हो फ्रेंड्स के बिना, बहनों के बिना।
0: सुबह भी मेरे को गुस्सा आया था।
1: हाँ, क्यों, आपको क्यों आया?
0: क्योंकि मैं आज गांव से आई, बहुत थक गई थी, मैं पूरा 10-15 बार सर को, मैम को, प्रिंसिपल सर को फोन किया पर किसी ने नहीं उठाया। जब मैं शांति में नहा रही थी तब जाके, मैं जब मूली क्लास में थी तब जाके फोन किया,
1: तब जाके की, फिर आपने बोला उनको सर को मैम को, तो बोल सकते हैं? नहीं ना,
0: नहीं बोला।
2: मुझे भी गुस्सा आया था,
1: फिर गुस्सा ठीक कैसे किया?
0: बात किया, फिर
1: थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो गया कि कुछ किया उसके लिए?
0: नहीं, अपने आप ठीक हो जाता है,
1: अपने आप ठीक हो जाता है।
0: मैं भी गुस्सा
2: गुस्सा यू आया और यू गया।
1: यू आया।

0: और
1: यूं गया।
2: दोपहर में खेल रहे थे हम सभी तपस्यादम, तो मेरे को देखा नहीं तो भी मेरे ऊपर टाइम आ गया।
1: नहीं
2: तो तब मेरे को
1: बताओ इसको गुस्सा कैसे आया, ये पूछ रही थी इस घास में काटा है कि नहीं, तो इसने उसको उठा के काटे वाले घास में फेंक दिया
2: पैर में चुप थी। मुझे इसके साथ मजाक करना बहुत पसंद,
0: मजाक करना
2: पर मारती जरूर है,
1: और मजाक भी ऐसे ऐसे करती है
2: किताई वाली है। फिर लास्ट में मेरे को उसको धुलाई
0: करनी पड़ती है ना।
2: गुस्सा जाता है,
0: गुस्सा मतलब आप लोग को जल्दी जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी चला भी जाता है।
3: और आज मुरली में बाबा ने बोला भी था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए।
2: पर ये माया की दुनिया में थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता
0: है।
1: ऐसा कोई माया नहीं जिसे गुस्सा आए ना, सिवा
2: माया आक्रमण करती है।
0: बड़ों को भी आता है गुस्सा कि सिर्फ बच्चों को गुस्सा आता है?
1: बड़े को आता है,
2: बड़े बोले आपको भी गुस्सा आता है?
0: मुझे भी आ जाता है, ठीक करती हूँ, उस पर काम करती हूँ,
1: बाबा को याद करके मेडिटेशन करके
0: मेडिटेशन करते हैं उसके लिए।
2: छोटे बड़े बुजुर्ग को सबको
0: सबको आता है ना। सबसे ज्यादा खतरनाक गुस्सा किसका होता है?
1: एनिमल्स का।
0: एनिमल्स का
2: टाइगर का,
0: रियली
1: चीता का, मम्मा का ज्यादा।
0: मम्मा का
2: ज्यादा गुस्सा है तो फिर कुछ
1: बेलन
2: डंडा मतलब जो भी हाथ की आए वो सीधा फेंक के मारेंगे, या फिर आके
1: पिटाई
0: पिटाई। हाँ मेरी भी पिटाई हुई है बचपन में।
2: मजा भी आता है और रोना भी आता है।
1: फिर बाद में मनाने भी आते हैं।
0: मम्मी आती है मनाने के लिए? फिर क्या आप जाते हो मम्मी के बाल?
1: नहीं,
2: मम्मी आती
0: है। मम्मी आती है?
3: मैंने कोई शैतानी की हुई मम्मी ने मारा तो मैं थोड़ा देर रोती हूँ, तो मम्मी को जाके खुद से सॉरी बोल देती
1: हूँ। क्यों? क्योंकि फिर मम्मा के बिना भी नहीं लगता।
3: एक दिन मम्मा से बैठने की तो ऐसा लगता है हम दूसरे अल्लाह की दुनिया में आ गए।
1: बोरिंग, बहुत बोरिंग।
0: मम्मी से बात करने के लिए कितना टाइम लगा? कितनी देर आप लोगों ने मम्मी से बात नहीं किया? कितना मैक्सिमम टाइम है वो?
1: मैंने तो 10 मिनट से ऊपर कभी नहीं किया।
0: 10 मिनट और आपका?
2: 5 मिनट
0: आपका?
2: 1 मिनट
0: आपका?
2: 1 सेकंड
0: 1 सेकंड बाप रे, मतलब मम्मी से फटाफट बात करनी होती है ना, चाहे थोड़ा बेलन भी पड़ जाए कोई
2: लगता है बात नहीं करते ना, लेकिन
0: ज्यादा प्यारी मम्मी करती है।
3: मम्मी जब मारती है
2: जब और मैं मम्मी के साथ बात करने लगू ना बहुत देर, मतलब रात हो जाती है बात करते, मतलब बहुत देर तक बात करते,
1: जिंदगी की बात एक साथ
2: लगता है कि पूरा जिंदगी की बात मम्मी को ही बोलू, मम्मी के साथ ही हमेशा रहू,
1: टाइम स्पेंड करें। हाँ
2: मम्मी के साथ ही जो करना है करूँ।
3: और अगर कभी मम्मी ने ज्यादा ही मार दिया तो हमको आदत बन जाती, लगता नहीं फिर ज्यादा
0: कोई फर्क नहीं पड़ता।
2: मार आदत हो गया
3: मुझे, पीठ पापा किसने मारा ना अच्छा लगता है, मसाज होती है उसके लिए मम्मी को बोलती हूँ। हाँ। मैं गाल पे मत मारना, पीठ पे मारना,
0: पीठ पे मारना। मम्मी का भी काम हो जाएगा, मसाज भी हो जाएगी।
3: पापा भी बहुत दुलाई देते, पापा मुझे नहीं मारते। कभी ज्यादा शैतानी की तो कभी
2: कभी कभार थोड़ा थोड़ा मारते।
1: मेरे पापा
2: मारते तो ऐसे लगता ही नहीं है कि किसने हमको मारा।
3: जब मेरे पापा मुझे,
0: अच्छा पापा भाइयों की पिटाई करते हैं कि आपकी करते हैं?
2: भाई मम्मी लोग हमारे करते, भाई लोग
0: वो लोग ज्यादा शैतानी करते होंगे
3: पापा मुझे कभी स्लैप करते हैं तो मैं हंसती हूँ, रोती नहीं हूँ, लेकिन जब मम्मी मारती तब मैं रोती हूँ।
0: ऐसा क्यों? पापा की स्लैप पे क्यों नहीं रोते हो, मम्मी के पे क्यों रोते हो?
2: क्योंकि पापा हंस हंस की स्लैप करते हैं।
3: हाँ।
2: और ऐसे करते
3: हैं। पापा थोड़े धीर, मतलब थोड़ा सॉफ्ट, और मम्मी ज्यादा गुस्सा है तो थोड़ा जोर से
2: चढ़ाते।
0: पापा लोग तेज नहीं मारते, बहुत प्यार से ऐसे थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं।
1: हाँ, गुस्सा
3: पर गुस्सा देते नहीं। और जब पापा को गुस्सा आता है तो मैं हंसती हूँ।
2: हाँ।
1: हंसी आती है उनके।
2: पापा लोग पापा भी अच्छे है पर मम्मी लोग थोड़ा ज्यादा गुस्सा करते हैं। क्या कभी कभार ऐसे भी होता है मम्मी लोग डांटते हैं पर हम मतलब सुनते नहीं है, फिर पापा आते हैं।
0: गलती भी होती है ना।
2: हाँ, फिर ना चॉकलेट वगैरह लेके आते ना तो पापा हमको, मम्मी चले जाते किचन में, पापा झूठी झूठी ना मारने का एक्टिंग करते हैं।
3: रूमी ले जाके हमको चॉकलेट ले जाके डंडा ना डंडा ऐसे पीटते हैं नीचे,
1: पर चॉकलेट देते, चॉकलेट देते
0: हाँ, मतलब मम्मी के सामने ऐसे दिखाने के लिए कहीं कहीं और लगाते हैं,
3: चिल्लाने के लिए बोलता है
0: आपको
3: कि एक्टिंग करो,
0: एक्टिंग करो कि आपकी पिटाई हो रही है उसकी।
3: दोस्त मम्मी हम जब बाहर आते हैं तो बोले खाके मजा आया, मैंने बोला हाँ बहुत मजा आया।
0: उनको पता ही नहीं है कि डंडे की जगह चॉकलेट खाई है।
3: और कभी मम्मी मुझे मारती हो और मेरा भैया घर पे हो या जब कॉलेज में नहीं होता तो वो घर पे होता है, तो घर पे वो रहा और मम्मी मुझे मार रही है हॉल में, भैया पढ़े करते करते हॉल में आया तो देखते है कि मम्मी देवेश्री को मार रही है और मम्मी को बोलते मम्मी होर मार।
0: बताओ, मुझे लगा बचाता है आपका तो बड़ा भाई, और पिटाई भी करवाते हैं कभी कभी ना। बचाते ना भाई, छेड़ने में
3: ज्यादा है,
0: बचाता ज्यादा।
1: और अगर पापा ने यदि हमें मारा भी नहीं मम्मी के सामने, बच्चा छोड़ दो तो मम्मी बोलेंगे आपने बिगाड़ा है।
0: सबकी मम्मी ऐसी, आप भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए पापा लोगों को थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है मारने
3: की। ऐसी बुलाई आपकी बेटी है ना, आपकी जैसी हुई है,
0: सिर पे चढ़ा के रखा है ना, आप ही ने बिगाड़ा है। आप लोग को याद हो गया ना सारे डायलॉग्स, मम्मी क्या बोलने वाली है पता चल जाता है पहले से।
3: और कभी हम फैमिली मूवी टीवी पे ही देखते थे, द टूरिस्ट फैमिली, वो एक नवी मूवी आई थी तो हम घर पे ही देख रहे थे और मम्मी का क्या है उसको बीच में का स्टोरी देखा ना थोड़ा स्टार्टिंग का तो आगे का पता चल जाता है।
0: अच्छा,
3: फिर मम्मी को हम मेरा भाई और मैं बोलते
0: बताओ,
3: मम्मी बताओ देखने का क्या।
1: हाँ,
3: मजा है,
1: मम्मी लोग बता ही देते हैं।
3: हाँ, मम्मी को आगे की पता रहता है, कैसे हाँ। पता नहीं
0: कैसे पता नहीं ना, फिर बता देते हैं। ओहो, सस्पेंस खराब हो जाता है,
1: मजा नहीं आता, पता चल जाता है। तो
3: फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, जो मम्मी ने नई मूवी देखा है उसको हम लाते हैं।
0: हाँ, ताकि कोई सस्पेंस नहीं खराब रहता है ना,
3: तो भी मम्मी को पता चल जाता है।
1: हाँ, क्योंकि कुछ वैसा रहता है ना जो हमारे घर के अंदर भी होता है,
0: मतलब
3: और कुछ ऐसी मूवीज होती है जो दूसरी कोई मूवी में वैसा हुआ होता है वही मूवी में थोड़ा डाला।
1: हाँ, और हर मूवी में यही है कि एंड में जाके अच्छा ही जीतती
3: है। ऐसे भी होता है हमें नहीं पता चलता कि मम्मी ने ये मूवी देखा है, मम्मी बोलते हैं ये नहीं देखा मैंने, फिर बाद में वही बोल देते कि मैंने देखा है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है।
0: अच्छा, आप हम इमोशंस के बारे में बातें कर रहे हैं ना, आप लोग को रोना किस बात पे आता है, अपसेट या सैड कब लगा था, कुछ याद है आपको?
2: मैं कल सुबह हुई थी,
0: आज सुबह बहुत सैड लगा हो, रोना आया हो बहुत,
2: कल भी रात को। मैं तो आज सुबह ही हुई थी, मम्मी चले गई थी उसके लिए,
0: तो मम्मी चले गई तो उसमें सारे इमोशंस आ गए, डर भी लगा,
2: रोना भी आया, गुस्सा भी आया,
0: रोना भी आया। और आप लोग को कुछ इंसिडेंट ऐसा याद है क्यों रोना आया था, क्या हुआ था?
2: सुबह थोड़ा पापा बहुत डांट रहे थे
0: तो रोना आया।
3: हाँ, और मम्मी ना मतलब सुबह ना मतलब थके आ रहे हम आए थे गाँव से, तो मम्मी ना जो जबरदस्ती स्कूल भेज रहे थे उस टाइम मुझे रोना आया,
0: थक गए थे ना। हाँ, मन नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन मम्मी को लगा होगा ना पढ़ाई नहीं छूटे बहुत समय हो गया। हाँ,
2: कल ट्रेन में मुझे मेरे भाई डांट रही थी, मार रही थी
0: इसलिए रोना आया ना।
3: मुझे मेरे भाई की वजह से चक्कर लगा है।
0: क्यों?
3: क्योंकि जब मेरा भाई मतलब मैं बहुत छोटी थी उससे, जब वो ना मेरी इच्छा था फोर्थ में, तब वो ज्यादा कुछ मोबाइल देख रहा था, कुछ तो खेल रहे थे पता नहीं अभी वो तो, और मम्मी नहा के आई, फिर मम्मी आई, मम्मी ने देखा ये कब से मोबाइल चला रहा है, जब से मम्मी नहाने को गई तब से, उसके पहले से मतलब, तो मम्मी आई उसको सांची गर्म करी और भैया के पास ले, मैं गई बीच में हाथ डाली।
0: आप भी को लग गया, मतलब भाई को बचाने गए थे आप।
3: हाँ,
0: भाई से कितना प्यार है ना आप लोग को, सबको एक दूसरे से बहुत प्यार है। अच्छा, बिना मम्मी की डांट के या मार के या घर वालों के बिना और किसी बात पे कभी रोना आया आप लोगों को, अपसेट हुए हो बहुत?
3: हाँ,
0: कोई स्कूल में भी डांट या मार की बात नहीं कर रही मैं, डांट या मार नहीं पड़ी हो, उसके अलावा कभी कोई चीज बुरी लगी हो, हर्ट हुए हो आप?
3: हाँ, जब हम सोसाइटी में खेलते तो एक साथ मिलके खेलते, और कभी मेरे फ्रेंड ने मुझे देख के इग्नोर किया तो बहुत गुस्सा आता है, और स्कूल में भी अगर मेरे फ्रेंड ने मुझसे बात नहीं की तो आता ही है।
0: और आप लोगों को?
1: मुझे तब गुस्सा आता है जब छोटी छोटी बातों पे ये गुस्सा हो जाती है ना, तब तो मुझे गुस्सा।
0: रोना कब आया आप लोगों को? बहुत अपसेट का फील।
2: मुझे ना मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे मतलब उन लोग अपना टीम बना लेते हैं और मुझे अकेला छोड़ देते हैं, और मेरी चीज को ही लेके फिर खाते हैं, मेरी चीज से ही कुछ करता है, इसलिए मुझे बहुत अपसेट,
0: बहुत बुरा लगता है ना। हर्ट होता है।
2: कि और पहले मेरे सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, फिर मुझे ही छोड़ देते हैं।
1: हाँ, मतलब के लिए,
0: मतलब के लिए।
1: हाँ,
2: जैसे कि स्कूल गए और बेस्ट फ्रेंड की तबीयत खराब है तब थोड़ा रोना आता है। हाँ। ये पूरा दिन उसके साथ ही रहते हैं।
1: हाँ, और अगर कोई बहस करते हैं
2: जी तो तब उन लोग स्कूल भी नहीं आए, फिर हमारे साथ बात भी नहीं करे तब थोड़ा
0: बुरा लगता है।
3: और कभी हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्कूल में नहीं आई तो गुस्सा आता है,
1: लगती है। हाँ। तो गुस्सा आता है, बहुत
0: गुस्सा आता है।
3: क्यों नहीं आई,
0: मैं अकेले क्या करूंगी,
3: इसको क्या हुआ था,
2: मुझे नाराज
3: क्या लगा होगा,
2: गुस्सा भी आता है,
1: रोना भी आता है,
0: साथ में होता है सब कुछ।
2: ज्यादातर रोना आता है।
0: लेकिन फिर आप लोग उसको कैसे ठीक करते हो, क्या करते हो?
2: वो जब आती है तो बहुत खुश आता है।
1: नहीं, मैं तो मेडिटेशन करके।
0: अच्छा, कितनी देर लगती है, मान लो आपको रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कितनी देर लगी उसको ओके होने में?
2: जब तक सर नहीं आए तब तक मैं तो पूरी सैड अप हूं, जब सर आते हैं तब
0: आंसू पोंछ, क्योंकि पढ़ाई करनी है।
1: जब तक मैं मेडिटेशन ना करूँ तब तक
0: ओके। और आप?
2: वन मिनट
0: में अपने आप ही, या कुछ करते हो उसके लिए?
2: अपने
0: आप रो रहे हो, फिर एक मिनट में एकदम ठीक हो जाते हो फटाफट?
3: हाँ। नहीं तो मेरी कोई फ्रेंड होती है और मैं रो रही हूँ, कुछ फनी एक्टिंग करके हंसा देती है
0: तो ठीक हो जाता है सब कुछ।
2: मेरे को तो मेरी दोस्ती बनाते हैं,
3: और मुझे 2 मिनट में हंसना आता है।
0: कैसे ठीक होते हो?
2: मतलब मैं किसी बात में, सर ने मारा है कुछ भी हुआ तो मैं रोती हूँ ना, तो मेरे दोस्त दूसरे सीट पे बैठते हैं, मैं दूसरे सीट पे बैठती हूँ, वो सर पढ़ा रहे, वो आके तो भी मैं कुछ मतलब कुछ भी करके हंसा देता। पर सर से वो डांट खाती है तो इसका कुछ नहीं होता।
0: और आपके फ्रेंड्स जैसे मान लो आपको शामिल नहीं कर रहे किसी चीज में, आपको बुरा लग रहा है, तो फिर क्या करते हो आप?
2: मैं कुछ नहीं करती फिर। मैं मतलब मेरे भाई लोग भी है स्कूल में, मैं उनके साथ खेलती हूँ, फिर उन लोग जब मेरे से मिलने की कोशिश करते हैं फिर मैं उनको अनदेखा कर देती हूँ, क्योंकि बाद में वो फिर से धोखा देने वाले। वैसे ही मैं खेलती रहती हूँ, मतलब ऐसे ही बाबा से बात करती हूँ, ऐसे ही मैं अकेला, मतलब बाबा और मैं। मतलब हमारी एक दीदी है, वो इसके क्लास भी पढ़ते, उसका नाम है पलक। तो उसने क्या बोला कि तुमको कोई भी सताए या कुछ भी करे इनको बोलना, मैं उसका समझाती हूँ। तो दीदी का थोड़ा चाहता है स्कूल में उसको बोलते तो वो ना प्रिंसिपल सर को डायरेक्ट जाके बता देती है, प्रिंसिपल सर उनको डांटते हैं।
1: और अगर मैं कभी रोती हूँ क्लास के अंदर तो फिर वो लोग भी शांति से रोने का नाटक करते हैं ये देख के। और स्कूल मनाने के लिए।
0: अच्छा, आपको मनाने के लिए कि हम भी अपसेट हैं, तुम अपसेट हो तो।
3: और स्कूल में और हमारे सोसाइटी में कोई कोई बच्चे अच्छे भी होते कि हम उनको हमारी जो प्रॉब्लम है, हम क्यों अपसेट हैं, वो बता सकते हैं। हमारे सोसाइटी में ऐसी एक लड़की है जिसको मतलब एक बार मैंने पूछा था, हम एक बच्चे के घर पे थे छोटे, वो हमारा भाई लगता है, हम उसको भाई मानते हैं। तो वो एक लड़की थी, उसका नाम मृदुला है। तो वो आ रही थी और मैंने पूछा कहाँ, मतलब सॉरी जा रही थी, मैंने पूछा कहाँ जा रही है, और मैंने ऐसा किया था गलती से, मेरा हाथ ऐसा चला गया था, वो ऐसे गिरी बस, घुटने को लगा भी नहीं उसके, तभी
0: रोने लगी।
3: उसके मम्मी मेरे को चिल्ला रही है, मेरी कोई गलती नहीं है तो भी, और मैट डाली थी, अभी तो कुछ नहीं लगेगा ना।
0: फिर क्या किया आपने?
3: कुछ नहीं।
0: सुना जब उन्होंने डांटा तो फिर बुरा लगा होगा आपको, क्यों डांटा मेरे को,
3: बहुत
0: है ना।
3: और मेरी
2: बिना मतलब के डांटा,
0: बिना मतलब की डांटनी अच्छी
3: लगती है। और ऐसी फ्रेंड है कि मैंने मेरी एक दूसरी फ्रेंड थी तो उसको उसने, वो भी मेरे साथ थी, और एक दूसरी फ्रेंड थी जो मेरे साथ नहीं थी, फिर हम उसको बुलाने गए थे, फिर मैंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो हंसने लग रही है
0: उसको ये सुन के हंसी आ गई ना। हाँ. आप सुना रहे हो कि आपको गुस्सा आया और वो सुन के हंस रही है.
3: हाँ. फिर
0: हाँ, ये तो गलत बात है ना. सुनना चाहिए ना ध्यान से अपने फ्रेंड को ही कुछ बोले तो.
3: हाँ.
0: है ना कि भाई उसको बुरा लगा. कोई बात नहीं, आपको नहीं बुरा लगा बट उसको बुरा लगा ये बात सुन के. है ना,
3: ये सुनती भी है और हंसती भी है और रोती भी है और गुस्सा
0: फ्रेंड्स चिढ़ाते भी है ना थोड़ा.
3: हाँ, ये बहुत चिढ़ाती है.
0: हाँ, मस्ती भी करते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे. हाँ, के साथ ना एक दूसरे को चिढ़ाते हैं
3: ज्यादातर फ्रेंड्स.
0: लेकिन शेयर करना, जब कोई शेयर करता है हमसे और उसको बहुत बुरा लगा है तो उसको फिर ध्यान से सुनना चाहिए. है ना, प्यार से सुनना चाहिए ताकि उसको ऐसे नहीं लगे कि नेक्स्ट टाइम वो हमें नहीं बता सकता.
3: मैं वैसे ही करती हूँ. कोई मेरे स्कूल में जो मेरा फ्रेंड ही ना हो और वो रोने लग रहे तो भी उसको हाँ, समझ नहीं पड़ेगा.
0: हाँ, सबको, हम सबको, तभी तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं ना.
3: हाँ.
0: अच्छा, आप लोग को कभी बुरा लगता है तो शेयर किससे करते हो, बताते किसको?
1: हम दोनों बहनें, हम तीनों
0: तीनों एक दूसरे को बताते हो.
3: हाँ. मैं मेरे मॉम को बताती हूँ.
0: मॉम को बताते हो, वेरी गुड. आप लोग मम्मी को नहीं बताते?
1: बताते हैं.
3: और अगर
1: सारी चीज मम्मा को बताना चाहिए, बाबा को भी बताना चाहिए.
3: मैं पहले भगवान को बताती हूँ, फिर मम्मी को बताती हूँ और फिर भैया को बताती हूँ.
0: आप किसको बताते हो?
2: मैं, मम्मी, पापा, सिस्टर.
0: जो सबसे पहले मिला, जो सबसे पहले मिला इनमें से, या ढूंढते हो किसी को कि उसी को बताना है?
2: नहीं, सबसे पहले मम्मी को बताती हूँ.
0: सबसे पहले मम्मी को
1: बताती हूँ. मैं सबसे पहले मम्मी को बताती हूँ, फिर पापा को बताती हूँ. नहीं, सबसे पहले बाबा को बताती हूँ, फिर मम्मा को बताती हूँ, फिर पापा को बताती हूँ, फिर इसे बताती हूँ.
0: सबको बताती?
1: नहीं, इस तक ही.
0: इस तक ही चालू है ना
1: इसको.
0: मतलब हमारे इमोशंस जो होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना. और हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे हाथों में है.
3: और कभी मैं, मतलब मैं नीचे गिर जाऊँ, पत्थर पे गिरी हूँ और खून निकले तो भी मैं हंसने लगती हूँ. मेरे दोस्त बोलते, अरे भाई तेको लगा है,
0: तो भी हंसी आती है. आपको दर्द नहीं होता?
1: नहीं,
0: मजा आता है.
1: मैं तो खेलने लगती
3: हूँ. मैं बाबा को बुलाती हूँ.
2: मेरी दीदी जब रोती है ना तब मेरे को रोना चाहता
3: है. एक बार मैं साइकिल से गिरी थी, जोर से चला रही थी, ब्रेक भी नहीं था मेरे साइकिल को. डायरेक्ट ऐसे गिरी थी.
0: चोट लगी होगी?
3: इधर लगा था. मैं बोली, मैं भी साइकिल से लगा है, कुछ नहीं लगा है.
0: साइकिल से लगी? हाँ.
3: तो भी मैं हंस रही थी.
1: अरे, मैं तो साइकिल चला रही थी और पीछे देख रही थी, एकदम से जाकर मेरी साइकिल पत्थरे से टकरा गई. तो फिर जैसे ही मैं गिरी ना, घुटना फूट गया, लेकिन फिर भी मैं खेल रही थी.
0: तो आप लोग को चोटने में दर्द नहीं होता?
1: नहीं, बाबा को बुला लेते.
2: क्या हुआ, हमारे, मैं पहले जहाँ पर रहती थी वहाँ पर ऐसा थोड़ा सा ढलान है पूरा, फिर वहां से साइकिल चलाई, नीचे आई, मतलब थोड़ा सा बचा था नीचे आने में, धपास, फिर चोट लगी थी तब.
3: और एक बार ना,
0: चोट लगती है तो दर्द हो सकता है.
2: हाँ, पर मैं एक दिन क्या हुआ, स्कूल जा रही थी ना, तो अपना 6 बार गिरी थी. गिरी उठी, फिर गिरी उठी, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर यहाँ पर पूरा घाव बन गया था.
0: लेकिन ध्यान रखना चाहिए, साइकिल जब चलाएं
1: तो भी बाबा को बुला लो.
2: तो भी मैंने रोया नहीं तो.
0: और स्पीड में बहुत फास्ट फास्ट नहीं चलानी चाहिए. अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले अपना ध्यान तो मैं ही रखूंगी ना.
1: हाँ,
0: है ना. अब भगवान भी हमारा ध्यान कैसे रखेगा जब हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो. है ना, आप लोगों ने सुना है एक वो कहावत है, क्या मैं खुद ही भूल गई? जब हम खुद अपनी मदद करते हैं तब भगवान हमारी मदद करता है.
1: हाँ.
0: सुना.
2: जब मेरे को चोट लगी थी ना, तब मम्मी जब प्यार कर रही थी ना, तभी मेरे को थोड़ा देख के रोना है. नहीं, जब मैं गिरी थी ना, मेरे को दौड़ी थी, फील हो रही थी.
0: होता है, चोट लगती है तो रोना आता है.
2: हाँ.
0: लेकिन कहते हैं, मुझे कहावत याद आ गई, हिम्मत मर्दा मदद खुदा. तो इसलिए हिम्मत रखनी है, खुद की मदद करनी है और फिर भगवान भी हमारी मदद करेंगे. है ना, तो बहुत मजा आया आप लोगों से ढेर सारी बातें करके. फिर आप लोगों ने इतनी सारी बातें शेयर की तो और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं हम सभी, है ना, शेयर करके. तो चलो, फिलहाल अपने जो दोस्त हमें जो रेडियो पे सुन रहे हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं, उन्होंने हमसे इतनी सारी बातें करी हैं, उनको भी हम कहते हैं बाय बाय दोस्तों.
4: बाय बाय दोस्तों.
0: रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए,
4: मुस्कुराते

0: बच्चों सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 5 महापरिनिर्वाण, पृष्ठ संख्या 66। महापरिनिर्वाण, निर्वाण की ओर। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन चली गई। इसी समय लिच्छिवी सामंतों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उद्यान में विराजमान हैं, अतः वे सब उनके दर्शन के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ सुसज्जित हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर सवार होकर आए। आम्रपाली के उद्यान के पास पहुंचकर वे अपने वाहनों से उतर गए और भगवान बुद्ध के निकट जाकर नमस्कार करके धरती पर बैठ गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धर्म में आप लोगों की श्रद्धा आपके राज्य बल और रूप से भी अधिक मूल्यवान है। मैं वृज्जियों को भाग्यशाली मानता हूं जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धर्मज्ञ राजा प्राप्त हुए हैं। आप सभी शीलवान हैं और शील ही स्वर्ग मार्ग का संकेतक है, वही स्वर्ग ले जाने वाली नौका है। इसलिए शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी लिच्छिवी सामंतों ने उन्हें फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित किया। तथागत ने उन्हें बताया कि इसके लिए वे पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर उसे वचन दे चुके हैं। यह सुनकर लिच्छियों को बुरा लगा, परंतु महामुनि के उपदेशों के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार किया। आम्रपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध चतुर्मास वास के लिए वेणुमति नगर चले गए। वहां वर्षा काल के 4 मास व्यतीत किए। इसके बाद वे पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे। पृष्ठ संख्या 67। जब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे कि तभी उनके पास मार आया और सिर झुकाकर कहने लगा, हे मुनि, नैरंजना नदी के तट पर जब आपने बुद्धत्व प्राप्त किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप कृतकृत्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था, जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता तब तक मैं अपने निर्वाण की कामना नहीं करूंगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर हैं, वे सभी निर्वाण प्राप्त करेंगे, अतः अब आप भी निर्वाण प्राप्त कीजिए। मार की विनती सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूं, तुम चिंता मत करो, मैं आज से 3rd मास निर्वाण प्राप्त करूंगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर मार बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को प्रणाम कर वहां से चला गया। मार के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राणवायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों का निरोध किया, आकाश में चारों ओर से उल्कापात होने लगा, धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और वज्र गर्जना होने लगी। सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल मच गई। इस प्रकार मरते लोक, दिव्य लोक और आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि से निकलकर कहा, आयु से मुक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया हो। मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूं, परंतु जैसे अंडा फोड़कर पक्षी बाहर आ जाता है, वैसे ही मैं भी अब बाहर आ गया हूं। लिच्छवियों पर अनुग्रह। इस प्रकार की हलचल देखकर आनंद कांपने लगा और चक्कर खाकर वैसे ही गिर पड़ा जैसे जड़ के कट जाने पर वृक्ष धरती पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर वह खड़ा हुआ और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछने लगा। उन्होंने बताया कि मेरा भूलोक में निवास का समय अब पूरा हो चुका है, इसीलिए सर्वत्र हलचल है। अब मैं केवल 3 मास और इस पृथ्वी पर रहूंगा, फिर चिरंतन निर्वाण प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर आनंद को बड़ा आघात लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तथागत ही उसके गुरु थे, स्वजन थे और सर्वस्व थे। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। विलाप करते हुए आनंद ने कहा, आपके निश्चित प्रस्थान की बात सुनकर मेरा मन दुखी हो गया है, शरीर संतप्त हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आपसे सुना हुआ धर्म लुप्त होता जा रहा है। इस पाप रूपी जंगल में भटकने वाले प्राणियों का मार्गदर्शन अब कौन करेगा? शोक संतप्त और व्याकुल आनंद को सांत्वना देते हुए भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे आनंद, तुम्हें जगत का रहस्य समझना चाहिए। देखो, जो भी जन्म लेता है अवश्य मरता है। इस लोक में कुछ भी स्वाधीन नहीं है, कोई भी प्राणी अमर नहीं है। यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता, फिर मुक्ति का क्या महत्व होता? हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है। बुद्ध किसी से कुछ भी नहीं छिपाता। मैं शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान हैं। हां, मेरे जाने के बाद भी मेरे द्वारा जलाया गया यह धर्म का दीपक सदा जलता रहेगा। तुम उसी दीपक के प्रकाश में निर्द्वंद्व होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरे जाने के बाद भी जो लोग इस धर्म के मार्ग में स्थिर रहेंगे, वे निश्चित ही निर्वाण पद प्राप्त करेंगे। जब भगवान बुद्ध आनंद को समझा रहे थे, तभी उनके निर्वाण का समाचार सुनकर सभी लिच्छवी दौड़ते हुए वहां आ गए और भगवान को प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। तब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों से कहा, मैं आप सबके मन की बात जानता हूं। आप भी अन्य लोगों की भांति शोक संतप्त होकर यहां आए हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने मेरे उपदेशों को ध्यान से सुना और ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपको मेरे जाने के कारण शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उन्हें आगे समझाया, देखो, इस परिवर्तनशील संसार में शरीर काल का भोजन है, जीवन क्षणभंगुर है। इस जगत में सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। पहले भी जो बुद्ध हुए हैं, वे भी अपनी बुद्धि के प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर तेल समाप्त होने वाले दीपक की तरह सदा के लिए बुझ गए। भविष्य में भी बुद्ध पैदा होंगे, वे भी लकड़ी के जल जाने के बाद अग्नि की तरह शांत हो जाएंगे। मुझे भी अब उसी मार्ग पर जाना है। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, इस रम्य नगरी में अभी भी कुछ अदीक्षित लोग रह गए हैं, अतः मुझे चलना चाहिए। आप लोग किसी प्रकार का शोक ना करें और मेरे बताए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। पृष्ठ संख्या 69। इस प्रकार लिच्छवियों पर अनुग्रह कर उन्हें उपदेश देकर भगवान बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे सभी लिच्छवी भी रोते बिलखते चलने लगे। वे कह रहे थे, आहा, विशुद्ध स्वर्णिम आभा वाले गुरु की देह नष्ट हो जाएगी, क्या भगवान भी अनित्य है? विलाप करते हुए लिच्छवियों को भगवान बुद्ध ने पुनः समझाया और उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। परंतु जैसे लहर हवा की विपरीत दिशा में नहीं चल पाती, वैसे ही वे घर लौटने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। जैसे ही भगवान बुद्ध वैशाली नगर को छोड़कर आगे बढ़े, वह नगरी राहु द्वारा ग्रसित सूर्य के समान प्रभाशून्य हो गई। जैसे विद्या के बिना रूप, क्रिया के बिना ज्ञान, भक्ति के बिना बुद्धि, संस्कार के बिना शक्ति, सदाचार के बिना संपत्ति, श्रद्धा के बिना प्रेम, उद्योग के बिना लक्ष्मी, कर्म के बिना धर्म तथा वर्षा के बिना धान के खेत शोभाहीन लगते हैं, वैसे ही तथागत के बिना यह वैशाली शोभाहीन हो गई थी। उस दिन शोक के कारण वैशाली में किसी ने भोजन नहीं किया, न ही किसी ने जल ग्रहण किया। उधर तथागत ने नगर की सीमा पर आकर उसकी ओर मुंह करके कहा, हे वैशाली, अपने जीवन के शेष भाग में अब मैं तुम्हें फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अब निर्वाण के मार्ग पर जा रहा हूं। उन्होंने अपने पीछे पीछे चले आ रहे सभी लोगों को समझाया, उन्हें अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहा और स्वयं भोगवती नगरी की ओर चल पड़े। भोगवती नगरी में कुछ समय रहने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिए और कहा, मेरे जाने के बाद आप लोग धर्म का अनुसरण करें। मैंने जो कुछ सूत्रों में बताया है और जो विनय में है, आप उसी का अनुसरण कीजिए। जिसमें विनय नहीं है, वह ना मेरा वचन है और ना धर्म। पवित्र लोगों के वचन वैसे ही ग्रहण करना जैसे कि स्वर्णकार स्वर्ण को तपाकर उसकी परीक्षा करके उसे ग्रहण करता है। इसलिए शब्द को अर्थ के अनुसार ठीक ठीक सुनकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। जो शास्त्र को अनुचित रीति से ग्रहण करता है, वह अपने को ही क्षति पहुंचाता है। जैसे तलवार को अनुचित रीति से ग्रहण करने वाला अपने आप को ही काट लेता है। इस प्रकार अपने शिष्यों को उपदेश देकर भगवान बुद्ध ने पापापुर के लिए प्रस्थान किया। पापापुर पहुंचने पर मल्लों ने उनका समारोह पूर्वक स्वागत किया। पृष्ठ संख्या 70। वहां उन्होंने अपने भक्त चुंद के घर अंतिम भोजन किया। अपनी शिष्य मंडली के साथ भोजन कर लेने के बाद उन्होंने चुंद को उपदेश दिए और फिर कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध ने चुंद के साथ इरावती नदी को पार किया और फिर नगर के एक सुंदर उपवन में एक सरोवर के तट पर कुछ समय विश्राम किया। तदुपरांत उन्होंने हिरण्यवती नदी में स्नान किया और शोकाकुल आनंद को आदेश दिया, हे आनंद, इन दोनों शाल वृक्षों के बीच मेरे शयन के लिए स्थान तैयार करो। हे महाभाग, आज रात्रि के उत्तर भाग में तथागत निर्वाण प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार आनंद ने शयन के लिए स्थान तैयार किया और फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवन, शैया तैयार है। तब वह पुरुष सिंह चिर निद्रा के लिए शांत चित्त से शैया के निकट गए। वे हाथ का तकिया बनाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर और अपने शिष्यों की ओर उन्मुख होकर दाई करवट लेट गए। उस समय सारी दिशाएं शांत हो गईं, सभी पक्षी निशब्द हो गए और सभी जीव जंतु मौन, मानो सारा संसार स्तब्ध हो गया हो। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध को निर्वाण लेते हुए दिखाया गया है। आइए अब सुनते हैं पाठ। सूर्यास्त के समय जैसे पथिकों को घर जाने की शीघ्रता होती है, वैसे ही सभी उपस्थित शिष्यों को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की शीघ्रता होने लगी। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, तुम मल्लों को मेरे प्रयाण की सूचना दे दो, वे भी निर्वाण देख लें, जिससे उन्हें बाद में पश्चाताप ना हो। पृष्ठ संख्या 71। आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को सूचित किया कि तथागत अब अंतिम शैया पर हैं। यह सुनकर सभी मल्ल अत्यंत व्याकुल होकर आंसू बहाते हुए निकल पड़े। वे शीघ्र ही महामुनि के पास आए और अपने आंसुओं से भगवान बुद्ध के चरणों को भिगोते हुए उनके सन्मुख मौन होकर खड़े हो गए। सभी मल्लों को व्याकुल देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद के समय दुखी होना उचित नहीं है। यह दुर्लभ और काम्य लक्ष्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मुझे आज वह सुखमय पुण्य प्राप्त हो रहा है जो पंचभूतों से मुक्त, जन्म से रहित, इंद्रियातीत, शांत और दिव्य रूप है, जिसके बाद किसी प्रकार का शोक नहीं होता। यह शोक का समय नहीं है, क्योंकि सभी दुखों का मूल मेरा भौतिक शरीर आज निवृत्त हो रहा है। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर एक वृद्ध मल्ल ने कहा, सुजन के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा चित्त दुखी है, क्योंकि अब हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। जगत के हितैषी के जाने पर भला कौन शोक नहीं करेगा। शोचनीय तो वे हैं जिन्होंने मुनि के दर्शन करके भी सुमार्ग का अनुसरण नहीं किया। सोने की खान में रहकर भी जो दरिद्र ही रहा। वृद्ध मल के वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, सच तो यह है कि मात्र मेरे दर्शनों से निर्वाण नहीं मिल सकता। जो मेरे धर्म को ठीक से समझता है वह मेरे दर्शन के बिना भी दुखों के जाल से मुक्त हो जाता है। औषधि के सेवन के बिना मात्र वैद्य के दर्शन से रोग से मुक्ति नहीं होती। इसीलिए श्रेय का आचरण करो। जीवन तेज हवा के बीच दीप शिख की तरह चंचल है। इस प्रकार महामुनि के दर्शन कर और उनके उपदेश सुनकर सभी मल्लों ने उन्हें प्रणाम किया और आदेशानुसार वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। पृष्ठ संख्या 72। महापरिनिर्वाण। मल्लों के चले जाने पर सुभद्र नाम का त्रिदंडी सन्यासी भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए आ गया। वह एक सिद्ध पुरुष था। उसने आनंद से कहा कि निर्वाण के अंतिम क्षणों में मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता हूं। आनंद ने सोचा कि कहीं यह सन्यासी बुद्ध से शास्त्रार्थ न करने लगे, इसीलिए उन्होंने सन्यासी को भगवान बुद्ध के निकट जाने से रोका। परंतु तथागत ने लेटे लेटे ही आनंद से कहा, हे आनंद, इस जिज्ञासु मुमुक्षु को रोको मत, आने दो। यह सुनकर सुभद्र सविनय सुगत के पास गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवन, मैंने सुना है कि आपने मोक्ष के जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वह अन्य सभी मार्गों से भिन्न है, कृपा पुंज वह मार्ग कैसा है, मुझे बताने की कृपा करें। मैं जिज्ञासावश आपके पास आया हूं, विवाद के लिए नहीं। सुभद्र की प्रार्थना सुनकर तथागत ने उसे अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। इसे सुनते ही सुभद्र की ज्ञान दृष्टि सम्यक रूप से खुल गई। वह उसी तरह प्रसन्नता का अनुभव करने लगा जैसे भटका हुआ राही अपने गांव पहुंच जाने पर करता है। उसने गदगद होकर कहा, मैं अब तक जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा था वह श्रेयस्कर नहीं था, आज मुझे सच्चा मार्ग मिल गया है। अत्यंत प्रसन्न होकर सुभद्र ने भगवान बुद्ध की ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर निवेदन किया, हे पूज्य गुरुवर, आपकी मृत्यु का दर्शन करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, अतः मैं उससे पहले ही अपनी देह त्याग कर निर्वाण पद प्राप्त करने की अनुमति चाहता हूं। ऐसा कहकर त्रिदंडी सुभद्र ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, शैल की तरह स्थिर होकर बैठ गया और एक ही क्षण में वायु से बुझे दीपक की भांति निर्वाण को प्राप्त कर गया। संस्कार के ज्ञाता तथागत ने तब सुभद्र का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया और कहा, सुभद्र मेरा उत्तम और अंतिम शिष्य था। आधी रात

बीतने पर जब चांदनी के प्रकाश का विस्तार हुआ, सारा वन प्रदेश पूरी तरह शांत हो गया। तब भगवान बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी शिष्यों को बुलाया और अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे निर्वाण के बाद आप सबको इस प्रातिमोक्ष को ही अपना आचार्य, प्रदीप तथा उपदेष्टा मानना चाहिए। आपको उसी का स्वाध्याय करना चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह प्रातिमोक्ष शील का सार है, बुद्धि का मूल है। इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तथागत ने प्रातिमोक्ष के सारे नियम विस्तार से समझाए और अंत में कहा, मैंने गुरु का कर्तव्य निभाया है, आगे तुम लोग साधना करो। विहार, वन, पर्वत, जहां भी रहो, धर्म का आचरण करो। यदि मेरे बताए आर्य सत्यों के विषय में किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो पूछ लो। तथागत के मुख से अंतिम उपदेश ग्रहण करने के बाद सभी शिष्य मौन और शांत बैठे रहे, तो अनिरुद्ध ने तथागत से निवेदन किया, हे सुगत, आप द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्यों में किसी को भ्रम नहीं है। पृष्ठ संख्या 73। अनिरुद्ध की बात सुनकर तथागत ने कहा, हे अनिरुद्ध, सभी की मृत्यु निश्चित है। अब मेरे जीवित रहने से संसार को कोई लाभ नहीं। स्वर्ग और भूलोक में जो भी दीक्षित होने योग्य थे, वे सभी धर्म में दीक्षित हो गए। अब इन्हीं के द्वारा मेरा धर्म जनता में प्रचलित होगा और उससे संसार में स्थायी शांति स्थापित होगी। तुम सब लोग शोक त्याग कर जागरूक रहो, यही मेरा अंतिम वचन है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने प्रथम ध्यान में प्रवेश किया, फिर दूसरे ध्यान में, और इस तरह क्रमशः ध्यान के अनेक स्तरों को पार कर पुनः चतुर्थ ध्यान में आ गए और सदा के लिए शांत हो गए। महापरिनिर्वाण के बाद, भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद सारा संसार ऐसा लगने लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश। पाले से मुरझाए कमलों का सरोवर अथवा धन के अभाव में निष्फल विद्या। निर्वाण का समाचार सुनकर आकाश से देवता गण भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगे। उनमें से एक ने कहा, अहो, यह सारा संसार नश्वर है, जहां मृत्यु के लिए जन्म होता है और जन्म के लिए मृत्यु। जो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त है, वही भाग्यवान है। देखो, ज्ञान की ज्वाला तथा यश रूपी ज्योति को आज काल ने सदा के लिए शांत कर दिया है। किसी मुनि श्रेष्ठ ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यह संसार असार है, यहां सभी कुछ नश्वर है। जो सारे लोक का गुरु था, वह भी आज काल कवलित हो गया। अंधकार में डूबे लोक को देखकर अनिरुद्ध ने कहा, इस लोक की गति कैसी विचित्र है। तथागत ने दुख मुक्त होकर तपस्या की, आलस्य मुक्त होकर धर्माचरण किया, लोभ मुक्त होकर योगाभ्यास किया और अब मोह मुक्त होकर इस शरीर का भी त्याग कर दिया। जैसे बुद्धि के बिना विद्या, आचरण के बिना क्रिया तथा दया के बिना धर्म निरर्थक होता है, वैसे ही शाक्य मुनि के बिना यह संसार आज व्यर्थ लग रहा है। भगवान बुद्ध के निर्वाण का समाचार जैसे ही मल्लों ने सुना, वे भी रोते हुए वहां दौड़े चले आए और विलाप करने लगे। फिर मल्लों ने मिलकर महामुनि के शव को स्वर्णमय सुंदर शिविका में स्थापित किया, विविध प्रकार की सुगंधित फूल मालाओं से भक्तिपूर्वक पूजा की, शिविका को श्वेत कपड़े से ढका और चंवर डुलाते हुए उसे अपने कंधों पर उठाया। पृष्ठ संख्या
74। भक्ति पूर्वक भगवान बुद्ध की शव शिविका को वे नगर के मध्य भाग में ले आए। फिर वे नगर के नाग द्वार से बाहर निकले और हिरण्यवती नदी को पार किया। उन्होंने मुकुट चैत्य के पास चंदन, अगरू तथा वलकल आदि से चिता बनाई और उस पर महामुनि के शव को रख दिया। दीपक जलाकर मल्लों ने चिता में आग दी, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी चिता में आग नहीं लगी। भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य काश्यप अभी मार्ग में ही था, उसी के अभाव में चिता में आग नहीं लग पा रही थी। जैसे ही काश्यप दौड़ते हुए वहां आए, उन्होंने अपने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चिता में स्वतः ही आग लग गई। चिता की अग्नि ने भगवान बुद्ध के शरीर के मांस, चर्म, बाल तथा अन्य अवयवों को जला दिया, परंतु उनकी अस्थियां यथावत बनी रहीं। उन्हें चिता की अग्नि न जला सकी। चिता के शांत हो जाने पर मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को शुद्ध जल से धोया और उन्हें स्वर्ण कलश में रखा। उसे अपने नगर के मध्य ले गए। लोगों ने महामुनि की प्रशंसा में स्तोत्र गाए। किसी ने कहा, इस घट में वे धातु यानी अस्थियां स्थापित हैं जिन्हें चिता की अग्नि नहीं जला सकी। किसी ने कहा, ये अस्थियां मंगलमय हैं, अमूल्य हैं। हम इन्हें यहां स्थापित कर रहे हैं जिससे संसार को शांति प्राप्त हो। यहां एक चित्र है जिसमें बुद्ध के महानिर्वाण को दिखाया गया है। अब सुनते हैं पाठ, पृष्ठ संख्या 75। किसी अन्य ने कहा, अहो काल कितना निष्ठुर है, इसने महामुनि को भी नहीं छोड़ा जिसके धर्म और यश से सारा चराचर जगत चमत्कृत है। बाद में मल्लों ने अस्थि कलश के लिए अत्यंत सुंदर पूजा भवन का निर्माण करवाया और उसमें अस्थि कलश स्थापित किया। कुछ समय तक मल्लों ने भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की विधिवत पूजा अर्चना की, परंतु धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों से दूत आने लगे और भगवान बुद्ध की अस्थियों को मांगने लगे। एक दिन 7 पड़ोसी राज्यों से दूत आए और उन्होंने अस्थियां मांगी, परंतु भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए मन में अत्यंत श्रद्धा होने तथा अपने बल पर अभिमान होने के कारण मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियां देने से मना कर दिया और वे लड़ने की तैयारी करने लगे। दूत लौट गए। उन्होंने सारी बातें अपने अपने राजाओं से कही। दूतों की बात सुनकर पड़ोसी राजा भी क्रोधित हुए। उन्होंने मिलकर युद्ध करने का निर्णय किया। वे अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राज्यों की सेनाओं ने कुशपुर यानी कुशीनगर को चारों ओर से घेर लिया और वे मल्लों को ललकारने लगे। पुरवासी मल्ल भी संगठित होने लगे। उन्होंने विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किए। वीरों की पत्नियों ने सैनिकों को तिलक लगाए और रणगीत गाए। सभी सैनिक सिंहों की तरह गरजने लगे और शंख बजाने लगे। यहां एक चित्र है जहां हम सेना को प्रस्थान करते हुए देख सकते हैं। अब सुनते हैं पाठ, पृष्ठ संख्या 76। इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार दोनों पक्षों को देखकर करुणा और दया से भरकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने 7 पड़ोसी राजाओं के पास जाकर निवेदन किया, राजन बाहर के शत्रुओं को शस्त्रों से जीतना सरल है, परंतु परकोटे में बैठे शत्रु को जीतना सरल नहीं। यदि नगर को घेर कर अंदर के शत्रुओं को जीत भी लिया तो भी वह धर्म युद्ध नहीं होगा, इसे निरपराध नगरवासियों की हत्या ही कहा जाएगा। इसलिए थोड़ा सोचिए और शांति का उपाय कीजिए।
शस्त्र से जीते गए।

विश्वास है। हमने शाक्य मुनि में अतिशय भक्ति के कारण ही शस्त्र ग्रहण किया है। हम तो शाक्य मुनि की पूजा के लिए ही लड़ रहे हैं। यदि यह कार्य बिना युद्ध हो जाए तो हमें कोई विरोध नहीं है। आप हमारे दूत बनकर जाइए और मल्लों को समझाइए। हमारा उनसे कोई बैर नहीं है। हम तो भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं। इस प्रकार पड़ोसी राजाओं से बात करके ब्राह्मण द्रोण कुशीनगर गए और उन्होंने मल्लों को समझाया। हे मल्लों, नगर के बाहर जो सात राजा अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं, उनके पास अमोघ आयुध हैं और उनका बल अजेय है, परंतु वे शाक्य मुनि के धर्म के कारण ही डरे हुए हैं। वे यहां राज्य प्राप्ति के लोभ से नहीं आए और न ही अहंकारवश आए हैं। भगवान बुद्ध जैसे आपके गुरु हैं, वैसे ही वे हमारे भी गुरु हैं और इन राजाओं के भी। इसीलिए ये राजा भी शाक्य मुनि की अस्थियों की पूजा के लिए आए हैं। शाक्य मुनि का उपदेश है कि धन की कृपणता उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा धर्म की कृपणता है। राजाओं का संदेश है कि यदि आप भगवान बुद्ध की धातु यानी अस्थियां नहीं देना चाहते तो नगर के द्वार से बाहर आइए और वीर अतिथियों का स्वागत कीजिए। पृष्ठ संख्या 77। द्रोण ने आगे कहा, यह राजाओं का संदेश है जो सद्भावना और साहस से भरा है। मैंने इनकी बातों पर धैर्यपूर्वक विचार किया है, अतः मेरी भी बात सुनिए। कलह से न किसी को सुख मिलता है और न ही धर्म होता है। शाक्य मुनि ने सदा क्षमा का उपदेश दिया है। जिस महामुनि ने क्षमा से स्वयं शांति प्राप्त की और हजारों लोगों की शांति प्रदान की, उस दयालु के निमित्त व्यर्थ रक्तपात उचित नहीं है। इसीलिए आप लोग इन राजाओं को धातु प्रदान कीजिए। यही आपका धर्म है। इससे आपको यश मिलेगा। ये सभी राजा आपके मित्र हो जाएंगे और सारी जनता को शांति मिलेगी। यहां एक चित्र है जिसमें ब्राह्मण द्रोण सैनिकों से या मल्लों से शांति वार्ता कर रहे हैं। द्रोण की बातें सुनकर मल्लों का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, आपके वचन बड़े कल्याणकारी हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले आए हैं। आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार द्रोण के प्रयत्नों से विवाद का अंत हुआ। फिर सबने मिलकर भगवान बुद्ध की मंगलमय धातुओं को 8 भागों में बांटा। एक एक भाग प्रत्येक राजा को दिया और एक भाग स्वयं मल्लों ने अपने पास रखा। भगवान बुद्ध की अस्थियां लेकर सातों राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने राज्यों को लौट गए। उन्होंने अपनी अपनी राजधानी में इन अस्थियों पर स्तूप बनवाए और उनकी पूजा की। द्रोण ने भी अपने देश में स्तूप बनवाने के लिए वह घट लिया जिसमें पहले सभी अस्थियां रखी थी। पिसल जाति के बुद्ध भक्तों ने भगवान बुद्ध के शरीर की राख ली। पृष्ठ संख्या 78। इस प्रकार प्रारंभ में श्वेत पर्वतों के समान 8 स्तूपों का निर्माण हुआ जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई थीं। द्रोण के घट वाला नवा स्तूप बना और 10वां स्तूप बना जिसमें भगवान बुद्ध के शरीर की राख रखी गई थी। स्तूपों के निर्माण के बाद राजा सामंत तथा अन्य सभी जन इनकी पूजा करने लगे। स्तूपों पर अखंड ज्योति जलती रहती तथा रात दिन घंटे बजते रहते थे। कुछ समय के बाद एक दिन राजगृह में 500 बौद्ध भिक्षु एकत्र हुए और भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया। सभी भिक्षुओं ने मिलकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करने का निर्णय लिया।
आनंद सदा भगवान बुद्ध के साथ रहे थे और उन्होंने उनके मुख से सभी धर्मोपदेश सुने।

थे। इसीलिए सभी भिक्षुओं ने आनंद से निवेदन किया कि संसार के कल्याण के लिए वे सभी धर्मोपदेशों को दोहराएं। आनंद ने एवं मे स्तुतम, यानी मैंने ऐसा सुना है, इस तरह कहते हुए जैसा भगवान बुद्ध से सुना था वैसे ही क्रमशः प्रसंग, समय, ध्यान आदि के साथ सभी धर्मोपदेश कहे। इस प्रकार आनंद तथा दूसरे वरिष्ठ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के धर्मशास्त्र का स्वरूप निश्चित किया। कालांतर में देवानाम प्रियदर्शी का जन्म हुआ। उसने जनहित के लिए बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके कारण वह चंड अशोक या धर्मराज अशोक कहलाने लगा। उसने धातु गर्भित स्तूपों से धातु लेकर अनेक भाग किए और उन्हें सैकड़ों स्तूपों में स्थापित किया। यहां एक चित्र है जहां पर हम चंड अशोक को स्तूपों की स्थापना करते हुए देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 79। जब तक जन्म है तब तक दुख है, इसीलिए पुनर्जन्म से मुक्ति के समान कोई सुख नहीं है। इसीलिए और कौन उतना पूज्य हो सकता है जितना कि वह जिन्होंने जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से स्वयं मुक्त होकर सारे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। प्रश्न 1, मार ने बुद्ध को क्या याद दिलाया? उत्तर में बुद्ध ने क्या कहा? 2, आनंद कौन था? उसे क्या जानकर आघात लगा? 3, तथागत ने परिनिर्वाण से पूर्व मल्लों को क्या समझाया? 4, अपने अंतिम उपदेश में बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या कहा? 5, मल्लों और पड़ोसी राजाओं के बीच युद्ध की संभावना क्यों उत्पन्न हो गई और यह संघर्ष कैसे टल गया? 6, भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रह करने का भार किसे सौंपा गया और क्यों? यहां अध्याय 5 समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए 23 सितंबर की बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और आज विशेष आप सभी को बताना चाहूँगा, महालक्ष्मी व्रत और राधा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी और दादीची जयंती है, हाइफा दिवस भी आज है। हाइफा दिवस के बारे में शायद आपको पता हो या नहीं पता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। हाइफा दिवस जो है अपने आप में भारतीय सेना द्वारा 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है और ये भारत के जवानों ने तुर्की सेना के खिलाफ लड़ते हुए इसराइल के हाइफा शहर को आज़ाद कराया था। हाइफा पर कब्जा के लिए एक तरफ मशीन गन और तोपों से लैस तुर्की और जर्मनी की सेना थी, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से भाले और तलवारों वाले हिंदुस्तान की 3 रियासतों की फौज थी। इसके बावजूद भारतीय सेना तुर्की और जर्मनी पर भारी पड़ी और उन्हें हाइफा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसराइल में आज भी इस दिन को हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारत में भी सेना इस दिन को मनाती है। तो है ना कमाल की बात, जहां पर तोपों और मशीन गनों के सामने भाले और तलवारों की जीत हुई है, ये अजब और गजब कारनामा जो है भारत ने करके दिखाया है। तो इसीलिए विशेष रूप से ये लोग जो है विशेष रूप से इसराइल में ये दिन आज भी मनाया जाता है और भारत में भी मनाया जाता है। तो कमाल के लोग है यार भारत के, है ना। आज इसके साथ ही दधीची जयंती भी आज है और ये दिन जो है अलग अलग दिन होता है आगे पीछे। पंचांग के अनुसार दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम गमस्तिनी था। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्व ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू नहीं पाया था। वे सदा दूसरों के हित करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट थे जहाँ वे रहते थे। गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। जो भी अतिथि महर्षि दधीची के आश्रम पर आता, सहम महर्षि तथा उनकी पत्नी अतिथि की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीची ही थे। देवताओं के मुख से ये जानकर कि मात्र दधीची की अस्थियों से निर्मित ब्रज द्वारा ही आसुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया था। कहना कमाल के व्यक्ति। आइए उनके बारे में भी कुछ बातें जरूर शेयर करूंगा अभी आपको, लेकिन उसके पहले आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। और विचारों में आप सभी को अच्छा लगता है, कुछ विचार मैं आपको देते रहता हूँ और कुछ बातें भी आपसे शेयर करता रहता हूँ। आप भी बड़े प्यार से मैसेज करते हैं कि आज का ये विचार आपका बड़ा अच्छा हमें लगा। तो हमें भी बेहद खुशी होती है कि भाई आपको विचार अच्छे लगते हैं, सुनते रहते हैं आप। तो एक विचार आपके लिए अभी मैं बताना चाहूँगा। विचार तो बार बार आप सुनते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भूल पा रहे हैं, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। तो हमेशा देखिए कि अगर ऐसा कुछ है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस व्यक्ति को हम बुलाने के लिए भी याद हो जाती है ना। तो ये भी एक प्रेम का दूसरा रूप है। तो चलिए इन शुभ आशाओं के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। आप सुना है रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, आज के दिन कुछ लोगों के बारे में जरूर बताना चाहूँगा जिनका जन्मदिन है। रामधारी दिनकर, प्रेम चोपड़ा, यूसुफ मेहराली, पी आर कृष्ण कुमार, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही बदलू सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सत्यनारायण शास्त्री, प्रीति लता वादेवर, वादेदार केवी सुंदरम, सुरेश अंगदी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम सभी जो है एक गीत की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, हाइफा दिवस के बारे में बात कर रहा था और हाइफा मुक्ति के लिए भारत का सैनिक सेना में नौकरी करने में उद्देश्य से भर्ती नहीं होता, वह भर्ती होता है मातृभूमि पर अपना सब कुछ निचावर करने के लिए, अपने कर्तव्य पर अड़िग और अनुशासित रहते हुए देश की मिट्टी की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। भारतीय सेना के इतिहास में अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जिनमें विपरीत सिचुएशन में दुनिया को नाको चने चबाना हमारे जवानों ने खिले फतेह किए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशी धरती पर भी भारतीय जवानों ने अपना रक्त के शौर्य गाथाएँ लिख कर इस धरती का नाम आन शान बढ़ाई है। भारत में ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्हें इसराइल के फिलिस्तीन से सटे हाइफा शहर की आज़ादी का संघर्ष में 3 भारतीय रेजिमेंट जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के 3 अप्रतिम योगदान के बारे में पता होगा। ब्रिटिश सेना के अंग के नाते लड़ते हुए इन भारतीय रेजिमेंटों ने अत्याचारी दुश्मन के चुंगुल से हाइफा शहर को आज़ाद कराया था और इस संघर्ष में 900 से ज़्यादा भारतीय योद्धाओं ने बलिदान दिया था, जिनके स्मृति शेष आज भी इसराइल में 7 शहरों में मौजूद है। उनकी गाथा सुनाता एक स्मारक जिस पर इसराइल सरकार और भारतीय सेना हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में पुष्पांजलि अर्पित करने उन वीरों को नमन करती है। हाइफा मुक्ति की गाथा कुछ इस प्रकार है कि पहले विश्व युद्ध में 1914 और 18 के समय ऑटोमैन यानी उस्मानी तुर्की को सेनाओं ने हाइफा शहर को कब्जा कर लिया था। वहां यहूदियों पर अत्याचार कर रही थी और फिर करीब 1.5 लाख भारतीय सैनिक आज के इजिप्ट और इसराइल में 15वीं इंपीरियल सर्विस ब्रिगेडियर के अंतर्गत अपना रण कौशल दिखा रहे थे। बालों और तलवारों से लैस भारतीय घुड़सवार सैनिक हाइफा में मौजूद तुर्की मोर्चा और माउंट कर्मल पर तैनात तुर्की तोपखाने को तहस नहस करने के लिए हमले पर भेजे गए। तुर्की सेना का ये मोर्चा बहुत मजबूत था लेकिन भारतीय सैनिकों की घुड़सवारी जोधपुर और मैसूर ने वह शौर्य दिखाया जिसका शस्त्र सेनाओं के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। खासकर जोधपुर लार्सन्स ने अपने सेनापति मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत के नेतृत्व में हाइफा मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 23 दिसंबर वो दिन था 1918 को तुर्की सेना को खदेड़ कर मेजर ठाकुर दलपत सिंह ने बहादुर जवानों ने इसराइल के हाइफा शहर को आज़ाद कराया। ठाकुर दलपत सिंह ने अपना बलिदान देकर एक सच्चे सैनिक की बहादुरी का परिचय कराया और उनकी उसी बहादुरी को सम्मानित करते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें मरणोपरांत मिलिट्री क्रॉस पदक अर्पित कर दिया था। ब्रिटिश सेना के एक बड़े अधिकारी कर्नल हार्वी ने उनकी याद में कहा था कि उनकी मृत्यु केवल जोधपुर वालों के लिए नहीं है बल्कि भारत और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ी क्षति है। मेजर ठाकुर दलपत सिंह के अलावा कैप्टन अनूप सिंह और ले सगत सिंह को भी मिलिट्री क्रॉस पदक दिया गया था। इस युद्ध में कैप्टन बहादुर अमन सिंह जोधा और दफदार जोरा सिंह को उनकी बहादुरी के लिए इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पदक दिए गए। तो ये था कुछ बातें हाइफा के बारे में। आज भी हाइफा, यरूशलेम, रामले और ख्यात बीच सहित इसराइल के 7 शहरों में भारतीय जवानों की याद बसी है। इतना ही नहीं, हाइफा नगर निगम और उसके उप महापौर के प्रयासों से इसराइल सरकार वहाँ की स्कूली किताबों में भी इन वीर बंकरों पर विशेष सामग्री प्रकाशित करने का फैसला कर चुकी है। इसके लिए हाइफा के उप महापौर अल्मोग ही जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। दिल्ली के बहुत ही कम निवासी ये जानते होंगे कि 3 मूर्ति भवन के सामने सड़क के बीच लगी 3 सैनिकों को मूर्तियाँ उन्हीं 3 घुड़सवार रेजिमेंट की प्रतीक है जिन्होंने अपने जान नछावर करके हाइफा शहर को उस्मानी तुर्की से मुक्त कराया था। तो ऐसे जवानों को, भारत की सेनाओं को सलाम करते हैं। आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हाइपा दिवस के बारे में सुनकर आपका मन जो है प्रभु प्रेम से भर गया होगा और हम देश प्रेमियों की यादों में आप भी खो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और चलिए, मैं दधीची ऋषि के बारे में तो बातें किया, देवताओं की विजय ऋषि दधीची की अस्थियों को लेकर एक कहानी में ये बताया गया। विश्वकर्मा के पास गए और विश्वकर्मा ने उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और इंद्र को दे दिया। अब एक बार फिर से देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। हजारों की संख्या में दैत्य, दानव, यक्ष आदि लड़ने को सामने आए। उस वज्र से सब राक्षस और दानव मारे गए। वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल फेंका और गदा से देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत पर आक्रमण किया। ऐरावत ने सिर पर चोट आई, परंतु इंद्र ने अपनी विद्या से ऐरावत के माथे की चोट को ठीक कर दिया। फिर वृत्रासुर पर आक्रमण किया। वह कुछ समय बाद इंद्र के हाथ से छूटकर व्रज युद्ध भूमि में गिर गया और वृत्रासुर बोला, जिस प्रकार तुमने विश्व रूप का सिर काटा था, उसी तरह मैं तेरा सिर काटकर अपने भाई का बदला लूंगा, भूतनाथ पर तुम्हारे सिर को चढ़ाऊंगा। इंद्र ने कहा कि युद्ध एक प्रकार का जुआ है, इसमें प्राणों की बाजी लगती है, बाण फंसे का काम करते हैं और वाहन ही चौसार है, इसलिए इसमें ये पता नहीं चलता कि कौन विजय होगा। इस प्रकार इंद्र ने आदर भाव से वृत्रासुर को बातों में लगाकर मौका पाकर अपना व्रज उठा लिया और वृत्रासुर का सिर काट कर उसकी इस ई लीला को समाप्त कर दिया। उसके मारे जाने पर देवताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए इंद्र पर फूलों की वर्षा की और वृत्रासुर की ज्योति उसके शरीर से निकलकर भगवान में लीन हो गई। तो दधीचि ऋषि का जो अस्थियां है उससे बनाया हुआ जो वज्र है उससे देवताओं का विजय हुआ। तो ये है ना कमाल की बात। आप सुनाए हैं रिडमा 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। चलिए, इतिहास में ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है, और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। सुनते रहो मुस्कुरा।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, अभी आपको लेके चलता हूँ मैं सफर कार्यक्रम में एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, प्रेम चोपड़ा के बारे में। जी हाँ, शंभू का दिमाग दो बारी तलवार है। मैं हूँ प्रेम, प्रेम चोपड़ा। चलिए, इस तरह के खूबसूरत डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे और दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति। और तो आइए अब बात करते हैं प्रेम चोपड़ा के बारे में। हिंदी और पंजाबी फिल्मों के भारतीय अभिनेता हैं। 50 से अधिक वर्षों के दौरान 320 फिल्मों में अभिनय किया। प्रेम चोपड़ा ज़्यादातर फिल्मों में खलनायक की भूमिका में रहे और 1973 में आई फिल्म बॉबी प्रेम चोपड़ा के सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी और भारतीय सिनेमा के पहले शोमैन राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वो एक मवाली गुंडे की एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में उनका बोला गया संवाद, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, दर्शकों के जहन में आज भी ताज़ा है। तो ये डायलॉग जो है बहुत पॉपुलर हुआ और एक बार सुनते ही याद भी हो जाता है आपको, है ना। तो चलिए, ऐसे विशेष दिग्गज खलनायकी की कहानी आपको सुनाते हैं, फिल्मों में खलनायक और वैसे दिल के अच्छे इंसान। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्रेम नाम है इनका, प्रेम चोपड़ा। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम विलन प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर सन 1935 में हुआ। हैरानी इस बात की है कि हीरो वाला चेहरा लिए ये इतने जबरदस्त विलन कैसे बन गए। दरअसल इनका परिवार लाहौर का रहने वाला था, पर विभाजन के बाद ये शिमला चले आए। शिमला में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, थिएटर भी किया, चाहे वो अंग्रेजी रहा के हिंदी।
2: आप कहते हैं तो चला जाता हूँ। वैसे विक्रम बहुत काम का आदमी, काम की कीमत लेता है, लेकिन जिससे कीमत लेता है उसका काम जरूर करता है।
1: हालांकि इनके पिता जो कि खुद एक बड़ी ऊंची पोस्ट पर थे, उनका यह मानना था उनका लड़का प्रेम आगे जाकर IAS बने या फिर डॉक्टर, पर जिसे एक बार कला ने पकड़ लिया वो किसी की सुनता कहाँ है। प्रेम चोपड़ा साहब ने कहा कि मुझे तो थिएटर ही करना है। इनके पिता ने कहा कि देखो, ये बड़ा ही इनसिक्योर प्रोफेशन है, क्या कर पाओगे इसमें, ऐसा करो पहले ग्रेजुएशन कर लो, एक नौकरी पकड़ो और फिर मुंबई जाओ, थोड़ी तैयारी के साथ जाओगे तो शायद काम बन जाए। अपने पिता की बात इन्होंने मानी, ग्रेजुएशन की और मुंबई आकर इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्कुलेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया।
2: जी हाँ, और ये काम भी बहुत नेक है।
1: संघर्ष काफी बड़ा था, इन्हें कोई रोल मिल नहीं रहा था, फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान थी नहीं। इसी बीच हुआ यूं कि ये लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। उसने इनके हाथ में फोटोग्राफ्स देखी और पूछा, क्या एक्टिंग करना चाहते हो? इन्होंने कहा हाँ, देख लो एक पंजाबी पिक्चर है, करोगे तो तुम्हारी बात करा देता हूँ। प्रेम चोपड़ा साहब ने कहा, पंजाबी सही, एक्टिंग का मौका तो मिल रहा है, कर लेता हूँ। वो अजनबी इन्हें ले गया एक पंजाबी प्रोड्यूसर के पास। इन्होंने बतौर हीरो काम किया उस फिल्म में, फिर कुछ और फिल्मों में भी ये बतौर हीरो आए। उनमें से एक फिल्म रही मैं शादी करने चला।
2: अगर तुम मेरी बीवी होती ना तो मैं तमाम दुनिया के सामने ये
3: मेरे ख्याल से अब हम लोगों को चलना चाहिए। हम लोग यूं ही चले आए, वो लोग हमें ढूंढते होंगे।
1: पर बतौर हीरो इनकी दाल नहीं गल रही थी और इन्होंने एक अच्छा काम किया था कि नौकरी अभी तक नहीं छोड़ी थी। इन्हें महीने की तनख्वाह मिलती जा रही थी, किसी तरह गुजारा चल रहा था। और इसी बीच इन्हें मनोज कुमार साहब की फिल्म शहीद मिली, जिसमें इन्होंने शहीद सुखदेव का किरदार निभाया था। इस फिल्म से इन्हें मकबूलियत तो हासिल हुई, पर अभी भी हालात वो नहीं थे कि ये नौकरी छोड़ सके, इसलिए नौकरी पे कायम रहते हुए भी ये फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। अब सवाल ये था कि टाइम कैसे निकाला जाए, तो बहुत सारे बहाने मारते और उनमें से एक बहाना ये था, यार मेरी खुद की शादी है और 15 दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है इन्हें। ये शूटिंग करके वापस आते और लोग मुबारकबाद देते तो ये कहते कि नहीं यार, वो शादी दरअसल टूट गई, वो लड़की ठीक नहीं थी, रिश्ता ठीक नहीं था, माँ बाप एक और लड़की ढूंढ रहे हैं।
2: नहीं, ये काम जोश से नहीं, होश से करना होगा।
1: किसी तरह से काम तो चल रहा था, पर इसी बीच आई फिल्म उपकार, जिसने इन्हें इतनी मकबूलियत दी फिर ये दो नावों पे पांव रख के चलना सके और नौकरी को इन्होंने नमस्ते कर दिया। दास्तां दिलचस्प ये भी है कि ये तो हिंदी फिल्मों में भी बतौर हीरो ही आते, पर विलन कैसे बने, और इस बात से महबूब खान साहब बड़े नाराज हुए। मदर इंडिया जैसी मकबूल फिल्म बनाने वाले महबूब खान ने सोच लिया था कि इस लड़के को मौका दिया जाएगा, पर इससे पहले कि वो फिल्म शुरू करते वो खुद बीमार पड़ गए। प्रेम चोपड़ा साहब को मिल गई फिल्म वो कौन थी। राज खोसला साहब की फिल्म वो कौन थी में इन्होंने छोटा सा किरदार निभाया, पर वो था विलन का।
2: सिर्फ ये हीरे हमारे बदले की आग को नहीं बुझा सकते,
4: तुम्हारी ये खुशियां, ये जश्न बहुत खोखले नजर आ रहे हैं हमें। बहुत कमजोर लोग लग रहे हो तुम, बहुत कमजोर।
1: फिल्म वो कौन थी देखने के बाद महबूब खान साहब इन पे नाराज हुए और कहने लगे कि थोड़ा इंतजार और करते, पर चूंकि तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की है बतौर विलन, अब तुम हीरो नहीं बन पाओगे। ये फिल्म इंडस्ट्री तुम्हें विलन ही बना के छोड़ेगी। और ठीक वही हुआ। अपने डायलॉग डिलीवरी, कॉमिक टाइमिंग और जबरदस्त अभिनय की वजह से ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स को टक्कर देने लगे।
5: जो सब नहीं हुआ वो आप भोगा, तू फिकर मत कर, वो जायदाद हमारी यार हम ही को मिलेगी। उसे हासिल करने के लिए अब चाहे कुछ भी करना पड़े, कर भला तो हो भला।
1: इनकी जोड़ी पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी खूब जमी। इन दोनों ने मिलकर साथ में तकरीबन 19 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 15 फिल्में सुपरहिट साबित हुईं।
6: एग्जैक्टली।
1: एक दिन इनके पास मशहूर फिल्म मेकर राज कपूर आए और कहने लगे कि प्रेम, मेरी फिल्म बॉबी में तुम्हें काम करना होगा और एक डायलॉग बोलना होगा। प्रेम चोपड़ा साहब ने कहा कि मैं गेस्ट अपीयरेंसेस तो देता नहीं हूं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इतनी जान पहचान है, एक आदमी के लिए गेस्ट अपीयरेंस दी तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ रिश्ते जरा टूट सकते हैं। इनकी बीवी और राज साहब की बीवी कृष्णा कपूर दोनों बहनें हैं, तो ये इनकार ना कर सके, और वैसे भी राज कपूर को कौन इनकार कर सकता था। इतने में इनके सह कलाकार प्रेमनाथ ने भी इन्हें समझाया कि देखो, ये फिल्म हिट होती है तो बच्चे बच्चे की जुबान पर ये डायलॉग होगा, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और ठीक वैसा ही हुआ।
7: तीन, तुम्हारे लिए तीन ही काफी है।
1: बदलते वक्त के साथ इन्होंने अपनी मिलनी में जरा कॉमेडी भी डालने की कोशिश की। डेविड धवन और गोविंदा के फिल्म राजा बाबू इस बात का जीता जागता उदाहरण है, जहां एक तरफ राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन ने इनकी ऑन स्क्रीन पिटाई की और दूसरी तरफ इन्होंने कुछ जज्बाती किरदार भी निभाए।
7: भगवान ने बड़ा न्याय किया है तुम्हारे साथ छाया, क्या गुजर रही है मेरे दिल पर सिर्फ मैं ही जानता हूँ।
1: प्रेम चोपड़ा साहब के निजी जीवन की तरफ रुख किया जाए तो पता चलता है कि इनकी शादी हुई उमा जी से। उमा राज कपूर साहब की बीवी कृष्णा कपूर की छोटी बहन। इस शादी से इन्हें तीन बेटियां हुईं, रकिता, पुनीता और प्रेरणा। ये उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा देखा, कलर सिनेमा में सुपरस्टार राजेश खन्ना और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का साथ देखा, और बदलते वक्त में रणबीर कपूर जैसे नए सुपरस्टार्स के साथ भी नजर आए।
8: मुंह संभाल के बात करने का।
9: कैसा है साले?
8: क्या साले हुलिया बना के अमेरिका से?
9: अमेरिकन रिटर्न गाय।
1: यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।

0: जी
1: नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हो तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें से मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रेम चोपड़ा की कहानी सुनकर। डिलीवरी, डायलॉग, डांस, सब कुछ आपने सुना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पीआर कृष्ण कुमार के बारे में बात करते हैं। भारत के एक आयुर्वेदाचार्य थे और आयुर्वेद फार्मेसी के प्रबंधक निर्देशक तथा अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वेमेन के कुलपति थे। आयुर्वेद में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। कृष्णन जी की बात करें तो आज ही के दिन 23 सितंबर 1951 को केरल के शोरनूर में इनका जन्म हुआ था और वे आर्य वैद्य फार्मेसी के संस्थापक पी वी राम वारियर के पुत्र थे। कृष्ण कुमार ने नए दैनिक साहित्यिक क्षेत्र और दवा शोध के लिए आयुर्वेदिक विद्वानों को ट्रेनिंग करने के लिए APV रिसर्च फाउंडेशन नामक एक संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्था ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अभ्यास आधारित अक्षय को बढ़ावा देने के लिए 2003 में RUDRA नवदैनिक दस्तावेजीकरण कार्यक्रम शुरू किया था। कृष्ण कुमार को आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उनके आयुर्वेद के प्रति जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा था और वो इसके लिए पूरे भारत वर्ष में एक रिसर्च का अनुसंधान का कार्य धनवंतरी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। आयुर्वेद आचार्य कृष्ण कुमार वैसे इनका 16 सितंबर 2020 को निधन हुआ। एक निजी अस्पताल में उनका कोरोना वायरस संक्रमण में चल रहा था इलाज और पॉजिटिव पाए जाने के बाद 29 अगस्त से ही हॉस्पिटल में भर्ती थे और उन्हें ब्लड प्रेशर, हृदय रोग संबंधित कुछ समस्या आ गई तो वह 16 सितंबर को इस दुनिया से चले गए। ऐसे में कृष्ण कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए शोक व्यक्त किया था और लिखा था, कृष्ण कुमार के सतत उद्यमी और मिशन मोड के प्रयासों ने आयुर्वेद को दुनिया में पॉपुलरिटी दिलाने में योगदान दिया है। वे बेहद विनम्र और ज्ञानी व्यक्ति थे। उनके निधन से शोकाकुल हूँ। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक गीत सुनाते हैं। और हमारे कुपाराम जी, सुभाष जी, सुरेश जी, सुरेश जी कंपनी और साथ में कंचन भाई और हमारे मित्र रमेश जी, राधनपुर वाले भूपत सिंह जी और सभी ओल्ड इज गोल्ड जागीरदार जी, रमेश जी राधनपुर वाले, विभा जी, हर्षिता जी और फिरोज जी और हमारे जैनाब जी, सभी लोग याद करते रहते हैं। सुगना जी, मुझे जिन जिन का नाम याद आ रहा है मैं उनका नाम ले रहा हूँ, इनका नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि आपको याद नहीं कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आप सभी के लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

निबंधकार राष्ट्रकवि दिनकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में याद किए जाते हैं। उनको राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत क्रांतिकारी संघर्ष की प्रेरणा देने वाले ओजस्वी कविताओं के कारण असंख्य लोग और असंख्य लोकप्रियता उनको मिली है। दिनकर जी ने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से। साहित्य के रूप में उन्होंने संस्कृत, बंगाल, अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया था और हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म आज के दिन 1908 में सिमरिया मुंगेर बिहार में एक सम्मानीय किसान परिवार में हुआ और पत्नी उनकी रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मान रूप देवी के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कविताओं को विशेष रूप से आज भी श्रृंगार की कविता के रूप में याद किया जाता है। और दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। दिनकर 2 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया और परिणाम स्वरूप दिनकर और उनके भाई बहनों को पालन पोषण की उनकी विधवा माता ने किया और दिनकर का बचपन देहात में बीता, जहाँ दूर तक फैले खेत, हरियाली, बांसों के झुरमट, आमों के बगीचा और कपास के विस्तार थे। प्रकृति के सूक्ष्म और प्रभाव दिनकर के मन में बस गया और शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। संस्कार इनके बड़े अच्छे थे और संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी शिक्षा शुरू करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से शुरुआती शिक्षा पूरी की। उसके बाद राष्ट्रीय मिडिल और फिर सरकारी शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश लेकर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की और हाईस्कूल की शिक्षा उन्होंने मौका मागट हाई स्कूल से प्राप्त किया और इस बीच उनका विवाह भी हो चुका था और एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। और 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में MA हॉनर्स उन्होंने किया। फिर इस तरह से पटना विश्वविद्यालय से BA करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में उनको प्रधानाचार्य का जो है सरकारी काम मिल गया और फिर इससे अलग अलग फिर और सब रजिस्ट्रार का पद इन्हें मिला, उसे भी स्वीकार कर लिया और 9 वर्षों तक वो इस पद पर आसीन रहे और बिहार के देहातों में बीता जीवन जो पीड़ित रूप से उन्होंने बचपन में देखा था उसका और तीखा रूप उनके मन में आ गया था। और फिर 1947 में देश स्वाधीन स्वतंत्र हुआ तब बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फर पहुँचे थे और भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ और फिर राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए और फिर इनकी लेखने का कार्य एक तरफ चलता रहा और एक तरफ पदोन्नति होती रही और इस तरह से द्विवेदी युग और छायावाद की बातों में इनका काव्य जो है बड़े बड़े लोगों के साथ उनका फिर बैठना उठना हुआ और फिर फणीश्वर रेणु सबसे भाई के साथ उनके साथ में जुड़े और फिर दिनकर उनके साथ रहे और ऐसे साहित्यकारों का एक ग्रुप बन गया और फिर उससे इनकी जो बातें हैं दूर दूर तक पहुंचना शुरू हो गया। आत्म परीक्षण के व्यक्ति थे, हमेशा अपने आप को सामाजिक चेतना के साथ जोड़ा करते थे और साहित्यिक जीवन तो उनका समृद्धता ही। आत्म मंथन की कुछ यौगिक रचनाएँ उन्होंने की जिसमें रेणुका, हुंकार, रसवंदनी ये सारी मुख्य रचनाएँ हैं जिनको लोगों ने काफ़ी पसंद किया और इस तरह से काव्य रचना में इनका नाम हमेशा अमर रहेगा। और दिनकर की शैली को आज भी लोग कॉपी करते हैं, उनका जो स्टाइल था वो सभी को पसंद आता है। सुमित्रा मनंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी दिनकर ये इनकी अच्छी जोड़ी रही और ये अच्छे राइटर्स भी माने गए। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। सूरज का बाह में एक वृद्ध मछली का कतन पर्याप्त तर्क संगत है। कविताओं का जो है एक ऐसा मिश्रण वो लोगों के सामने रखते थे जो तुरंत याद हो जाती थी। धन है तन का मेल, पसीने का जैसा हो पानी, एक आन को ही जीते हैं इज्जत के अभिमानी। तो ये थी उनकी रचनाएं और चलिए आगे अभी वक्त मिले तो ज़रूर उनके बारे में और बातें आपको बताएंगे। वैसे दिनकर जी अपने युग के मुख्य कवि ही नहीं बल्कि एक सफल और प्रभावशाली गद्य लेखक भी रहे। सरल भाषा और
प्रांजल शैली।

मैं अपने विभिन्न साहित्यिक विषयों पर निबंध के अलावा भूत कथा, डायरी, स्मरण और दर्शन की कई चीजें वो लिखा करते थे। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी अपने आप को अपनी कविताओं में हमारे बीच जीवित रखकर सदा के लिए अमर हो गए। विभिन्न सरकारी सेवाओं में होने के बावजूद दिनकर जी के अंदर उग्र रूप प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। शायद उस समय की व्यवस्था के नजदीक होने के कारण भारत की तत्कालीन दर्द को वो महसूस करते थे और तब वो कहते थे, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुग उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, दो राह समय के रथ का गगरनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जी की जनता आती है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें दिनकर साहब की। आप सुनाए हैं रेनुवन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनाए हैं और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाजत, सलाम, नमस्ते। और जाते जाते एक विचार आपके लिए, कहा जाता है मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार श्रोताओं, युवा मंच में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं 2000 तो युवा मंच पे जैसे हम हर बार आपकी मुलाकात किसी ऐसे युवा से कराते हैं जो आपको प्रेरित भी करते हैं, तो आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे ओम से। अच्छा, ओम मिश्रा जी जो हैं वो बाय प्रोफेशन एक डेटा साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने MIT लीडरशिप इनोवेशन की बूट कैंप की हुई है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गोल्डन डेलीगेट हैं, कंट्रीब्यूटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज के फिनिशर हैं। यानी आज हम ऐसे एक व्यक्तित्व से आपकी बात करा रहे हैं जो फिजिकली फिट एंड मेंटली फाइन है। आज क्या आप तैयार हैं फिजिकली फिट और मेंटली फाइन होने के लिए? आइए मिलते हैं ओम जी से। नमस्कार ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा मंच पर।
1: किस सोमवार ये हमको यहाँ पे एक अवधि से शेयर करने के लिए हमारे सारे ऑडियंस के साथ, आप सब इसे कुछ सीखें एंड कुछ नया आपके जीवन में हो। चलो हम इस बात पे शुरू करें।
0: थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, ये बताइए कि और फिटनेस ये तो समझ में आती है, बट आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें स्पोर्ट्स के साथ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी दिल और दिमाग तो हम सुनते ही थे, फिजिकली फिट एंड मेंटली फाइन। सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस की तरफ, इसमें आपकी रुचि कैसे जाएगी?
1: मेरे बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रही है मेरी
0: जी।
1: मैंने काफ़ी टाइम से अपने स्कूल और मैराथन्स में काफ़ी जाता रहता हूँ। पिछले साल मैंने हाफ मैराथन इंडिया लेवल पे कंप्लीट किया था एंड उसके साथ साथ मैंने इवन अपने कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए गोल्ड मेडल पाने के लिए मैंने ट्राई किया था इसमें लाइक, और मैंने रिसेंटली 75 हार्ड चैलेंज का भी लेके उसको भी ख़त्म किया है। मैंने टारगेट किया कि मतलब 15th ऑफ अक्टूबर स्टार्ट करो एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर 31st ऑफ दिसंबर ये चैलेंज ख़त्म की जाए, ताकि पूरा साल का जो सार है मैं 2023 में अच्छे से निकाल सकूं।
0: वाह, एक्सप्लेनेशन के दौरान आपने कोई चीज़ बताई 75 हार्ड चैलेंज, ये 75 हार्ड चैलेंज क्या चीज़ है?
1: सो 75 हार्ड चैलेंज एक चैलेंज है जो लोगों का मेंटली टफनेस टेस्ट करता है। अच्छा। कि वो कितना अपने लेवल को पुश कर सकते हैं। अच्छा। तो इसमें चीज़ें करनी होती है जो रोज़ के रोज़ होती है
0: जी।
1: सो फर्स्ट है कि आपको रोज़ 1.5 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज करनी होती है।
0: 1.5 आवर्स पर डे?
1: पर डे।
0: ये क्या एक ही टाइम पे करना होता है स्ट्रेच, या पूरे दिन में आधा आधा घंटे के सपोज 3 स्लॉट्स में भी कर सकते
1: हैं? नहीं, इसमें 2 स्लॉट्स होते हैं, मतलब 45 मिनट्स का एक आउटडोर स्लॉट होता है और 45 मिनट्स का एक इनडोर स्लॉट होता है।
0: अच्छा।
1: और उसके साथ हमको 3-4 लीटर्स ऑफ पानी पीनी होती है, एक कोई भी नॉन फिक्शनल किताब पढ़नी होती है 10 पेज,
0: और नॉन फिक्शनल
1: के साथ एक सेल्फी रोज लेनी होती है ताकि हम अपने को ट्रैक कर सकें कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है ओवर द पीरियड ऑफ 75 डेज। एंड थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको क्लीन डाइट खानी होती है।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: तो ये मुझे अगले सवाल पे ले आता है कि क्लीन डाइट से फिर आप क्या समझते हैं?
1: सो क्लीन डाइट का मतलब ये है कि ज़्यादा ना मसालेदार या ऑयल में ज़्यादा ये हो कि चीज़ वगैरह हो, वो सब ना होना चाहिए। ज़्यादा रियलिस्टिक बाय ज़्यादा जिसमें प्रोटीन वगैरह हो, जिसमें मतलब हम क्या खा सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हो गया, सुबह उठ के स्प्राउट्स, देन डेट्स हो गया खाने, दलिया नहीं तो ओट्स मील, ये ब्रेकफास्ट में आ गया। फिर लंच के लिए हमने ले लिया रोटी दाल और उसके साथ थोड़ा पनीर की सब्जी। फिर रात से पहले शाम में हमने छेना खा लिया, फ्रूट्स की बाउल खा ली।
0: माय गुडनेस, आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर सकता हूँ, कहीं बात ही नहीं की।
1: रात को सोने से पहले दूध पी के सो जाता था ताकि सुबह उठ के फ्रेश पेट खाली पेट स्टार्ट कर सकूं।
0: नो वंडर आप इसको 75 हार्ड चैलेंज बोलते हैं, मेरे से तो 5 दिन भी ना हो। तो 70, ये बताइए इसमें आपको रैंक कौन करता है, या ये सेल्फ असेस्ड है, या जैसे आपने कहा कि हर दिन आप अपनी सेल्फी भी लेते हैं प्रोग्रेस चेक करने के लिए, खाना आपको जैसे एक फिक्स्ड या बड़ा रेजिमेंटेड सा डाइट खाना होता है, इतनी एक्सरसाइज करनी होती है, किसी दिन सपोज आपने चीट कर दिया, कौन जज करता है?
1: सो ये एक सेल्फ कॉन्शियस रूल है, मतलब गेम वो 75 हार्ड चैलेंज का, कि अगर आपने कभी चीट भी किया या आपका कोई भी एक इनमें से पांचों चीज में से कोई छूट भी गया
0: जी,
1: तो आपको डे वन से स्टार्ट करना पड़ेगा।
0: और कोई वर्ल्ड वाइड संस्था है, मतलब कैसे जुड़ते हैं और कैसे प्रमोट करते हैं?
1: यूएस में एक जन ने स्टार्ट किया और उसके बाद काफी लोग इसमें फेल होने लगे, तो ये काफी ये जो चैलेंज है वायरल चला गया। इसका मोटिव था कि लोग काफी मोबाइलों पे आते हैं, स्क्रीन पर टाइम बिताते हैं और अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं देते
0: जी।
1: तो उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब अपने को फिट रखना प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे इंडिया में आने लगी। इंडिया में आने के बाद काफ़ी लोगों ने इसको सीरियसली लेकर ट्राई किया, फिर इंडिया में भी लोग फेल होने लगे। उसके बाद एक यूट्यूबर थे, इन्फ्लुएंसर अंकित वानापुरिया करके, अच्छा। राम राम भाई साड़िया ने बोलते हैं, उन्होंने ये कंप्लीट किया, फिर काफ़ी लोग उसके बाद कंप्लीट करने लगे।
0: वो क्या भारत के पहले थे जो कंप्लीट करने वाले?
1: एक उनमें से एक थे जो भारत के, अच्छा। जो कंप्लीट किया एंड या तो उसके बाद ही मैंने भी सीखा कि ये लोग हम लोग भी कर सकते हैं, तो मैंने भी ये चैलेंज उठाया एंड रोज के रोज करते हुए फाइनली ऑन 28th of December 2023 मैंने कंप्लीट कर दी।
0: अरे 75 डेज का चैलेंज, वाह, मान गए आपको। तो एक तो ये आपने 75 डेज की फिटनेस वाली बात कही, अब हम आपसे एआई के बारे में थोड़ा पूछना चाहते हैं। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हम आएंगे एआई पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, वेलकम बैक टू 107.8 एफएम रेडियो मधुबन। आप सुन रहे हैं युवा मंच, जिसमें आपके साथ हैं आपके सबसे युवा आरजे रवि, और साथ में हमारे हैं आज के युवा गेस्ट श्री ओम, जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि आप सुन रहे होंगे, हमने जाने से पहले कुछ बातें करी थी एआई के बारे में। इसी ब्रेक के दौरान मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा था, एआई आओ आया। आपके मन में भी क्या यही गाना आया? लेकिन एआई का मतलब ये नहीं है, एआई का मतलब है, चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं।
1: सो एआई को लेके अभी हम देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है, एंड हम जब भी YouTube वगैरह खोलते हैं ये काफ़ी बार आता रहता है, AI क्या है, ChatGPT क्या है, ये प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, ये लोग पूछते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग YouTube में कुछ भी सर्च करते हो, सपोज़ फॉर एग्जांपल आप जूता खरीदना है, जूता के लिए आप सर्च करते हो कौन सा है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आते हो आपको दूसरे जूतों के ब्रांड के बारे में बताता रहता है। तो ये कैसे होता है, ये सब है AI को लेके।
0: ओम जी, आपने तो मेरे मन की सवाल पूछ ली, बल्कि मैं जो है बहुत ही क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो एक बार जब मैंने क्रिकेट देखा तो उसके बाद से मुझे ये आश्चर्य हुआ कि हर बारी वो क्रिकेट की वीडियोज ही कैसे दिखाता है। अब जाकर मुझे आपकी ये चीज समझ में आई। तो एआई के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे काम करता है?
1: सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या करता है कि जैसे हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल कि कोई भी एक चीज़ को हम जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं उसका पीछे का जो चीज़, मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है। तो मशीन क्या करता है कि जब भी हम कोई एग्जांपल सर्च करते हैं वो डेटाबेस में जाता है, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होता है, जितने भी डेटा होता है वो लाके आपको जो रोमांचक लगे वो इन्फॉर्मेशन शो करता है। ये कैसे करते हैं? सो इसके पीछे एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। आपका डेटा लेता है, समझता है आपको क्या चाहिए और उसके रिलेटेड और क्या क्या आ सकता है, रिकमेंड करता है। सो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जैसे कि आप अगर नेटफ्लिक्स देख रहे हो या आप इंस्टाग्राम कर रहे हो, आप सपोज कोई एक भूत का फिल्म देखे या कोई एक कार्टून का फिल्म देखे ऐसा कुछ, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे आप उसको, आप फिर से वो आपको वही चीज़ें रिकमेंड करता है। तो वो क्या करता है कि आपके सारा डेटा लेता है, चेक करता है कि आपको क्या क्या पसंद है और उसको रिलेटेड क्या क्या बैकएंड में और है वो आपको थोपता है, ताकि आप क्या करो इससे उस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टिको, उस पर ये अमेजन पे टिको ज़्यादा टाइम या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे
0: जी,
1: तो उस टाइप। सो इस उसको ये जो पूरा प्रोसेस है इस पर लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
0: जी जी, अच्छा, पर एक बात बताइए, अगर चलो ये तो हमारे फेवरेट चीज़ों के लिए तो समझ में आ गई, बट आपको अगर उससे हटके या कुछ अलग चीज़ें देखनी हो तो क्या ये भी संभव है उसमें?
1: यस, उसमें ये भी संभव है। हमने देखा है कि सब बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, रिसर्च किए हैं इसको लेके, कि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है स्पोर्ट्स, फिर अचानक से वो सर्च करने लगे अबाउट कार्स, तो वो क्या करता है कि स्पोर्ट्स और कार्स को मिलकर स्पोर्ट्स कार्स दिखाता है जिसमें आपको दोनों में रुचि है।
0: अच्छा,
1: एंड कल जाके अगर आपने सपोज सर्च किया Formula 1, जो गाड़ियों का स्पोर्ट्स रेस है, तो उसके रिलेटेड जो क्लॉथिंग ड्रेसिंग सेंस है या उसके रिलेटेड जो फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर्स है उसमें, वो सब शो होना स्टार्ट होता है, नॉट ओनली इन यूट्यूब बट इवन इन गूगल और इवन इन अदर लाइक स्पॉटिफाई में म्यूजिक सेट, वहाँ से आने स्टार्ट हो जाता है। सो ये सब इंटरकनेक्टेड है, एंड ये ट्राई करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म में हुकअप करके रख सके, तो ये उनका बिजनेस मॉडल है।
0: अरे वाह, तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट मेंटली फाइन रहने के लिए आप खुद क्या करते हैं?
1: सो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो युवा लोग हैं वो ये मोबाइल्स पर बहुत टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं
0: जी,
1: जाने और अनजाने में, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जिंदगी में इंपॉर्टेंट पल होते हैं जो गवा देते हैं लोग जस्ट बिकॉज ये मोबाइल में हुक्ड अप रहते हैं ऑल द टाइम।
0: बल्कि अगर आपको इंटरप्ट करके मैं अपनी बात कहूँ तो कई बार रात को सोते हुए भी ये लगता है कि चलो यार एक यूट्यूब का शॉर्ट्स तो देख के सोएं, और वो करते करते क्या होता है फिर वो रात को काफ़ी टाइम खींच जाता है।
1: हाँ,
0: सेल्फ डिसिप्लिन मेरे ख्याल बहुत जरूरी होती
1: है, बहुत ज़्यादा होती है। एंड मैं जब 75 हार्ट चैलेंज कर रहा था तब भी ये एक बहुत बड़ी पाबंदी थी मेरे पे कि ये कैसे मैं ओवरकम करूँ। तो मैंने उस टाइम क्या किया था कि हर हर डिवाइस, हर मोबाइल में, एंड्रॉयड हो कि एप्पल की हो, उनकी एक है डिजिटल वेलबींग करके एक है, मतलब सेटिंग्स पे अगर उस पर क्लिक करें तो आपको वार्निंग देती रहती है कि देखो आपने इतना टाइम स्पेंड कर दिया अपने मोबाइल पे। तो इससे क्या होता है ना, एक सेंस ऑफ गिल्टीनेस आप में जनरेट करने की कोशिश किया जाता है।
0: जी, एक रुचि की बात बताऊं, अगर आप देखें तो ये स्क्रीन के साइज जो है ये प्रोग्रेसिवली कम होते जा रहे हैं। मतलब मुझे याद है जब बचपन में हम जाते थे 3 घंटे की फिल्म देखने तो सारे 300-350 लोग इकट्ठे बैठ करके और फिल्म देखते थे बड़े से पर्दे पर।
1: जी
0: वो फिर छोटा होते होते टीवी बना, टीवी छोटा होते होते लैपटॉप बना, लैपटॉप छोटे छोटे होते होते अब तो एंड्रॉयड फोन बन गया जिसके अंदर आप वही सारी चीजें इतने से स्क्रीन पे देखते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आपकी आंखों में एफर्ट उतना ही ज्यादा या स्ट्रेस ज्यादा होगा।
1: राइट। और सिंस आपने इसकी बात की है तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी इसके पीछे रहते हैं, ये जो लोगों को स्क्रीन टाइम में पकड़ के रखने के लिए। तो हम जो जीमेल का देखते हैं या कोई खाने का ऐप जैसे स्विगी वगैरह देखते हैं, उसमें जो आइकॉन्स होते हैं डिफरेंट बटन्स,
0: जी
1: उनके पीछे भी काफ़ी कैलकुलेशन किए गए, मेंटल कैलकुलेशन किया जाता है कि साइकोलॉजिस्ट को यूज़ करके कि कहाँ पे कौन सा बटन प्लेस करें, कहाँ पे कौन सा कैसे कलर करें।
0: अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कौन स्क्रीन पे कौन सी बटन किस फॉन्ट की और किस कलर की होगी और कहाँ प्लेस होगी।
1: हाँ, ये भी पूरा साइकोलॉजी पे डिपेंड करके किया गया ताकि लोग बार बार आते रहे और उस पोजीशन उसको सीमलेसली टच करते रहे।
0: वाह, क्या बात है। इससे जुड़ा एक और इश्यू कल देखा था, जैसे कि अभी तो काफी लोग यूट्यूबर्स भी हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, और कंपनीज क्या है, एडवर्टाइजिंग से ही, लिहाजा यही बात है कि उसी से कमाते हैं।
1: हाँ,
0: कंपनीज से वो कमाते हैं ऐड डालने के लिए और आपसे कमाते हैं एड फ्री देखने के लिए।
1: राइट
0: है ना।
1: यस।
0: अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और अब आप देखते होंगे कि जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही तो नेचुरल इंटेलिजेंस कितनी कम हो गई है इन दिनों में, कितना बदल गया है इंसान, है ना। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक बार आपका स्वागत है युवा मंच में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी येट युवा ओम मिश्रा जी हैं साथ में, और हम उनसे बात कर रहे हैं। ही इज एन AI एक्सपर्ट एज वेल एज
1: अ फिटनेस एंथुजियास्ट।
0: हमने बात की थी कि किस तरह से आजकल हमारी जिंदगी में कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और हर वक्त आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में किस तरह से एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कितने की बात है ना, वेरी आयरॉनिकल कि मनुष्य ने कंप्यूटर को बनाया और आज कंप्यूटर आपको किसी भी काम करने से पहले पूछता है कि या तो कैप्चा एंटर करो या प्रूव दैट यू आई एम नॉट अ रोबोट, यानी आप अपने आप को एक मनुष्य प्रूव करो। तो कल को ऐसा भी एक दिन आ सकता है कि कंप्यूटर्स माइट रूल आवर वर्ल्ड, बट इसके लिए हमें अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। और इस सिलसिले में आइए हम ओम जी से पूछते हैं कि हाउ डज ही मेंटेन हिज मेंटल बैलेंस। आप क्या करते हैं अपने मेंटल फैकल्टीज को और स्ट्रांग करने के लिए?
1: जी रवि जी, तो ये जो मेंटल हैबिट्स आ गए अपने पास, सो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब अराउंड 2010 के आर पास मेरे दादाजी का देहांत हुआ था, उसके बाद ही मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आत्मा क्या होती है
0: जी।
1: एंड उसके बाद मैंने खोजते खोजते मैं शिवानी बहन तक पहुंचा, बीके शिवानी बहन। तो उनके एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि आत्मा जो है, हम सब आत्मा। तब मेरा मन में लगा कि हम जीवित हैं, हम आत्मा भी हैं, ये कैसे हो सकता है
0: जी।
1: तब मैंने और मैं उनके थ्रू मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, और फिर मुझे पता चला कि हमारे घर के पास भी एक सेंटर है ब्रह्म कुमारीज का,
0: बहुत अच्छे।
1: और फिर मैं वहाँ तक गया एंड मैंने 7 डेज के कोर्सेज किए, एंड उसके बाद ही मैं बाबा का ज्ञान में आ पाया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने मुरली सुनना स्टार्ट किया,
0: बहुत सुंदर।
1: स्टार्टिंग में मुझे उतना समझ में नहीं आया क्योंकि सिंधी में था मोस्ट ऑफ दैट, एंड मुझे हिंदी आती थी, सिंधी का कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आते थे।
0: अच्छा।
1: पर धीरे धीरे जितना मतलब कंठस्थ होते गए हम एंड उसके अंदर जाते गए, मुझे गहराव समझ में आई मतलब मुरली की। एंड रोज मुरली सुनने के बाद मैं लाइफ में काफ़ी मिरेकल्स होने लगे।
0: अरे वाह। एंड कुछ इसके बारे में कोई कुछ एक एग्जांपल जो शेयर करना चाहिए?
1: बहुत शौक था जैसे आपको पहले ही बताया था मैंने, लेकिन मैं कुछ उस टाइम पे IIT JEE के प्रिपरेशन के टाइम पे मैं काफ़ी मोटा हो गया था, एंड आई वाज 120 kgs दैट टाइम। एंड लाइक मेरे क्लास में सब टाइप के लड़के थे, लंबे पतले छोटे मोटे सब थे, एंड सब मैं भागने गया, एंड ताज्जुब की ये बात है कि मैं सिलेक्ट हो गया।
0: अरे
1: फाइनल के लिए
0: बड़ी खुशी की बात है। एंड ये आप एट्रीब्यूट करते हैं अपने उस मेंटल फैकल्टीज की वजह से?
1: यस। मैं खुद शॉक था कि इतना वेट होने के बाद भी, इतने क्लास में इतने टाइप के लोग होने के बाद भी मैं सिलेक्ट हो गया।
0: अरे
1: एंड फिर मैं गया फाइनल डे में, एंड फाइनल डे हम भागे एंड आई गॉट 100 meters में गोल्ड मेडल मिला मुझे।
0: क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। वाह वाह वाह वाह। और
1: एंड इसके बाद से ही स्पोर्ट्स पे तो इच्छा थी ही, एंड मैं और एक रोमांचक चीज़ थी कि मैं उसके बाद JEE का एग्जाम दिया, मेंस देके आया। मेंस देने के बाद आई वाज लाइक कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो न्यूज़पेपर के थ्रू टैली करते थे आंसर शीट के ठीक हुआ है कि नहीं।
0: अच्छा।
1: और उनको लगा कि मैं पास नहीं होऊंगा, तो मैं दूसरे एग्जाम्स के लिए बैठाने लगे, दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए,
0: मतलब वो एक प्लान बी तैयार करने लगे कि
1: प्लान बी एग्जैक्टली
0: इसमें सक्सेस ना हो तो।
1: यस। तो फिर लेकिन मुझे अपने पे भरोसा था, मुझे बाबा पे भरोसा था।
0: वाह।
1: मैं मेडिटेशन करता गया
0: जी,
1: और फिर जब रिजल्ट आई वो भी शॉक हो गए कि मैं सिलेक्शन हो गई।
0: तो ये पहली बार आपके साथ हुआ कि फिजिकल और मेंटल फैकल्टीज दोनों साथ में ही, एक 100 meters का गोल्ड मेडल और IIT के एंट्रेंस एग्जाम में।
1: यस।
0: क्या बात है।
1: तो मेंस वैसे मेरा क्लियर हो गया और मैं एडवांस के लिए प्रोसीड किया। तो ये थी मेरी वहाँ। और आज टाइम पे जहाँ पे हम मोबाइल में इतने डूबे हुए हैं
0: जी,
1: तो मैं अपना ये मेंटल हेल्थ संभालने के लिए मैं रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन करने के बाद मुरली सुनता हूँ बाय नॉट फेलिंग इट बाय एनी चांस।
0: वाह।
1: तो इससे क्या होता है कि मैं दिन एक पॉजिटिव नोट में शुरू हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे शरीर के चारों तरफ एक गोल्डन कवच आ गई है
0: एक ऑरा, एक कवरिंग है आपके, पॉजिटिव कवरिंग आपके बॉडी के ऊपर।
1: फिर दिन में कुछ भी हो,
0: यानी आपने अपने ख्यालों को इतने सुंदर खूबसूरत तरीके से बनाया है कि वो सारा दिन वो कवच आपके ऊपर ही अवेलेबल रहे। आइए इसी बात पे हम सुनते हैं एक बड़ा सुंदर सा गाना, ख्यालों को यूं खूबसूरत बनाऊं।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपकी कई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: वेलकम बैक टू युवा मंच और आपका युवा आरजे रवि के साथ हैं युवा ओम। अभी जैसे आपने सुना, ख्यालों को खूबसूरत बनाएं। जैसे हम देख रहे थे कि आजकल कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा बोलबाला है हमारी ज़िंदगी में, और एक ऐसा स्टेज आ रहा है जब कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। बट कंप्यूटर को बनाया किसने? मनुष्य ने। अगर मनुष्य को कंट्रोल कंप्यूटर्स को करना है तो लिहाजा उसको अपने थॉट को भी कंट्रोल करना है, और थॉट को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है मेडिटेशन, जो हमें ओम जी ने बताया। आइए अभी उनसे पूछते हैं कि वो अपना बैलेंस किस तरह मेंटेन करते हैं, और आगे अगर इस फील्ड में किसी को जाना है तो वो क्या और कैसे जा सकते हैं।
1: सर, कौन से फील्ड के बारे में आप बोल रहे हैं? फिटनेस?
0: अच्छा, सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आप तो हरफन मौला है। आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी एक्सपर्ट हैं और फिजिकल फिटनेस। आपको श्रोताएं बता दें कि हम दोनों के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट की रखी हुई है। उनके आर्म्स लेंथ के बाहर बैठा हूं ताकि कहीं गलती से नजदीक ना बैठ जाऊं। वैसे मैं आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछना चाहता था पहले, कि अगर आज का कोई युवा इस फील्ड में जाना चाहे तो उसको क्या, व्हाट शुड ही फॉलो, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे इसको परस्यू करना चाहिए?
1: जी रवि जी, सो किसी को अगर इस फील्ड में आना है, डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों में, तो वो सबसे पहले अपना पाइथन पढ़ना स्टार्ट करें। पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है।
0: पाइथन? आज तक तो पाइथन में सिर्फ सांप को समझता।
1: एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पाइथन है, तो उसको लोग पढ़ना स्टार्ट करें। उसके लिए यूट्यूब पे काफ़ी फ्री रिसोर्सेज हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, लोगों को पैसे दे के खर्च करके पढ़ने की जरूरत नहीं।
0: आपका कहना है कि यूट्यूब सिर्फ मेरे जैसे क्रिकेट वीडियो देखने के लिए नहीं है, इंस्ट्रक्शनल भी है।
1: जी जी।
0: सबसे पहले पाइथन पढ़ना शुरू करें, उसमें से इंस्ट्रक्शनल वीडियोस देखना शुरू करें। आगे
1: उसके बाद एक कैगल करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कम्युनिटी बैठती है।
0: अच्छा।
1: वहाँ पे लोग अपना कोड वगैरह डालते हैं और लोग वहाँ पे दूसरों का कोड भी पढ़ते हैं, और वहाँ पे लोग कॉम्पिटिशन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं।
0: अरे वाह।
1: और उससे नौकरियाँ भी लगती हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो यानी सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर ही आपकी नौकरी तक लग सकती है?
1: यूट्यूब में पढ़ के कैगल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेके
0: जी।
1: हाँ, जरूर। और उसको छोड़ के भी, और एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन बोल के, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म।
0: ओके।
1: तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी जॉब पोस्टिंग आती है। ये
0: तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: अच्छा।
1: तो लोग अपना रेज्यूमे बना सकते हैं एंड प्रोफाइल वहाँ पे पोर्टफोलियो बना के डाल सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए।
0: जी।
1: तो उसके थ्रू काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बाकी कंपनी से काफ़ी करियर पेजेस होते हैं।
0: अच्छा।
1: उसमें भी डिस्प्ले होता है कि किसको AI इंजीनियर चाहिए या AI कंसल्टेंट चाहिए, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और
0: तो यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा, तो ये क्या प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, या जैसे अगर कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया तो जैसे पुराने ज़माने में होता था, चलो टाटा बिरला ज्वाइन कर लिया तो थ्रू आउट आप उस कंपनी के साथ रहेंगे, वैसा होता है, या आजकल प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है कि एक प्रोजेक्ट दिया आपको वो ख़त्म, तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट सा?
1: या तो दो टाइप के जॉब्स होते हैं, एक तो फुल टाइमर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं
0: जी,
1: लेकिन उस जो जॉब डिस्क्रिप्शन GD जिसे बोलते हैं उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि वो जॉब किस टाइप का है। मोस्टली जो जॉब्स के लिए लेते हैं लोग वो फुल टाइमर्स जॉब्स होते हैं।
0: अच्छा।
1: और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के लिए भी वहाँ पे काफ़ी naukri.com हो गया कि monster.com हो गया, उन सारे वेबसाइट्स में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस मिलते हैं, बट जनरली लोग जो जाते हैं वो फुल टाइमर्स के लिए जाते हैं, एंड मोस्टली जॉब्स जो होते हैं वो फुल टाइमर्स की होती है।
0: तो एक बात बताइए, मतलब ये अब जैसे मुझे अचानक कोई बोले कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट तो ओवरनाइट तो नहीं आ सकता।
1: नहीं, नहीं।
0: तो ये बल्कि स्कूल टाइम से ही किसी बच्चे की प्रवृत्ति अगर ऐसे हो तब इट विल बी ईजियर, या ऐसा फील्ड है जो आप से यू कैन ब्लूम लेट, आप बाद में भी आ सकते हो?
1: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फील्ड है, ऐसा नहीं है कि आपको बचपन से ही कंप्यूटर में होना है। आप इवन आपको किसी का करियर अगर एग्रीकल्चर में है
0: जी,
1: या किसी का करियर अगर इसमें क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल मटेरियल का है, सिविल इंजीनियर है, वो लोग भी आ सकते हैं इसमें। जस्ट आपको पाइथन और पाइथन में आपको थोड़ा पॉलिश करना है अपना स्किल को
0: जी,
1: और उसके बाद थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के आपको कैगल हो गया या हो गया लिंक्डइन पे अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके थ्रू आप हाईलाइट कर सकते हो कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे कि जॉब के लिए.
0: अच्छा, तो इसमें स्टार्टिंग में कई रिजेक्शंस भी होती होंगी.
1: ज़रूर.
0: क्योंकि कहते तो हैं ट्राई ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड. अच्छा, अभी हम आते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे,
1: फिटनेस,
0: फिजिकल फिटनेस.
1: Yes.
0: अब देखिए, हमारे कंट्री भी धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है. अभी जैसे आप देख रहे हैं, एक जमाना वो था जब एक सिंगल मेडल लाने के लिए ओलंपिक्स में हम पूरी मतलब देश एक हो जाता था. मुझे याद है 96 में लियांडर पेस ने टेनिस में, 2000 में शायद करनाम मलेश्वरी जी थी जो वेटलिफ्टिंग,
1: राइट
0: है ना. और उसके बाद शायद हर साल मतलब हर चार साल में एक या दो मेडल ही थे. और बलगत पिछले ओलंपिक्स में ही शायद हमने 6 या 7 जीते थे. अभी तक हम डबल फिगर्स तक नहीं पहुंच पाए. बट एक चीज ये जरूर हो रहा है कि द कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो इंडिया में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. तो फिजिकल फिटनेस के लिए आप, अगर कोई बच्चा इसमें जाना चाहे तो आप क्या सलाह देंगे उसको?
1: जरूर. सो फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए एक स्पोर्ट्स कोटा करके रखा है.
0: अच्छा.
1: ताकि लोगों को उसके थ्रू जॉब्स मिल सके आगे जाके. और उसको छोड़ के कॉलेजेस एंड,
0: पर इसके लिए तो आपको कुछ एक लेवल तक कंप्लीट किया होना चाहिए ना, तभी तो आप उस कोटा के लिए एलिजिबल होंगे.
1: वो कोटा आप अगर आपने स्कूल लेवल में या इंट्रा स्कूल लेवल पे आपने किया है तो आप उसके लिए लेवल अप हो सकते हो. बाकी उसको छोड़ के भी अगर आप कभी, काफ़ी कम्युनिटीज होती हैं जैसे फिटर कम्युनिटी एक है स्पोर्ट्स को लेके, फिटनेस को लेके, वो काफ़ी लोगों को इंकरेज करती है कि वो आगे चल के स्पोर्ट्स को प्रमोट करें. नॉट ओनली लाइक मतलब क्या रीजन वाइज, स्टेट वाइज, इवन अंडर 19, अंडर 20 ऐसे करके वो लेवल अप करते रहते हैं. और बाकी एक है कि मतलब कम्युनिटीज़ तो एक हो गई स्पोर्ट्स के लिए, बाकी अब स्टेडियम्स काफ़ी हैं जो स्टेडियम्स के थ्रू भी लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. स्टेडियम्स एंड इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी ट्रेनिंग्स होती है. जैसे मुंबई काफ़ी फेमस है क्रिकेट्स के लिए, एंड आप हैदराबाद आओगे तो इट्स वेरी फेमस फॉर बैडमिंटन. यहाँ पे गोपीचंद बैडमिंटन है,
0: वेरी नाइस.
1: सो उस टाइप का मतलब हर सिटी में एक एक स्पेशलिटी होती है स्पोर्ट्स को लेके. एंड आप कोलकाता जाओगे तो फुटबॉल को भी वो काफ़ी इंकरेज.
0: मैं बोलने ही वाला था कि अब कोलकाता और फुटबॉल का नाम अभी तक आया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है.
1: सो वहाँ पे डिफरेंट क्लब्स होती हैं, क्लब्स जहाँ पे लोगों को इंकरेज करते हैं. एंड और एक है कि एक यूथ क्यूबिनेटर करके एक है कम्युनिटी जो स्पोर्ट्स के लिए हेल्प भी करती है लोग, यूथ क्यूबिनेटर्स करके.
0: ओके, तो ये तो आपने जनरल बात बताई. अब मैं बिल्कुल आप पे ही आता हूँ. आपने हैदराबाद की बात बताई, आपने कलकत्ता की बात बताई, तो आप अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हाउ यू केम टू बी एसोसिएटेड विद दीज टू सिटीज?
1: राइट राइट. सो कमिंग टू कोलकाता, मैं लाइक इट्स द प्लेस वेयर माय पेरेंट्स वर्क. तो वहाँ से मैं तो वहाँ पे मेरा स्कूलिंग वगैरह हुई थी. तो उधर मेरी काफ़ी स्पोर्ट्स के लेके लाइक फुटबॉल में मेरी काफ़ी रुचि रही है बचपन से, फुटबॉल एंड क्रिकेट. तो मैं काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग था अपने कॉलेज में, सॉरी स्कूल में, क्रिकेट में, इंट्रा क्रिकेट एंड क्रिकेट खेलने में. बाद में जाके मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट आ गई, तो मैं काफ़ी फुटबॉल इंटर हाउस हो गया, इंटर स्कूल हो गया, फुटबॉल में भी कंट्रीब्यूट करने लगा. एंड जैसे जैसे मैं वहाँ से निकल के यहाँ हैदराबाद आया, बिकॉज मेरी जॉब लोकेशन हैदराबाद थी
0: जी,
1: तो मैं उसके बाद मैराथन्स में काफ़ी इंटरेस्ट होने लगा. तो लास्ट ईयर मैं 21 किलोमीटर्स की मैराथन कंप्लीट की.
0: यहाँ पे मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा. मैराथन भी मैंने देखा है इंडिया में काफ़ी मतलब अप एंड कमिंग, बहुत पॉपुलर हो रहा है. मैंने देखा है स्पेशली मिडिल लेवल एज के लोग भी आजकल रनिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं. क्या कारण हो सकता है इसका? इज इट बिकॉज इट इज लाइक वेरी चीप, यू डोंट नीड मच ट्रेनिंग, ऐसा कुछ है? क्योंकि देखिए कोई भी स्पोर्ट खेलने के लिए आपको जैसे कुछ बैट बॉल रैकेट कुछ तो खरीदना पड़ता है, लेकिन right, रनिंग के right. लिए क्या है, आपको रनिंग शूज खरीद लिए तो, और आपके अंदर जिगर होना चाहिए.
1: राइट. सो मैराथन को लेके ना रिसेंटली वर्ल्ड वाइड एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है. जैसे कि आपको पता होगा कि आयरन मैन करके एक कॉन्सेप्ट है.
0: जी जी. yes.
1: जो पहले आती है मतलब पहले होता है उसमें अपना साइकिलिंग, फिर स्विमिंग, फिर रनिंग.
0: जी.
1: सो रनिंग जो है ना मतलब अभी काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन जो है, बहुत सारे एनजीओज भी हैं, वो लोग कम टुगेदर करके डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं रनिंग को फोकस करके. जैसे कि एक पिंक मूवमेंट हुई थी पुणे में
0: जी,
1: वो ब्रेस्ट कैंसर को बचाने के लिए
0: उसके
1: हाईलाइट करने के लिए हुई थी. तो वो भी मैराथन के बेसिस पे हुई थी. हर साल
0: बल्कि

0: एंड आयरन मोस्ट मैराथन पर्सन इन द वर्ल्ड. सो हैदराबाद इंडिया में, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, इसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में ये कॉम्पिटिशन हो रहे हैं. और इसको छोड़ के भी अभी इंडिया में एक इंडिया लेवल का मैराथन भी आने वाला है, जहाँ पे लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी एक मैराथन होगी, लंबा मैराथन. तो उसके भी अभी प्लानिंग चालू है मैराथन कम्युनिटी के अंदर.
1: पर एक बात बताइए, इतनी लंबी मैराथन हो भी सकती है? मैराथन मतलब एज इन 42 का ही होता है ना?
0: राइट 42 का होता है, लेकिन ये क्या है कि एक ग्लोबल लेवल पे नया इंडिया के अंदर एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ताकि कुछ वंदे भारत मैराथन उसका नाम होगा ऐसा, जहाँ पे वो लोग मतलब नॉट ए सिंगल डे, ब्रेक्स होंगे, चेक पॉइंट्स होंगे, चेक पॉइंट्स कवर करते हुए मैराथन के लोग आएंगे लास्ट तक. तो जैसे कि अल्ट्रामैन है, अल्ट्रामैन में क्या होता है कि पहले वो जाते हैं साइकिलिंग करके, साइकिलिंग करने के बाद वो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करने के बाद लास्ट का पड़ाव जो होता है वो भागने का होता है, 17 घंटे के अंदर करना होता है. सिमिलरली अल्ट्रामैन एक आया है जो 3-4 दिन तक स्ट्रेच करता है मैराथन.
1: तो एक इवेंट एक दिन में, ऐसे
0: ऐसे इस टाइप का आई. तो सिमिलरली इंडिया में एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं उसको, जो कश्मीर टू कन्याकुमारी का एक रनिंग होगा, उसमें स्विमिंग होगा, उसमें इवन ये होगा कि क्या बोलते हैं, बाइकिंग होगा. तो ये सब मिला के कॉम्पिटिशन आने वाला है.
1: वेरी नाइस. तो हमने सुना आपसे कि आप अपना फिजिकल फिटनेस और मेंटल बैलेंस दोनों कैसे मेंटेन करके रखते हैं. तो श्रोताओं, आइए एक गाना सुन लिया जाए, कर्म करो ऐसे. अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह मेंटल और फिजिकल बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है, ताकि आप ऐसे कर्म करें ताकि लोग आपको याद रखें. आप सुन रहे हैं युवा मंच 107.8 FM.

दोस्तों वेलकम बैक. आप सुन रहे थे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर युवा मंच, और आज हमारे साथ जुड़े थे ओम मिश्रा जी, जो कि न केवल एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं बल्कि फिजिकल फिटनेस के एक्सपर्ट भी थे. और उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से हमें बताया कि किस तरह अपनी बॉडी को फिट, माइंड को ट्यून्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अगर किसी

0: ने जाना है तो कोई युवा किस तरह बिना पैसे खर्च किए आराम से कैसे उस फील्ड में जा सकता है, यानी उन्होंने आम के आम गुठलियों के दाम दोनों कवर करते हुए बड़े प्यार से बताया। पर मुझे लगता है एक सेशन इनके लिए कम था। मुझे खुद भी आज इसको होस्ट करते हुए मैंने खुद कई ऐसी नई चीजें सीखी जो मुझे कभी वैसे ही पता न थी। तो ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना इन ओम मिश्रा जी को हो सकता है हम बाद में भी बुलाएं। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा अगली बार जरूर बताइएगा, और हमें रहेगा आपके फोन का इंतजार 94-1415-1415 पे। अगली बार जरूर कॉल करिएगा। तो आज हम लेते हैं अलविदा आपसे युवा मंच पर, और हम करते हैं धन्यवाद ओम मिश्रा जी का।
1: थैंक
0: ओम
1: यू।
0: जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच वंडरफुल इनसाइट्स विद अस। एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अवेलेबल रहेंगे, कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े। अच्छा, बिफोर एंडिंग मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? एनी मैसेज यू वुड लाइक टू लीव विद अस?
1: जरूर रवि जी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि हम जो इतना इस आधुनिक दुनिया में इतना खो जा रहे हैं, कभी कभार हम अपना थोड़ा सा भी टाइम अपने फिटनेस को दें। इवन इफ लाइक थोड़ा सा, मतलब 15 मिनट भी हो, 10 पुशअप कर लो या या थोड़ा सा जॉगिंग के चले जाओ, तो इससे क्या होता है कि पूरा बॉडी ना वार्म अप रहती है नेक्स्ट डे के लिए। तो बस यही थोड़ी सी गुजारिश है लोगों से कि वो
0: आपके इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, आजकल फोन स्मार्ट हो गया है और आदमी डम्ब हो गया है, ये बात ना हो। तो यहाँ हम क्लोज करते हैं आज का युवा मंच प्रोग्राम, और ओम जी को थैंक्स देते हुए आप सभी सुनते रहिए 108.107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन

0: ऐसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो अब

0: गम में पिएं या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए

0: गुड इवनिंग नमस्ते रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप उड़ान के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए कुछ बेहतरीन गीत आप तक पेश करने के साथ साथ अब मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी और लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आप उड़ान सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, चतुर वैद्य की कहानी।
1: सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन कई वर्षों से गांव के प्रसिद्ध वैद्य हरिदास जी के साथ काम करता था। हरिदास जी जड़ी बूटियों की पहचान, देसी नुस्खे और लोगों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करना जानते थे। मोहन भी उनके साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख चुका था। एक दिन मोहन ने परेशान होकर कहा,
2: वैद्य जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है।
1: हरिदास जी ने पूछा,
3: हाँ मोहन, बोलो, क्या बात है, तुम्हें किस विषय में बात करनी है?
1: मोहन बोला,
2: अरे वैद्य जी, इतने साल आपके साथ रहकर मैंने जड़ी बूटियों की पहचान, दवाई बनाना और लोगों का इलाज करना सब सीख लिया है। गांव में जब भी कोई मरीज आता है उसका आधे से ज्यादा काम तो मैं ही करता हूँ, लेकिन सम्मान आपको मिलता है और मुझे लोग सिर्फ आपका नौकर कहकर बुलाते हैं।
3: बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम अभी सीख रहे हो, कुछ दिन बाद अच्छे से सीख जाओगे, तब तुम भी गांव के लोग जानने लगेंगे। अपना काम शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोलकर नहीं।
2: सीखते सीखते मेरी उम्र निकल जाएगी, मैं भी कहीं दूसरे गाँव में जाकर अपना इलाज का काम शुरू करूँगा। वहाँ मुझे कोई नौकर नहीं समझेगा, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा।
1: हरिदास जी ने समझाया,
3: बेटा पहले और जानकारी ले लो, तब बाद में खोलना।
2: मुझे सब आता है, मैं मेहनत करूंगा और नाम भी कमाऊंगा। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ।
1: मोहन अपना छोटा सा सामान लेकर चंद्रनगर गांव की तरफ निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद थक गया।
2: हे भगवान, इतनी दूर आ चुका हो, बहुत से प्यास लग गई है, अब पानी कहाँ मिलेगा? थोड़ा और आगे चलता हूँ, क्या पता कोई घर ही दिख जाए।
1: जैसे ही कुछ दूर गया उसे एक घर दिखाई दिया। उसने दरवाजा खटखटाया।
2: अरे घर में कोई है? थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? बहुत तेज से प्यास लगी है।
1: तभी दरवाजा एक आदमी ने खोला। मोहन ने कहा,
2: नमस्कार, मेरा नाम रघुवीर दास है, मैं दूर के गांव से आया हुआ वैद्य हूँ, बहुत थक गया हूँ, अगर रात को आपके घर के बाहर थोड़ी जगह मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी।
1: घर का मालिक गोपाल बहुत खुश हो गया।
4: अरे वैद्य जी, आप हमारे घर आए हैं, यह तो हमारा सौभाग्य है, अंदर आइए। भले ही मेरा परिवार गरीब है, लेकिन अगर आपके जैसे वैद्य के पैर हमारे घर में पड़ेंगे तो हमारा घर धन्य हो जाएगा।
1: मोहन मन ही मन खुश हुआ।
2: वाह, यही तो चाहिए था, यहाँ तो लोग पहले ही मुझे सम्मान दे रहे हैं, ये सम्मान तो मुझे वहाँ पर नहीं मिला था।
1: वह घर के अंदर चला गया। गोपाल ने खाने पीने का इंतजाम किया। मोहन ने पेट भरकर खाना खाया और सो गया। कैसे भी करके रात बिट गई। अगली सुबह गोपाल घबराया हुआ मोहन के पास आया।
4: वैद्य जी, एक समस्या हो गई है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो?
1: मोहन ने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा।
2: अरे गोपाल भाई, क्या हुआ बताओ ना।
4: कल रात मुझे लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर कोई भारी चीज गिरने वाली है। अचानक मेरी नींद खुली और देखा कि कमरे की छत से मिट्टी का एक टुकड़ा मेरे पास गिरा हुआ था। मेरी पत्नी कहती है कि यह कोई अशुभ संकेत है।
1: मोहन ने आंखें बंद की और कुछ देर सोचने का नाटक किया, फिर बोला,
2: अरे गोपाल भाई, मामला गंभीर है, इसे जल्द ही ठीक करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है।
1: गोपाल डर गया।
4: क्या हुआ वैद्य जी, कुछ दिक्कत है क्या?
2: तुम्हारे घर की हवा ठीक नहीं है, घर में कई दिनों से नकारात्मकता जमा है, इसका तुरंत उपचार करना होगा। तुम्हें घर के चारों कोनों में विशेष औषधीय धुआं करना होगा, साथ में नीम की पत्तियां कपूर, कुछ जड़ी बूटियाँ और थोड़े पैसे रखने होंगे।
4: बताओ ना कैसा उपचार होगा वैद्य जी, जितना खर्च हो बताइए, बस मेरा घर सुरक्षित रहना चाहिए।
1: मोहन ने मन ही मन सोचा,
2: यहाँ तो कमाई भी अच्छी हो सकती है।
1: कुछ दिनों बाद मोहन की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। अब लोग उसे रघुवीर वैद्य के नाम से जानने लगे। एक दिन गांव की महिला कमला देवी उसके पास आई।
5: वैद्य जी, मुझे आपसे एक निजी सलाह चाहिए।
1: मोहन बोला,
2: हाँ हाँ बताइए, क्या बात है?
5: मेरी बेटी किरण की शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन उसका पति उससे ठीक से बात नहीं करता। मेरी बेटी हमेशा दुखी रहती है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोनों के बीच प्यार बढ़ जाए।
1: मोहन ने तुरंत गंभीर चेहरा बनाया।
2: ये सिर्फ बीमारी नहीं, मन की परेशानी है।
1: कमला बोली,
5: तो क्या करना होगा?
2: मैं तुम्हें एक खास जड़ी बूटी दूंगा, इसे रात को दूध में मिलाकर पति पत्नी दोनों को देना, साथ ही सुबह दोनों को साथ बैठकर भोजन करना होगा।
1: कमला खुश हो गई।
5: वैद्य जी, अगर मेरी बेटी का घर बच गया तो मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी।
1: मोहन ने जड़ी बूटी की एक छोटी पुड़िया को बनाकर उसे दे दी। लेकिन उसी समय पीछे खड़ा एक आदमी सब कुछ देख रहा था। वह था श्यामलाल, जो गांव में पुरानी जड़ी बूटियों की दुकान चलाता। श्यामलाल ने पुड़िया को देखते ही पहचान लिया। वह चुपचाप मोहन के पास आया और बोला,
6: रघुवीर जी, जरा अकेले में बात करनी है।
1: मोहन घबरा गया।
2: हाँ बोलो, क्या बात है भाई?
1: श्यामलाल ने कहा,
6: तुम्हारे हाथ में जो जड़ी बूटी है वह कोई खास औषधि नहीं है, यह तो साधारण सौंफ और अजवाइन का मिश्रण है।
1: मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया।
2: तुमने ये कैसे पहचान लिया?
1: श्यामलाल हंसते हुए बोला,
6: भाई मैं 20 साल से जड़ी बूटियों का काम कर रहा हूँ, मुझे सब पता है।
1: मोहन ने जल्दी से कहा,
2: देखो किसी से कुछ मत कहना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा।
6: पैसे से मेरा मुंह कितने दिन बंद रहेगा?
1: मोहन ने जेब से कुछ रुपए निकालकर दिए।
2: ये लो, बस किसी को मत बताना।
1: श्यामलाल ने पैसे रख लिए और बोला,
6: बताओ ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखना, गांव में सच ज्यादा देर छिपता नहीं।
1: उधर मोहन का झूठ लगातार बढ़ता जा रहा था। अब लोग उससे अपने घर की परेशानियों का इलाज करवाने लगे। कोई कहता। मोहन हर समस्या का कारण कोई रहस्यमयी बीमारी बताता और कोई ना कोई जड़ी बूटी बेच देता। एक दिन अचानक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति को तेज बुखार हो गया। परिवार वाले उसे मोहन के पास ले आए। मोहन ने नाड़ी देखने का नाटक किया।
2: बहुत गंभीर बीमारी है।
1: परिवार घबरा गया। मोहन ने कुछ दवाएं आम देने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बैद हमारा की असल बीमारी क्या है। तभी श्यामलाल वहां पहुंचा। उसने मरीज को देखा और तुरंत कहा,
6: इसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाओ, इसे साधारण घरेलू इलाज की जरूरत नहीं है।
2: नहीं, मैं इसका इलाज कर दूंगा।
6: तुम इलाज करोगे?
1: फिर उसने गांव वालों की तरफ देखकर कहा,
6: अब समय आ गया है कि मैं सबको सच बता दूं।
1: मोहन डर गया।
2: नहीं श्यामलाल, ऐसा मत करना।
6: ये आदमी रघुवीर नाम का कोई बड़ा वैद्य नहीं है, इसका असली नाम मोहन है। ये सूरजपुर में हरिदास वैद्य के साथ काम करता था, वहां से थोड़ा बहुत काम सीखकर यहां खुद को बड़ा वैद्य बताकर घूम रहा है।
1: गांव वाले हैरान रह गए। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी भीड़ में से एक आवाज आई,
7: तो तुम इतने दिनों से हम सबको बेवकूफ बना रहे थे।
1: मोहन ने हाथ जोड़ लिए।
2: मुझसे गलती हो गई, मैं सम्मान चाहता था। मुझे लगता था कि अगर मैं अपना सच बता दूंगा तो कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा।
1: तभी एक बुजुर्ग बोले, मोहन की आंखों में आंसू आ गए।
8: सम्मान झूठ से नहीं, काम से मिलता है बेटा।
1: उसी समय गांव में हरिदास वैद्य भी पहुंच गए। उन्हें किसी ने पूरी बात बता दी थी। हरिदास जी ने मोहन को देखा
9: और कहा,
3: मैंने तुम्हें हमेशा अपना शिष्य माना था। अगर तुम मेरे पास रहते और ईमानदारी से मेहनत करते तो एक दिन तुम सच में अच्छे वैद्य बन सकते थे, लेकिन तुमने जल्दी सम्मान पाने के लिए झूठ का रास्ता चुना।
9: मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा।
2: मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा,
9: हरिदास जी ने कहा।
3: गलती करने वाले को मौका मिलना चाहिए, लेकिन पहले गलती स्वीकार करनी पड़ती है।
9: मोहन ने गांव,
0: चलिए, मोहन ने तो अपनी गलती स्वीकार कर ली। और आज का सवाल एक बार मैं आपके सामने जरूर दोहराऊंगी। पुणे का प्रतिष्ठित श्रीमत डगरू सेठ हलवाई मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए गणेशी को, बी श्री कृष्ण को, या सी ब्रह्मा को? झटपट जवाब देना 9414151415 पर देना। और खास ये जो दिन चल रहे हैं वो इन्हीं के दिन चल रहे हैं, तो चलिए एक बेहतरीन सा गीत आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के सवाल के साथ आप उड़ान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी, नमस्कार। नारायणपुर से बुरीलाल बोल रहा हूँ
0: जी। शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए आज का सवाल है, पुणे का प्रतिष्ठित श्रीमंत डगरू सेठ हलवाई मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए श्री गणेश जी को, बी श्री कृष्ण को, या फिर सी ब्रह्मा जी को? गणेश जी को। ओके, चलिए आपके जवाब को लॉक करते और शुक्रिया अदा करते। थैंक यू, एक बेहतरीन गीत आपके लिए।
1: नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।

0: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, कितना रूप राग रंग कुस्मित जीवन उमंग है, अधर्य सभ्य भी जग में मिलती है प्रीत पग में।
1: श्री गणपति का उत्सव नारी नर का मधुरव, श्रद्धा विश्वास का आशा उल्लास का दृश्य एक अभिनव।
0: युवक नव युवतियां सुघर नैनों से रहे निखर, हाव भाव सुरुचि चाव स्वाभिमान अपनाव, संयम सभ्रम के कर कुसुमय विलप का डर। तो चलिए ये सुंदर सी कविता खास आज के इस सवाल के साथ जुड़ी जरूर थी, तो एक और कविता सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं रेडियो मधुबन के साथ, सुनते रहो, कविता नहीं कुछ बातें और सुनते हैं आगे, और एक कहानी और अद्भुत फल की कहानी आपके लिए लेकर आ रहे उड़ान में, सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो।

0: कौन है वो चित्रकार? पुणे का प्रतिष्ठित श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर किस देवता को समर्पित है? आपके सामने ऑप्शन है ए
1: श्री गणेश, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण, ऑप्शन सी है ब्रह्मा जी।
0: झटपट जवाब दीजिए, नंबर है हमारा
1: 9414151415।
0: अद्भुत फल की कहानी आपके लिए उड़ान में।
2: अरे भाई, ये कौन सा फल है? बड़े सुंदर और विचित्र है।
3: यही तो इनकी खासियत है भाई, ये दुनिया का सबसे छोटा तरबूज है जिसका आकार अंगूर के दाने जैसा है।
2: और ये
3: दुनिया का सबसे बड़ा अंगूर का दाना जो कुछ ही अंगूर के दानों से पूरा गांव का पेट भर जाएगा।
2: क्या बात है भाई, मुझे जरा ये तरबूज तो खिलाओ।
3: ये लो।
2: वाह भाई, इसका स्वाद तो अद्भुत है। लाओ 1 किलो दे दो तरबूज।
3: लग गया है अद्भुत सब्जियों का भंडार, स्वाद में बेमिसाल, दिखने में चमत्कार। खाइए एक बार, आइए बार बार।
2: भाई इस बार इतनी बड़ी भिंडी, ये एक भिंडी 10 घरों के लिए भी काफी होगी।
3: यही तो खास बात है इसमें, देखने में जितनी बड़ी स्वाद में उतनी है सही।
2: भाई ये इतना बड़ा मटर का दाना तो पहली बार देख रहा हूँ मैं, इसका वजन तो 2 किलो से भी ज्यादा लग रहा है मुझे।
3: हाँ भाई, ये एक मटर के 10 दाने पूरे गांव के लिए काफी है।
2: लाओ भाई एक मटर का दाना तोल के दे दो मुझे, और मुझे 1/2 किलो छोटे वाले कद्दू।
4: मुझे वो 5 किलो वाला नींबू देना।

0: ये क्या है, इतना बड़ा सेब, अद्भुत, ये कहाँ से मिला?
1: महाराज, उससे भी अद्भुत बहुत सारे तरबूज भी हैं।
0: क्या, ये कैसा मजाक है?
1: कोई मजाक नहीं है महाराज, आप खुद देख लीजिए। और भी बहुत अद्भुत और स्वादिष्ट फल है उसके पास।
0: कौन है ये और कैसे अद्भुत फल है ये और क्या क्या है उसके पास? जो भी फल हैं, कल सभी फल लेकर आओ उसे।
1: जी महाराज।

0: ये तो सच में अद्भुत है। इतने बड़े अनार और आम तो मानो पूरी बैलगाड़ी पर एक ही जाएगा।
1: उससे भी अद्भुत है इनका स्वाद।
2: महाराज का आदेश है, तुम्हारे जितने भी अद्भुत फल हैं, वो आज राज दरबार में जाएंगे, उसका मोल तुम्हें मिल जाएगा।
1: ठीक है, आप इन सबको बैलगाड़ी में रखवा लीजिए।

बहुत विचित्र सा लग रहा है, मानो कोई आंखों का धोखा हो। अभी इस आम को काट कर हमें चखाया जाए, साथ में यहाँ उपस्थित सभी लोगों को।

0: ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। वाह वाह मंत्री जी, उस फल वाले को हमारा संदेश दिया जाए कि कल हमें सबसे बड़ी लीची खिलाए, हमें बहुत पसंद है लीची।
1: जी महाराज।
0: बहुत ही अद्भुत फल है उसकी रानी, हमें तो अभी भी अपनी नजरों पर विश्वास नहीं।
2: कहीं ये दुश्मन राज्य का कोई माया जल तो नहीं आपके लिए महाराज?
0: हमें भी कुछ संदेह तो हुआ था रानी, कोई बात नहीं, कल हम उसे फल के साथ राजमहल बुलवाएंगे।

0: कौन हो तुम और कहां से इतने अद्भुत फल लेकर आते हो?
1: मेरा नाम अंकुर है महाराज। मेरा आधा जीवन ऋषि अमरीकी की सेवा में ही उनके आश्रम में व्यतीत हुआ था। उनके समाधि लेने से पहले ही उन्होंने मुझे यहाँ जीवन व्यतीत करने का विकल्प दिया था।
0: तुम ऋषि अमरीकी जी का नाम लेकर हमारे साथ छल तो नहीं कर रहे हो ना बालक?
2: नहीं महाराज, मैं कोई छल नहीं कर रहा हूँ। मेरे ये अद्भुत फल भी उनके द्वारा दी गई शिक्षा का ही परिणाम है और मैंने उन्हें वचन दिया है, मैं इसका कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा, सदा सही मार्ग पर ही चलूँगा।
0: हम तुम्हारी बात का विश्वास कर लेते हैं बालक, किंतु हमें क्षणिक भर भी संदेह हुआ तो तुम्हारे लिए वंत होगा।
3: जी महाराज,

0: सभी को सूचित किया जाता है, दुश्मन सेना हमारे राज्य की तरफ बढ़ रही है, कभी भी युद्ध हो सकता है, हमारी सेना कम है, सभी से आग्रह है आगे आकर सेना की संख्या बढ़ाएं।
1: युद्ध होने वाला है।
2: ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा महाराज, दुश्मन सेना हमारे राज्य के सरहद तक पहुंच गई है।
3: वैसे भी हमारी हार निश्चित है मंत्री जी, दुश्मन सेना के सामने हमारी सेना चींटी के समान है, चारों तरफ अंधकार है, सूर्यास्त हो गया है हमारा।
2: हिम्मत मत हारिए महाराज,
3: हम क्षमा मांगेंगे तब भी वो दुश्मन हमें मृत्यु देगा, ये निश्चित है।
0: महाराज की जय हो, कोई आपसे मिलने आया है, कहता है कि उसके पास युद्ध के लिए उपाय है।
3: अंदर भेजो उसे। तुम युद्ध का उपाय लाए हो क्या? उनको फल फेंक कर मारोगे? ये युद्ध है बालक, जाओ।
4: क्षमा करना महाराज, मेरे पास उपाय नहीं, युद्ध जीतने की क्षमता है।
0: क्या क्या है वो शक्ति जो इतनी बड़ी सेना को हरा दे?
3: उत्तर दो, क्या है वो शक्ति?
4: आप आक्रमण की तैयारी करें, कल युद्ध भूमि में उत्तर मिल जाएगा।
3: मूर्ख हो तुम, मैं अपने राज्य और सेना को बिना तुम्हारी क्षमता जाने दांव पर लगा दूं? जानते भी हो दुश्मन कौन है? हम उनके सामने पर्वत पर चींटी के समान है।
4: वैसे भी आपके पास विकल्प नहीं है महाराज, आप युद्ध करो या ना करो, कुछ ही समय में राज्य समाप्त हो जाएगा, इसलिए कृपया करके आक्रमण की तैयारी करें, सब अच्छा होगा।
2: ये ठीक कह रहा है महाराज, इसकी बात मान लेते हैं।
3: आक्रमण की तैयारी करो,

0: गुआ रहे हैं बालक?
1: आने दो पास। महाराज, जब तक मैं नहीं बोलता कोई आक्रमण नहीं करेगा।
2: मृत्यु सामने है और हम खड़े हैं।
1: आने दो और पास।
0: और कितना पास? अब गर्दन कटनी बाकी है।
1: कर दे सबका आकार चीटी का, वचन न जाए खाली मेरे गुरु का। डम डम डम डम डम डम डम डम।
0: अरे कहाँ गई सेना, कहाँ गई इतनी बड़ी सेना?
1: जमीन पर देखिए महाराज।
0: ये कमाल हो गया मेरे मित्र, तुमने तो हमारे हृदय पर विजय प्राप्त कर ली। तुम हमारे राज्य के लिए वरदान हो। मंत्री जी, अब आजीवन इन सभी चीटियों को इस युद्ध भूमि में एक मुट्ठी अनाज भेजा जाए हर दिन।

फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और

0: आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए अनन्या का मनी मंत्र। अशिक्षित अशिक्षित ने अशिक्त के जन्मदिन पर पापा ने उसे अपनी पसंद की रिमोट कंट्रोल कार गिफ्ट की, साथ में कुछ रुपए भी दिए। अशित बोला,
5: इन पैसों से तो खूब मजा आएगा। अगले दिन स्कूल के बाद अक्षित अपने दोस्तों के साथ मार्केट निकल पड़ा और पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम जो पसंद आया खरीद लिया
4: बस। और वो शाम को खाली जेब घर लौट आया। जब अगले दिन सुबह स्कूल के लिए बैग तैयार करने लगा, तब उसके अपने क्लास टीचर की बात उसे याद आई। टीचर ने कहा था,
5: बच्चों कल साइंस प्रोजेक्ट के लिए चार्ट पेपर, कलर्स और प्रैक्टिकल फाइल ले आना।
4: उसने जल्दी से अपना ड्रॉअर खोल कर देखा, अरे पैसे कहाँ गए।

0: मैं उनसे कैसे मांगूंगा?
1: फिर उसने सोचा, ओ नो, वो पैसे तो मैंने पहले ही खर्च कर दिए थे। अब शिव ने सोचा, अब क्या करें? वह मायूस होकर स्कूल चला गया।
0: उसे क्लास में उदास देख उसकी दोस्त अनन्या ने पूछा, क्या हुआ?
1: क्या हुआ अक्षित, इतने उदास क्यों हो?
0: अक्षित ने सारी बात उसे बता दी।
1: अनन्या ने पूरी कहानी समझ ली। उसने खुद के पास से एक्स्ट्रा चार्ट पेपर और क्लास के बाकी बच्चों से कुछ कुछ चीजें जुटाकर

0: डाल दिया। तुम्हारी पॉकेट मनी तो मुझसे भी कम है, फिर तुम्हारे पास ये पैसे कैसे आए?
1: क्योंकि मैंने तुम्हारी तरह सारे पैसे एक साथ खर्च नहीं करे।
0: फिर आन्या ने अक्षित को अपनी सेविंग स्ट्रेटेजी बताई जो उसे अपनी मम्मी से सीखी थी।
1: जरूरी चीजें के खर्च के लिए एक अलग डिब्बा, मेरी पसंद की चीजों के लिए एक अलग डिब्बा और भविष्य की जरूरत के लिए एक अलग डिब्बा। इन तीनों अलग अलग डिब्बों में उसने पॉकेट मनी को सेव करना शुरू किया।
0: आन्या ने कहा, मुझे जो भी पॉकेट मनी मिलती है मैं पहले उसे इन तीन हिस्सों में बांट देती हूँ। मेरे पास 3 जार है, एक मेरी जरूरी खर्चों के लिए, दूसरा मेरी पसंद की चीजें खरीदने के लिए और तीसरा मेरी भविष्य की जरूरतों के लिए। इसे मैं जमा करती हूँ।
1: मतलब तुम सारी इच्छाएं मार कर पैसा नहीं बचाती?
0: आन्या ने बोला, बिल्कुल नहीं, मेरी पसंद वाली जार तो किसी के लिए है, बस मैं यह तय करती हूँ कि कितना खर्चा करना है।
1: बस वो समझ गया कि अब से मैं समझदारी से पैसे खर्च करूंगा।

0: ऑप्शन बी श्री कृष्ण के लिए या ऑप्शन सी ब्रह्मा जी के लिए।
1: एक पांच पर देना, सुनते रहो,
0: मुस्कुराते रहो।

0: वेल दोस्तों, पुणे का प्रतिष्ठित श्रीमंत डगरू सेठ हलवाई मंदिर किस देवता को समर्पित है? अरे ये तो ब्रह्मा जी का मंदिर है।
1: नहीं,
0: कृष्ण जी का भी नहीं?
1: नहीं।
0: तो
1: ऑप्शन ए, श्री गणेश।
0: ओके, वेल पुणे के इस देवता को देखने के लिए आप जरूर जा सकते हैं। मुझे पता चला है कि इनके कान बहुत बड़े बड़े हैं और इसीलिए ये बहुत अट्रैक्टिव भी हैं। और पुणे में आज का भी ये विशेष दिन, वहाँ पर गणपति का दिन है और बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, घर घर में ये त्यौहार मनता है। तो चलिए आज के लिए बस
1: इतना ही,
0: कल मिलने का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे।
0: तब तक के लिए उड़ान से कहूंगी गुड बाय। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम के तहत आज आंगनबाड़ी केंद्र जो उमरिंद वार्ड नंबर फर्स्ट और सेकंड में पहुंचे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्र उमरिंद फर्स्ट जो कि बाल विकास परियोजना अवरोड सिरोही के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है और हमें बहुत खुशी और नाज है, क्योंकि हमारा बच्चे जब कुपोषित नहीं रहेंगे, सब सुपोषित रहेंगे तो हमें और हमारा अंचल में हरा भरा होगा और हमारा बच्चे स्वास्थ्यवान बनेंगे, तब उनका बुद्धि तेज होगा, बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास का साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कार्यक्रम महक उठेगा। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए खासकर बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम चेहरे को लेकर किशोरिया आए हैं। सभी किशोरियों को स्वागत करते, सबके लिए ताली बजाओ। तो सभी किशोरियों को पुनः स्वागत करते, उनका नाम लेंगे और खासकर पोषण को लेकर जब आए हैं, क्या क्या पोषण घर में पोषण लेते हैं, क्या क्या भोजन करते हैं और कौन सा सब्जी उनको बहुत पसंद है, सुनेंगे सबका तोतले तोतले आवाज नहीं। तो शुरू करेंगे, सामने है, क्या नाम है?
1: कविता।
0: कविता कविता के सुनाएंगे, कविता का कविता सुनाएंगे अभी। पोयम सुना, कोई भी पोयम सुना, दो लाइन सब साथ देंगे।
2: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी।
0: घर में क्या क्या भोजन करते हैं, खासकर कौन सा सब्जी आपको आता है?
1: आलू।
0: हरी सब्जी आलू। हरी सब्जी का नाम बताओ।
1: पालक।
0: पालक अच्छा लगता है, क्यों? पालक में क्या है? आलू सब्जी अच्छा लगती है, बस सब आलू है। तुम नाम बताओ। फूली। फूल गोभी अच्छा लगती है। फूल गोभी कहाँ से लाती है आप? बाजार से है ना, अपना बगान? बाजार से। कौन लेकर आते, क्या बताएंगे आज? तुम्हारा नाम बताओ।
1: संतोष।
0: हाँ संतोष, कौन सा गांव? से कौन सा गांव से आप आती हैं? आपका गांव का नाम बताओ। अच्छा, आंगनबाड़ी आते हैं आप? आंगनबाड़ी में आते हैं कभी कभी हैं? और स्कूल में जाते हैं? कौन सा स्कूल का नाम बताओ।
1: गवर्नमेंट
0: स्कूल। घर में और कौन कौन है?
1: गंगा, काली,
0: स्कूल में जाती तो स्कूल में क्या क्या पोषण मिलता है दोपहर में? जो मिड डे मील मिलता है ना, तो क्या क्या मिलता है बताओ? चावल खाना पीना मिलता है?
1: चावल,
0: टमाटर, सब्जी मिलता है ना, टमाटर का सब्जी। टमाटर आलू सब्जी खाने से हमको क्या मिलेगा? ताकत। क्या मिलेगा? ताकत। और कौन बताएगा? हरी सब्जी खाने से हमको क्या क्या फायदा? चलो कोई गीत बताओ, मिलकर गाएंगे, इसका साथ कौन देगा?
2: अरे बदल कारे बदल लाओ जरा झूम के अपने।

0: नाम बता दोनों, क्या क्या नाम, नाम बता,
1: अपना अपना नाम बोलो, कितने में पढ़ते हो?
0: नाम बता।
2: कविता।
0: कविता। और नेक्स्ट?
2: केलम।
0: केलम सब कम है, केलम और कविता दोनों अच्छा बच्चे है दोनों। और बड़े होकर क्या बनेंगे? कविता तुम बड़े होकर क्या बनेगी
1: बोलो बेटा? बड़े तू का करना चाहे, डॉक्टर बनी के मैडम बनी के का बनी बोलो बेटा?
0: मैडम।
1: मैडम
0: मैडम का काम क्या होता है? बच्चों को पढ़ाते हैं। और केलम को दो क्या बनेगी? वो
1: बड़ी बेटा,
0: वो भी मैडम है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ना, आशा सहयोगी ना, सरपंच
1: मैडम।
0: मैडम का कोई कम भाई, उमरिन गांव में बहुत मैडम है। चले कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए दो छोटे छोटे मासूम बच्चे आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। अच्छा तुम्हारा नाम बता पहले।
2: बसंती।
0: हाँ बसंती, वाह। हाँ ये दोनों आवाज अभी बुलंद है, आगे पूरा चार चांद लगा देंगे अभी, है ना? हाँ बसंती और
3: सोनिया।
0: सुनाओ एक प्रस्तुति। हाँ सुनाओ, क्या सुनाएंगे?

0: ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन कम बोले, लेकिन बहुत सुंदर से बोले प्रस्तुति, कोई झिझक नहीं, बुलंद आवाज से। ऐसे और कुछ है?
1: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
0: नमस्कार। अल्प विराम के बाद हम मिल रहे हैं अच्छा जानकारी के साथ, क्योंकि पोषण माह के अंतर्गत हम आज आंगनबाड़ी केंद्र उमरंज में पहुंचे, और खासकर यहाँ पे जो गतिविधि हो रही है और आज का जो कार्यक्रम, खासकर क्या क्या गतिविधि है, वो चीज़ रखने के लिए हमारा साथ आंगनबाड़ी के आशा सहयोगिनी उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं और उनका परिचय लेंगे। मैडम, आप अपना परिचय दीजिए।
2: मैं वार्ड नंबर 2 मानपुर सेकंड से हूँ। मेरा नाम कौशल्या है और मैं वार्ड नंबर 2 की आशा सहयोगिनी हूँ।
0: आप आज यहाँ पर आए हैं आप, क्योंकि आंगनबाड़ी जो केंद्र है, खासकर उमरेनी में आज आप फर्स्ट आए हैं, तो किस उद्देश्य से लेकर आए और आज का गतिविधि क्या है, वो बात बताइए।
2: हम किशोरी बालिकाओं के बारे में समझाएंगे, आज उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके पोषण के बारे में, उनकी साफ सफाई के बारे में, वो सब हम इनको बताएंगे। तो मेन तो है किशोरियों की आयरन की गोलियां।
0: किशोरी किसको कहते, कितना उम्र होना
2: चाहिए? 18 साल की बच्चे को,
0: 10 से 18 साल बच्चे को किशोरी कहते हैं। तो उनको आंगनबाड़ी से क्या क्या फायदा दिलाते हैं?
2: उनको ये पैड वगैरह, सैनिटरी नैपकिन, आयरन की गोलियां, फोलिक एसिड, पोषण, और जो भी ये जो पोषण के बारे में, मतलब सब्जियां है वगैरह है जो खाना चाहिए, उनके बारे में इनको समझाते हैं।
0: इसे कितना किशोरियाँ आपका पास आते हैं आपका आंगनबाड़ी में?
2: हमारे जैसे वार्ड में तो 12 है किशोरिया।
0: क्या क्या नाम, एक दो का नाम बताओ।
2: जैसे एक एकमी है और पचकी है और एक समूह है और भी बहुत सारी लड़कियाँ है।
0: तो वो लोग स्कूल में जाते कि नहीं, जो किशोरियाँ?
2: नहीं, जो स्कूल नहीं जाती उनका हम पंजीकृत करते हैं हमारे आंगनबाड़ी में।
0: अच्छा अच्छा, तो उनका जो डिमांड है, क्या उद्देश्य उनका आने का, आंगनबाड़ी से जोड़ने का क्या उद्देश्य उनका?
2: उनका मतलब जैसे कि ये, मतलब ये जो स्कूल नहीं जाती है उनको इन सब चीज़ों के बारे में कोई पता नहीं रहता है मतलब, और फिर वो साफ सफाई नहीं रख पाती, तो हम उनको मतलब समझाते घर घर जाके कि भाई ये चीज़ पेड़ वगैरह है, ये यूज करने से मतलब तुम्हारे मतलब संक्रमण नहीं फैलेगा, मतलब साफ सफाई रखोगे तो कीटाणु वगैरह नहीं होंगे और इससे तुम्हारे स्वास्थ्य में मतलब कोई बीमारी नहीं पनपेगी, तो हम इनको पैड दे दें। फिर रही आयरन की गोली या फॉलिक एसिड, तो हफ्ते में एक गोली देते किशोरी को, तो मतलब उसको इसको खाने से मतलब खून की कमी नहीं होगी और इससे भूख भी लगेगी और इनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा।
0: उसके लिए जाँच करने के लिए कुछ मशीन वगैरह लेकर जाते हैं ना, कैसे उनका खून जांच करते?
2: जैसे कि इनके खून जांच लेके वो स्लाइड
0: लेकर जाते हैं। उसे पता चलता है। ऐसे उनका घर से कोई ऑब्जेक्शन होता है कभी किशोरियों के बारे में पूछताछ करना?
2: हाँ, ऐसे होता है, दिक्कतें आती है हमको। अभी जैसे उनको बुलाते हैं तो उनके माँ बाप जैसे घर से नहीं भेजते उनको, मगर फिर भी हम उनको समझा के और उनको मतलब लेके आते हैं यहाँ तक, यूँ तो अभी थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है।
0: जी जी, क्या सुधार किया आप?
2: जैसे पहले ये किशोरी बालिकाएं थी तो इनको मतलब ये कपड़ा वगैरह यूज करती थी, अब ये पैड वगैरह यूज करने लगी है। बाकी इनके जब थोड़ा खून में कमी थी तो हम आयरन की गोलियां देने लगे, तब से इनके थोड़ा फर्क आया पोषण में।
0: आप और उनका मम्मी में क्या अंतर है?
2: उनकी मम्मी कम पढ़े लिखे होते हैं, हम थोड़ा वार्ड के सेंटर की तरफ से आशा सहयोगिनी है, तो वार्ड में जो भी सर्वे होता है उसके हिसाब से हम जो भी हो उनको समझाते।
0: जो चीज़ आप करते हैं बात कहते हैं वो चीज़ उनका मम्मी पापा तो कर सकते हैं, लेकिन वो
2: थोड़ा
0: कर नहीं पाते।
2: कर लेते हैं,
0: जैसे आपको
2: 10 में से एक ही कोई होएगा जो थोड़ा कम समझदार है।
0: और बच्चियाँ अपना मम्मी पापा को खोलकर बता सकते हैं जो चीज़ आपको नहीं बता सकते हैं, ऐसे कुछ है?
2: नहीं नहीं बता सकती, मम्मी पापा को खुल के नहीं बता सकते, हमको बता देती है।
0: हाँ, जिसका चलता आप उनका पूरा समाधान करते हैं।
2: हाँ।
0: जो भी प्रिकॉशन जो भी उसको
2: हाँ।
0: सहयोग देना चाहिए वो
2: हाँ।
0: करते, जिसका चलते आपके पास आते हैं। जो चीज उनका फ्रेंड सर्कल हो चाहे उनका मम्मी को नहीं बता पाते हैं तो आपको अपना बात
2: खुल के बात बता सकती है हमको।
0: अच्छा, ऐसे कोई चीज ऐसे आपके पास कोई केस आया जो आपको बताया लेकिन उनका मम्मी पापा का कितना बार भी पूछे तो बताया नहीं, जिसका चलते उनको प्रॉब्लम हुई थी कोई भी लड़की का नाम बता?
2: जैसे किसी लड़की को पहली महामारी में आता है तो वो मतलब उस हिसाब से डर सी जाती है
0: शुरुआत में।
2: हाँ शुरुआत में, मगर वो अपने माँ बाप को नहीं बता पाती, मगर हम जब जाके उनसे पूछते हैं तो वो हमको खुल के बताती है कि ऐसी ऐसी बात है ये हमको ऐसा, फिर हम उनके माँ को बताते कि थोड़ा आप भी अपनी बच्ची का ध्यान रखा करो कि इसको ये चीज ऐसे देने से ये होएगा, इसलिए ऐसा सब हम समझाते हैं।
0: जो भी शारीरिक ग्रोथ होता है परिवर्तन होता है,
2: परिवर्तन शरीर के बारे में जैसे 10 साल के बाद जो भी शारीरिक परिवर्तन आता है वो सब उनको बताते हैं लड़कियों को कि भाई ऐसा ऐसा होता है और ये प्रॉब्लम भी आती है, ऐसी हो भी जाता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है।
0: अच्छा अच्छा, ऐसे खासकर हमारा जो ग्रामांचल क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी बहुल का जो ज़्यादा लोग रहते हैं, तो जो शिक्षित शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा कम होते तो उनको इतना अवेयरनेस नहीं रहता है, जो पढ़ा लिखा होता है तो अपना खोल के बात करता है,
2: खोल के बात कर लेता है,
0: और जो पढ़ा लिखा नहीं होते हैं और उनका जो खेती बाड़ी बकरी चराने में चला जाते हैं जो बहन, तो उनके लिए आप क्या सहयोग देते हैं?
2: जैसे उनके है तो उनको माँ को हम थोड़ा जाके समझाते हैं कि भाई आपकी लड़की को हमारे आंगनवाड़ी पे भेजना और हम इसके पोषण के बारे में इनको समझाएंगे, हमारे कार्यकर्ता भी समझाते हैं उनको, उनको सब शिक्षा देती है, तो हमारे तो थोड़ा वार्ड में सुधार हो ही चुका है।
0: खासकर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे किशोरियों को लेकर?
2: किशोरियों को लेकर जैसे टीकाकरण के दिन उनको वहाँ बुलाना, उनके ब्लड वगैरह कम है कि भाई कोई बीमार है, उनके बारे में उनके स्वास्थ्य के बारे में हम जांच करवाते हैं एनएम से।
0: अच्छा अच्छा।
2: हाँ।
0: क्या प्रजनन है तो सरकार द्वारा कोई स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाते हैं?
2: पोषण अभी तो पोषण माह चल रहा है।
0: महामारी के समय व्यक्तिगत स्वच्छता ऊपर क्या आप अटेंशन दिलाते हैं?
2: उनकी साफ सफाई के बारे में,
0: जैसे
2: अंदरूनी जो साफ सफाई रखनी पड़ती है उनके बारे में हम उनको समझाते हैं कि ये साफ सफाई रखनी चाहिए, हाथ वाथ धोने चाहिए, वो जैसे जैसे महामारी के समय हम व्यक्तिगत स्वच्छता जननांग क्षेत्रों को साफ और सूखा रखने के लिए कहते हैं।
0: जी जी।
2: रोज स्नान करें, महामारी का मतलब ये नहीं कि आप स्नान बंद कर देवे।
0: अच्छा।
2: जैसे जैसे 7 दिन तक वो लड़कियों को जैसे नहाने का मना रहते एक तरफ बिठा देते हैं।
0: अच्छा।
2: वो पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा सुधार आ गया है, फिर उन्हें स्नान नुकसानदेह नहीं है, मतलब यदि आप रोज स्नान करोगे इसमें तो कोई नुकसानदेह नहीं है।
0: जी जी।
2: फिर जो योनदानी है कोई निकट है सोचे या मूत्र त्याग करने कोई भी जाते हैं उनके बारे में जाने के बाद हाथ अपने साबुन से धोने चाहिए, वो समझाते हैं।
0: अच्छा।
2: फिर यदि वो सोच वगैरह जाए जिसे संक्रमण हो जाता है तो वो भी अपने आने के बाद हाथ साफ साबुन से धोने चाहिए जिससे कोई बीमारी नहीं पनपे।
0: जी जी।
2: फिर गर्मियों में पर्याप्त पानी पीना चाहिए, उनको समझाते हैं।
0: अच्छा।
2: और फिर उनके महामारी के साफ कपड़े पैड वगैरह यूज करने के लिए कहते हैं हम, नेपकिन वगैरह एक दिन में 3 से 4 बार जब भी गीलापन जो भी जो होता है उसके बारे में उन बच्चों को मतलब समझाते हैं। हाँ। और अपने कपड़े मतलब जो भी यदि कपड़ा यूज करते हैं उसको कपड़े को धूप में सुखाना चाहिए वो वगैरह, और आजकल तो लड़कियाँ भी पैड लेना हमारे आगे है जो देना हम शुरू कर दिए।
0: अच्छा अच्छा। ये कहाँ से पेड़ आपको मिलता प्राप्त होता है?
2: ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हमको,
0: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से
2: इनको मतलब जैसे इनको ये भी समझाते हैं कि भाई जो पेड़ वगैरह कपड़ा है तो मतलब इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, मतलब कूड़ेदान में फेंकना चाहिए।
0: अच्छा।
2: ये और इसको मतलब पानी के साथ ना बहाए, जैसे कोई पानी में भी बहा देता है तो वो गंदगी हो जाती है, उसके बारे में भी हम मना करते हैं इनको। और जैसे वो अनचाहे कोई अंदरूनी साफ सफाई के बारे में उनको सब मतलब साफ सफाई रखनी चाहिए, हटाना चाहिए, वो सब हम सिखाते हैं मतलब उनको।
0: अच्छा। इससे आपको क्या प्राप्ति होता है? बच्चों को तो खुशी होता होगा, तो आप बच्चों का खुशी?
2: हमको भी सुकून मिलता है,
0: जैसे
2: हमको भी अच्छा लगता है कि भाई इतना सुधार तो आया बच्चियों में कि भाई इनके मतलब ये बीमार तो नहीं पड़ेगी, ये मतलब थोड़ी समझदार तो हो जाएगी, आगे जाके इनको कोई दिक्कत नहीं आए प्रॉब्लम वगैरह।
0: तो और खासकर और किशोरियों को लेकर और क्या कहना चाहेंगे, जो जो किशोरी आपके पास नहीं आ रहे हैं बा जो किशोरी सुन रहे रेडियो पे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा?
2: हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे हमने जो किशोरियों को समझाया है, वो जो बड़ी जैसे कोई स्कूल जा रही है तो वो भी आगे जाके कोई ग्रामीण वाली किशोरियों को समझावे कि भाई ऐसा करने से हमारे शरीर की साफ सफाई रहेगी, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमें कोई बीमारियां नहीं होगी। ये
0: तो बहुत अच्छा बात बताया और जाते जाते सभी को जो की मैसेज दिए बहुत सराहनीय है। और आप इस तरह कार्य करते रहें, इस तरह आपको करने के लिए बचपन में कभी सोचा था मैं आंगनबाड़ी में जाकर ऐसे?
2: नहीं, कभी नहीं सोचा, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं एक आंगनबाड़ी में जा...

0: आशा सहयोग नहीं बनूंगी, ऐसा पहले कभी सोचा भी नहीं।
1: तो कहाँ से प्रेरणा आपको प्राप्त हुई?
0: प्रेरणा तो अब बहुत ऐसी लंबी है कहानी, अब क्या सुनाना जाए, हमने भी दिक्कतें देखी ऐसी।
1: तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे जो आप यहाँ तक पहुँचे और अपना काम को एक रूप दिए?
0: हमको पहले पहले दिक्कत आएगी, हम हमारी कार्यकर्ता को श्रेय देना चाहेंगे।
1: क्या नाम है कार्यकर्ता?
0: शकुंतला जी।
1: शकुंतला जी,
0: हाँ।
1: शकुंतला जी के लिए ताली बजा, बहुत अच्छा है। क्योंकि किसको रास्ता बता देना और उनका एक अंगुली उनको दे देना, वो आगे बढ़ जाएगा, चांसलर बन जाएगा। और आज आप चांसलर बन रहे हैं और बेझिझक जो काम करें खुशी से काम कर रहे हैं और सबका सहयोग लेकर सबको देने के बाद में।
0: शुरू शुरू में मैं आई थी ना तो यहाँ टीकाकरण नहीं हो पाता था, हमारी कार्यकर्ता अकेले थे तो सेंटर भी संभालना पड़ता था और वार्ड में टीकाकरण के लिए बच्चों को भी बुलाना पड़ता था, ये मतलब बहुत दिक्कतें आती थी इनको। मगर जब मैं आई तो बहुत से लोग मतलब टीके भी नहीं लगाते थे, गर्भवती पेट वाली भी नहीं आती, मगर अब मतलब 90% हो चुका है कि अब काम होने लग गया है यहाँ पे हमारे वार्ड में।
1: अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बता।
0: ये सैनिटरी नैपकिन है, ये सामुदायिक मतलब स्वास्थ्य वहाँ से मिलता है हमको सेंटर से, और ये किशोरियों को महीने में एक पेड़ हम देते हैं इनको।
1: पूरा पॉकेट में कितना रहता है उसमें?
0: इसमें इसमें कहा था 7
1: दे देते हैं,
0: 7 दिन
1: यूज करने के लिए। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे?
0: और बस मैं यही कहना चाहूँगी भाई गांव में थोड़ा सा लड़कियों के किशोरियों के विकास आवे, उनका थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, उनको समझदारी आवे,
1: क्योंकि महिलाओं को तो सरकार भी आगे बढ़ा रहे हैं।
0: हाँ, और इनको अब तो इनको पैसे भी मिलने लग गए, जैसे लड़कियां पैदा हो रही है तो 55,000 का
1: देते हैं
0: और आगे पढ़ेगी तो और भी इनको पैसे भी सरकार दे रही है, छात्रवृत्तियां दे रही है, इनको सब फ्री मिल रहा है, पोषण आंगनवाड़ी से ही फ्री मिलने लग गया है, स्कूलों में भी खाना इनको फ्री मिलने लग गया है, दूध वगैरह सब ऐसा।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद और आशा सहयोग को अच्छा जानकारी दिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।
2: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
3: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है, कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
2: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, अल्प विराम के बाद हम मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है और हमें खुशी और नाज है, क्योंकि हमारा धात्री महिला जब तंदुरुस्त रहेंगे और हमारा बच्चों को लालन पालन में कोई कमी नहीं करेंगे तो हमारा गांव और हमारा अंचल बहुत अच्छा बन पाएगा। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जब आंगनबाड़ी कार्यक्रम में पहुँचे तो खासकर पोषण माह के अंतर्गत हमारे साथ एक धात्री महिला है जुड़े हुए हैं, तो उनको स्वागत करते हैं। क्योंकि धात्री महिला कितना त्याग तपस्या करते हैं अपना बच्चों के लिए, सब खुद नहीं खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, खुद प्यासा रहते हैं लेकिन बच्चों को प्यासा नहीं रहने देते, तो इतना त्याग करते हैं, तो उनको तो नमन करना चाहिए, वंदे मातरम कहना चाहिए। तो इस कार्यक्रम के लिए उनको स्वागत करते हैं। अपना नाम बताओ। तो अपना नाम बताओ।
1: संतोष।
0: संतोष, बाप रे, नाम ही संतोष, पूरा चेहरा ही संतोष है। तो ये नाम कौन दिया, आपका मम्मी पापा?
1: नाम है दादी ने।
0: दादी ने, क्या नाम है दादी का?
1: दादी तो चली गई।
0: नाम तो बताओ।
1: मैथ की।
0: अच्छा,
1: मैथ की।
0: कहाँ के वो? कौन सा गाँव? पियर घर,
1: भारजा।
0: भारजा में? अच्छा अच्छा, भारजा से आप आए। तो आपका दादी माँ को अभी याद आ रहा, क्योंकि आपका दादी आपका नाम संतोष रखा है, बहुत अच्छा नाम है भाई। संतोष के लिए ताली बजा भाई, बहुत अच्छा नाम है। संतोष कहाँ तक पढ़ाई किया? पाँच चार दो
1: पाँच
0: भारजा में?
1: उमरनी में।
0: अच्छा अच्छा, और घर में कौन कौन है?
1: घर में हाउ है, हो है, दादिया हो है।
0: अच्छा,
1: दादिया हाउ है, देवर है, देरोनी है, ननद है, देवर है।
0: पूरा बड़ा परिवार है ना, चेहरा से पूरा खुशी आ गया। और संतोष, और आप घर में जो काम करते हैं पूरा कभी तंग होते हैं बच्चों का, ये वो तंग होते हैं कभी? क्या नाम रखा लड़का का? क्या लड़का है, क्या नाम बता?
1: मुकेश।
0: मुकेश, मुकेश का नाम आप किए ना दादी को बुलाए, आपका नाम जैसे दादी माँ रखे हैं, तो मुकेश का नाम कौन रखा है? पंडित आप ही दिए? हाँ, आप ही दिए थे, आप नाम रखे बहुत। मुकेश अच्छा नाम। मुकेश कहाँ से चुन कर लाए, कहाँ से ढूंढ कर लाए मुकेश? मुकेश नाम को मुकेश राजेश हनुमान बहुत सारा है, मुकेश नाम अच्छा है
1: ना।
0: मुकेश नाम, मुकेश को बड़े होकर आप क्या देखना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, चाषी, खेती किसान, क्या देखना चाहेंगे आप?
2: काम
1: करो,
0: जब ये गर्भ माहौल में था तो उस टाइम आप खाना बना बढ़िया से खाए कि नहीं?
1: ना, ये तो खा दूंगे खाना तो।
0: अभी आने के बाद तो खिला रहे, ठीक है। आप क्या क्या खाए?
1: ये के? तो उस पेट में तो नहीं, तुम्हारे मूड ये उल्टी बैठी, वहाँ अपन पानी पीती तो ये पेट में कोई रेत तो नहीं थी, बैठी नहीं।
0: हाँ, उसका कमी है,
1: तेरी मारी आदते थी। बंदी वेला बीस बे तो ये खाती क्या? तो ये वो खाव खाती खरी, पर पेट में रेत नहीं तो पास उल्टी करती है।
0: कोई बात नहीं, मुकेश तो बहुत अच्छा बच्चा बनेगा आगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? और जो कमी था वो कमी को नहीं करना है, अभी पूरा बढ़िया से उसको ध्यान देखना, सरकार भी उसको मदद करेगा ही, लेकिन आंगनबाड़ी से उसको जुड़ा रखो, है ना? अब तो चेहरा तो खुशी, बातचीत करता है?
1: हाँ, ये तो मम्मी बाई की है, बापो की है,
0: आवाज आ
1: थोड़ा,
0: ठीक है।
1: अरे तो इलाज करा ही के बहन जी भाई जी है, ठीक है,
0: ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा बात बताएं। और आप अभी क्या क्या भोजन करते हैं? कितना महीना हुआ है, कितना साल मुकेश को?
1: अपने 3 साल तो हुआ। हाँ। दिवाली आई के तो ये मतलब सक्रोत आवी, सक्रोत आवी, सक्रोत थी 8 दारा 8 रही पूरा 4 साल रहे।
0: हाँ। अभी आंगनबाड़ी में आता है?
1: आंगनबाड़ी में तो नहीं आता, मुँह लेना खिचड़ी लेवा।
0: कभी कभी लेकर आओ उसको, बैठाओ,
1: नहीं तो कभी कभी लेने से आओ,
2: कभी लेके आती है, रोज लेके जाती है, खाना देती हूँ मैं इसको,
0: ठीक है। और ये अस्पताल में हुआ ना, घर में पैदा हुआ?
1: अस्पताल में हुआ, बंसुदरा बेटा हुआ।
0: अच्छा अच्छा, ये पहला ना, दूसरा ना, तीसरा
1: ना? दूसरा है, एक मोटो बनी बनी वाली स्कूल से,
0: वो भी बड़ा है?
1: हाँ, बड़ा है, 9 साल
0: का, 9 साल हो गया। ये दो बेटा है?
1: हाँ, दो बेटा है।
0: दोनों बेटा तो पूरा राम लक्ष्मण जी से मिला, आपको क्या चिंता है? ठीक है, खुश रहो और खुशियाँ बांटो, है ना? तो बहुत बहुत अच्छा बात बताया और धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए और एक धात्री महिला हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, तो क्या नाम है?
3: गीता।
0: गीता बहन, गीता आपका स्वास्थ्य कैसे? क्या क्या खाते हैं आप भोजन में?
3: सब्जी खाते हैं।
0: सब्जी खाते हैं, क्या क्या सब्जियाँ?
3: आलू और टमाटर ही लाते हैं।
0: अच्छा, जब आपका लड़की जब गर्भ माहौल में था, आपका अंदर में जो था, तो आप उस समय क्या क्या खाते थे?
3: बाटी
0: खाते,
3: रोटी, सब्जी खाते, ऐसे फल
0: फ्रूट्स भी, दूध भी।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, अल्प विराम के बाद हम मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि जानकारियां हो तो ऐसे, खासकर बाल विकास परियोजना अबरोड सिरोही के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्र अमरनी सेकंड पहला सब आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं, तो उन सभी को पुनः स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। अपना अपना बात को रखने के लिए आए हैं, और खासकर जो पोषण को लेकर मेला चल रहा और किशोरियों को बुलाकर अपना अपना जो फायदा दिलाते उनको समझाते वो बात को रखें बारी बारी। तो चले, कुछ कार्यकर्ता हैं हमारा इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनको स्वागत करते हैं। एक कार्यकर्ता उनका परिचय लेंगे, तो आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनबाड़ी केंद्र मानपुर वार्ड नंबर 2 से बोल रही हूँ।
1: अच्छा, आज का जो गतिविधि, खासकर आपका जो रॉयल सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको बहुत पसंद है,
2: ये वही हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, गर्भवती महिलाओं को
1: किस तरह उनको सलाह बा उनको
2: सलाह देना, गर्भवती महिला जो मतलब जिसके गर्भ ठहरता है
1: जी
2: पेट में, उसको गर्भवती महिला कहते हैं। और जैसे ही उनको पता पड़ता है कि भाई इस घर, उस गांव के अंदर, इस घर के अंदर जैसे कोई महिला है, तो हम उसे मिलते हैं और उनको समझाते हैं, और जल्दी से जल्दी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे उसका नाम दर्ज करते हैं। उसको हम समझाते हैं कि आपको पता लगते ही हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर आपका नाम दर्ज कराओ, ताकि हमारी जो सेवाएं है वो हम आप तक पहुंचा सके। फिर जैसे टीकाकरण हुआ, उसकी मतलब 4 जांच होती है, वो जांच वगैरह हम करवाते हैं, उसका हीमोग्लोबिन कितना है उसकी जांच होती है। जब तक वो 9 महीना बच्चा होता है, जब वो हमारी नज़रों के अंदर हम रेख देख करते हैं, जरूर पड़ने पर NM की भी सलाह लेते हैं, NM भी टीकाकरण के दिन आती है, हम उसको बुलाते हैं, उसका वेट लेते हैं, उसका खून चेक करते हैं, आयरन की गोली वगैरह देते हैं, खाने पीने की हम सलाह देते हैं, और मतलब जरूर पड़ने पर आयरन की बोतल चढ़ती है हॉस्पिटल में, जरूर पड़ने पर वहाँ पर भी हमारी जो वार्ड के अंदर आशा शिविर नहीं होती वो उनको लेके जाती है। मतलब 9 महीने तक हम अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं, ताकि वो बच्चा अच्छा हो।
1: जैसे गर्भ ठहरने का तुरंत बाद, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो आप कब से मैंने उसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उसको पूरा सलाह देते, पूरा उसको सावधानी देते?
2: हाँ, जैसे 2.5-3 महीना हो गया तो हमको पता पड़ गया कि हाँ इनके कंफर्म है ही, तो 3 महीने से हम अंदर उनके कांटेक्ट में रहते हैं, फिर हम उनको सलाह देते।
1: मान लीजिए कोई गांव में आप जाते हैं डोर, आपको तो कैसे पता चलता है जो यहाँ पर दंपति है कि यहाँ शादी किया हुआ है, तो आप उस तरह कैसे जाँच करते हैं? आप
2: जांच ऐसे करते हैं कि जैसे तो हमारे पूरी महिला गांव में कांटेक्ट तो हमारा रहता ही है, रोज हमको जाना ही है गांव के अंदर, और अगर वो महिला नहीं भी बोली तो हमारे आशा शिवनी घूमती है घर घर डोर टू डोर। अगर उनके कांटेक्ट में भी नहीं आता है, तो जैसे गांव की महिला 4 महिलाएं मिल गई, तो हम पूछते कि भाई फलाने की शादी हुई थी, उनके कुछ है कि नहीं है, कोई अच्छा समाचार है कि नहीं है, तो वो अपने आप बोली हाँ हाँ फलाने के बेटे के बहू के तो है बहन जी, आप मिलना उनसे। इस तरह भी हमको कैसे मिलते हैं,
1: फिर जब जाते तो नया,
2: फिर हम उनको भी समझाते, उनकी सास को समझाते हैं, बहू को समझाते हैं कि भाई आपको था तो हमको बताया कि नहीं, और अब हमको पता पड़ा है तो हम आपके घर आए हैं, फिर वो आगे होके बोलेगी कि हाँ बहन जी मेरे है 2.5 महीना है 3 महीना है, जो भी है वो बताती है। फिर हम उसको बोलते हैं आंगनबाड़ी पे आना, टीकाकरण वाले दिन आना, ताकि उसका टीकाकरण हो। और हमारे हर गुरुवार को हम पोशाक में पंजरी देते हैं, उस पंजरी का तू उपयोग कर।
1: तो इस तरह आप जो पहला बार जाते, कोई नया कैंडिडेट है तो उनका पार जाते, तो क्या आप कितना बार जाते हैं और उसको कैसे आप हैंडल करते हैं, किस तरह उनको बात करते हैं जो आपका बात मानेगा?
2: मानेगा हाँ, अच्छे से समझाओ तो वो मानते हैं। वैसे तो हमारा ये काम हमारे आशा शिवनी का है, उनके घर पे जाना, हर बार उनको समझाना, उनकी देखभाल करना हर बार, और फिर हमारे जिससे हम भी करते, हम भी जाते, हम भी उनको बताते कि भाभी देखो इतना काम करना, दिन में आराम करना, एक बार नहीं खाना खावे तो 2-3 बार हरी सब्जी है, फल फ्रूट है, दूध है, मतलब तू टाइम टू टाइम खाना ध्यान देना। और जो टीकाकरण में टीटी के टीके है, जो फर्स्ट है तो 2 टीके लगते हैं टीटी के, जो फर्स्ट डिलीवरी है, और अगर 3 साल से छोटा बच्चा होता है तो 1 बूस्टर लगता है सिर, और अगर छोटा बच्चा 3 साल से बड़ा है तो तो दो टीटी के टिटनेस के दो टीके लगते ताकि उसको कुछ लगे करे तो वो इन्फेक्शन बच्चे के नहीं हो, और आयरन की गोली वगैरह ताकत की हम देते।
1: जैसे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप उनको भोजन का संबंध कुछ बताते हैं और वजनदार जो सामान है उठाना है, झुकना नहीं,
2: ज्यादा वजन नहीं उठाना है,
1: ये चीज बताते हैं। और खासकर जो गर्भ माहौल में जो बढ़ रहा है बच्चा, उनका बौद्धिक विकास
2: हो, शारीरिक विकास हो,
1: तो उसके लिए खास करो उसको क्या सलाह देते? भोजन तो आप सलाह देते हैं, इसका साथ साथ उसका मन और बुद्धि जो आत्मा है जो शक्ति है, तो उसके लिए आप क्या क्या विचार उनको करने के लिए
2: बोलते हैं? ऐसा सोचते हैं कि शुद्ध हवा लो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचेंगे तो मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छा सोचना, अच्छा वातावरण में रहना, और मतलब स्वास्थ्य के बारे में है कि जो है अपने खाने पीने में ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना,
1: इस तरह आप सलाह देते हैं। तो खुशी राजी से ग्रहण करता है आपका बात को?
2: हाँ, मानती महिलाएं अच्छे से मानती है।
1: और
2: हमारे गांव में पढ़ी लिखी महिलाएं कम है, अनपढ़ ज्यादा है, बहुत कम है पढ़ी लिखी। आजकल की कोई आई होगी तो तीसरी चौथी पांचवी होगी, बाकी ज्यादा से ज्यादा हमारे गाँव में अनपढ़ महिलाएं है। तो वो कहना मानती भी है, करती भी है, और अगर उसको समझ में नहीं आना हो तो हमको चार बार आके पूछती भी, बहन जी मुझे ये तकलीफ है, मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, आप बताओ, आप हमारे साथ चलो।
1: आप खासकर जब 9 महीना हो जाता है बा उसका जब पीरियड आता है यीशु का, प्रसव का पीरियड आता है, तो उस समय खासकर
2: प्रसव की तैयारी भी हम करवाते, उसको पहले से समझा देते, हम हमारा फोन नंबर देते, आशा सहयोगिनी का फोन नंबर देते कि ये अपना नंबर है, अगर तेरे को आधी रात को भी कभी जरूर पड़े डिलीवरी का दर्द हो तो तू हमसे कॉन्टेक्ट करना, ये गाड़ी के नंबर है, इस गाड़ी पे तू फोन करना, हॉस्पिटल से गाड़ी आएगी और अपन को डिलीवरी हॉस्पिटल में ही करानी, घर पे नहीं करानी। पहली बात तो ये,
1: तो घर में क्यों नहीं करा?
2: घर में यूँ है कि घर में एक तो जो सुविधाएं नहीं रहती है, एक साफ सफाई, एक प्रशिक्षण डॉक्टर है वो घर में, मतलब कोई भी अगर हादसा भी हो तो हॉस्पिटल में हो तो जल्दी वो हॉस्पिटल में केस संभल जाता है, और घर पे तो अपने पास कोई सुविधा ही नहीं होती है, तो घर पे तो डिलीवरी करवाना ही नहीं है।
1: पहले से जब आप आंगनबाड़ी नहीं था, आप नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं था, आशा सहयोगी नहीं था, पहला जमाना में तो लोग डिलीवरी कैसे कराते थे? घर पे में होता था,
2: घर पे ही होता था।
1: हाँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत होता था, ऐसे कोई सीरियस भी होता है? पहले कोई सारी छोड़ देते,
2: ज्यादा हमने सुना है कि हमारी तो डिलीवरी अभी भी हम लोगों से पूछते नहीं, बोले हमारे तो चार चार पांच पांच बच्चे हुए लेकिन बहन जी घर पे ही हुए, हमने तो कभी डॉक्टर के नहीं गए, क्योंकि पहले का खान पान अलग था, रहन सहन अलग था, आजकल सब यूरिया खातर है, गुटखा है, बीड़ी है, सब लोग खाते है, उसका शरीर में बदलाव होता है, पहले जैसा शरीर है नहीं लोगों का, पहले के घर की खेती का अनाज है, साग सब्जी है, आज तो सब दवाइयों से पकता है,
1: इसलिए उसका दिक्कत होता है। पहले सब कुछ जरूरत नहीं पड़ता था, आराम से होता
2: था, पहले तो देसी खातर का सब होता था, पानी भी अच्छा था, हर चीज था, और खान पान भी लोगों का, आजकल तो जरा जरा से बच्चे देखो गुटके यूज करते, बीड़ी सिगरेट सब खाते,
1: मालों को भी तो खाते हैं आजकल, पर खेती में जाते मालों को भी, गर्भवती महिला भी तो आजकल कुछ कुछ, कोई
2: महिला तो सबसे ज्यादा खाती, मुंह में भरा ही रहता है,
1: तो यहाँ पर ये सब क्यों?
2: इसके बारे में भी हम समझाते महिलाओं को, देखो ये खराब चीज है, ये नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, प्लस आपके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए भी दुखदायी है, बिल्कुल ये चीज हम तो ज्यादा से ज्यादा यही समझाते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि गर्भवती तो ध्यान रखती रखती है, साथ में उसका पति है, दादी है, परिवार में जो लोग है वो लोग भी उसका अच्छे से ध्यान करें, उसको ज्यादा टॉर्चर नहीं करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अच्छे से उसका ध्यान रखे, खान पान दवा का हर चीज के अंदर उसका सहयोग करे।
1: कलयुग में सब लोग तो पांच विकार में ग्रसित है, कोई काम क्रोध लोभ हिंसा मन पर चिंतन पर दर्शन, और मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा
2: ये भावना होती,
1: ये जो होती है, तो ये तो बच्चों का पर प्रभाव पड़ेगा ही,
2: पड़ेगा ही, बिल्कुल पड़ेगा। चाहते ज्यादा से ज्यादा हमारा गांव के जिस हम गांव में हमारे आंगनवाड़ी है ताकि उसी गांव का तो भला हो, आज हम ये सोचते हैं ताकि जो गर्भवती हमारे पास आती है उसका बच्चा बिल्कुल अच्छा हो।
1: और आप तो पूरा अनुभवी है क्योंकि
2: माँ साल का, हाँ, और
1: माँ भी है,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इसी आशा और विश्वास लेकर उनको पूरा माने दावा का साथ आप
2: के साथ हम सहयोग देते, कभी भी आपको कोई कहां भी हमारी जरूरत पड़ती हम आपके साथ हैं,
1: क्योंकि आप अनुभवी उस पीरियड में उस स्टेज को आप गुजर चुके हैं, तो कोई भी आए तो उनको बढ़िया से सलाह देते हैं और गारंटी का साथ बहुत अच्छा बात है, धन्यवाद। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप?
2: हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी अच्छा सोचो अच्छा करो काम, ताकि किसी का भला हो अच्छों का।
1: ठीक है, हमारा दो शब्द हमारा सोच कि इसका जीवन में काम आए।
2: सही है,
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता उपस्थित है उनको भी स्वागत करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।
3: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: चले कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित है, तो जहाँ पर हम बैठे बहुत खुशी और हर्ष का साथ बैठे हैं, और जब पोषण माह चल रहा है उससे का संदर्भ में कुछ लेकर आए हैं, तो उनको स्वागत करते हैं। मैडम आपका स्वागत है, आपका परिचय दीजिए विद्या वर्मा। जी जी, और खासकर आज आपका आंगनबाड़ी में सभी कार्यकर्ताओं को एक स्नेह भावना से बुलाए और इतना बड़ा सुंदर प्रोग्राम किए, सबका बात आज रख रहे हैं और आप भी जुड़े हुए हैं, तो आप आज का संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे?
4: मैं कहना चाहूँगी आज परिवर्तन में जैसे गर्भवती धात्री महिलाओं को सबको हम सेवाएं देते हैं, सब आज आए, सब प्रोग्राम हुआ, सबको समझाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जैसे 6 महीने के बाद में बच्चे होते हैं ना, 7वें दिन रखते हैं, जब उनका हम खाने के लिए बोलते हैं ऊपरी आहार, औरतों को समझाते हैं कि अब 7वें महीने से उनको ऊपरी आहार खाने के लिए दो, पतला जैसे दाल है, खिचड़ी है, और वो पतला फल हो तो उसको मसल के खिलाओ, और जैसे 9 महीने का बच्चा हो जाए तो उसको 2-3 कटोरी खिलाओ, 2-3 बार खिलाओ। अगर बच्चा नहीं भी खाता है, रोता है, तो उसको भुला के घूमते घूमते खिलाओ, उसको राजी करके खिलाओ, मतलब उसको खाने के लिए नखरे करेगा वो, लेकिन उसको खिलाओ,
1: लोरी सुनाकर भी खिलाओ,
4: लोरी सुना के खिलाओ। और कोई फल है तो उसको मसल के खिलाओ, दाल है तो उसका पानी पिलाओ, खिचड़ी दलिया मसल के खिलाओ, कोई भी चीज़ घर में आती है तो उसको मसल के ज़रूर खिलाओ। और अभी नहीं खा रहा है तो थोड़ी देर बाद खिलाओ ऊपरी आहार, तो वो कमज़ोर नहीं होगा, उसका वजन कम नहीं होगा, कुपोषित नहीं होगा बच्चा, आगे चल के वो स्वस्थ बनेगा।
1: 6 महीने तक तो माँ का दूध,
4: 6 महीने तक तो कोरा माँ का दूध ही पिलवाते हैं हम, इसके अलावा कुछ पानी भी नहीं पिलाने के लिए मना करते हैं, खाली माँ का दूध ही पिएगा वो 6 महीने तक।
1: 6 महीने का बाद जो होता है,
4: 6 महीने के बाद में ऊपरी आहार देते हैं।
1: ऊपरी आहार खास कर जो ऊपरी आहार में क्या क्या होने से बच्चों को तंदुरुस्त प्राप्त हो गया,
4: जैसे दाल है, दाल बनाते हैं उसका दाल का पानी दे दो, दलिया है बारीक यूँ हाथ से मसल के खिला दो, खिचड़ी खिला दो, और फिर जैसे 8 महीने का 9 महीने का हो जाए तो उसको रोटी भी मसल के खिला दो, चूरमा टाइप बना के, कोई फल घर में है तो वो मसल के पिला दो, अंगूर है तो उसका रस पिला दो, इस तरह से मतलब फिर 8-9 महीने के बाद में दांत आ जाते, वो आराम से सारी चीज़ खा सकता है, दाल चावल सब्जी रोटी सब।
1: जो आपका आंगनबाड़ी में खासकर बच्चों को जो पहला आहार देते वो योजना का नाम क्या है, वो त्यौहार का नाम, बच्चों को यहाँ पर आपका आंगनबाड़ी में आकर उनको पहला
4: अन्न प्रसाद
1: क्या है, और अन्न प्रसाद से हमारा बच्चे को क्या फायदा मिलेगा, और खासकर उसका माँ को क्या फायदा मिलेगा, वो क्या सीखेगा
4: अन्न प्रसाद से? मतलब हम उनको बताते हैं अब तुम्हारा बच्चा 7 महीने में लग गया है, अब इसको खिचड़ी दलिया ऊपर का आहार देना है, एक कटोरी भी हमको हम कटोरी चम्मच में उनको दलिया डाल के अपने हाथ से खिलाते हैं, और उनको बोलते हैं आज से तुम्हारे बच्चे का अनाज खाना शुरू हो गया।
1: आपसे शुरू कराते हैं? जब यहाँ पर पहला
4: जब हम खिलाते हैं और कटोरी चम्मच लाते हैं, वो कटोरी में दलिया डाल के खिलाते अपने हाथ से, फिर वो उन्हीं को दे देते हैं
1: प्रसन्न का साथ, पूरा टीका चंदन
4: कटोरी के अंदर, अब तुम रोज खिलाना बच्चे
2: को, समझाते
1: कटोरी भी देते हैं,
4: कटोरी देते हैं,
1: क्या बात,
4: कटोरी चम्मच दोनों देते हैं कि अब इससे तुम रोज खिलाना, और जैसे वो आती है तो पूछ लेते हैं बच्चे को आज खिलाया,
1: दूरदृष्टि से सोचेंगे उसका थोड़ा सा बात करेंगे तो कितना बड़ा महान काम आप कर रहे हैं, क्योंकि किसको भोजन शुरुआत भोजन उसका जिंदगी तो कितने साल हुआ, शायद कोई 80 साल कोई 60 साल जिंदा रहता है, लेकिन आप जो शुरुआत खाना खिलाते हैं
4: है?
1: तो अन्न का शुरुआत, क्योंकि आप तो अन्नदाता होगी,
4: फिर उसको पूछते रहते हैं अब तेरे बच्चे को खिलाया तूने, वो क्या खाता है, फिर रोज यहाँ पर दलिया खिचड़ी बनता है तो वो थोड़ा सा हम दे देते हैं कि ये शाम तक खिलाना, तो रोज उनके दलिया किसी घर में बन नहीं पाता काम वाली है, तो मैं उनको यहीं से दे देती हूँ जो पास में रहती है, आ सकती हूँ उनको, तो तुम अगर सेंटर पे आ सकती हो तो इस बच्चे के लिए रोज दलिया खिचड़ी लेके जाओ और थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में खिला देना।
1: अच्छा, बहुत अच्छा बात बताए, कितने साल का बाद बच्चा अपना हाथ से खुद खाएगा।
4: ये बच्चे की स्वस्थता पे है, कोई साल भर का भी खाने लग जाता है, कोई 14 महीने का भी खाता है, कोई 9 महीने का ही झपटने लग जाता है, कोई 8 महीने का भी हाथ में लेके चूसने लग जाता है।
1: ओके, तो ये चीज उनका परिवेश और परिवार का ऊपर डिपेंड करता है और बच्चों का भी डिपेंड करता है।
4: ओके, अब मेरे पोती है 2 महीने की, वो अभी से हाथ में पकड़ती है हमारा हाथ, अभी 2 महीने की 30 तारीख को होगी और अभी अंगूठा पकड़ लेती है।
1: क्योंकि बच्चे अंगूठा सोचने में बहुत होशियार होते हैं, तो इसका राज क्या
4: है? गोद में लगे तो ये पकड़ते हैं कि मैं तो छोड़ नहीं देवे कोई।
1: उसको कितना भी खिलाओ ना, वो अंगुली अंगुली चूसते रहते हैं। कोई कोई लड़का उसका अंगुली देखते हैं पूरा पतला हो गया है, फिर भी वो चूसते ही। तो इसका कारण क्या, क्यों करते हैं बच्चे से?
4: बस बच्चों की आदत है, कुछ भी चूसता मुंह चलाते रहना।
1: ये ठीक है ना, गलत?
4: ठीक नहीं है।
1: तो इसका
4: ये नहीं होना चाहिए,
1: नहीं होना चाहिए। तो किसका गलती है इसमें?
4: ये माँ की, परिवार की गलती है कि वो निकालते नहीं है। हम तो देखते तो बोलते हैं इसको चूसना निकालो, और हम निकलवा देते हैं। और माँ को बोलते हैं कि अंगूठा नहीं चूसने देना, कि अंगूठा पतला पड़ जाता है, होंठ भी ऊपर हो जाते हैं, चेहरा बिगड़ जाता है।
1: कोई कोई बच्चे खाने का बहाना में मिट्टी भी खा लेते, कुछ भी उठा कर अपना मुख में डाल देते।
4: तो ध्यान रखना पड़ता है, इनमें कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए मिट्टी खाते बच्चे।
1: मिट्टी खा

0: कैल्शियम की कमी होती है, खाते उनको अगर कैल्शियम की मिट्टी आती है
1: और उसका पेट में जो कीड़ा वगैरह बहुत बन जाता है लंबा लंबा
0: कीड़े कैल्शियम की कमी से ही कीड़े बनते हैं।
1: तो उसके लिए जब आपको पता चलता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं?
0: एल्बेंडाजोल गोली हमारे पास है, हम वो उनको दे देते हैं।
1: अच्छा,
0: बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली देते हैं और कैल्शियम की कमी होती है ना तो उनको बोलते हैं दूध दही मतलब खाना अच्छे से खिलाओ तो कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, तो मिट्टी नहीं खाएंगे और इनका ध्यान रखो मिट्टी खाएं तो।
1: अच्छा, बच्चे कब खेलने शुरू हो जाता है, कितने महीना में?
0: बच्चे तो जैसे बैठने लगे 7 महीने 8 महीने के तो वो अपने हाथ पे चलाते हैं और खेलना तो अभी मैं 1 महीने 15 दिन के बच्चे भी हाथ तो हिला ही लेते हैं।
1: अच्छा,
0: पांव हाथ तो हिला लेते हैं।
1: सर एडवांस है वो कराते हैं।
0: हाँ।
1: खाने में कोई अनाकन ना करे, नाराजी ना जीते, इसके लिए आप क्या सलाह देते हैं माताओं को?
0: भाई वो आना खानी तो जब नहीं करेंगे जब उनको मन पसंद खाना मिलेगा, वो जो खाना मांगे वो दो, वो जब खाना मांगे जब दो, जबरदस्ती अगर उनको खिलाएंगे तो भी वो उल्टी करेंगे।
1: क्या ऊपरी आहार का साथ साथ माँ का दूध पिलाना चाहिए?
0: हाँ पिलाना चाहिए।
1: कब तक?
0: 1.5 साल 1.5 साल इससे ज्यादा नहीं।
1: अच्छा।
0: ज्यादा हो तो 2 साल, वैसे इससे ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं पिलाना चाहिए।
1: तो ये सब आपको जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त हुई?
0: ये हमारे अधिकारी लोग ट्रेनिंग भी देते समय समय से और मेरे तो पोता पोती भी हो गए तो फिर मैं तो वैसे
1: अनुभव
0: भी होगी, पोता पोती है, दोहिता दोहिती मेरे समय।
1: ओके,
0: तो वैसे घर का अनुभव है मेरे को बच्चों का तो।
1: अच्छा अच्छा, आंगनबाड़ी तक पहुंचने के लिए जो आपका विचार आया ये सर्विस करने के लिए, जो पहला पोस्टिंग आपका हुई थी काम पर हुई थी? और
0: पहले पोस्टिंग हुई थी यहाँ पे पांडुरी में मैंने 2 साल वहाँ पे काम किया 1986 में।
1: तो आप आंगनबाड़ी में काम करने के लिए इच्छा कैसे जागृत हुई?
0: इच्छा ऐसे जागरूक हुई, पहले मैं गरीब परिवार से निकली थी, आदमी की पेमेंट कम थी और ससुराल में इतना नहीं था, पहले मेरी लड़की भी हो गई थी तो फिर 2 पैसा भी कमाना था, बाहर कभी निकली नहीं थी तो मैं इस आंगनबाड़ी में निकली। लेकिन अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सेवा करना कि अब मेरे पास सब कुछ।
1: अच्छा, क्या अच्छा लगता है जो आंगनबाड़ी में आपको?
0: ये बच्चों के साथ में रोज, जैसे आप वैसे तो कहाँ जाए खेलने के लिए, ऐसे बच्चों के बहाने बच्चों से के साथ खेल भी लेते हैं और 4 औरतों से मिलके बातें कर लेते हैं, इनका दुख सुख पूछ लेते हैं, इनको कोई सलाह दे देते हैं, इनको कुछ जरूरत होती है हमारी सलाह की तो इनको दे देते हैं, हमको कुछ इनसे पूछना होता तो हम पूछ लेते हैं कि भाई ये काम काकी कैसे करें।
1: एक टीम वर्क को लेकर आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका अंदर में आपका नीचे आशा सहयोगिनी और सहायिका और ANM सब लोग रहते हैं टीम, क्योंकि सबका सहयोग लेकर आप एक आगे बढ़ते हैं और सबको जहाँ पर जिस तरह जहाँ पर भी जरूरत होता है आप दिलाते हैं सहयोग। हाँ। तो उससे आपको खुशी
0: मिलती है? सब हम तीनों लोग हैं, तीनों लोग मिलकर काम करते हैं, ये नहीं देखते कौन का क्या काम है।
1: ऐसे आपका जीवन पीरियड में आंगनबाड़ी में काम करते हुए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा?
0: हाँ।
1: कोई डिलीवरी केस हो, कोई किशोरियों को लेकर कुछ हुआ कभी, हादसा हो चाहे कुछ हो?
0: नहीं, मेरा कभी कभी कोई हादसा वगैरह कोई
1: ऐसे होता तो आप क्या करते?
0: पर मेरे साथ में कभी हुआ ही नहीं सर ऐसा।
1: मान जो होगा तो क्या करेंगे आप?
0: सोचेंगे
2: कोशिश हमारी
0: क्या, अभी 30-32 साल हो गए इस गांव में, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ।
1: आपका चलते मेरा डिलीवरी रुक गया और उसका डेथ हुआ ऐसे लोग
0: नहीं? अभी तक किसी ने
1: कोई डिलीवरी लेकर गए और अचानक उसका खुदा ना खासे कुछ हुआ जिसका चलता आपका पर ब्लेम किए, आंगनबाड़ी का आशा कर्मी का सहयोगी का चलता हमारा
0: ये? इस गांव में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे ऊपर ब्लेम करेगा, मेरे को 30-32 साल हो गए इस गांव में रहते हुए।
1: इस तरह किसका न हो हमारा ये भावना है और सब अच्छा से सहयोग भावना से लेकर चले। बहुत अच्छा जानकारी दी। और क्या क्या बच्चों को सिखाते आप, थोड़ा एक शब्द भाषा हिसाब से हो चाहे कविता माध्यम से कैसे सिखाते हो, उस तरह बच्चों को कैसे सिखाते? तुतले आवाज में वो सुन गीत सुनाओ,
0: पोएम सिखाते उनको, एक्शन कर कर
1: सुनाओ देखे।
0: जैसे रेलगाड़ी मेरा नाम, चुप चुप करना मेरा काम, रेलगाड़ी मेरा नाम, चुप चुप करना मेरा

0: पड़ेगा, हम भी पूरी खा लेंगे। ऐसे एक्शन करते तो बच्चे आराम से बोलते हैं, एक्शन करके सिखाते तो।
1: और आप शहरांचल और ग्रामांचल बच्चों को जब देखते हैं तो क्या डिफरेंस आपको मिलता है, बच्चों सीखने में हो, बोलने में हो, बैठने में हो? शहरांचल बच्चे, आंगनबाड़ी बच्चे और ग्रामांचल आंगनबाड़ी बच्चे में क्या फर्क
0: है? तो गांव उनके बच्चों को तो सिखाने में मुसीबत पड़ती है, शहरी बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, नहीं तो पेंसिल भी हाथ से पकड़ानी पड़ती है, बोलने का भी इनको बताना पड़ता है, बच्चे उठते का भी बताना पड़ता है इनको हर चीज, इनके साथ थोड़ी परेशानी पड़ती है। शहर के बच्चे तो आधे काम सीखे हुए आते हैं।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते सभी को नाम का साथ धन्यवाद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ आशा सहगिन भी हमारा साथ है तो उनको भी लेंगे। अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।
2: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने, मुस्कुराता रेडियो।

0: नमस्कार, अल्प विराम के बाद मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि कार्यक्रम हो तो ऐसे। आंगनबाड़ी तब भरपूर होगा जब आशा कर्मी, आशा सहयोगिनी और सहायता और कार्यकर्ता और हमारा छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, मासूम मासूम बच्चे जब आते हैं और किशोर या धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जब आंगनबाड़ी में जोड़ते तो कितना खुशी लगता है और सबको करने में, कोई भी काम करने में अच्छा लगता है। सामूहिक रूप में करते हैं तो इस सामूहिक रूप कैसे करते हैं वो चीज़ बताने के लिए हमारा साथ आशा सहयोगिनी है। तो उनको क्या लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है आज?
1: अच्छा लग रहा
0: तो
1: है।
0: आपका नाम बताओ।
1: मेरा नाम मीना है, मैं आशा सहयोगिनी हूँ। मैं गर्भवती, धात्री और किशोरी वाली को सबकी जानकारी करती हूँ, उनको सलाह देती हूँ हर चीज बारे
0: में। धात्री महिला के बारे में थोड़ा बताओ।
1: धात्री महिला वो होती है जो 6 महीने अपने बच्चों को दूध पिलाती है। वो अपने 6 महीने अपने बच्चों को दूध पिलाती है और 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो वो पानी और दलिया सब छोटे छोटे करके पिलाती है। आलू मसला हुआ सब पानी है, दूध है, सब ध्यान से पिलाती है, ध्यान से देती है अपने बच्चों को।
0: अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ाई की?
1: मैं 12वीं तक।
0: 12वीं तक।
1: जब गर्भवती बच्चों के, जब वो उसके बच्चा हो जाता है, उसका वजन लेने जाती हूँ घर घर और उसका वजन लेकर सब वो रजिस्टर में भरती हूँ और बच्चों को ध्यान देती हूँ और दूध के पिलाने की सलाह देती हूँ। उनको बार बार बच्चों को दूध पिलाओ, जब भी बच्चा मूत्रे तो उनको ध्यान दो और दूध पिलाते रहो बच्चों को ऐसे। और 6 महीने से बच्चा ऊपर हो जाता है तो आप उसके खाने का भी ध्यान रखो ताकि बच्चा कमजोर ना पड़े। माता पिता को यही सलाह देती हूँ, अपने बच्चों को भरपूर मात्रा में खाना।
0: आपका बात को मानने में माताएं हो चाहे गर्भवती महिला हो चाहे किशोर हो, कितना इच्छा रहता है, उन लोग मानते हैं बात को?
1: हाँ मानते, अब तो समझते भी है कि ये बहन जी हमारी यहाँ आती है, हमको समझाती है। पहले तो कोई आती भी नहीं थी, गांव में कोई घूमते भी नहीं थे और जब भी वो गर्भवती के बारे में उनको पंजीकरण करवाना होता तो अब कहते भी है कि बहन जी हमारे जो महीने ठहरे हुए आप आओ तो उनको लेकर जाओ। तो कभी वो घर पर मिलती है तो लेकर जाते, नहीं मिलते तो टीकाकरण महीने में एक बार होता है।
0: मान सम्मान बढ़ गया, पहले मान सम्मान नहीं था इतना।
1: पहले वो ध्यान भी नहीं देते कि कौन बहन जी आई है और क्या कहेंगी और क्या पूछेंगी। अब उनको हॉस्पिटल लेते हो तो भी उनको 9 तारीख उनका वो ग्लूकोज चढ़ाती हूँ, जो खून की बीजी को कमी हो तो उनको ग्लूकोज चढ़ाती हूँ। तो ध्यान में रखती है कि बहन जी समझदार है, बहन जी हम लोगों को लेती है, कोई कमी है तो हमारी जाँच भी करती है, हमारे आंगनबाड़ी पर लेकर हमारा वजन करती है और जो भी काम है हमको शिक्षा देती है। पोषण की थैली भी हमारे समय पर हमको ला कर देती है।
0: अच्छा, आप एक तंदुरुस्त बच्चा के लिए जो डिलीवरी होता है ना, तो 9 महीना तक आप जो उसको संभालते हैं खासकर, क्योंकि तो अंदर में है तो उसको हम जैसे स्वास्थ्य के लिए भोजन और माता को क्या क्या सावधानी वो बताते हैं, लेकिन अंदर में जो आत्मा है, जो चेतन शक्ति है, जो जीवन है, माँ बाप तो शरीर को बना देते हैं, ठीक है, पुतला तो बना देते हैं, लेकिन उसका अंदर में जो चेतन शक्ति प्रवेश करता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीवन जब प्रवेश करता है तब वो चुटपुर करता है अंदर में आने के बाद
1: फिरने लगता है।
0: इसका पहले तो आपको शांत रहता था,
1: वो सर
0: जब उसमें अंदर में चेतन शक्ति आता है तो उसमें माँ को पता चलता है अभी ये
1: कि उसके गर्भ में कोई बच्चा
0: पल रहा है और उसको चुरपुर तरह उनको लगता होगा,
1: उनको लगता है।
0: आप तो अनुभवी है ना, आपको तो भी पता होता होगा। तो उस समय जो आत्मा आई, जहाँ से भी आई, जो जीवन चेतन शक्ति, उसको हम एक तेजवान, सुदृढ़ और अच्छा इंसान बने, नाम रोशन करे, उसके लिए आप क्या सलाह देते हैं? उसका बुद्धि तेज हो, शांत मन हो, बहुत सुंदर बच्चा हो।
1: माता जब समय पे खाएंगी पिएंगी, समय पे आराम करें भी और समय के हर बात को समझेगी तब उसका बच्चा सही समय पर और सुरक्षित और अच्छा बल वाला होगा। ध्यान नहीं देती है, उसके घर में लड़े झगड़े होते हैं किसी के घर में तो वो बच्चों पे परिवर्तन आता है उसकी माओ पे। जब झगड़े होते हैं माँ बापों के बीच में तो अंदर वो पेट पे पलने वाले बच्चों पे परिवर्तन आता है।
0: गर्भवती समय में झगड़ा करना नहीं चाहिए,
1: झगड़े नहीं करना, ध्यान से बोलो, ध्यान से समझाओ, ध्यान से रहो और वो

0: सही बोलो और सही करो, है ना, तो जाकर बच्चों को आप वो प्रभाव पड़ेगा। और इतना करने के बावजूद भी कोई कोई लड़का खराब बनता है, चोर बन जाता है, डकैत बनता है, इतना हो जाता है, खराब नाम बदनाम करता है, तो ये क्यों होता है?
1: छोटी छोटी बातों में जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ ध्यान नहीं देती, तब वे बच्चा बड़े होकर ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो माँ ध्यान देती बच्चों पे, ऊपर छोटे छोटे होते हैं तब ध्यान देती है, तब बच्चों पर ऐसे समय नहीं देखना पड़ता उनको।
0: क्या ध्यान देते
1: हैं?
0: जैसे
1: बच्चे को चोरी भी कर लेते हैं या किसी को बदात लेते हैं या कोई बदमाशी करते हैं, उनको ध्यान दो, सही बात है, उनको समझाओ हर बात के लिए कि बेटा ये गलती है तुम्हारी, ऐसे मत करो, ध्यान से काम करो, चोरी मत करो, कोई भी खाना खाना हो या मांग के खाओ, चुराओ मत, किसी से झगड़ा मत करो, ऐसे माँ बाप सलाह देते अपने बच्चों को।
0: मैंने नैतिक शिक्षा देना चाहिए उसको, हाँ। बौद्धिक शिक्षा देना चाहिए और रामायण पुराण जो सुनाना चाहिए माता को,
1: ताकि उसमें कोई अंतर पड़े।
0: लेकिन आजकल तो बहुत टीवी और मोबाइल सब एंड्रॉइड फोन आ गया, बच्चे क्या करते, माँ क्या करते, बच्चों को दे देते हैं
1: फिर उसको छोड़ देती है, फिर बच्चे क्या वो कोई भी चलाने अलग अलग वीडियो देखते हैं, अलग अलग वो नोट, फिर उसमें अलग परिवर्तन आते हैं बच्चों में।
0: तो आप उसके लिए माताओं को कुछ सलाह नहीं देते?
1: कहते पढ़े में ध्यान दो, मोबाइल में ऐसे लगा के दो बच्चों को, बच्चों ध्यान से सुने और बच्चा अच्छा समझदार बने।
0: तो आप मैंने जब आंगनबाड़ी में आते हैं, हाँ। आपका ड्यूटी क्या रहता है वो बता।
1: मेरे ड्यूटी ये रहता है कि गांव में सर्वे करना, जो भी कोई भी मिले।
0: सुबह कितने बजे आप आते हैं?
1: सुबह 8 बजे।
0: क्या करते हैं?
1: आरती पढ़ती हूँ, फिर 9 बजे यहाँ से रवाना होती हूँ, फिर गांव की कोई भी औरतें होती, उसको दवाई भी नहीं होती तो दवाई दे देती, पास हो मेरे पास तो मैं दे देती हूँ, नहीं तो मेरे पास नहीं होती तो उनको कहती हूँ आंगनबाड़ी में आप लेकर आना, नहीं आती तो मैं जब भी उसके पास जाती हूँ तो उसको देकर आती हूँ।
0: आप अपने जो सेवा कर रहे हैं बा ड्यूटी जो दे रहे हैं उसमें खुशी राजी रहते हैं ना, किसका दबाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुछ बोलेगी?
1: नहीं, कोई भी नहीं बोलती है, पर कि उनको सबका काम बटा हुआ है हमारे।
0: अच्छा अच्छा।
1: उनका काम वो रजिस्टर का है, मेरा काम घूमने का, इनका काम बच्चों को लाने का और पढ़ाने का।
0: सही में आप लोग
1: तीनों कोई झगड़ते नहीं।
0: लेकिन आपका घर में जो सास ससुर जहाँ रहते हैं, बाप जहाँ पर अपना घर होता है,
1: हाँ।
0: तो वहाँ पर संभालते बच्चों को, अपना परिवार को, यहाँ पर भी एक परिवार को संभालते,
1: संभालना पड़ता है,
0: तो दोनों काम कैसे कर पाते हैं?
1: कर पाते हैं, ये हमारी ड्यूटी समझ के कर लेते हैं।
0: कोई कोई अकेला घर संभालना बहुत चिड़चिड़ा होता है, मुश्किल होता है,
1: हाँ।
0: लेकिन आप दोनों परिवार को, मैंने एक गवर्नमेंट का और एक अपना गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट को
1: संभालते हैं।
0: चलो सही में सहिष्णु, हमारा जो माताएं भाई बहनें के पास इतना शक्ति है जिसका चलते वो कर पाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति, धीरज शक्ति, नम्रता, हाँ, निर्माण भावना, और है ही कारीगर, कारीगर है ना माताएं लोग, जो कारीगर बना देते, कारीगरी जिसका चलते हरा भरा कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद, जाते जाते और क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा?
1: अच्छा लगा।
0: अच्छा लगा, ठीक
1: हाँ।
0: है, ऐसा अच्छा लगना चाहिए। चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सहायिका हमारे साथ है, सहायिका तो सहायता देना उनका काम है, जो भी आते हैं उनको सहयोग देते हैं, आज सहयोग देते हैं कल योगी भी बन जाएंगे, है कि नहीं? योगी किसको कहते हैं? जो योग्य है सब चीज में, बच्चों को पालन पोषण, खाना पीना, रोना धोना सब में सहयोग देते हैं, सब काम करते हैं। तो आपका नाम बताओ?
2: दीपा चौहान।
0: दीपा चौहान, कहाँ से आप?
2: मैं मानपुर।
0: मानपुर से। कब से सहायिका काम लगे?
2: सर मेरे को 11 साल हो गए।
0: 11 साल। इसका पहले क्या करते थे?
2: पहले कुछ नहीं करती थी, बाहर का ही काम करती थी।
0: अच्छा, आप क्या करते हैं खासकर आंगनबाड़ी में?
2: आंगनबाड़ी में हमारा देखो सबसे पहले तो यहाँ आके हम साफ सफाई करनी है, जैसे आगे आंगनबाड़ी
0: खोलना,
2: सफाई सफाई करके
0: फिर बच्चों को बैठाना,
2: पानी भर के फिर बच्चों को।
0: मान लीजिए आपका आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता किसी ऑफिशियल काम में हो, बस नहीं रहेंगे, तो आप उस दिन कैसे संभालते?
2: संभालना पड़ता है, पढ़ाते हैं, पढ़ाई पढ़ाई का काम, जैसे पढ़ाना, पोइम बुलाते हैं, खेल खिलाना, वो सब मैं करवाती हूँ।
0: आप कुछ सीखे कि नहीं? बच्चों को जो सिखाते हैं कार्यकर्ता है, आशा सोई ना, आप कुछ सीखे पढ़ाने के? क्या सीखे आप?
2: हम जो कार्यकर्ता बताते हैं, जो सिखाते हैं, वो हम सीखे।
0: बच्चों को आपको कंट्रोल करना है, किस तरह आप कंट्रोल करेंगे?
2: जी हाँ, जो बच्चों को हम बताते हैं कि
0: जैसे
2: जो नियम है ना, उसके हिसाब से पहले उनको ऐसे खिला के नाश्ता वास्ता दे के फिर उनको थोड़ा सा पढ़ाई करवाना।
0: क्या पढ़ाते हैं? गिनती सिखाते हैं?
2: गिनती सिखाना।
0: सिखाओ तो कैसे?
2: 1 2 3 4 ऐसे मतलब
0: एक्शन का साथ सिखाते। और कोई कविता भी सुनाते आप?
2: जी हाँ,
0: सुनाओ तो।
2: सुना
0: सुना, हम आज बच्चे बन जाएंगे।
2: हाथी राजा बहुत

0: बड़े हैं, सोंड लाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, कुर्सी पर बैठो ना, कुर्सी बोली चटर पटर।
1: बहुत अच्छा, ऐसा बच्चों को सिखाते हैं, आप सीखते हैं और उसको सिखाते हैं बच्चों को,
0: बच्चों को भी सिखाते हैं।
1: बहुत अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ। आज का कार्यक्रम को सभी ने अच्छे से अच्छे सुंदर रूप में सजाए, सभी को नाम का साथ धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, हमें दीजिए इजाजत। ये था पोषण संबंधित कुछ धात्री महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी सहायिका और बच्चों का तोतले तोतले आवाज को लेकर आज पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम चो की केन हो और हमारी की केन हो। और नमस्कार करने से पहले ही हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ते हैं, तो चलिए सबसे पहले करते हैं इनसे बात। हेलो,
1: हाँ ठीक है,
0: मस्त मजे में है, की केन हो थे? मैं तो मजा में होते, की केन हो?
1: मैं बिल्कुल खरा है, खरा
0: खरा हो तो बस
1: खरा है जानू है जो मारे खरा खरा में एक गानू है जो
0: हाँ
1: वो है जो अपने इम्जे अपने जीरे इम्जे हैं जो पन्ना की तमन्ना है के हीरा मुझे मिल जाए चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए मतलब ना की तमन्ना है तुम्हारे जैसे मेरे को मिल गए।
0: क्या बात है, वाह
1: क्या क्या है, खुशियों के साथ में रह रहा है सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बुरीलाल जी आपका कॉल करने के लिए और आज आपके साथ बात करने का भी एक अलग ही मजा था। तो दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, तो हमने कर लिया, लेकिन जी हाँ आज आबू रोड की बात करें तो आबू रोड में दो दिन से गर्मी की जो बात है, गर्मी ने जो कहर मचा रखा है दो दिनों से, बड़ी ही तेज़ गर्मी हो रही है। शाम के समय भी इस वक्त भी काफ़ी गर्म लग रहा था, खैर अभी तो शाम होते होते थोड़ा सा ठंड हो ही जाती है। लेकिन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गानों की, फरमाइशों की और हमारे साथियों की बात की। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी दोस्तों, जब मैं घर से निकला स्टूडियो आने के लिए, तो ऐसे दिमाग में आ रहा था कि आज वेनसडे है, लास्ट डे है, मतलब हमारे जो खुशी के नगमे दिल की बातों की जब हम बात करते हैं, तो आज वो बुधवार यानी कि आज आखिरी हफ्ते का आखिरी दिन है और फिर हम सीधा मिलेंगे सोमवार को। तो कई बार ऐसा लग रहा था जैसे आज शनिवार है और फिर कल संडे की छुट्टी है और फिर हम मंडे को फिर से काम पे आएंगे। और एक बार ऐसा भी लग रहा था कि यार आज वेनसडे लास्ट डे है, फिर हमको सीधा मंडे को मिलना है, यानी कि हम मंडे को फिर से शो करेंगे, मंडे को फिर से बातें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। और फिर आज सोचा कि ठीक है, आज अगर हमारी बात ऐसी है तो खैर आज हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गाने प्ले करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गाने बजाएंगे और हमारे जो भी सुनने वाले लिसनर्स हैं उनको ढेर सारे गाने सुनाएंगे, ढेर सारी प्यारी प्यारी जो इनकी फरमाइश है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो वक्त है हमारे आज के पहले गाने की तरफ बढ़ने का, लेकिन आज का जो हमारा पहला गाना है वो हमारी कल की बाकी एक फरमाइश में से है, यानी कि कल हमारी एक फरमाइश आई थी हमारे फिरोज़ भाई पालनपुर की तरफ से। मुझे नहीं मालूम है फिरोज़ भाई पालनपुर हमें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, अगर फिरोज़ भाई आप हमें सुन रहे हैं तो ये आपकी फरमाइश का सबसे पहला गाना हम प्ले कर रहे हैं, और अगर नहीं भी सुन रहे तो कोशिश करेंगे हम आपको फिर से दो लाइन हम सुना देंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे बिल्कुल से इस गाने के बाद कॉल करके बताइए कि आपने ये गाना सुना है। तो चलिए सुनते हैं ये आपकी फरमाइश का पहला गाना, तब सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: जी सुभाष भाई, अभी आप लाइव पे है, आप बात कर सकते हैं।
1: भाई जी, केवल भाई जी, आज केवल भाई जी, रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी श्रोते भाई बहने, सभी सुरेश भाई जोटाना पिंडवाला नानेरा, सभी सीनियर सिटीजन कंचन भाई, बुराराम भाई, बुरीलाल भाई, भूपत भाई और सभी नए जुने पुराने सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे, अभी आप सभी श्रोताओं के बातचीत भी डेली मैं सुनता हूँ, बहुत ही खुशी होती है। तो आप सभी को नमस्कार और भाई जी, हो सके तो गाइड का आपका पसंद का कोई भी गीत सुना देना गाइड का।
0: बिल्कुल,
1: थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति भाई।
0: बिल्कुल, ओम शांति सुभाष भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, आपकी तबीयत और फिर भी आप डेली हमारा रेडियो शो सुनते हैं और उसके बाद कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कैसे कैसे आप हमें उसकी अपडेट दे देते कि आप रेडियो सुन रहे हैं। सभी को आप नमस्कार करते हैं और सभी के लिए इतना प्यार से आप बातें करते हैं, तो बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, बिल्कुल से हम आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी करेंगे, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक गाना भी हम आपके लिए फरमाइश के रूप में हम इसको बजाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि अभी जो हमने गाना सुना महंगाई मार गई, जी हाँ दोस्तों, फिरोज भाई की हमारी ये फरमाइश थी और सही बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा हमें लगता है कि आज के समय में महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारी जो आमदनी है या हम चीज़ों को कह सकते हैं वो वहीं की वहीं, ऐसा लगता है। हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं लेकिन महंगाई भी सामने उतनी ही बढ़ती जा रही है और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट होने के बाद भी जो हमारी पास जो बचत होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कम है। और क्या कर सकते हैं इसके लिए, आपके पास अगर ऐसा कोई सुझाव है, कुछ चीज़ है जो आप हमारे दोस्त जो हमें सुन रहे हैं उसके लिए, इस चीज़ के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बिल्कुल से शेयर कर सकते हैं। नंबर आपको पता है, फिर से दोहरा देता हूँ, 9414151415 पे। जी हाँ जी, अभी हमने जो गाना सुना रोटी कपड़ा मकान मूवी से ये गाना था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इसके संगीतकार, गीतकार थे वर्मा मलिक, इसे गाया था जैन बाबू कवल, लता मंगेशकर जी ने और चंचल जी ने। हमारे साथ एक और हमारे कॉलर जुड़ रहे, चले सुनते हैं सबसे पहले उनसे। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी बुराराम जी, कैसे है?
2: बस ठीक है चंचल भाई, कैसे आप? कैसे है?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
2: तो हम भी ठीक है, बैठ के गाना बहुत ही है, महंगाई का सुन के तो बहुत मुझे अच्छा गाना लगा है।
0: बिल्कुल, ये हमारे सुरेश भाई जो पालनपुर से उनके थी, तो मैंने कहा चलो आज उन्हीं की फरमाइश को पूरा किया जाए। कल
2: नहीं, नहीं, पर वो जो मतलब एकदम सेट हो गया कि महंगाई के ऊपर गाया और वास्तविक अच्छा हो गया। दूसरा सब मधुबन भाइयों को, आपको और सुरेश भाई जोटाना वाले, सुभाष भाई, मदन भाई, अपने भूरा लाल जी को स्पेशल मेरा राम राम बोलना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
2: क्योंकि वो बोलते जब मेरा पूरा मतलब गम भूल जाता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, वो उनकी साथ ही ऐसा होता है कि जब वो शुरुआत करते हैं ना तो शो करने का भी एक मजा ही अलग हो जाता है उनका, जब राम राम आता है तो वो एक...
2: उनका मजा ही अच्छा है।
0: बिल्कुल,
2: चलो कोई नहीं, एक मेरी फरमाइश का एक गाना सुनाएंगे तो अच्छे है।
0: जी बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
2: गाना ऐसा है वो, तेरी नीली नीली आंखों पे दिल पे के चल गए ऐसा करके गाना है।
0: ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, तेरी नीली नीली आंखों के जो गाना है हम उसको प्ले करें आपके लिए और आपको सुनाए।
2: कोई बात नहीं, वो पूरा तो इतना नहीं आता,
0: कोई बात नहीं,
2: इतना वो अच्छा गाना मेरे को थोड़ा कभी कभी सुनता तो बहुत ये मतलब अच्छा गाना।
0: बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं हम आपके लिए प्ले करें। बहुत बहुत शुक्रिया बुराराम जी आपका हमें कॉल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो भी लिसनर्स हैं जब हमें सुनते हैं और उनके बाद उनकी फरमाइश हम तक आती है, उनकी जो प्यारे प्यारे गाने मुझे सुनने को मिलते, कुछ गाने कई बार ऐसे होते हैं कि मैं भी खुद पहली बार सुन रहा होता हूँ और कई बार ऐसा होता है कि वो गाना ही मेरा फेवरेट होता है। जैसे कि आज अभी मुझे एक गाइड मूवी का, जैसे हमारे सुभाष भाई ने हमें एक फरमाइश दी कि कोई भी गाना गाइड मूवी का आप हमारे लिए बजा दीजिए, और मेरे लिए गाइड मूवी के दो गाने बहुत ही पसंदीदा है और उसमें से एक गाना हम ज़रूर से बजाएंगे। लेकिन उससे पहले वक्त है हमारे भूरीलाल जी, जो हमारे भूरीलाल जी ने सबसे पहले हमें कॉल किया था, उन्होंने हमें एक फरमाइश के रूप में गाना बोला था कि पन्ना की तमन्ना, तो ये भी मेरा एक फेवरेट गाना है। आज की जो लिस्ट ले है हमारे पास जो भी गाने बजने वाले सारे मेरे फेवरेट हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये सारे मेरे फेवरेट आप सभी को भी पसंद आने वाले हैं। तो सबसे पहले ये गाना हम सुनते हैं, पन्ना की तमन्ना है, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हाँ दोस्तों, गाथा जो हमने गाना सुना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। जी हाँ, किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर की जुगलबंदी, राहुल देव बर्मन जी इसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे। मूवी थी हीरा पन्ना 1973 से, और बहुत ही प्यारा ये गाना है। एक समय में अपने टाइम का बहुत ही हिट गाना, जीनत तमान जी और देवानंद साहब के ऊपर ये फिल्माया गया था। ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है और ये भी मेरे फेवरेट्स में से एक है। तो आज तो हमारे फेवरेट्स बज रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला एक और मेरा फेवरेट, और हमारे सुभाष भाई ने जो कहा कि गाइड मूवी से कोई भी एक गाना आप हमारे लिए प्ले कर देना। चलिए ये फरमाइश उनकी हम पूरी करते हैं। गीत के बोल है, गाता रहे मेरा दिल। लेकिन गाना बजने से पहले, गाना हम बजाए उससे पहले हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो
1: हेलो, नमस्कार केवल भाई जी।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही अच्छा हूँ, मैं दयाराम बोल रहा हूँ।
0: जी दयाराम जी,
1: और आपको और सुनने वाले सभी मेरे प्यारे मित्र है, जो सुरेश भाई है, पूरे लाल जी है, और पूरे लाल और भी है वो मानपुर वाले सुभाष भाई, इन सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार
0: जी। उन सभी की तरफ से आपको भी खूब नमस्कार।
1: बहुत ही अच्छे गाने भी सुनने को मिले, बहुत अच्छी अच्छी फरमाइशें की है
0: जी,
1: और आपने भी बहुत सुंदर फरमाइश की पूरी की है
0: जी।
1: और मेरी भी एक फरमाइश है, गाना है ये पूर्णिमा की आवाज में गाया हुआ है
0: जी।
1: बहुत ही मीठा गाना है, बच्चों का गाना है, जो मैं दो लाइनें गाता हूँ
0: जी।
1: पापा को मम्मी से प्यार है, बोलो बोलो है ना, मम्मी को पापा से प्यार, ऐसा गाना है, बहुत सुंदर गाना है।
0: बिल्कुल
1: सुना देना, मिल जाए तो।
0: बिल्कुल श्योर, कोशिश करते हैं आपके लिए ये गाना हम प्ले करें और आपको ये आपकी फरमाइश के रूप में आपको सुनाए।
1: धन्यवाद,
0: शुभरात्रि। धन्यवाद दयाराम जी। यह दोस्तों, आज क्या बात है, आज कुछ तो बात है, ऐसी बात है कि गाने जो आज लिस्ट पे भी लगे थे या चाहे वो मेरे को फरमाइश के रूप में भी मुझे मिल रहे, ये सारे ऐसे गाने हैं कि मेरे फेवरेट में एक है। एक और गाना अभी हमारे दयाराम जी ने भी मुझे कहा फरमाइश में, या फिर आज ऐसा कुछ हुआ है कि सबको मेरे दिल की बातें पता चलने लगे और मेरे दिल की जो कह मतलब खुशी की जो बात है वो आ रही है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे, करते हैं उनसे बात। हेलो
2: जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग, सुरेश भाई बोलता हूँ जताना से, कैसे हो सर?
0: बढ़िया सुरेश भाई, गुड इवनिंग, हम ठीक है, आप कैसे हैं?
2: बस अच्छे हैं। जब जब मैंने कॉल करना चाहा हमारे और एक मित्र आ जाते थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अब
0: वही मैं भी सोचा था कि आज सुरेश भाई इतने लेट कैसे हो गए कि
2: लेट नहीं हुआ था, लेकिन जब जब कॉल करना शुरू किया तब हाँ। हमारे और मित्र की बिजी आता रहा।
0: अच्छा,
2: तो ये भी कॉल करना चाहा था हमारे दयाराम जी, इससे पहले हमारे बुरीलाल जी आ गए, हमारे बुरालाल जी आ गए, बाद में पहले हमारे बुरीलाल जी आ गए
0: जी,
2: बस ऐसे चलता रहा। तो मैंने सोचा चलो अब गैप हुई है तो मैं ही बात कर लूँ आपसे पहले।
0: बिल्कुल,
2: तो चलो हमारे सभी मित्रों को आज के दिन की शुभकामनाएं, सभी मित्र हमारे जोड़ रहे हैं, खुशी की बात है ना
0: जी।
2: इतने मित्र हमारे तो कई सारे मित्र हैं, लेकिन अभी तो आधा से आधा भी नहीं जुड़ा है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन काफी हद तक मैं ये समझ रहा हूँ कि आज के समय में मुझे जहाँ तक कॉल्स आते हैं या जो हम जिनकी बातें हम करते हैं, तो भी कम से कम 5-6 लोग, 7 लोगों की भी अगर हम दिन में बात करते हैं एक शो पे, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए,
2: की
0: बहुत बड़ी खुशी की बात है।
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। चलो हमारे चलो हमें बात कर लो कि बुरीलाल जी, हमारे मुराराम जी, राम जी, सुभाष भाई, फिरोज भाई की पसंद भी अच्छी सुना दी आपने, महंगाई तो चलती रहती है, क्या करें
0: जी। बिल्कुल
2: सरगमा सुना दिया
0: जी,
2: सभी हमारे साथी मित्रों को नमस्ते। और मैं भी चलो एक गाना दे दूं आपको, कभी कभी फिल्म का गाना है हमारे साथ का गाया हुआ
0: जी,
2: और जिसका स्टाइल बियानी है और संगीत का रखा हम जी का जो गाना है, बहुत अच्छा संगीत किया है
0: जी।
2: मैं आपको दो चार लाइन सुना दूं।
0: बिल्कुल,
2: मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं हर पल दो पल का शायर हूँ।

हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की चिंती कलियां चुनने वाले मुझसे।

0: मैं पल तो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। जी सर नमस्ते।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही प्यारा आपने ये हमें गाना सुनाया।
0: बस मैं कोशिश करता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा गा पाऊँ।
1: बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आपके लिए ये गाना हम बिल्कुल से बजाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाई।
0: नमस्कार।
1: यहाँ दोस्तों तो चलते हैं जल्दी जल्दी से, बहुत सारी फरमाइशें हमारे पास है और वक्त का भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम प्ले करते हैं हमारे सुभाष भाई के लिए गाना। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: You are listening to Sister Dipti from Johannesburg, South Africa, and you are listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. This is being heard on www.radiomadhuban.in. I'm in South Africa, but you can tune into this wherever you are in the world and stay tuned into this wonderful fragrance.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, दोस्तों अभी हमने गाना सुना गाइड मूवी से, 1965 में आई, एस डी बर्मन साहब इन्होंने इस पे म्यूजिक को डायरेक्ट किया है, म्यूजिक डायरेक्शन दिया है, शैलेंद्र जी ने इसे लिखा है। वही हमारे खास में जो लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी की जो आवाज़ है वो इसमें है, इन्होंने इसमें अपना सुर दिया है। और वक्त को देखते हुए सीधे हम जल्दी से बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। जो अगला गाना है वो है हमारे बुरा राम जी की तरफ से, हमें ये गाना हमें उन्होंने सजेस्ट किया है, तेरी नीली नीली आंखों के तीर। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: वेलकम बैक दोस्तों, और अभी जो हमने गाना सुन रहे थे जैन जाने अनजाने 1971 से, इसे भी आवाज़ दिया था अपने लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। शंकर जयकिशन जी इसके संगीतकार, हर्षद जयपुरी जी इसके गीतकार थे। और फिर एक और गाना हमारी फरमाइश है जो हमारे दयाराम जी ने हमें सजेस्ट किया है ना, बोलो बोलो। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों। और अभी जो हमने गाना सुना अंदाज मूवी से, इसके संगीतकार शंकर जयकिशन जी, गीतकार हसन जयपुरी जी, आवाज दी थी मोहम्मद रफी साहब ने और सुषमा श्रेष्ठा जी ने इसे अपना आवाज दिया था। और बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, लेकिन जो अगला नगमा है उससे पहले हम आपसे लेंगे विदाई और फिर वादा करेंगे अगले हफ्ते यानी कि मंडे को मिलने का। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आजिश। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर हम इस बात को समझते हैं कि स्वस्थ रहना मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ा वरदान है। अगर स्वास्थ्य चला जाता है तो व्यक्ति जीवन के सारे सुख सुविधाएं होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर सकता, या वो चीजें होते हुए भी वो अपने आप को सुखी नहीं महसूस करता। ऐसे में स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है हम सभी समझते हैं। अक्सर इसके महत्व को न जानने के कारण हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं, या थोड़े समय के लिए हम रोगी बन जाते हैं और इस रोग से छूटने के लिए फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आइए आज स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे विषयों पर जानकारी लेते हैं जिससे ये समझा जाए कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, स्वास्थ्य का यह तोहफा हमेशा हमारे पास रहे। आज हमारे साथ इन विषयों पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य जगत से ही एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और दे रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पर जब भी हम कोई बातचीत करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसे एक बहुमूल्य कुंजी के रूप में लोग हमेशा से देखते आए हैं, मगर गौर करने वाली बात ये आज देखने को मिलती है कि व्यक्ति का ध्यान पैसा कमाने के लिए ज्यादा रहता है, जीवनोपार्जन के लिए ज्यादा रहता है, मगर जीवन को सुख से व्यतीत करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए, निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर, व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य आवश्यक है, वो पहली रिक्वायरमेंट है, इसे लोग भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है
1: भैया? अरबी में कहावत है कि जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास उम्मीद है, और जब उसके पास उम्मीद है तो उसके पास सब कुछ है। बहुत बार ये बोला जाता है, होप हैंग्स ऑन अ वेरी थिन स्ट्रिंग, बट इफ यू हैव होप यू कैन गेट ऑल द थिंग्स। तो मोटा मोटी उम्मीद को भी स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास ज्यादा मेहनत करने की ताकत है, आपको पास ज्यादा उम्मीद है। और ये बहुत बार लोगों को समझाया जाता है कि आप कृपा करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से दीजिए। और अभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या हमारे देश ने, पूरी दुनिया में जो बदलाव आया है सन 1990 सन 2000 तक, हमारे यहां नाइट ड्यूटी या रात का काम सिर्फ चौकीदार लोग किया करते थे, पुलिस वाले किया करते थे और अस्पताल के कर्मचारी किया करते थे। रेलवे स्टेशन पे भी आपको ये मिल जाता था। उस समय हमारी हवाई सेवाएं इतनी नहीं थी कि रात भर आपको दौड़ना भागना पड़े, और एक अमूमन ये था कि 10-11 बजे के बाद आपको रिक्शा मिलना, आपको टैक्सी मिलना, ये सब कम हो जाएगा। अब आप देखिए कि रात का काम करने वाले कितने सारे लोग हो गए, और जो दिल्ली एनसीआर है या हैदराबाद है, मुंबई है, बैंगलोर है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, जयपुर है, आप जो भी बड़े शहरों को देखिए, इवन सुदूर आसाम कोलकाता चले जाइए, आपको एक बहुत बड़ी जनसंख्या यंगस्टर्स की मिल जाएगी जो कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं और जो रात में काम कर रहे हैं, और वो उस रात में काम करने की वजह से अपनी पूरी जो लाइफ साइकिल है और स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर दिए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत दिन तक लोग ये काम कर ही नहीं पा रहे हैं और उन्हें ये काम साल, दो साल, तीन साल के बाद छोड़ना पड़ रहा, क्योंकि उनको बीमारियां पकड़ ले रही। इवन भैया, अब आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखिए, वहां 24 घंटे काम हो रहा है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो अपना न समय देख रहे हैं, न वातावरण देख रहे हैं, और हम जब काम कर रहे हैं तो अपने भोजन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं किसी दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूं, मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब मैं मुंबई में मरीज देखता हूं और मेरे पास बहुत सारे मरीज रहते हैं, तो मेरा नाश्ता, मेरा जो दोपहर का भोजन है और मेरे शाम का जो भोजन है, वो सिर्फ एक चीज होता है, वो है वड़ा पाव। और आपका दिमाग क्या कहता है, जल्दी से जल्दी कुछ खा लो। और ये मेरे यंग डेज में मैंने बहुत किया। मैं जब ब्रिटेन में रहा तो जस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है, आप भी श्री भैया रहे हैं, ग्रैब अ सैंडविच एंड गो, या पिक अप अ कॉफी एंड गो। तो हम लोग क्या करते, और आप जितने भी बड़े स्टोर्स को देखिए, वहां पर एक मील कॉम्बो मिलता था जिसमें एक छोटा पैकेट ऑफ चिप्स या कुकी बिस्किट मिलता था, एक सैंडविच मिलता था और एक ड्रिंक मिलती थी। और ये आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप इसको 5 ही मिनट में खा के खत्म कर लेंगे। तो हम लोग अपने भोजन, उस समय दिमाग यही था कि बस पेट भर लेना है, स्वास्थ्य की तो हम बात ही नहीं सोच रहे थे। और जब उम्र बढ़ने लगती है, खासकर जब आप 35 साल को क्रॉस करते हैं और बहुत सारे लोगों में 40 साल तक, तो आपको ये जो आपने किया है अपने शरीर के साथ, आपने जो दुर्व्यवहार किया है, वो आपको दिखने लगता है, आपको लगने लगता है कि आपने गलत किया, आपको ये करना नहीं चाहिए था, आपको ठीक से भोजन करना चाहिए था, आपको ठीक से एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, आपको ठीक से हिलना डुलना चाहिए था। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि कृपा करके अपने स्वास्थ्य के प्रति जितनी जल्दी हो सके उतना जागरूक हो जाइए। और मैं सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शरीर, मन और हम सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, तीनों तरह से आपको स्वस्थ रहना है और अच्छा काम करना है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
0: डॉक्टर साहब, ये बात आप बहुत ही सहजता से हम सबको समझा रहे हैं कि कैसे हम इस एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर देने की वजह से, दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देने से हम इसे खो देते हैं, और फिर उसे वापस पाने के लिए हमें कमाया हुआ पैसा, समय इत्यादि खर्चना पड़ता है। पिछले दिनों हम बातचीत कर रहे थे, हम ये चर्चा में समझ रहे थे कि कब्ज की जो बात हम कर रहे थे, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो हमारे ऐसे ही इग्नोर करने के कारण शुरू होती है। हम पानी पीना पर ध्यान नहीं देते, हम समय पर शौच पे जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम, हालांकि हमारा शरीर इशारा करता है तो भी हम उसे दबा दे रहे हैं कि हम शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम भोजन में भी हेर फेर कर लेते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस चीज पर ध्यान नहीं देते। ऐसे करते करते ये इसका स्वरूप बदलता चला जाता है। और आपने ये भी कहा कि पाइल्स जैसी समस्याएं भी इससे ही जुड़ी हुई होती हैं, कि इन्हीं गलतियों के कारण ये चीज ऐसे होती जाती हैं। अब समस्या एक ही चीज से जुड़ी हुई है वो समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे वो अलग अलग स्टेजेस पे आ रहा है। अब इसके इलाज के बारे में जब बात की जाती है तो प्रश्न उठता है, क्या इसके इलाज भी एक समान है कि इन सारी समस्याओं के लिए हम अलग अलग तरीके से इलाज करते हैं, क्योंकि आज लोग अलग अलग पैथीज इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रश्न उठता है स्वाभाविक रीति।
1: भैया, मोटापा हो, कॉन्स्टिपेशन हो या पाइल्स हो, मोटा मोटी सबका इलाज एकदम एक जैसा है। इन तीनों के विषय में आपने भैया खाने की बात की और शौच जाने की बात की, तो एक बड़ी, यहाँ एक लोकल बंगला में कहावत है कि जाए कि ना जाए तो जो जाए उचित, और खाए कि ना खाए, ना खाए उचित। मतलब अगर आपको, मतलब थोड़ा भी आपको, आपका पेट इशारा कर रहा है कि फ्रेश होने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको तुरंत जाना चाहिए। वो हल्के से भी सिग्नल को, वो हल्के से भी जो आपके शरीर के अंदर से आवाज आ रही है, उसे तुरंत आपको पकड़ना चाहिए। मतलब शौच आप जाए कि ना जाए, इस दुविधा में अगर आपका मन है तो आपको चुपचाप शौच चले जाना चाहिए। और इसी के विपरीत कि हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो इसमें नहीं खाना चाहिए ज्यादा उचित है। अगर आपके शरीर ने, आपके मन ने, आपकी जीवा ने, आपके दिमाग ने एक बार भी ये सोच लिया यार ये खाएं कि नहीं खाएं, तो नहीं खाना उचित है। तो प्लीज अगर आप अपने पेट को ठीक रखना चाहते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं गर्दन को दाहिने बाएं घुमाइए, ना बोलना सीखिए खाने को, और अगर जरा सा भी आपके पेट में सिग्नल आए तो आपको तुरंत पेट साफ होने के लिए जानना चाहिए। हम लोग अभी पेट की बात कर रहे हैं और पेट साफ होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आजकल बात की जाती है वो है इलाज में, अब उसको भी कंसिडर किया जा रहा है कि आपको सुबेरे जल्दी उठना चाहिए। हमारी ह्यूमन बॉडी को इस तरह से भगवान ने बनाया है कि उसमें जो भी नेचुरल जो बात फ्रेश होने के जो सिग्नल्स हैं वो सुबेरे के समय आते हैं। आप जान के अचंभित होंगे कि इस समय जितने भी इनफर्टिलिटी के मरीज हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी जो प्रोसेसेस हैं वो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि सुबेरे किए जाएं, और वो ये तक कोशिश कर रहे हैं स्पेशली बड़े शहरों में कि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, कि ये सबसे पॉजिटिव सबसे अच्छा समय है। मेरी माँ ये हमेशा कहती थी, सुबेरे उठ के जो पढ़ाई होती है वो 1 घंटे में हमें 2 से 3 घंटे का फायदा हो जाता है। सुबेरे उठ के मुंह हाथ धो के जब पूरा वातावरण शांत रहता है, कोई भी चीज सुनाई नहीं देती, उस समय अगर आप बैठ के पढ़िए तो आपको ज्यादा याद होगा, आपके शरीर के लिए अच्छा है और आपके मन के लिए भी अच्छा है। तो यही चीज अब मोटापा, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स तीनों में कहा जा रहा है कि आप प्लीज सुबेरे उठिए। और ये भी कहा जाता है कि सूर्य की जब किरण निकल रही है अगर आप उस समय उठ पाएंगे तो आपको सबसे अच्छा लगेगा, और अगर आप किसी तांबे के या मिट्टी के या जो सामर्थ्यवान है चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी जो रात भर का रखा है उसे उठते ही पीते हैं तो आपके पेट साफ होने में वो बहुत मदद करेगा। सुबेरे उठते ही 2 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। अब इस पानी में हम चाहें तो जैसा मैंने पहले कहा था कि हमको इसमें जो नींबू का रस मिलाकर हम इसमें सुबेरे पी सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूंगा कि आप रात में पानी रखें और सुबेरे उसमें नींबू गार लें, कागजी नींबू, और पी जाएं। ये मत करिएगा कि रात में ही आप नींबू और पानी बनाकर आप उसको रख दें और सुबेरे पिए। हल्का फुल्का व्यायाम और गहरी सांस लेने वाली कसरत आपको करनी चाहिए, और अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन या आपको अच्छा खासा आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपको 4 से 6 किलोमीटर सुबेरे वॉक करना चाहिए। ये मोटा मोटी माना जाता है, अगर स्टेप के हिसाब से माने कि हम हर मिनट 100 स्टेप चल लेते हैं, 10 मिनट में 1,000 स्टेप चल लेते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम 10,000 स्टेप सुबेरे ही चल लें, क्योंकि यदि आप 10,000 स्टेप चल लेंगे तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जहां आप हल्के फुल्के व्यायाम, एक्सरसाइज या टहलना करेंगे तो आपका रक्त संचार जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपकी बड़ी आंत में भी अच्छा रक्त संचार होगा और इसकी वजह से आपका पेट ठीक से साफ हो जाएगा। इसके बाद हमें कोई भी फल का या रस का प्रयोग करना चाहिए। फलों में सबसे अच्छा जो फल है वो पपीता, अमरूद और बेल है, और पके हुए फल का प्रयोग करना चाहिए। अमरूद, पपीता या बेल, इन तीनों में से जो भी चीज आपको मिले आपको सुबेरे के नाश्ते में करनी चाहिए। अगर आप रस पीना चाहते हैं तो आपको गाजर का रस और पालक का रस, ये रस आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। दोपहर के भोजन में हमें चोकर समेत आटे की रोटी, हमको ताजा साग सब्जी, उबली हुई साग सब्जी का भोजन करना चाहिए, या हम कोई भी दलिया या कोई भी मिलेट जो है वो खा सकते हैं। मैं सबको ये राय और देना चाहूंगा, कृपया मिक्स्ड आटा या मिक्स्ड मिलेट इसका प्रयोग मत करिए, क्योंकि ये आपके जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर ज्यादा जोर डालता है। इसीलिए सिंगल ग्रेन या सिंगल मिलेट का प्रयोग करिए। मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्स मतलब बहुत सारे अन्न को मिला के खाने की कोशिश मत करिए। जिनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, मोटापा होता है, उनको ये तक कहा जाता है कि आप दालों को मत खाइए और जो भी भोजन जो गर्म होते हैं उन्हें मत खाइए, क्योंकि जैसे तेल, अचार, खटाई, मिठाई, ये सारी चीजें जो है वो आपके पाचन तंत्र को और धीरा बना देते हैं। आप सुबेरे के नाश्ते के बाद अपनी पेट पे ठंडे पानी का कपड़ा रख सकते हैं। यदि आपको मिट्टी मिले तो आप पेट पे मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग को ये भी कहा जाता है कि आप अपने कमर पे एक ठंडे पानी में कोई पट्टी, जो कॉटन की कोई भी पट्टी है, उसको भिगो लें, और ये करीब 12 इंच मोटी कोई पट्टी आपके पास अगर कॉटन की है तो इसको भिगो लें और इसको अपने कमर पे बांध लें। नाभि के चार उंगल ऊपर, चार उंगल नीचे होना चाहिए। पट्टी नाभि के एकदम बीचों बीच से, अगर आप नाभि को बीच में माने तो जितना ऊपर नाभि के उतना ही नाभि के नीचे भी होनी चाहिए। इससे आपकी सारी जो आंत है उसमें ठंडक पहुंचेगी, आंतों की गर्मी निकलेगी और आंतों में फिर से नया जीवन आएगा और वो अपने आप चलायमान हो जाएंगी। हम लोग ने ठंडे पानी में पानी में बैठने की भी बात की थी, तो आप अगर आंतों को ठंडक पहुंचाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। करीब हफ्ते में एक दिन उपवास करने की कोशिश करनी चाहिए। 2-3 दिन तक अगर हम रसाहार या लिक्विड डाइट करते हैं तो वो भी हमको बहुत आराम देगा। सवेरे भारी नाश्ता करने की हमें आदत छोड़नी चाहिए कि हम हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतनी जल्दी निकलेगा।
0: डॉक्टर साहब, जब आप कहते हैं कि ये जो हैवी ब्रेकफास्ट करना है इससे बचना होगा, और आपने ये भी बात कहा कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना जल्दी निकलेगा शरीर से बाहर, ये एक अवधारणा हमारी कैसे बनती है वो मैं नहीं जानता। प्रायः ये चीज कहा जाता है कि लोगों को बोला जाता है कि भाई अच्छे से नाश्ता करो बेटा, बचपन से ये चीज सिखाया जाता है। तो हम सोचते हैं कि भाई एक किंग के समान नाश्ता होना चाहिए और एक मजदूर के जितना हमें भोजन करना चाहिए, और फिर बाद में एक बहुत ही गरीब आदमी जितना रात का भोजन होना चाहिए। ये कहावत मशहूर है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ब्रेकफास्ट तो हैवी होना ही चाहिए, जो मिल रहा सब कुछ ही खा लेना है, ऐसी ये चीज लगती है।
1: भैया, ये जो आपने बात की ये हेल्दी पीपल के लिए है। जब आपका पाचन तंत्र चल ही नहीं रहा है तो उसमें आप ऊपर से जो भी डालेंगे वो फंस जाएगा। अच्छा, हैवी ब्रेकफास्ट अगर ये जहां से भैया निकला वहां पर जो भी लोग थे वो सैलेड बहुत खाते हैं, वो फ्रूट्स बहुत खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट में, जैसे जो यूरोप है वहां से ये धारणा निकली, तो दे हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स, सैलेड्स, ब्रेड्स, मिल्क, ये वहां से निकला। हमारी इंडिया में आते आते ये सुबेरे के पराठे में कन्वर्ट हो गया, और ये हैवी ब्रेकफास्ट जो है ये तला भुना वो सारी चीजें हो गई। आप खुद नोटिस करेंगे भैया कि हम, आप विदेश में रहे हैं, वहां खाने के साथ पानी बहुत कम पिया जाता है, और हमारे यहाँ हम इतना भारी भोजन करते हैं कि हम खाने के साथ पानी का गिलास भी रखते हैं। बहुत सारे लोग जब आरोग्य मंदिर में चिकित्सा कराने आते हैं तो वो इस बात से अचंभित हो जाते हैं कि यहाँ पानी का गिलास ही नहीं भोजन के साथ मिलता है। हम आपको सिर्फ एक स्टील की प्लेट, 2 कटोरी 1 चम्मच देते हैं, हम पानी का गिलास ही नहीं देते हैं। और अगर आपको कोई भी पाचन तंत्र की समस्या है, भोजन आपका ठीक नहीं है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप खाना खाने से पहले नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी ठंडक में पी सकते हैं, और भोजन करने के 1.5 से 2 घंटे बाद इच्छा अनुसार आप जल पी सकते हैं। खाने के साथ आपको पानी जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पेट और छोटी आंत का जो काम है वो बढ़ा देता है। एक्सरसाइज में ये भी कहा जाता है कि आप बेसिक सूर्य नमस्कार अगर करिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार में आगे झुकने और पीछे झुकने के जो आसन है वो आपके पेट को साफ करने में बहुत मदद करेंगे। ये अवधारणा है कि खासकर प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद ये कि आपको बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए अगर आप कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स के मरीज हैं।
0: व्यायाम की जब आप अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग इन सब चीजों से अवगत नहीं होते। जैसे आपने ये बात कहा, जैसे मैंने अभी ये सवाल पूछा, आपने कहा कि ये स्वस्थ लोगों के लिए चीज है, मगर वो लोग जो पाइल्स कॉन्स्टिपेशन जैसे कब्ज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको अपने इलाज में इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। कभी कभार हम एक्सरसाइज के बारे में भी जब करते हैं तो हम बिना चिकित्सीय सलाह के, बिना डॉक्टर से राय मशवरा किए, जो हम YouTube पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया रील्स पे देख रहे हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि मेरे शरीर में जो गड़बड़ियां चल रही हैं या कोई चीजें मुझे सूट नहीं करने वाली होंगी उसके हिसाब से मुझे ये चीज समझ कर करना है?
1: आपको अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपको वो भोजन जो आपकी जिह्वा पे आपको अच्छा लग रहा है पर आपको शरीर से कष्ट दे रहा है उसको पक्का छोड़ देना चाहिए। भैया राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में एक चटनी बनाई जाती है जिसमें हम लाल मिर्च का पाउडर लहसुन के साथ उसको पीसते हैं और ये बहुत तेज होती है। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति इसको अगर एक बार खा लेता है तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है, मेरे पेट में अगले दिन जलन होने लगती है और मेरी पूरे जो मुंह है सूख जाता है। तो मुझको मालूम है ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, मगर वो जब जिह्वा पड़ती तो बहुत एकदम एक तीखा सा स्वाद आता। तो मुझे मालूम चल गया मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैंने इसको एक बार दो बार खाया, उसके बाद से मैं पहले मना कर देता हूं कि मैं नहीं खाता, और अगर सर भी हो जाती है तो मैं इसको छोड़ देता हूं क्योंकि वो चीज मेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही कोई एक फल होता है जिससे वो रिएक्शन हो जाता है, कोई एक दाल होती है, कोई एक मतलब प्रोटीन होता है, कोई सब्जी होती है, इनको खाने से परेशानी होने लगती है। ठंडक के समय लोग बहुत मटर खाते हैं तो गैस होने लगती है, इसलिए मटर को वो फिर ये होता बड़ा परेशानी हो रही, तो भाई छोड़ दीजिए आप। तो जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, आपको भले ही उससे स्वाद आ रहा है, तो प्लीज उसको तो जरूर छोड़ दीजिए।
0: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर साहब। एक और हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और जागरूक होने की कोशिश में हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हमारे शरीर के लिए, हमारी प्रकृति के लिए अनुकूल है और क्या चीजें अनुकूल नहीं है, क्या चीजें हमें सूट करती हैं, क्या चीजें हमारे शरीर के लिए विरोधी है, ऐसी चीजें हैं जो हमें समस्या ले आ सकती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीजें समझ के साथ जब हम करते हैं तब पता चलता है। दोस्तों स्वास्थ्य में जब भी गड़बड़ियां होती हैं तो इलाज मौजूद है, मगर उन इलाजों को करते समय सही राय लेना बहुत ही आवश्यक है। आजकल जानकारी के इस युग में रहते हुए हम हर कोई जो मन में आए वो करने लग जाए तो शायद ये हमारे लिए अहितकारी साबित होगा। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स जैसे बीमारियों के लिए इलाज के क्या तरीके हैं उस विषय पर आज हमने डॉक्टर राहुल मोदी जी से सुना। आशा करते हैं कि ये सभी जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और आप इसका सही सही इस्तेमाल करेंगे। आज की चर्चा में यही रुकना होगा। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों आज की बातचीत में बस इतना ही। सहज स्वास्थ्य में अपने स्वास्थ्य को सहज करने के लिए क्या करने की जरूरत है, रेडियो मधुबन इसके लिए आपको आपके हाथ पकड़कर अच्छे स्वास्थ्य की ओर एक एक कदम बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमारे साथ इस सफर पे यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो बच्चों, चलो चलो बैठो रेडियो के पास। आ गए हैं परी और मनी दीदी गणपति बाप्पा को लेकर के किस शो में,
3: सपनों की सैर कार्यक्रम में, जिसमें हम खूब सारी बातें कर रहे हैं और खासकर गणेश जी की नई नई कहानियाँ सुन रहे हैं।
2: हाँ, और उनसे सीख भी ले रहे हैं।
3: सही कहा। तो बच्चों, आज की कहानी पता है किसके बारे में है? गणेश जी और मोदक के बारे में।
2: अच्छा मनी दीदी, मोदक का नाम सुनकर तो मुंह में पानी आ गया।
3: हाँ परी, मेरे भी मुंह में आ गया, बच्चों के भी मुंह में आ गया होगा पानी।
2: बच्चों ने तो अब तक खूब सारे मोदक खा लिए होंगे।
3: सही कहा। तो पता है बच्चों, एक दिन गणेश जी के पास एक विशेष मोदक आया। माता पार्वती ने कहा, जो इसे पाएगा उसे ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मिलेगा।
2: और गणेश जी ने मोदक को पाने के बाद उसे केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने सोचा ज्ञान तो तभी सुंदर है जब उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया जाए।
3: हाँ, और उन्होंने अपने मित्रों को भी अच्छी बातें सिखाई और सबकी सहायता की।
2: तो देखा बच्चों, माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न हुई और कहा, बेटा सबसे बड़ा प्रसाद वो है जो दूसरों के जीवन में खुशी और ज्ञान बांटे।
3: हाँ बच्चों, तो ज्ञान और खुशियाँ जितनी बांटेंगे उतनी ही बढ़ेगी। और ऐसे ही गणेश जी ने हमें कितनी सारी शिक्षाएं दी, और गणेश जी हमें बुद्धि, धैर्य, प्रेम और विनम्रता का मार्ग दिखाते हैं।
2: तो बच्चों, आओ हम भी उनके जैसे अच्छे विचार रखें और सबकी मदद करें।
3: सही कहा परी। तो बच्चों चलो भाई, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा।
2: हाँ बच्चों, मिलते हैं इस गाने के बाद।
3: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो
2: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बच्चों चलो बैठो रेडियो के पास, परी आ गई है कहानी को लेकर के और आज आपको एक घोड़े की कहानी सुनाएंगे। एक आदमी के पास एक घोड़ा था और एक गधा था। एक दिन वो इन दोनों को लेकर बाजार जा रहा था। उसने गधे की पीठ पर खूब सारा सामान लाद दिया, घोड़े की पीठ पर कोई भी सामान नहीं था। बच्चों रास्ते में गधे ने घोड़े को कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत ज्यादा वजन है, थोड़ा बोझ तुम भी अपनी पीठ पर ले लो। बच्चों घोड़े ने कहा, बोझ ज्यादा हो या कम हो मुझे इससे क्या लेना देना, ये बोझ तुम्हारा है तो तुम ही उठाकर चलो, मुझसे इसके बारे में कुछ मत कहो। बच्चों ये सुनकर गधा तो चुप हो गया। फिर वो तीनों चुपचाप चलने लगे और सोचो बच्चों क्या हुआ, थोड़ी देर में तो भारी बोझ के कारण गधे के पांव तो लड़खड़ाने लगे और वो रास्ते पर गिर पड़ा। तो इसके बाद उस आदमी ने क्या किया पता है, गधे की पीठ से सारा सामान उतार दिया और उसने सारा बोझ घोड़े की पीठ पर लाद दिया। चलते चलते घोड़ा सोच रहा था, यदि मैंने गधे का कुछ भार अपनी पीठ पर ले लिया होता तो आज इतना सारा बोझ मुझे ना उठाकर चलना पड़ता। तो देखा बच्चों कहानी हमें क्या समझाती है, दूसरों के दुख दर्द में हाथ बांटने से हमारा भी दुख दर्द कम हो जाता है ना बच्चों। तो इसीलिए हमेशा सबकी मदद करना, उनके दुखों को भी समझना, उनके दर्द को समझकर उनको राहत देना। तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: बच्चों आ जाओ जल्दी से, तेनाली राम की अनोखी दुनिया की किताब लेकर आ गई है मनी दीदी और हम पढ़ रहे हैं सप्तद्वीप नवखंड, जिसमें इस राज्य के जो राजा है महाराज विचित्र भानु, उनको विजयनगर साम्राज्य से ईर्ष्या हो गई है कि क्यों ये राज्य इतना समृद्ध है। और फिर उसके बाद में आगे क्या हुआ वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। आम दिनों की तरह ही दरबार में काम काज चल रहा था। दरबार में चर्चा चल रही थी कि विजयनगर के गाँव में इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि कोई भीषण संक्रामक रोग से आसपास के राज्यों में मवेशी मर रहे हैं, और आम तौर पर यह रोग हिस्ट पुष्ट गायों पर तेजी से असर डालता है, बैल और बछड़ों पर कम। तो ग्रामीण इस संक्रामक रोग के बारे में सुनकर आतंकित हो उठे हैं कि कहीं इस रोग से प्रभावित होकर उनकी गायें ना मर जाए। तो महाराज कृष्ण देव राय के कानों में जब यह बात पड़ी तो उन्होंने संक्रामक रोग की चर्चा करने वाले दरबारी को टोक दिया। सुकेतु फिर से बोलना, गायों को कौन सा रोग लग रहा है और ग्रामीणों में कैसा आतंक है? महाराज कृष्ण देव राय में अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशीलता थी, इसीलिए प्रजा से जुड़ी छोटी से छोटी बात पर वे ध्यान देते थे। और फिर दरबारी सुकेतु अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज मेरे गांव के लोग डरे हुए हैं कि उनकी गायों को कोई छूत का रोग न लग जाए। पूरे गांव में इन दिनों इसी बात की चर्चा हो रही है और इस रोग के प्रभाव से गाय तुरंत मर जाती है, और इस रोग से एक गाय मरती है फिर उस गांव में ताबड़तोड़ बहुत सारी गायों के मरने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। तो इस तरीके से संपूर्ण स्वस्थ गायों पर इसका प्रभाव है। तो महाराज ने पूछा, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि गांव में गायों की महामारी फैल गई है? तो महाराज ने ऐसा पूछा तो सुकेतु ने उत्तर दिया, जी हाँ महाराज। फिर उन्होंने सुकेतु को अपने स्थान पर बैठ जाने का आदेश दिया। अब इसके आगे क्या होगा ये जानेंगे हम अगली कड़ी में, तब तक के बने रहिएगा। तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: ग्रीन बोर्ड हो जाओगे, जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
1: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, ये एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मनी दीदी और परी फिर से आ गए हैं और अब हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर भी पहुंच गए हैं और अब हम जानेंगे पिछली कड़ी में परी ने जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब।
3: हाँ बच्चों, बहुत ही आसान पहेली हमने पूछी थी। कीचड़ में मैं खिलता हूँ फिर भी बड़ा सुंदर दिखता हूँ, भारत का हूँ मैं राष्ट्र फूल, बताओ मेरा नाम क्या है।
2: तो बच्चों कीचड़ में तो एक ही फूल खिलता है ना, और वो है कमल, और कितना सुंदर दिखता है और भारत का राष्ट्रीय फूल भी है, तो सही जवाब है कमल।
3: बिल्कुल बच्चों, तो चलो नोट कर लो आज की पहेली। लाल रंग का रूप निराला, आकाश में दिखता मत वाला, धरती का पड़ोसी कहलाऊं, बताओ मैं कौन कहलाऊं।
2: तो बच्चों ये एक ग्रह है जो कि लाल रंग का दिखाई देता है और पृथ्वी के बगल में ही स्थित है, और पता है जहाँ पर जीवन की तलाश भी की जा रही है। तो चलो चलो जल्दी से अपना फोन उठाओ और 9414151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके अपना जवाब हमें भेज दो।
3: हाँ बच्चों, मनी दीदी ने तो कितनी सारी हिंट आपको दे दी, सवाल तो बहुत आसान हो गया। तो चलो जल्दी से हमें भेजना शुरू कर दो इसका आंसर, और साथ में क्या करना है याद है ना, भगवान जी को सॉरी और थैंक यू लिखना मत भूलना।
2: हाँ, और चलो फिर करते हैं गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट, गुड बाय, सुनते रहो
2: मुस्कुराते रहो,
3: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर
3: सपनों की

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा। अपनी विशेषताओं पर कभी भी अभिमान नहीं करना है, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, तिल हमारी हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है, जरूर जानेंगे। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो रेसिपी में आप क्या पसंद करते हैं, चलिए मैं बहुत स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने वाली हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट, जो बच्चे तो बहुत ही पसंद करेंगे, सभी करेंगे वैसे तो, लेकिन बच्चे विशेष करके, ठीक है। लेकिन कौन सी वाली, वो आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को डायल कीजिए 100 अपने फोन से सजग रहिए सुरक्षित रहिए रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी
1: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का सुंदर सा विचार है अपनी विशेषताओं पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए नहीं तो उसका पतन ही होता है कैसे तो आइए आज के विचार का विश्लेषण बहुत ही सुंदर दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी जब बाली को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा के ओरस वरदान द्वारा प्राप्त पुत्र है और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था उसका घमंड तब और भी बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांध कर 6 महीने तक पूरी दुनिया में घुमाया रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड का तो कोई सीमा ही नहीं रही रावण जैसे योद्धा को इस तरह हराया अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था बाली और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई है मेरे प्यारे श्रोता बंधु अपने ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनकों के समान उखाड़ कर फेंक रहा था हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर दे रहा था अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी से मिलाकर किचड़ कर दे रहा था एक तरह से अपनी ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उखाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था हे कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो हे कोई जो अपने माँ का दूध पिया हो जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था संयोगवश उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे हुए थे बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न लगा और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले हे वीरों के वीर हे ब्रह्मांश हे राजकुमार बाली तब बाली किष्किंधा के युवराज थे तो हे राजकुमार बाली क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो हरे भरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हो फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो अमृत समान सरोवरों को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर उन्हें नष्ट कर रहे हो इससे तुम्हें क्या मिलेगा तुम्हारे ओरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम्हें समाहित हो जाएगी इसलिए हे कपि राजकुमार अपने बल के घमंड को शांत कर और नाम नाम का जाप कर इससे तेरे मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे इतना सुनते ही बाली अपने बल के मद चूर हनुमान जी से बोला ए तुच्छ बानर तू हमें शिक्षा दे रहा है राजकुमार बाली को जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है जा तुच्छ वानर जा और तू ही भक्ति कर अपने राम की और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन और केवल तू ही जानता है राम के बारे में मैंने आज दिन तक किसी के मुंह से नहीं सुना ये नाम और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा हनुमान जी ने कहा प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी है उनकी महिमा अपरम अपार है ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले वो भवसागर को पार कर जाए बाली इतना ही महान है राम बाली कहता है कि इतना ही महान है राम तो बुला जरा मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे हनुमान जी ने कहा ए बल के मद में चूर बाली तो क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा बाली ने कहा, तब तो ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर के घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच हनुमान जी और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझे से एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सूत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए न जाओ। हनुमान जी का, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम जी के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दिया है जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारा विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान जी कायर है जो ललकारने पर युद्ध करने इसलिए नहीं जाता है क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ न लेकर जाए, केवल दसवां भाग का बल ही आप लेकर के जाइएगा, बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दीजिए, युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर लीजिए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकले। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था उसने और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और दो महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगा। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा। उसके शरीर फटकर खून उससे निकलने लगा। बाली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी बाली के समक्ष प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ लगा दिया। 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थककर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर का फटने के हद तक फूलना, फिर आपका वहां अचानक आना और ये कहना कि वहां से जितना दूर हो सके चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम्हारे अंदर समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति के सागर लहरें ले रही है। ऐसे लगा जैसे समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी का अभी फट पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल दसवां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने को कहा, पर तुम तो उनके दसवें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपना समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते, तब वो तुमसे युद्ध करने के लिए घर से निकले। इतना सुनकर बाली तो पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोच कर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां है तो वे इसका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल के दसवें भाग को नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वही हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करे प्रभु। और आत्मग्लानि से भर कर बाली ने राम जी का तप किया और आगे चलकर अपने मोक्ष का मार्ग भी उन्हीं से प्राप्त किया। इसीलिए कहते हैं कि अपनी विशेषताओं पर कभी भी अभिमान नहीं करना है, नहीं तो वो ही पतन का कारण बन जाती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से एक बहुत सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। तिल कौन सी बीमारियों को ठीक करता है जानेंगे आप। बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय है और तिल तो आसानी से हमारे घर में मिल ही जाएंगे क्योंकि रखते ही है, अनाज भरते हैं तब। तो देखिए, अगर वो कहते हैं कि भाई चोट लग गई, घाव हो गया, ठीक है, तो पानी में तिलों को पीस करके पुल्टिस बांध दिएगा, इससे अशुद्ध घाव साफ होकर के शीघ्र ही भर जाएगा। तो किसी भी कारण से घाव हो गया हो तो पानी में तिल को पीस करके उसके पुल्टिस बांध दिएगा, इससे अशुद्ध घाव भी साफ होकर के शीघ्र भर जाएंगे। गर्भाशय की पीड़ा है तो तिलों को बारीक पीस करके तिल के ही तेल में मिला करके किंचित गर्म करिएगा, फिर नाभि के भाग में धीरे धीरे लेप करिएगा। इससे जो गर्भाशय की पीड़ा होगी वो शांत हो जाएगी, शीतजन्य जो पीड़ा है वो शांत हो जाएगी। तो क्या करेंगे, तिलों को बारीक पीसिएगा और तिल के तेल में इसको किंचित मात्रा में गर्म करिएगा, किंचित बहुत मतलब नवसेका, और फिर नाभि के भाग में धीरे धीरे लेप करिए, हल्के हल्के हाथों से मलिए, इससे शीतजन्य पीड़ा शांत होगी। अगर शीघ्र प्रसव होता है तो इसके लिए 30 ग्राम की मात्रा में काले तिल कूट करके 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, सुबह उन्हें छान कर प्रसव वाली महिला को पिला दीजिए, बच्चा शीघ्र हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, आसानी से शीघ्र प्रसव हो सके इसके लिए 70 ग्राम की मात्रा में काले तिल कूट करके 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, सुबह उन्हें छान करके प्रसव वाली महिला को पिला दीजिए, बच्चा शीघ्र हो जाएगा। और भी सुनेंगे, अगर पेट दर्द है तो 20-25 ग्राम साफ तिल चबा करके ऊपर से गर्म पानी पीजिएगा, इससे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। क्या करेंगे, 20-25 ग्राम तिल एकदम भीने हुए, एकदम साफ होने चाहिए, इसको चबा करके आप खाइएगा, ऊपर से गर्म पानी पीजिएगा, इससे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। साथ ही देखो, तिलों को पीस करके लंबा सा गोला बनाकर उसे तवे पर सहन करने योग्य करके, मतलब सेक करके पेट के ऊपर फिराने से मतलब कितने भी कष्टदायी पेट दर्द हो शांत हो जाता है। क्या करेंगे, साथ ही साथ जैसे आपको चबा कर तो इस तरह खाना ही है, ठीक है, और फिर तिल को पीस करके लंबा सा गोला बनाकर उसे तवे पर आप सहने योग्य गरम करिए, फिर पेट के ऊपर फिराइएगा, इससे तो आप कैसे गोला करोगे, एक पोटली बांध दीजिए, है ना, फिर ऐसे फिराइएगा तो कितना भी कष्टदायी पेट दर्द है ठीक हो जाएगा। और लास्ट उपाय भी बहुत अच्छा है, अगर भगंदर की बीमारी है, भयंकर व्याधि भगंदर या वेदना युक्त वात जन्य घावों में तिल या फिर अलसी को भून करके दूध में बुझाकर उसी दूध में पीस करके लेप करिएगा, भगंदर रोग मिट जाएगा। भगंदर व्याधि मतलब भयंकर व्याधि वाला भगंदर या फिर वेदना युक्त वात जन्य घावों में तिलों को या तो तिल लीजिएगा, ये अलसी को भूनिए और उसको दूध में पहले तो पीस लीजिए, फिर दूध में मिला करके लेप करिएगा तो भगंदर रोग मिट जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताया है, आप आजमा सकते हैं और स्वयं को ठीक कर सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी कौन सी चीज है मेरे प्यारे श्रोता बंधु जो बांटने से बढ़ती है, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, यह आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और यही पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में भूराराम जी और से जुड़ चुके हैं। राम राम भूराराम जी।
2: हाँ जय राम जी के उषा बहन जी, राम जी बताइए कौन सा है।
1: हाँ जी, आज का प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, और आज का विषय है, एक हल्का सा हवा का झोंका जलते दीपक को बुझा सकता है पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है वही पूरा जीवन आनंदित रहता है और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। क्या कहेंगे आप?
2: इसका पहले का तो आपको जवाब देता हूँ, ज्ञान है, ज्ञान देने से बढ़ता है।
1: अच्छा, और विषय के बारे में क्या कहेंगे?
2: विषय के बारे में मेरे को ब्रोकर साहब ने सुनाई देता, मैं बाद में फोन लगा, ये बंद करके थोड़ा बाहर जाके फोन लगाता हूँ, ब्रोकर आवाज नहीं सुनाई दे रहा, तो एक मैं बोलता हूँ।
1: अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भूराराम जी ओर से, अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर बातें चल रही है, मतलब बातें तो अब चलेगी, प्रश्न पूछा है, विषय भी आपके समक्ष रख चुके, बहुत ही सुंदर विषय है आज का, एक हल्का सा हवा का झोंका जलते दीपक को बुझा सकता है पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है वही पूरा जीवन आनंदित रहता है और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। क्या कहेंगे आप? बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे जीवन से ही है ये। तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना बांटो उतनी बढ़ती है। तो दोनों में जुड़ने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। हेलो, मेरी आवाज ही लौट के आ रही है। हेलो
3: जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
3: बस हम तो बहुत अच्छे दीदी, आप कैसे हो?
1: हम भी अच्छे हैं।
3: तो बस सब अच्छे, तो हम भी अच्छे, हमारे सभी मित्र भी अच्छे, अभी अभी हमारे भूराराम जी भी खा के गए, अच्छे
1: जी
3: बातें बताते गए
1: जी,
3: और बहुत अच्छा विषय भी दीदी है कि जलता दिया तो दीदी बुझ पाता है, लेकिन अगरबत्ती कभी बुझती नहीं है, चाहे कितने ही हवाई और तूफान आए, चाहे कितने ही
1: जी
3: बंद कर दे चक्री। तो बस मैं तो दीदी एक ही बात करूंगा कि जो लोग अच्छे होते हैं वो अच्छे ही रहेंगे
1: जी,
3: क्योंकि कहते हैं कोई भी कोई इंसान होता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई किसी भी परिस्थिति में भी खुश रहता है, लोगों की सेवा करता है, लोगों को काम में आता है और खुद खुश रहता है, तो ऐसे कोई कोई चाहे कुछ भी बोले, चाहे कुछ बोले, कोई कितने ही दाने दाने मारे, लेकिन उसको कोई असर नहीं होगा दीदी, क्योंकि अच्छे इंसान तो अच्छे ही रहते हैं
1: जी,
3: लेकिन जो बुरा करने वाला दीदी वो तो बुरा करेंगे, चाहे जलते ही रहेंगे, कितने भी जलते रहेंगे तो सामने वाले को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है
1: जी जी।
3: तो ऐसे कई लोग होते ही दीदी कि जो कोई अच्छा काम करते है तो सामने वाले जलते है, और कई सारे ऐसे ताना दाना भी बोलते है सामने
1: जी,
3: लेकिन हमने तय किया है कि चलो हम अच्छा ही करेंगे, तो हमको क्या डर है कि चाहे कितनी बोले, बोलने तो इसे
1: बिल्कुल।
3: तो बस हम तो दीदी ऐसा ही कहेंगे, अच्छे लोग अच्छे ही रहेंगे और बुरे तो बोलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है अच्छे वाले को
1: जी
3: जी। नमस्ते,
1: चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई छोटाना से, अब देखते हैं कौन छुटते हैं और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, तो आज के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है यह, हमारे जीवन से ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जैसे सुरेश भाई ने कहा कि जलने वाले जलते रहते और खुश रहने वाले खुश रहते हैं, बिल्कुल सही है। मुझे मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा एक बहन को कि वो हर एक की मदद करती है, ठीक है, वो अपने ससुराल में रहती, ससुराल वाले उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, फिर भी वो सभी की मदद करती, अलग हो गए लेकिन मदद करने के लिए दौड़ी जाती है, मदद करने के बाद वो लोग वापस भूल जाते हैं, जब मदद की आवश्यकता होती बुलाते हैं कि आओ भाई ये जरूरत है, ये हो गया, वो हो गया। चलिए पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो,
4: गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हैं आप? ओम शांति।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओम शांति, हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? आपका शुभ नाम बताएंगे?
4: वंदना, दिल्ली से।
1: ओहो वंदना जी, कैसे हो?
4: जी एकदम अच्छी हूँ मैं।
1: जी जी जी,
4: दीदी एक तो ये जो आज आपने पोलिटिक्स वर्ड यूज किया ना, कभी हमने बचपन में यूज करते थे पोलिटिक्स ना, जो आपने बताया बहुत पुरानी याद आ गई मुझे।
1: अच्छा,
4: तिल की पोलिटिक्स, अब तो लोग जानते भी नहीं है इस बारे में ना, पोलिटिक्स के बारे में।
1: जी जी जी
4: हाँ, तो और बहुत इफेक्टिव होती है क्योंकि हम लोगों ने यूज किया है बचपन में इसको।
1: क्या बात
4: है। और दूसरे आपने सवाल पूछा था वो दान, तो गुणों का दान होता है, विद्या का दान होता है, गुणदान करने से हमेशा बढ़ती है।
1: अच्छा ठीक है, बाकी कैसे हैं आप?
4: एकदम अच्छी हूँ दीदी।
1: अच्छा, और परिवार में सब अच्छे
4: दीदी अभी?
1: हाँ जी हम ठीक है। हाँ जी, और आज के विषय के बारे में भी आप जुड़े हैं तो जरूर अपनी राय व्यक्त करिएगा
4: दीदी। क्या था बता दीजिए, अभी बताया।
1: हाँ जी हाँ जी, विषय को हम फिर से दोहरा रहे हैं। एक हल्का सा हवा का झोंका जलते दीपक को बुझा सकता है, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है वही पूरा जीवन आनंदित रहता, और जो जलता है वे खुद ही बुझ जाता है।
4: जी हाँ, तो इस बारे में तो दीदी यही बोलेंगे कि जो महकता है, एक्चुअली महक बनाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अंदर खुशबू पैदा करने के लिए।
1: जी,
4: जो बुराइयां हैं, जो खराब चीजें हैं, उनको हमें निकालना पड़ता है महक।
1: बिल्कुल,
4: और जलने का जैसे बताया वो तो ऑब्वियसली है, जो जलेगा खुद को जलाएगा, दूसरे वाला उसके जलन से जले ना जले वो डिपेंड करता है दूसरे की शक्ति के ऊपर। लेकिन जहाँ तक अगरबत्ती की बात है, वो हमें गुण अपने अंदर वो खुशबू पैदा करनी होती है, और उसमें डेफिनेटली मेहनत लगती है, तभी हम किसी को खुशबू दे सकते हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल,
4: थैंक यू सो मच
1: जी, ओम शांति, बहुत बहुत आभार वंदना जी आपका,
4: थैंक यू।
1: हाँ जी, ओम शांति। तो ये थे वंदना जी दिल्ली से, इनको आप सभी जानते हैं, रेडियो में आते रहते हैं कभी कभी। तो बहुत ही सुंदर आपने भी स्पष्ट किया है विषय को, अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, तो आज का विषय भी बहुत अच्छा है। हेलो
5: हेलो, ओम शांति।
1: हाँ जी ओम शांति, नमस्कार सुभाष भाई। हाँ जी, कैसे हो
5: दीदी?
1: हाँ जी, आपकी भी आवाज पहुंच रही है।
5: ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी,
5: और प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, और सवाल का जवाब तो मेरा रॉन्ग हो सकता है, मैसेज भेजा अपन बुरा राम जी ने जो जवाब दिया है वो राइट है, राइट है। और आज का विषय के बारे में बताना चाहता हूँ, तो देखो दीदी, जो अपनी विशेषताओं से, अच्छा कर्म से दूसरों को सुगंधित और

0: जो कभी भूल नहीं सकता है, पर जिसको अभिमान है, गर्व है और खुद को बड़ा समझ रहा है
1: जी,
0: लेकिन उसका गर्व उजाला छोटे से हवा से या छोटे से बादल तूफान से बुझ सकता है। और आपको रेडियो मधुबन परिवार और सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया
1: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, और आइए अब इस विषय को और भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे गीत। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अभय सिंह जी जुड़ चुके हैं जयपुर से। नमस्ते अभय सिंह जी।
2: जी नमस्ते मैडम जी, मधुबन में सभी श्रोताओं को राम राम।
1: जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आज का विषय बहुत ही सुंदर है। एक हल्का
2: जी,
1: सा
2: जी, मैडम बहुत,
1: हाँ जी
2: बहुत ही सुंदर विषय आपने ये उपमा अलंकार का आपने प्रयोग किया है, तो उजना है वो ईर्ष्या को लेकर के है मैडम जी। जो आदमी घमंड ईर्ष्या देश प्राउड जिनको होता है वो दीपक के माफक होते हैं मैडम जी। वो क्या है, झोंका आएगा इन सभी चीज से जो ग्रसित है वो ये झोंका है, और इसमें वो भूत जाता है
1: जी।
2: अगरबत्ती है वो प्रेम का धीरे धीरे सौहार्दपूर्ण वातावरण बढ़िया, तो वो क्या है ये जो झटके हैं ईर्ष्या प्रेम देव देश वाले प्राउड वाले इनको सबको सहन कर लेता है, और वो धीरे धीरे चलता रहता है। जो आदमी अच्छा काम करता है, अच्छाई करता है, ये अच्छाई से जुड़ा हुआ है, तो अच्छा धीरे धीरे सबको अपनी ओर प्रभावित करता हुआ चला जाता है
1: जी।
2: और दूसरे का उसमें जनहित की भावना होती है, इस वजह से वो दूसरे को अपने प्रति आकर्षित कर लेता है, और वो सभी जो बुराइयों के झोंके हैं उनको सहन करता हुआ चलता रहता है, वो बुझता नहीं है मैडम
1: जी।
2: तो आपने उपमा के माध्यम से सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है मैडम जी। आदमी को अच्छा विनम्र बनने से सब कुछ काम सुलभ हो जाते हैं, उसको कभी आंख नहीं आती है, उसको कभी परेशानी नहीं आती है, जीवन उसका खुशहाली सुख में हो जाता है
1: जी।
2: और जो ज्यादा बड़े हैं, जो बिल्कुल भगवान के प्रति दूसरे के दुख दर्द को अपने दुख दर्द से भी ज्यादा महत्व देते हैं, वो जब ज्यादा कुछ ऐसी विपत्ति आ जाए जिसमें कि उसको नष्ट होने का खतरा हो, तो वो खुद उस जीवन से समा जाते हैं। संत महात्मा जो उस दुख दर्द को नहीं सहन सकते, वो जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो वो फिर दुनिया में जिंदे नहीं रहते मैडम जी, वो समा जाते हैं खुद ही, उनके हाथ में खुद, जैसे भीष्म पितामह जी थे इच्छा मृत्यु वो उनके हाथ में होती है मैडम।
1: चलिए ठीक
2: है, उनके जीवन में कष्ट आता नहीं है, लेकिन बाय द वे आ जाए मैडम जी तो वो उस इच्छा मृत्यु को ले लेंगे, मगर दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे मैडम
1: जी। बिल्कुल
2: जी,
1: बहुत बहुत आभार आपका अभय सिंह जी।
2: जी मैडम, राधे राधे जी।
1: राधे राधे। तो ये थे अभय सिंह जी जयपुर से, और बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो दूसरों का हित चाहते हैं वो खुद जलेंगे लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे, और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो क्या करता है, वो तो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाने की कोशिश करता है। वो बात अलग है कि सामने वाला जलता है नहीं जलता अपने नेचर पर डिपेंड करता है। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो
3: हेलो, हाँ
1: जी कंचन भाई नमस्ते, कैसे हैं आप?

0: Even सुगंधित बनाना है।
1: कैसे बनाएंगे?
0: हाँ तो प्रभु गण से मारो अभिकेत सुदुराचारो। एक जीवन है बैनी सुगंधित बनाना है, अच्छे विचार लाने हैं
1: जी,
0: करना है प्रभु को याद करना है, घर परिवार को अच्छा सा संस्कार देना है। क्या है कि दीपक की तरह है, एक हवा का झोंका है और बुझ जाए, ऐसा मैं ये नहीं रखता
1: जी।
0: सुगंधित अगरबत्ती जो चलती है लेकिन हवा का झोंका आता है लेकिन बुझ नहीं जाती, सुगंधित फैलाती है, सुगंध फैलाती है, ऐसा जीवन हमें बनाना है
1: जी।
0: तो इसके लिए तो क्या करेंगे, सबको पता है कि भाई अच्छे विचार जीवन में लाना चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए, अच्छी बातें सुनना चाहिए, तो सुगंधित जीवन बनेगा। और कोई अपने जीवन की कोई ये लेंगे कि भाई देखो ये जीवन जी गया लेकिन कैसा जीवन जिया,
1: जी
0: याद करते हैं
1: जी,
0: कैसन तो महापुरुषों को जो याद कर रहे हैं, तो ये ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए
1: जी।
0: सभी दोस्तों का नमस्कार और सवाल का जवाब तो मैं थोड़ी देर बाद।
1: ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आपका
0: जी।
1: तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी सुंदर बात कही है। देखिए विषय बहुत ही सुंदर है, मैं आपको उदाहरण दे रही थी कि एक बहन है, वो कहते हैं ना कि जब दुर्जन व्यक्ति दुर्जनता नहीं छोड़ता है तो सज्जन व्यक्ति को भी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। तो बहन भले परिवार वाले पीछे कुछ भी कहे, वो उनकी सबकी मदद करती थी। अड़ोस पड़ोस सब कहते अरे क्या करती हो, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें चाहते नहीं, जब तुमको जरूरत पड़ती है तब वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, तुम क्यों हेल्प करते हो? बोले वो उनके संस्कार है, मेरे संस्कार हेल्प करने के हैं, मैं अपने संस्कार को नहीं छोड़ सकती। कितनी बार उस बहन के करीबी रिश्तेदारों ने भी कहा कि क्यों आप उनके पीछे आप पिटती रहती हो, घिसाती रहती हो, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। उसने बात की मेरे से तो बोल रहे कि बहन जी कैसे छोड़ दूं अपने संस्कारों को, मेरे संस्कार में नहीं है किसी को मना करना, तो मैं कैसे मना कर दूं? बस आधी रात को फोन आता है, पहुंच जाती हूँ हेल्प करने के लिए, चाहे वो करे ना करे कोई बात नहीं, ईश्वर देखता है। मतलब कितनी सुंदर बात कही उन्होंने, तो बिल्कुल सही है। जैसे आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि एक ऋषि जो नदी में नहा रहे थे, एक बिच्छू डंक मार रहा था, तो ऋषि उस बिच्छू को बार बार हटा रहे थे, बार बार बिच्छू आकर के डंक मार रहा था। तो किसी ने कहा कि अरे महात्मा जी आप बार बार इसका डंक सह रहे हैं और फिर भी इसको मार नहीं रहे, मार के ख़त्म कर दो ना। ऋषि ने कहा कि नहीं, जब उसके संस्कार है डंक मारने के, वो अपने संस्कारों को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं कैसे छोड़ दूं अपने संस्कारों को? मुझे तो एक किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, तो नहीं करनी है। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि देखिए, दिया एक हवा का झोंका आया नहीं और बुझ जाता है, लेकिन अगरबत्ती देखो जलती रहती है और महकती रहती है। तो हम किसी और के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जीते हैं, तो वो खुशबू हमें खुद कहने की जरूरत नहीं, वो खुशबू अपने आप चारों ओर फैलेगी और लोग खुद कहेंगे कि अरे भाई फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो आधी रात को भी मदद के लिए तैयार रहता है, उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, उनसे हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, जो भी जिस सिचुएशन की बातें होती है कहते हैं कि उनसे हम कर सकते हैं, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। और जो व्यक्ति बार बार गुस्से में चिढ़ता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसका भी पता चल जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है फलाना ऐसा टिकड़ा ऐसा नहीं, उसके व्यवहार से उसके स्वभाव से पता चल जाता है कि हाँ ये जलेसी रखता है, तो लोग 10 हाथ दूर रहना पसंद करेंगे। ठीक है भाई, सामने आमने सामने टकरा गए वो बात अलग है, हाय हेलो करके राम राम करके निकल गए, बाकी दूर रहना पसंद करेंगे कि भाई नहीं, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति से हमें तो संबंध रखना ही नहीं। और ईश्वर से प्रार्थना करके निकला फलाना बंदा हमें मिले ही नहीं, ऐसे प्रार्थना करके निकलते लोग घर से।

है ना, तो क्या फ़ायदा हुआ। और जैसे कि हमारे श्रोता बंधु बता रहे थे कि खुशबू ऐसे ही नहीं फैलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, अपमान सहना पड़ता है, निंदा सहनी पड़ती है, और बहुत कुछ सहना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के उस व्यक्ति के कहीं पर जाकर के तारीफ होती है। बाकी कौन आजकल किसकी तारीफ करता है। बिना कहते ना, बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता, बिना त्याग के कोई तारीफ नहीं करता। आप घर में भी देख लो, अगर बहू 9 बजे उठेगी तो कोई तारीफ करेगा कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। वही 6 बजे उठ करके अगर काम में लग जाती तो कहेंगे भाई हाँ बहू बहुत अच्छी है। स्वाभाविक है, गुणों से ही पहचान होती है, अवगुणों से नहीं होती है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो दूसरों को जलाने की कोशिश में पहले खुद जलता है, क्योंकि ईर्ष्या कर रहा है लेकिन पहले तो वो जल रहा है ना कि खुद का स्वभाव को बिगाड़ रहा है, कुढ़ रहा है और अंदर ही अंदर घुट रहा है। उसके बाद होठों पर लब जा रहे हैं, फिर सामने वाले को बोल रहे हैं। जरूरी नहीं कि सामने वाला जले, और ठीक है चलो सामने वाले को परेशान करने की कोशिश में हम जेलस ही रखते हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं ना। क्या फ़ायदा मिला, कुछ भी नहीं। अरे भाई सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा भाई, तू तेरे और मैं मेरे, किनारा कर लेगा आपसे, रिश्ता कट कर देगा, और क्या, उससे ज़्यादा आप क्या कर पाओगे। इसलिए अपने स्वभावों को अच्छा रखो और अगरबत्ती की तरह महकते रहो। अरे मैं तो कहूँ आप किसी के लिए कुछ मत करिए, अच्छा नहीं कर सकते बुरा भी मत करिए, किसी के लिए बुरा संकल्प भी मत चलाइए, किसी के भी प्रति जेलेसी मत रखिए, सबका भला हो सब सुख पाए, यही अगर हम शुभ भावना रखते हैं तो बस न तो जेलेसी रहेगी किसी से, न ईर्ष्या में हम जलेंगे, न ही लोगों को जलाने की कोशिश करेंगे, अगरबत्ती की तरह खुशबू फैलाते रहेंगे। ठीक है, तो यही आज के विषय का सार है। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बांटने से वह बढ़ती है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज आपको सिखाएंगे अरवी के कोफ्ते, ठीक है? बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और सभी बहुत पसंद करेंगे। तो सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ। आप ले लीजिए अरवी, फिर ले लीजिए थोड़ा सा आलू। जैसे आप एक किलो अरवी लेते हैं तो पाव भर आलू लीजिए, पाव भर अरवी ले रहे हैं तो एक आलू लीजिए, ठीक है? और फिर आप हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, टमाटर, राई, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काजू आप लीजिएगा, नारियल, फिर आप लीजिएगा मूंगफली के दाने, मीठा नीम और हींग। तेल तो लेना ही है और बेसन, फिर लीजिएगा थोड़ा दही, टमाटर लेना है। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री। अरवी, आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च, राई, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, बेसन, फिर आप लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, हींग, काजू और फिर लेना है आपको सिंग दाने और नारियल कद्दूकस किया हुआ, तेल लेना है, ठीक है? तो ये हो गई सामग्री। बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, आप अरवी की धुलाई करिएगा अच्छी तरह, क्योंकि मिट्टी बहुत होती है इसमें। धुलाई करने के बाद इसको बॉईल करिएगा। आलू भी साथ ही साथ बॉईल कर लीजिए धुलाई करके अरवी के साथ ही, ठीक है? और फिर निकाल दीजिए। निकालने के बाद जब ये ठंडे हो जाए, बॉईल होने के बाद जब लगे कि बॉईल हो गया, तो फिर गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडे हो जाए तो इनके छिलके हटा दीजिए। छिलके हटा करके भले तो आप इनको कद्दूकस कर लीजिए, ताकि ये बुर बुर बिखर जाएंगे। भले आप मैश करिएगा हाथ से, अब जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप करिएगा, ठीक है? तो मैश कर दिया। अब आलू और ये दोनों मिक्स कर देना है आपको। इसी में आप अदरक हरी मिर्च की धुलाई करके पेस्ट करके इसमें डाल दीजिएगा। आलू अरवी जो हमने मैश करके रख रखी है, इसी में ही मसाला डालना है। आप अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट करके अच्छी तरह डालिएगा इसमें। फिर स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा, धनिया पाउडर डालना है और थोड़ा सा बेसन डालिएगा, हरा धनिया भी डाल दीजिए और सभी को अच्छी तरह मिक्स करिए, ठीक है? सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसको ऐसे गोल गोल सेव करिएगा, अंडाकार कोफ्ता की तरह, ठीक है? सारे बना के रख दीजिएगा। फिर धीमी आंच पर तेल में इनको तल के रख लीजिए। धीमी आंच में तलना है, धीमी मध्यम करते जाना है, तलते जाना है, ठीक है? इन सबको हल्के हल्के ऊपर से सब तरफ से ब्राउन हो जाए तब तक आपको तलना है। फिर तल करके निकाल दीजिए। अब जो काजू लिए है, सिंग दाने लिए है, इन सबको आप पीस लीजिए। कालू मिक्सर में काजू को पीस लीजिए, फिर सिंग दाने को पीस लीजिएगा और नारियल अगर कद्दूकस नहीं किया हुआ है तो उसको कद्दूकस कर लीजिएगा। टमाटर मिक्सर में इसके भी पेस्ट बना लीजिएगा। फिर से आपको अदरक हरा धनिया की ये पेस्ट अलग बनानी है, हरा धनिया नहीं, अदरक और हरी मिर्च की, ठीक है? ये सब पेस्ट तैयार करिएगा। अब आप रखिएगा कढ़ाई के इस पर, आप तेल डालिएगा। तेल गर्म हो जाए, जैसे हमने कोफ्ता तला है वही कढ़ाई ले लीजिए। ज़्यादा तेल है तो निकाल दीजिए, आवश्यकता के अनुसार रखिएगा कढ़ाई में। जब ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरे का तड़का लगाइए। राई जीरा तड़क जाए तो फिर आप इसमें ये आप सिंग दाने जो पीस रखे हैं वो डालिएगा, आप काजू जो पीस रखे हैं वो डालिएगा, फिर आप नारियल का भी कद्दूकस किया हुआ छीन आप डाल दीजिएगा और हल्का सा इसको आप फिर फ्राई करिएगा, ठीक है? हींग भी थोड़ी डाल देनी है पहले ही तड़के में। और जब ये मसाला हल्का सा फ्राई हो जाए, फिर आप टमाटर की
पेस्ट भी डाल दीजिएगा, साथ ही साथ आप नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ये भी डाल दीजिएगा। और अब इसको अच्छी तरह होने दीजिए पेस्ट को। जब ये पेस्ट आपको लगे कि हाँ ये ग्रेवी अच्छी हो गई है और तेल ग्रेवी से ऊपर आ गया है, क्योंकि जब हम ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी पकाते हैं ना, तो तेल और ग्रेवी अलग हो जाता है, तब जा कर के सही मायने में वो ग्रेवी हमारी तैयार होती है। ठीक है, ये ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें आप थोड़ा सा दही डालिए और दही डाल करके तुरंत हिला दीजिए, दही फटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो दही डालिएगा आप जितना चाहे उतना। फिर दही डालने के बाद एक आध और उबाला ले लीजिए, उसके बाद आप पानी डाल दीजिए आवश्यकता के अनुसार। और पानी का जब ये अच्छा उबाला आ जाए तो बस ये कोफ्ते बना रखे वो डाल दीजिए और गैस बंद कर दीजिए। तो ये बन गए अरविक के कोफ्ते। बहुत स्वादिष्ट ये सब्जी है, बड़े बुजुर्ग, युवा, बच्चे सब पसंद करेंगे इस सब्जी को। ठीक है, ऊपर से हरा धनिया डाल देना है, इसके साथ आप चपाती खा सकते हैं, गेहूँ की, आप दूसरी भी बाजरी की रोटी जो भी पसंद करते हैं खा सकते हैं, लेकिन ये शाही सब्जी है तो आप पूरी, परोठा या चपाती के साथ खा सकते हैं, चपाती सबसे बेस्ट रहेगी, फिर भी वो आपके ऊपर छोड़ा। ठीक है, तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन चुकी है और आप अपने इष्ट देव को भोग लगा करके स्वीकार करिएगा। ठीक है, और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना बांटो उतनी बढ़ती है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक

0: लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए। अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और उसके भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। तिल खाने के क्या फायदे है, कौन सी बीमारी ठीक करते हैं, आप सभी ने जाना है। फिर खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई और रेसिपी में जो अरबी के कोफ्ते बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। तो आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है। अलका जी काबरा कपासन से, सुरेश भाई जोटाना से, अभय सिंह जी जयपुर से, दीपा सोमानी कपासन से, भुराराम जी ओर से, वंदना जी दिल्ली से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, संगीता जी कपासन से, कंचन भाई मंडाली से। आप सभी का सही जवाब है, आप सभी ने कहा है शिक्षा, ज्ञान, खुशी, प्रेम। बिल्कुल आप सभी का सही जवाब। और आप सभी विषय में भी जुड़े इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह है परमात्मा दरवाजा। सब उम्मीद परमात्मा से रखिए, दुनिया से नहीं। अब मैं आपको गणपति पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सी पहेली के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

लौंग सुपारी देवा पान का बिड़ला मोदक भोग लगा देना। उषा प्रभु तेरा जस गावे।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाई सा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे है, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
6: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
7: शांति, सब ठीक कह रहे हैं, चलो हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
8: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
9: क्या?
10: क्या?
9: क्या?
10: क्या?
8: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
2: हाँ जमाई सा तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
3: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
6: मैं तो बहुत खुश हूँ।
3: बढ़िया,
2: बहुत अच्छी बात है,
11: सब लोग मिलकर रहेंगे।
12: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
1: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर है।
13: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
4: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
12: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
3: जमाई सा परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपके ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
5: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
4: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
14: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
5: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है खुशी न दामाद की।
3: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
2: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
12: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
3: अरे माँ, खतरा है ना?
13: क्या?
3: राजकुमारी के हाथ का खाना।
7: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
14: क्या करेले के लड्डू
6: या मिर्ची का हलवा?
2: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊँ, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
10: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
4: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
11: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
2: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
11: हाँ हाँ वही।
12: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
4: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या, अंधेरों में साथ निभाता है दिन में भला क्या खूबी है, मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या।
2: वाह वाह वाह वाह वाह।
3: किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
10: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
11: चंद्रावती तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
10: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
11: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
3: भाई साहब जाने दीजिए ना।
7: भाभी जी मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
11: जमाई साहब आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो, एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
3: भाई साहब बस कीजिए, जमाई साहब के सामने ये सब शोभता नहीं।
10: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है और ये कहते हैं।
2: भाभी जी, भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी है दिल नहीं।
14: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
4: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
10: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
12: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
8: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
7: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
8: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है, रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
3: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार, कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है लेकिन दिल में नहीं।
12: चलिए जमाई साहब अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
2: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाई साहब के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था, वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाई साहब रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
15: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाई साहब का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए, उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां? वो प्यार कहां खो जाता है? खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई सा को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना? बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

मिलते हैं तब जब उसकी रहमत हो, उससे मिलने की तरकीब कहूं गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, नहीं अब हक मुझको।

0: नमस्कार, मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम के तहत आज आंगनबाड़ी केंद्र जो उमरिंद वार्ड नंबर फर्स्ट और सेकंड में पहुंचे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्र उमरिंद फर्स्ट जो कि बाल विकास परियोजना अवरोड सिरोही के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है और हमें बहुत खुशी और नाज है, क्योंकि हमारा बच्चे जब कुपोषित नहीं रहेंगे, सब सुपोषित रहेंगे तो हमें और हमारा अंचल में हरा भरा होगा और हमारा बच्चे स्वास्थ्यवान बनेंगे, तब उनका बुद्धि तेज होगा, बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास का साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कार्यक्रम महक उठेगा। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए खासकर बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम चेहरा को लेकर किशोरिया आए हैं। सभी किशोरियों को स्वागत करते, सबके लिए ताली बजाओ। तो सभी किशोरियों को पुनः स्वागत करते, उनका नाम लेंगे और खासकर पोषाहार को लेकर जब आए हैं, क्या क्या पोषण घर में पोषाहार लेते हैं, क्या क्या भोजन करते हैं और कौन सा सब्जी उनको बहुत पसंद है, सुनेंगे सबका तोतली तोतली आवाज नहीं। तो शुरू करेंगे, सामने है, क्या नाम है?
1: कविता।
0: कविता कविता के सुनाएंगे, कविता का कविता सुनाएंगे अभी।
2: पोयम
0: सुना, कोई भी पोयम सुना, दो लाइन सब साथ देंगे।
3: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी।
0: घर में क्या क्या भोजन करते हैं, खासकर कौन सा सब्जी आपको आता?
1: आलू।
0: हरी सब्जी आलू। हरी सब्जी का नाम बता?
1: पालक।
0: अच्छा लगता है, क्यों? पालक में क्या है? आलू सब्जी अच्छा लगती है, बस सब आलू है। तुम नाम बताओ।
1: फूली।
0: फूलगोभी अच्छा लगती है। फूलगोभी कहाँ से लाती है आप? बाजार से है ना, अपना बगान बाजार से। कौन लेकर आते, क्या बताएंगे आज? तुम्हारा नाम बताओ।
1: संतोष।
0: हाँ संतोष, कौन सा गाँव? से कौन सा गांव से आप आती हैं? आपका गांव का नाम बताओ। अच्छा, आंगनबाड़ी आते हैं आप? आंगनबाड़ी में आते हैं कभी कभी हैं? और स्कूल में जाते हैं? कौन सा स्कूल का नाम बताओ?
1: गवर्नमेंट
0: स्कूल। घर में और कौन कौन है?
1: गंगा, काली,
0: स्कूल में जाती तो स्कूल में क्या क्या पोषाहार मिलता है दोपहर में? जो मिड डे मील मिलता है ना, तो क्या क्या मिलता है बताओ? चावल खाना पीना मिलता है?
1: चावल,
0: टमाटर, सब्जी मिलता है ना, टमाटर का सब्जी। टमाटर आलू सब्जी खाने से हमको क्या मिलेगा? ताकत। क्या मिलेगा? ताकत। और कौन बताएगा? हरी सब्जी खाने से हमको क्या क्या फायदा? चलो कोई गीत बताओ, मिलकर गाएंगे, इसका साथ कौन देगा?
3: अरे बदल कारे बदल लाओ जरा झूम के अपने।

0: नाम बता दोनों, क्या क्या नाम, नाम बता,
1: अपना अपना नाम बोलो, कितने में पढ़ते हो?
0: नाम बता।
2: कविता।
0: कविता और नेक्स्ट?
2: केलम।
0: केलम, सब क में, केलम और कविता दोनों अच्छा बच्चे है दोनों। और बड़े होकर क्या बनेंगे? कविता तुम बड़े होकर क्या बनेगी
1: बोलो बेटा? बड़े तू का करना चाहे, डॉक्टर बनी के मैडम बनी के का बनी बोलो बेटा?
0: मैडम।
1: मैडम,
0: मैडम का काम क्या होता है?
2: बच्चों को पढ़ाना।
0: बच्चों को पढ़ाते हैं। और केलम को दो, क्या बनेगी वो?
1: मुंगा बनी बेटा।
0: वो भी मैडम है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ना, आशा सहयोगिनी ना, सरपंच
1: मैडम।
0: मैडम का कोई कम भाई, उमरिन गांव में बहुत मैडम है।
1: हाँ।
0: चले कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए दो छोटे छोटे मासूम बच्चे आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। अच्छा तुम्हारा नाम बता पहले।
2: बसंती।
0: हाँ बसंती, वाह।
2: सोनिया।
0: हाँ ये दोनों आवाज अभी बुलंद है, आगे पूरा चार चांद लगा देंगे अभी, है ना? हाँ बसंती और
1: सोनिया।
0: सोनिया सुनाओ एक प्रस्तुति। हाँ सुनाओ, क्या सुनाएंगे?

0: ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन कम बोले, लेकिन बहुत सुंदर से बोले, प्रस्तुति कोई झिझक नहीं, बुलंद आवाज से। ऐसे और कुछ है?
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
0: नमस्कार। अल्प विराम के बाद हम मिल रहे हैं अच्छा जानकारी का साथ, क्योंकि पोषण माह के अंतर्गत हम आज आंगनबाड़ी केंद्र उमरंज में पहुंचे, और खास कर यहाँ पे जो गतिविधि हो रही है और आज का जो कार्यक्रम, खासकर क्या क्या गतिविधि है, वो चीज़ रखने के लिए हमारा साथ आंगनबाड़ी के आशा सहयोगिनी उपस्थित है, तो उनको स्वागत करते हैं और उनका परिचय लेंगे। मैडम, आप अपना परिचय दीजिए।
2: मैं वार्ड नंबर 2 मानपुर सेकेंड से हूँ। मेरा नाम कौशल्या है और मैं वार्ड नंबर 2 की आशा सहयोगिनी हूँ।
0: आप आज यहाँ पर आए हैं, आप क्योंकि आंगनबाड़ी जो केंद्र है, खासकर उमरेनी में आज आप फर्स्ट आए हैं, तो किस उद्देश्य से लेकर आए और आज का गतिविधि क्या है, वो बात बताइए।
2: हम किशोरी बालिकाओं के बारे में समझाएंगे, आज उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके पोषण के बारे में, उनकी साफ सफाई के बारे में, वो सब हम इनको बताएंगे। तो मेन तो है किशोरियों की आयरन की गोलियां।
0: किशोरी किसको कहते, कितना उम्र होना
2: चाहिए? 18 साल की बच्चे को,
0: 10 से 18 साल बच्चे को किशोरिया कहते हैं। तो उनको आंगनबाड़ी से क्या क्या फायदा दिलाते हैं?
2: उनको ये पैड वगैरह, सैनिटरी नैपकिन, आयरन की गोलियां, फोलिक एसिड, पोषण, और जो भी ये जो पोषण के बारे में, मतलब सब्जियां है वगैरह है जो खाना चाहिए, उनके बारे में इनको समझाते हैं।
0: इसे कितना किशोरियाँ आपके पास आते हैं, आपका आंगनबाड़ी में?
2: हमारे जैसे वार्ड में तो 12 है किशोरियाँ।
0: क्या क्या नाम, एक दो का नाम बताओ।
2: जैसे एक एकमी है, और पचकी है, और एक समू है, और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। एकदम
0: तो वो लोग स्कूल में जाते हैं कि नहीं, जो किशोरियाँ?
2: नहीं, जो स्कूल नहीं जाते उनका हम पंजीकृत करते हैं हमारे आंगनबाड़ी में।
0: अच्छा अच्छा, तो उनका जो डिमांड है, क्या उद्देश्य उनका आने का, आंगनबाड़ी से जुड़ने का क्या उद्देश्य उनका?
2: उनका मतलब जैसे कि ये, मतलब ये जो स्कूल नहीं जाती है उनको इन सब चीज़ों के बारे में कोई पता नहीं रहता है, मतलब, और फिर वो साफ सफाई नहीं रख पाती, तो हम उनको मतलब समझाते घर घर जाके कि भाई ये चीज़ पेड़ वगैरह है, ये यूज करने से मतलब तुम्हारे मतलब संक्रमण नहीं फैलेगा, मतलब साफ सफाई रखोगे तो कीटाणु वगैरह नहीं होंगे, और इससे तुम्हारे स्वास्थ्य में मतलब कोई बीमारी नहीं पनपेगी। तो हम इनको पैड दे दे। फिर रही आयरन की गोलियाँ, फोलिक एसिड, तो हफ्ते में एक गोली देते किशोरी को, तो मतलब उसको इसको खाने से मतलब खून की कमी नहीं होगी, और इससे भूख भी लगेगी और इनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा।
0: उसके लिए जांच करने के लिए कुछ मशीन वगैरह लेकर जाते हैं ना, कैसे उनका खून जांच करते?
2: जैसे कि इनके खून जांच लेके वो स्लाइड
0: लेकर जाते हैं।
2: हाँ।
0: उसे पता चलता है।
2: हाँ।
0: ऐसे उनका घर से कोई ऑब्जेक्शन होता है कभी, किशोरियों के बारे में पूछताछ करना?
2: हाँ, ऐसे होता है, दिक्कतें आती है हमको। अभी जैसे उनको बुलाते हैं तो उनके माँ बाप जैसे घर से नहीं भेजते उनको, मगर फिर भी हम उनको समझा के और उनको मतलब लेके आते हैं यहाँ तक। यूँ तो अभी थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है।
0: जी जी, क्या सुधार किया आप?
2: जैसे पहले ये किशोरी बालिकाएं थी, तो इनको मतलब ये कपड़ा वगैरह यूज करती थी, अब ये पैड वगैरह यूज करने लगी है। बाकी इनके जब थोड़ा खून में कमी थी तो हम आयरन की गोलियां देने लगे, तब से इनके थोड़ा फर्क आया पोषण में।
0: आप और उनका मम्मी में क्या अंतर है?
2: उनकी मम्मी कम पढ़े लिखे होते हैं, हम थोड़ा वार्ड के सेंटर की तरफ से आशा सेवनी है, तो वार्ड में जो भी सर्वे होता है उसके हिसाब से हम जो भी हो उनको समझाते।
0: जो चीज आप करते हैं, बात कहते हैं, वो चीज उनका मम्मी पापा तो कर सकते हैं, लेकिन वो
2: थोड़ा
0: कर नहीं पाते।
2: कर लेते हैं,
0: जैसे आपको
2: 10 में से एक ही कोई होएगा जो थोड़ा कम समझदार है।
0: और बच्चियाँ अपना मम्मी पापा को खोलकर बता सकते हैं जो चीज आपको नहीं बता सकते हैं, ऐसे कुछ है?
2: नहीं नहीं बता सकते, मम्मी पापा को खुल के नहीं बता सकते, हमको बता देती है।
0: हाँ, जिसका चलता आप उनका पूरा समाधान करते हैं।
2: हाँ।
0: जो भी प्रिकॉशन जो भी उसको सहयोग देना चाहिए वो करते, जिसका चलते आपके पास आते हैं। जो चीज उनका फ्रेंड सर्कल हो चाहे उनका मम्मी को नहीं बता पाते हैं तो आपको अपना बात
2: खुल के बात बता सकती है हमको।
0: अच्छा, ऐसे कोई चीज ऐसे आपके पास कोई केस आया जो आपको बताया लेकिन उनका मम्मी पापा का कितना बार भी पूछे तो बताया नहीं, जिसका चलते उनको प्रॉब्लम हुई थी कोई भी लड़की का नाम बताओ?
2: जैसे किसी लड़की को पहले महामारी में आता है तो वो मतलब उस हिसाब से डर सी जाती है
0: शुरुआत में।
2: हाँ शुरुआत में, मगर वो अपने माँ बाप को नहीं बता पाती, मगर हम जब जाके उनसे पूछते हैं तो वो हमको खुल के बताती है कि ऐसी ऐसी बात है ये हमको ऐसा, फिर हम उनके माँ को बताते हैं कि थोड़ा आप भी अपनी बच्ची का ध्यान रखा करो कि इसको ये चीज ऐसे देने से ये होएगा, इसलिए ऐसा सब हम समझाते हैं।
0: जो भी शारीरिक ग्रोथ होगा परिवर्तन होता है,
2: परिवर्तन शरीर के बारे में, जैसे 10 साल के बाद जो भी शारीरिक परिवर्तन आता है वो सब उनको बताते हैं लड़कियों को कि भाई ऐसा ऐसा होता है और ये प्रॉब्लम भी आती है, ऐसी हो भी जाता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है।
0: अच्छा अच्छा, ऐसे खासकर हमारा जो ग्रामांचल क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी बहुल का जो ज़्यादा लोग रहते हैं, तो जो शिक्षित शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा कम होते तो उनको इतना अवेयरनेस नहीं रहता है, जो पढ़ा लिखा होता है तो अपना खोल के बात करता है,
2: खोल के बात कर लेता है,
0: और जो पढ़ा लिखा नहीं होते हैं और उनका जो खेती बड़ी बकरी चराने में चला जाते हैं जो बहन, तो उनके लिए आप क्या सहयोग देते हैं?
2: जैसे उनके है तो उनको माँ को हम थोड़ा जाके समझाते हैं कि भाई आपकी लड़की को हमारे आंगनवाड़ी पे भेजना और हम इसके पोषण के बारे में इनको समझाएंगे, हमारे कार्यकर्ता भी समझाते हैं उनको, उनको सब शिक्षा देती है, तो हमारे तो थोड़ा वार्ड में सुधार हो ही चुका है।
0: खासकर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे किशोरियों को लेकर?
2: किशोरियों को लेकर जैसे टीकाकरण के दिन उनको वहाँ बुलाना, उनके ब्लड वगैरह कम है कि भाई कोई बीमार है उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में हम जाँच करवाते हैं एनएम से।
0: अच्छा अच्छा।
2: हाँ,
0: क्या प्रजनन है तो सरकार द्वारा कोई स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाते हैं?
2: पोषण, अभी तो पोषण माह चल रहा है।
0: महामारी के समय व्यक्तिगत स्वच्छता ऊपर क्या आप अटेंशन दिलाते हैं?
2: उनकी साफ सफाई के बारे में,
0: जैसे
2: अंदरूनी जो साफ सफाई रखनी पड़ती है उनके बारे में हम उनको समझाते हैं कि ये साफ सफाई रखनी चाहिए, हाथ वाथ धोने चाहिए, वो जैसे जैसे महामारी के समय हम व्यक्तिगत स्वच्छता जननांग क्षेत्रों को साफ और सूखा रखने के लिए कहते हैं।
0: जी जी।
2: रोज स्नान करें, महामारी का मतलब ये नहीं कि आप स्नान बंद कर देवे।
0: अच्छा।
2: जैसे जैसे 7 दिन तक वो लड़कियों को जैसे नहाने का मना रहते एक तरफ बिठा देते हैं।
0: अच्छा।
2: वो पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा सुधार आ गया है, फिर उन्हें स्नान नुकसानदेह नहीं है, मतलब यदि आप रोज स्नान करोगे इसमें तो कोई नुकसानदेह नहीं है।
0: जी जी।
2: फिर जो यौनदानी है कोई निकट है सोचे या मूत्र त्याग करने कोई भी जाते हैं उनके बारे में जाने के बाद हाथ अपने साबुन से धोने चाहिए, वो समझाते हैं।
0: अच्छा।
2: फिर यदि वो सोच वगैरह जाए जिसे संक्रमण हो जाता है तो वो भी अपने आने के बाद हाथ साफ साबुन से धोने चाहिए जिससे कोई बीमारी नहीं पनपे।
0: जी जी।
2: फिर गर्मियों में पर्याप्त पानी पीना चाहिए, उनको समझाते हैं।
0: अच्छा।
2: और फिर उनके महामारी के साफ कपड़े पैड वगैरह यूज करने के लिए कहते हैं हम, नेपकिन वगैरह 1 दिन में 3 से 4 बार, जब भी गीलापन जो भी जो होता है उसके बारे में उन बच्चों को मतलब समझाते हैं। हाँ। और अपने कपड़े मतलब जो भी यदि कपड़ा यूज करते हैं उसको कपड़े को धूप में सुखाना चाहिए, वो वगैरह। और आजकल तो लड़कियाँ भी पैड लेना हमारे आगे है जो देना हम शुरू कर दिए।
0: अच्छा अच्छा। ये कहाँ से पैड आपको मिलते प्राप्त होता है?
2: ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हमको,
0: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से
2: इनको मतलब जैसे इनको ये भी समझाते हैं कि भाई जो पैड वगैरह कपड़ा है तो मतलब इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, मतलब कूड़ेदान में फेंकना चाहिए।
0: अच्छा।
2: ये और इसको मतलब पानी के साथ ना बहाए, जैसे कोई पानी में भी बहा देता है तो वो गंदगी हो जाती है, उसके बारे में भी हम मना करते हैं इनको। और जैसे वो अनचाहे कोई अंदरूनी साफ सफाई के बारे में उनको सब मतलब साफ सफाई रखनी चाहिए, हटाना चाहिए, वो सब हम सिखाते हैं मतलब उनको।
0: अच्छा। इससे आपको क्या प्राप्ति होता है? बच्चों को तो खुशी होता होगा, तो आप बच्चों का खुशी?
2: हमको भी सुकून मिलता है,
0: जैसे
2: हमको भी अच्छा लगता है कि भाई इतना सुधार तो आया बच्चियों में कि भाई इनके मतलब ये बीमार तो नहीं पड़ेगी, ये मतलब थोड़ी समझदार तो हो जाएगी, आगे जाके इनको कोई दिक्कत नहीं आए, प्रॉब्लम वगैरह।
0: तो और खासकर और किशोरियों को लेकर और क्या कहना चाहेंगे, जो जो किशोरी आपके पास नहीं आ रहे हैं बा जो किशोरी सुन रहे रेडियो पे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा?
2: हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे हमने जो किशोरियों को समझाया है, वो जो बड़ी जैसे कोई स्कूल जा रही है, तो वो भी आगे जाके कोई ग्रामीण वाली किशोरियों को समझावे कि भाई ऐसा करने से हमारे शरीर की साफ सफाई रहेगी, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमें कोई बीमारियां नहीं होगी। ये
0: तो बहुत अच्छा बात बताया, और जाते जाते सभी को जो की मैसेज दिए बहुत सराहनीय है, और आप इस तरह कार्य करते रहें। इस तरह आपको करने के लिए बचपन में कभी सोचा था मैं आंगनवाड़ी में जाकर ऐसे?
2: नहीं, कभी नहीं सोचा ऐसा, कभी सोचा नहीं था कि मैं एक आंगनवाड़ी में जाऊंगी, आशा सहयोगिनी बनूंगी, ऐसा पहले कभी सोचा भी नहीं।
0: जी जी, तो कहाँ से प्रेरणा आपको प्राप्त हुई?
2: प्रेरणा तो अब बहुत ऐसी लंबी है कहानी, बन अब क्या सुनाना जाए, हमने भी दिक्कतें देखी ऐसी।
0: तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे जो आप यहाँ तक पहुँचे और अपना काम को एक रूप दिए?
2: हमको पहले पहले दिक्कत आएगी, हम हमारी कार्यकर्ता को श्रेय देना चाहेंगे।
0: क्या नाम है
2: कार्यकर्ता? शकुंतला जी।
0: शकुंतला जी,
2: हाँ।
0: शकुंतला जी के लिए ताली बजा, बहुत अच्छा है। क्योंकि किसको रास्ता बता देना और उनका एक अंगुली उनको दे देना, वो आगे बढ़ जाएगा, चांसलर बन जाएगा। और आज आप चांसलर बन रहे हैं, और बेझिझक जो काम कर रहे खुशी से काम कर रहे हैं, और सबका सहयोग लेकर सबको देने के बाद में।
2: शुरू शुरू में मैं आई थी ना, तो यहाँ टीकाकरण नहीं हो पाता था, हमारी कार्यकर्ता अकेले थे, तो सेंटर भी संभालना पड़ता था, और वार्ड में टीकाकरण के लिए बच्चों को भी बुलाना पड़ता था, ये मतलब बहुत दिक्कतें आती थी इनको। मगर जब मैं आई तो बहुत से लोग मतलब टीके भी नहीं लगाते थे, गर्भवती पेट वाली भी नहीं आती, मगर अब मतलब 90% हो गए चुका है कि अब काम होने लग गया है यहाँ पे हमारे वार्ड में।
0: अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बता।
2: ये सैनिटरी नैपकिन है, ये सामुदायिक मतलब स्वास्थ्य वहाँ से मिलता है हमको सेंटर से, और ये किशोरियों को महीने में एक पैड हम देते हैं इनको।
0: पूरा पॉकेट में कितना रहता है उसमें?
2: इसमें इसमें तो आता है सात
0: दे देते हैं, एक
2: सात दिन
0: यूज करने के लिए। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे?
2: और बस मैं यही कहना चाहूँगी भाई, गांव में थोड़ा सा लड़कियों के किशोरियों के विकास आवे, उनका थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, उनका समझदारी आवे,
0: क्योंकि महिलाओं को तो सरकार भी आगे बढ़ा रहे हैं।
2: हाँ, और इनको अब तो इनको पैसे भी मिलने लग गए, जैसे लड़कियां पैदा हो रही है तो 55,000 का
0: देते हैं,
2: और आगे पढ़ेगी तो और भी इनको पैसे भी सरकार दे रही है, छात्रवृत्तियाँ दे रही है, इनको सब फ्री मिल रहा है, पोषण आंगनवाड़ी से ही फ्री मिलने लग गया है, स्कूलों में भी खाना इनको फ्री मिलने लग गया है, दूध वगैरह सब ऐसा।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा सहयोगिनी को अच्छा जानकारी दिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।
3: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
4: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है, कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
3: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, अल्प विराम के बाद हम मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है और हमें खुशी और नाज है, क्योंकि हमारा धात्री महिला जब तंदुरुस्त रहेंगे और हमारा

0: बच्चों को लालन पालन में कोई कमी नहीं करेंगे तो हमारा गांव और हमारा अंचल बहुत अच्छा बन पाएगा। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जब आंगनबाड़ी कार्यक्रम में पहुँचे तो खासकर पोषण माह के अंतर्गत हमारा साथ एक धात्री महिला है जुड़े हुए हैं, तो उनको स्वागत करते हैं क्योंकि धात्री महिला कितना त्याग तपस्या करते हैं अपना बच्चों के लिए। सब खुद नहीं खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, खुद प्यासा रहते हैं लेकिन बच्चों को प्यासा नहीं रहने देते, तो इतना त्याग करते हैं, तो उनको तो नमन करना चाहिए, वंदे मातरम कहना चाहिए। तो इस कार्यक्रम के लिए उनको स्वागत करते हैं। अपना नाम बताओ। तो अपना नाम बताओ।
1: संतोष।
0: संतोष, बाप रे, नाम ही संतोष, पूरा चेहरा ही संतोष है। तो ये नाम कौन दिया, आपका मम्मी पापा?
1: नाम है दादी ने।
0: दादी ने, दादी। क्या नाम है दादी का?
1: दादी तो चली गई।
0: नाम तो बताओ। अच्छा, कहाँ के वो? कौन सा गाँव? पियर घर,
1: भारजा।
0: भारजा में? अच्छा अच्छा, भारजा से आप आए। तो आपका दादी माँ को अभी याद आ रहा क्योंकि आपका दादी आपका नाम संतोष रखा है, बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई, संतोष के लिए ताली बजा भाई, बहुत अच्छा नाम है संतोष। कहाँ तक पढ़ाई किया आप? 5-4-2
1: पाँच।
0: भारजा में?
1: उमरनी में।
0: अच्छा अच्छा, और घर में कौन कौन है?
1: घर में हाऊ है, हो रहे दादिया, हो रहे।
0: अच्छा,
1: दादिया हाऊ है, देवर है, देरोनी है,
0: ओ
1: ननद है, देवर है।
0: पूरा बड़ा परिवार है ना, चेहरा से पूरा खुशी आ गया। और संतोष, और आप घर में जो काम करते हैं पूरा कभी तंग होते हैं बच्चों का? ये वो तंग होते हैं कभी?
1: तंग क्या करो रे, मायने मन मस मारो रे, बीजन की हाल का सही बात है। ओपरो रे बायरी और कम तो ऑफिस करो रे। लड़की आता मैं ले आना मासी।
0: क्या नाम रखा लड़का? क्या लड़का है, क्या नाम बता?
1: मुकेश।
0: मुकेश, मुकेश का नाम आप किए ना दादी को बुलाए? आपका नाम जैसे दादी माँ रखे हैं तो मुकेश का नाम कौन रखा है? पंडित
1: ना,
0: मिस दी तो
1: आते
0: आप ही दिए। हाँ, मिस दी तो कहीं आप ही दे। आप नाम रखे बहुत मुकेश, अच्छा नाम। मुकेश कहाँ से चुन कर लाए, कहाँ से ढूंढ कर लाए मुकेश? मुकेश नाम मुकेश राजेश हनुमान बहुत सारा है, मुकेश नाम अच्छा है
1: ना।
0: मुकेश नाम, मुकेश को बड़े होकर आप क्या देखना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, चाषी, खेती किसान, क्या देखना चाहेंगे आप?
1: क्या करूँ, हाल तो इतने है ही, चार साल
2: काम नहीं करता
1: है।
0: दिखलांग
1: उदयपुर लेन गिन बीज करूँ, काम करूँ, करूँ पाओ का करूँ,
2: खाना भी खिलाना पड़ता है।
0: तो जब ये गर्भ माहौल में था तो उस टाइम आप खाना बना बढ़िया से खाए कि नहीं?
1: ना, ये तो खा दूंगे खाना तो।
0: अभी आने के बाद तो खिला रहे, ठीक है। आप क्या क्या खाए?
1: ये के?
0: हाँ।
1: तो उस पेट में तो नहीं, तुम्हारा मूड ये उल्टी बेती वहाँ, अपन पानी पीती तो ये पेट में कोई रे तो नहीं थी बेती।
0: हाँ, उसका कमी है,
1: तेरी मारी आदत थी। सो रोग हो गए बंडी वेला घी से बे तो ये खाती क्या, तो ये वो खावन वो खाव खाती खरी, पर पेट में रे तो नहीं तो पास उल्टी करती है। तो
0: कोई बात नहीं, मुकेश तो बहुत अच्छा बच्चा बनेगा आगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? और जो कमी था वो कमी को नहीं करना है, अभी पूरा बढ़िया से उसको ध्यान देखना, सरकार भी उसको मदद करेगा ही, लेकिन आंगनबाड़ी से उसको जोड़ा रखो, है ना? और तो चेहरा तो खुशी, और बातचीत करता है?
1: तो मम्मी बाई की है, बापो की है
0: आवाज आती
1: है,
0: ठीक है।
1: अरे तो इलाज कराई के ठीक है, ठीक है,
0: ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा बात बताए। और आप अभी क्या क्या भोजन करते हैं? कितना महीना हुआ है, कितना साल मुकेश को?
1: अपने 3 साल तो हुआ। दिवाली आई के तो ये मतलब सकरत आवी, सकरत आवी, सकरत थी 8 दारा 8 नहीं पूरा 4 साल रवे।
0: हाँ, अभी आंगनबाड़ी में आता है?
1: आंगनबाड़ी में तो नहीं आता, मुँह लेना खिचड़ी लेवा।
0: कभी कभी लेकर आओ उसको, बैठा
1: नहीं तो कभी कभी लेने से आओ,
2: खाना देती हूँ,
0: ठीक है। और ये अस्पताल में हुआ ना, घर में पैदा हुआ?
1: अस्पताल में हुआ, बंसुंदरा बेटा हुआ।
0: अच्छा अच्छा, ये पहला ना, दूसरा ना, तीसरा?
1: ना, दूसरा है, एक मोटो बनी बुन्नी वाली स्कूल जाए।
0: वो भी बड़ा है?
1: हाँ, बड़ा है, 9 साल
0: हो गया। 9 साल हो गया। ये दो बेटा है?
1: हाँ, दो बेटा है।
0: दोनों बेटा तो पूरा राम लक्ष्मण जी से मिला, आपको क्या चिंता है? ठीक है, खुश रहो और खुशियाँ बांटो, है ना? तो बहुत बहुत अच्छा बात बताया और धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए, और एक धात्री महिला हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो क्या नाम है?
3: गीता।
0: गीता बहन, गीता, आपका स्वास्थ्य कैसे है? क्या क्या खाते हैं आप भोजन में?
3: सब्जी खाते हैं।
0: सब्जी खाते हैं, क्या क्या सब्जियाँ?
3: आलू और टमाटर ही लाते हैं।
0: अच्छा, जब आपका लड़की जब गर्भ महल में था, आपका अंदर में जो था, तो आप उस समय क्या क्या खाते थे?
3: बाटी
0: खाते,
3: रोटी, सब्जी खाते,
0: फल फ्रूट्स भी, दूध भी।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, अल्प विराम के बाद हम मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि जानकारियां हो तो ऐसे, खासकर बाल विकास परियोजना अमरोड सिरोही के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्र अमरनी सेकंड पहला सब आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं, तो उन सभी को पुनः स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। अपना अपना बात को रखने के लिए आए हैं, और खासकर जो पोषण को लेकर मेला चल रहा और किशोरियों को बुलाकर अपना अपना जो फायदा दिलाते उनको समझाते वो बात को रखें बारी बारी। तो चले, कुछ कार्यकर्ता हैं हमारा इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनको स्वागत करते हैं। एक कार्यकर्ता उनका परिचय लेंगे, तो आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनबाड़ी केंद्र मानपुर वार्ड नंबर 2 से बोल रही हूँ।
1: अच्छा, आज का जो गतिविधि, खासकर आपका जो रॉयल सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको बहुत पसंद है,
2: ये वही हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, गर्भवती महिलाओं को
1: किस तरह उनको सलाह बा उनको
2: सलाह देना, गर्भवती महिला जो मतलब जिसके गर्भ ठहरता है
1: जी
2: पेट में, उसको गर्भवती महिला कहते हैं। और जैसे ही उनको पता पड़ता है कि भाई इस घर, उस गांव के अंदर, इस घर के अंदर जैसे कोई महिला है, तो हम उसे मिलते हैं और उनको समझाते हैं, और जल्दी से जल्दी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे उसका नाम दर्ज करते हैं। उसको हम समझाते हैं कि आपको पता लगते ही हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर आपका नाम दर्ज कराओ, ताकि हमारी जो सेवाएं है वो हम आप तक पहुंचा सके। फिर जैसे टीकाकरण हुआ, उसकी मतलब 4 जांच होती है, वो जांच वगैरह हम करवाते हैं, उसका हीमोग्लोबिन कितना है उसकी जांच होती है। जब तक वो 9 महीना बच्चा होता है, जब वो हमारी नज़रों के अंदर हम रेख देख करते हैं, जरूर पड़ने पर NM की भी सलाह लेते हैं, NM भी टीकाकरण के दिन आती है, हम उसको बुलाते हैं, उसका वेट लेते हैं, उसका खून चेक करते हैं, आयरन की गोली वगैरह देते हैं, खाने पीने की हम सलाह देते हैं, और मतलब जरूर पड़ने पर आयरन की बोतल चढ़ती है हॉस्पिटल में, जरूर पड़ने पर वहाँ पर भी हमारी जो वार्ड के अंदर आशा शिविर नहीं होती वो उनको लेके जाती है। मतलब 9 महीने तक हम अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं, ताकि वो बच्चा अच्छा हो।
1: जैसे गर्भ ठहरने का तुरंत बाद, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो आप कब से मैंने उसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उसको पूरा सलाह देते, पूरा उसको सावधानी देते?
2: हाँ, जैसे 2.5-3 महीना हो गया तो हमको पता पड़ गया कि हाँ अब इनके कंफर्म है ही, तो 3 महीने से हम अंदर उनके कांटेक्ट में रहते हैं, फिर हम उनको सलाह देते।
1: मान लीजिए कोई गांव में आप जाते हैं डोर डोर, आपको तो कैसे पता चलता है जो यहाँ पर दंपति है कि यहाँ शादी किया हुआ है, तो आप उस तरह कैसे जाँच करते हैं? आप
2: जहाँ जैसे करते क्या, जैसे तो हमारे पूरी महिला गांव में कांटेक्ट तो हमारा रहता ही है, रोज हमको जाना ही है गांव के अंदर, और अगर वो महिला नहीं भी बोली तो हमारे आशा शिवनी घूमती है घर घर डोर टू डोर। अगर उनके कांटेक्ट में भी नहीं आता है, तो जैसे गांव की महिला 4 महिलाएं मिल गई, तो हम पूछते कि भाई फलाने की शादी हुई थी, उनके कुछ है कि नहीं है, अच्छा। कोई अच्छा समाचार है कि नहीं है, तो वो अपने आप बोली हाँ हाँ फलाने के बेटे के बहू के तो है बहन जी, आप मिलना उनसे। इस तरह भी हमको कैसे मिलते हैं,
1: फिर जब जाते तो नया,
2: फिर हम उनको भी समझाते, उनकी सास को समझाते हैं, बहू को समझाते हैं कि भाई आपको था तो हमको बताया कि नहीं, और अब हमको पता पड़ा है तो हम आपके घर आए हैं। फिर वो आगे होके बोलेगी कि हाँ बहन जी मेरे है, 2.5 महीना है 3 महीना है जो भी है वो बताती है। फिर हम उसको बोलते हैं आंगनबाड़ी पे आना, टीकाकरण वाले दिन आना, ताकि उसका टीकाकरण हो। और हमारे हर गुरुवार को हम पोशाक में पंजरी देते हैं, उस पंजरी का तू उपयोग कर।
1: तो इस तरह आप जो पहला बार जाते, कोई नया कैंडिडेट है तो उनका पार जाते, तो क्या आप कितना बार जाते हैं और उसको कैसे आप हैंडल करते हैं, किस तरह उनको बात करते हैं जो आपका बात को मानेगा?
2: मानेगा हाँ, अच्छे से समझाओ तो वो मानते हैं। वैसे तो हमारा ये काम हमारे आशा शिवनि का है, उनके घर पे जाना, हर बार उनको समझाना, उनकी देखभाल करना हर बार। और फिर हमारे जिससे हम भी करते, हम भी जाते, हम भी उनको बताते कि भाभी देखो इतना काम करना, दिन में आराम करना, एक बार नहीं खाना खावे तो 2-3 बार हरी सब्जी है, फल फ्रूट है, दूध है, मतलब तू टाइम टू टाइम खाना ध्यान देना। और जो टीकाकरण में टीटी के टीके है, जो फर्स्ट है तो 2 टीके लगते हैं टीटी के, जो फर्स्ट डिलीवरी है। और अगर 3 साल से छोटा बच्चा होता है तो 1 बूस्टर लगता है सिर, और अगर छोटा बच्चा 3 साल से बड़ा है तो दो टीटी के टिटनेस के दो टीके लगते ताकि उसको कुछ लगे करे तो वो इन्फेक्शन बच्चे के नहीं हो, और आयरन की गोली वगैरह ताकत की हम देते।
1: जैसे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप उनको भोजन का संबंध कुछ बताते हैं और वजनदार जो सामान है उठाना है, झुकना नहीं,
2: ज्यादा वजन नहीं उठाना है,
1: ये चीज बताते हैं। और खासकर जो गर्व माहौल में जो बढ़ रहा है बच्चा, उनका बौद्धिक विकास
2: हो, शारीरिक विकास हो,
1: तो उसके लिए खास कर उसको क्या सलाह देते? भोजन तो आप सलाह देते हैं, इसका साथ साथ उसका मन और बुद्धि जो आत्मा है, जो शक्ति है, तो उसके लिए आप क्या क्या विचार उनको करने के लिए बोलते?
2: ऐसा सोचते हैं कि शुद्ध हवा लो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचेंगे तो मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छा सोचना, अच्छा वातावरण में रहना, और मतलब स्वास्थ्य के बारे में है कि जो है अपने खाने पीने में ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना,
1: इस तरह आप सलाह देते हैं। तो खुशी राजी से ग्रहण करता है आपका बात को?
2: हाँ, मानती महिलाएं अच्छे से मानती है।
1: और
2: हमारे गांव में पढ़ी लिखी महिलाएं कम है, अनपढ़ ज्यादा है, बहुत कम है पढ़ी लिखी। आजकल की कोई आई होगी तो तीसरी चौथी पांचवी होगी, बाकी ज्यादा से ज्यादा हमारे गाँव में अनपढ़ महिलाएं है। तो वो कहना मानती भी है, करती भी है, और अगर उसको समझ में नहीं आना हो तो हमको चार बार आके पूछती भी, बहन जी मुझे ये तकलीफ है, मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, आप बताओ, आप हमारे साथ चलो।
1: आप खासकर जो 9 महीना हो जाता है बा उसका जो पीरियड आता है यीशु का, प्रसव का पीरियड आता है, तो उस समय खास कर
2: प्रसव की तैयारी भी हम करवाते, उसको पहले से समझा देते, हम हमारा फोन नंबर देते, आशा शिवगुनी का फोन नंबर देते कि ये अपना नंबर है, अगर तेरे को आधी रात को भी कभी जरूर पड़े डिलीवरी का दर्द हो तो तू हमसे कॉन्टेक्ट करना, ये गाड़ी के नंबर है, इस गाड़ी पे तू फोन करना, हॉस्पिटल से गाड़ी आएगी और अपन को डिलीवरी हॉस्पिटल में ही करानी, घर पे नहीं करानी। पहली बात तो ये,
1: तो घर में क्यों नहीं?
2: घर में यूँ है कि घर में एक तो वो जो सुविधाएं नहीं रहती है, एक साफ सफाई, एक प्रशिक्षण डॉक्टर है वो घर में, मतलब कोई भी अगर हादसा भी हो तो हॉस्पिटल में हो तो जल्दी वो हॉस्पिटल में केस संभल जाता है, और घर पे तो अपने पास कोई सुविधा ही नहीं होती है, तो घर पे तो डिलीवरी करवाना ही नहीं है।
1: पहले से जब आप आंगनबाड़ी नहीं था, आप नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं था, आशा सहयोगी नहीं था, पहला जमाना में तो लोग डिलीवरी कैसे कराते थे? घर पे में होता था,
2: घर पे ही होता था।
1: हाँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत होता था, ऐसे कोई सीरियस भी होता है पहले कोई सारे छोड़ देते
2: ज्यादा, तो हमने सुना है कि हमारी तो डिलीवरी अभी भी हम लोगों से पूछते नहीं, बोले हमारे तो चार चार पांच पांच बच्चे हुए लेकिन बहन जी घर पे ही हुए, हमने तो कभी डॉक्टर के नहीं गए, क्योंकि पहले का खान पान अलग था, रहन सहन अलग था, आजकल सब यूरिया खातर है, गुटखा है, बीड़ी है, सब लोग खाते है, उसका शरीर में बदलाव होता है, पहले जैसा शरीर है नहीं लोगों का, पहले के घर की खेती का अनाज है, साग सब्जी है, आज तो सब दवाइयों से पकता है,
1: इसलिए उसका दिक्कत होता है। पहले सब कुछ जरूरत नहीं पड़ता था, आराम से
2: पहले तो देसी खातर का सब वो होता था, पानी भी अच्छा था, हर चीज था, और खान पान भी लोगों का, आजकल तो जरा जरा से बच्चे देखो गुटके यूज करते, बीड़ी सिगरेट सब खाते,
1: मालों को भी तो खाते हैं आजकल, पर खेती में जाते मालों को भी होती, महिला भी तो आजकल कुछ कोई
2: महिला तो सबसे ज्यादा खाती, मुंह में भरा ही रहता है,
1: तो यहाँ पर ये सब क्यों?
2: इसके बारे में भी हम समझाते महिलाओं को, देखो ये खराब चीज है, ये नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, प्लस आपके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए भी दुखदायी है, बिल्कुल ये चीज हम तो ज्यादा से ज्यादा यही समझाते हैं। इसका हम तो यही कहना चाहेंगे कि गर्भवती तो ध्यान रखती रखती है, साथ में उसका पति है, दादी है, परिवार में जो लोग हैं वो लोग भी उसका अच्छे से ध्यान करें, उसको ज्यादा टॉर्चर नहीं करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अच्छे से उसका ध्यान रखे, खान पान दवा का हर चीज के अंदर उसका सहयोग करें।
1: कलयुग में सब लोग तो 5 विकार में ग्रसित है, कोई काम क्रोध लोभ हिंसा मन पर चिंतन पर दर्शन, और मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा,
2: ये भावना होती
1: ये जो होती है, तो ये तो बच्चों का पर प्रभाव पड़ेगा ही
2: बिल्कुल पड़ेगा। चाहते ज्यादा से ज्यादा हमारा गांव के जिस हम गांव में हमारे आंगनवाड़ी है ताकि उसी गांव का तो भला हो, आज हम ये सोचते हैं ताकि जो गर्भवती हमारे पास आती है उसका बच्चा बिल्कुल अच्छा हो।
1: और आप तो पूरा अनुभवी है क्योंकि
2: माँ 20 साल का, हाँ, और
1: माँ भी है,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इसी आशा और विश्वास लेकर उनको पूरा मैंने दावा का साथ
2: आप दावा के साथ हम सहयोग देते, कभी भी आपको कोई कहां भी हमारी जरूरत पड़ती हम आपके साथ हैं,
1: क्योंकि आप अनुभवी उस पीरियड में उस स्टेज को आप गुजर चुके हैं, तो कोई भी आए तो उनको बढ़िया से सलाह देते हैं और गारंटी का साथ बहुत अच्छा बात है, धन्यवाद। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप?
2: हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी अच्छा सोचो अच्छा करो काम, ताकि किसी का भला हो बच्चों का।
1: ठीक है, हमारे दो शब्द हमारा सोच किसका जीवन में काम आए।
2: सही है,
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता उपस्थित है, उनको भी स्वागत करेंगे। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।
3: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित है, तो जहाँ पर हम बैठे बहुत खुशी और हर्ष का साथ बैठे हैं। और जब पोषण माह चल रहा है उससे का संदर्भ में कुछ लेकर आए हैं, तो उनको स्वागत करते हैं। मैडम आपका स्वागत है, आपका परिचय दीजिए। विद्या वर्मा जी जी, और खासकर आज आपका आंगनबाड़ी में सभी कार्यकर्ताओं को एक स्नेह भावना से बुलाए और इतना बड़ा सुंदर प्रोग्राम किए, सबका बात आज रख रहे हैं और आप भी जुड़े हुए हैं, तो आप आज का संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे?
4: मैं कहना चाहूँगी आज के वक्त में जैसे गर्भवती धात्री महिलाओं को सबको हम सेवाएँ देते हैं, सब आज आए, सब प्रोग्राम हुआ, सबको समझाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जैसे 6 महीने के बाद में बच्चे होते हैं ना, 7वें दिन लगते हैं जब उनको हम खाने के लिए बोलते हैं ऊपरी आहार, औरतों को समझाते हैं कि अब 7वें महीने से उनको ऊपरी आहार खाने के लिए दो, पतला जैसे दाल है, खिचड़ी है, और वो पतला फल हो तो उसको मसल के खिलाओ, और जैसे 9 महीने का बच्चा हो जाए तो उसको 2-3 कटोरी खिलाओ, 2-3 बार खिलाओ। अगर बच्चा नहीं भी खाता है, रोता है, तो उसको भुला के घूमते घूमते खिलाओ, उसको राजी करके खिलाओ, मतलब उसको खाने के लिए नखरे करेगा वो, लेकिन उसको खिलाओ,
1: लोरी सुना कर भी खिलाओ,
4: लोरी सुना के खिलाओ। और कोई फल है तो उसको मसल के खिलाओ, दाल है तो उसका पानी पिलाओ, खिचड़ी दलिया मसल के खिलाओ, कोई भी चीज़ घर में आती है तो उसको मसल के ज़रूर खिलाओ। और अभी नहीं खा रहा है तो थोड़ी देर बाद खिलाओ ऊपरी आहार, तो वो कमज़ोर नहीं होगा, उसका वजन कम नहीं होगा, कुपोषित नहीं होगा बच्चा, आगे चल के वो स्वस्थ बनेगा।
1: 6 महीने तक तो माँ का दूध,
4: 6 महीने तक तो कोरा माँ का दूध ही पिलवाते हैं हम, इसके अलावा कुछ पानी भी नहीं पिलाने के लिए मना करते, खाली माँ का दूध ही पिएगा वो 6 महीने तक।
1: 6 महीने का बाद जो होती
4: है, 6 महीने के बाद में ऊपरी आहार देते हैं।
1: ऊपरी आहार खास कर जो ऊपरी आहार में क्या क्या होने से बच्चों को तंदुरुस्त प्राप्त हो गया?
4: जैसे दाल है, दाल बनाते हैं उसका दाल का पानी दे दो, दलिया है बारीक यूँ हाथ से मसल के खिला दो, खिचड़ी खिला दो, और फिर जैसे 8 महीने का 9 महीने का हो जाए तो उसको रोटी भी मसल के खिला दो, चूरमा टाइप बना के, कोई फल घर में है तो वो मसल के पिला दो, अंगूर है तो उसका रस पिला दो, इस तरह से मतलब फिर 8-9 महीने के बाद में दांत आ जाते, वो आराम से सारी चीज़ खा सकता है, दाल चावल सब्जी रोटी सब।
1: जो आपका आंगनबाड़ी में खासकर बच्चों को जो पहला आहार देते, वो योजना का नाम क्या है, वो त्यौहार का नाम, बच्चों को यहाँ पर आपका आंगनबाड़ी में आकर उनको पहला
4: अन्न प्रसाद
1: क्या है, और अन्न प्रसाद से हमारा बच्चे को क्या फायदा मिलेगा, और खासकर उसका माँ को क्या फायदा मिलेगा, वो क्या सीखेगा?
4: अन्न प्रसाद से मतलब हम उनको बताते हैं अब तुम्हारा बच्चा 7 महीने में लग गया है, अब इसको खिचड़ी दलिया ऊपर का आहार देना है, एक कटोरी भी हमको हम कटोरी चम्मच में उनको दलिया डाल के अपने हाथ से खिलाते हैं, और उनको बोलते हैं आज से तुम्हारे बच्चे का अनाज खाना शुरू हो गया।
1: आपसे शुरू कराते हैं? जब यहाँ पर पहला
4: जो हम खिलाते हैं और कटोरी चम्मच लाते हैं, वो कटोरी में दलिया डाल के खिलाते अपने हाथ से, फिर वो उन्हीं को दे देते हैं
1: प्रसन्न का साथ, पूरा टीका चंदन
4: कटोरी के अंदर, अब तुम रोज खिलाना बच्चे
2: को, समझाते
1: कटोरी भी देते हैं,
4: कटोरी देते हैं,
1: क्या बात,
4: कटोरी चम्मच दोनों देते हैं कि अब इससे तुम रोज खिलाना, और जैसे वो आती है तो पूछ लेते हैं बच्चे को आज खिलाया।
1: दूरदृष्टि से सोचेंगे उसका, थोड़ा सा बात करेंगे तो कितना बड़ा महान काम आप कर रहे हैं, क्योंकि किसको भोजन शुरुआत भोजन उसका जिंदगी तो कितने साल हुआ, शायद कोई 80 साल कोई 60 साल जिंदा रहता है, लेकिन आप जो शुरुआत खाना खिलाते हैं
4: है?
1: तो अन्न का शुरुआत, क्योंकि आप तो अन्नदाता होगी,
4: फिर उसको पूछते रहते हैं अब तेरे बच्चे को खिलाया तूने, वो क्या खाता है, फिर रोज यहाँ पर दलिया खिचड़ी बनता है तो वो थोड़ा सा हम दे देते हैं, ये शाम तक खिलाना, तो रोज उनके दलिया किसी घर में बन नहीं पाता, काम वाली है तो मैं उनको यहीं से दे देती हूँ जो पास में रहती है, आ सकती हूँ उनको, तो तुम अगर सेंटर पे आ सकती हो तो इस बच्चे के लिए रोज दलिया खिचड़ी लेके जाओ और थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में खिला देना।
1: अच्छा, बहुत अच्छा बात बताए, कितने साल का बाद बच्चा अपना हाथ से खुद खाएगा?
4: तो ये ये बच्चे की स्वस्थता पे है। कोई साल भर का भी खाने लग जाता है, कोई 14 महीने का भी खाता है, कोई 9 महीने का ही झपटने लग जाता है, कोई 8 महीने का भी हाथ में लेके चूसने लग जाता है।
1: ओके, तो ये चीज़ उनका परिवेश और परिवार का ऊपर डिपेंड करता है और बच्चों का भी डिपेंड करता है।
4: अब मेरे पोती है 2 महीने की, वो अभी से हाथ मिलने पकड़ती है हमारा हाथ। अभी 2 महीने की 30 तारीख को होगी और अभी अंगूठा पकड़ लेती है।
1: क्योंकि बच्चे अंगूठा सोचने में बहुत होशियार होते हैं, तो इसका राज क्या?
4: अभी से गोद में लेते हैं तो ये पकड़ते हैं कि मैं तो छोड़ नहीं देवे कोई।
1: उसको कितना भी खिलाओ ना वो अंगुली चूसते रहते हैं। कोई कोई लड़का उसका अंगुली देखने में पूरा पतला हो गया है फिर भी वो
4: चूसते ही।
1: तो इसका कारण क्या, क्यों करते हैं बच्चे इसे?
4: बस बच्चों की आदत है कुछ भी चूसता, मुंह चलाते रहना।
1: ये ठीक है ना? गलत?
4: ये ठीक नहीं है।
1: तो इसका
4: ये नहीं होना चाहिए।
1: ये नहीं होना चाहिए, तो किसका गलती है इसमें?
4: ये माँ की, परिवार की गलती है कि वो निकालते नहीं है। हम तो देखते तो बोलते हैं इसको चूसना निकालो और हम निकलवा देते हैं। और माँ को बोलते हैं कि अंगूठा नहीं चूसने देना, कि अंगूठा पतला पड़ जाता है, होंठ भी ऊपर हो जाते हैं, चेहरा बिगड़ जाता है।
1: कोई कोई बच्चे खाने का बहाना में मिट्टी भी खा लेते, कुछ भी उठा कर अपना मुख में डाल देते।
4: तो माँ बाप को ध्यान रखना पड़ता है, इनमें कैल्शियम की कमी होती है इसलिए मिट्टी खाते बच्चे।
1: मिट्टी खाते हैं?
4: हाँ, कैल्शियम की कमी होती है खाते, उनको अगर कैल्शियम की मिट्टी आती है
1: और उसका पेट में जो कीड़ा वगैरह बहुत बन जाता है लंबा लंबा,
4: कीड़े कैल्शियम की कमी से ही कीड़े बनते।
1: तो उसके लिए जब आपको पता चलता है तो आप उसके लिए क्या
4: करते? एलबेंडाजोल गोली हमारे पास है, हम वो उनको दे देते
1: हैं। अच्छा,
4: बच्चों को एलबेंडाजोल गोली देते हैं और कैल्शियम की कमी होती है ना तो उनको बोलते हैं दूध दही मतलब खाना अच्छे से खिलाओ तो कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, तो मिट्टी नहीं खाएंगे और इनका ध्यान रखो मिट्टी खाएं तो।
1: अच्छा, बच्चे कब खेलने शुरू हो जाता है, कितना महीना में?
4: बच्चे तो जैसे बैठने लगे 7 महीने 8 महीने के तो वो अपने हाथ पे चलाते हैं और खेलना तो अभी मैं 1 महीने 15 दिन के बच्चे भी हाथ तो हिला ही लेते हैं।
1: अच्छा,
4: पांव हाथ तो हिला लेते हैं।
1: समझो एडवांस है वो कराते हैं। खाने में कोई अनाकन ना करे, नाराजी ना जीते, इसके लिए आप क्या सलाह देते हैं माताओं को?
4: भाई वो आनाकानी तो जब नहीं करेंगे जब उनको मनपसंद खाना मिलेगा। वो जो खाना मांगे वो दो, वो जब खाना मांगे जब दो, जबरदस्ती अगर उनको खिलाएंगे तो भी वो रोटी करेंगे।
1: क्या ऊपरी आहार का साथ साथ माँ का दूध पिलाना चाहिए?
4: हाँ, पिलाना चाहिए।
1: कब तक?
4: 1.5 साल 1.5 साल इससे ज़्यादा नहीं।
1: अच्छा,
4: ज़्यादा हो तो 2 साल, बस इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं पिलाना चाहिए।
1: तो ये सब आपको जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त हुई?
4: ये हमारे अधिकारी लोग ट्रेनिंग भी देते समय समय से और मेरे तो पोता पोती भी हो गए तो फिर मैं तो वैसे
1: ही अपनी
4: पोता पोती दोहता दोहती मेरे समय।
1: ओके,
4: तो वैसे घर का अनुभव है मेरे को बच्चों का तो।
1: अच्छा अच्छा, आंगनबाड़ी तक पहुंचने के लिए जो आपका विचार आया ये सर्विस करने के लिए, जो पहला पोस्टिंग आपका हुई थी काम पर हुई थी? और
4: पोस्टिंग हुई थी यहाँ पे पांडुरी में। मैंने 2 साल वहाँ पे काम किया 1986 में।
1: तो आप आंगनबाड़ी में काम करने के लिए इच्छा कैसे जागृत हुई?
4: इच्छा ऐसे जागृत हुई, पहले मैं गरीब परिवार से निकली थी, आदमी की पेमेंट कम थी और ससुराल में इतना नहीं था। पहले मेरी लड़की भी हो गई थी तो फिर 2 पैसा भी कमाना था, बाहर कभी निकली नहीं थी तो मैं इस आंगनबाड़ी में निकली। लेकिन अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सेवा करना, क्या अब मेरे पास सब कुछ।
1: अच्छा, क्या अच्छा लगता है जो आंगनबाड़ी में आपको?
4: ये बच्चों के साथ में रोज, जैसे आप वैसे तो कहाँ जाए खेलने के लिए, वैसे बच्चों के बहाने बच्चों से के साथ खेल भी लेते हैं और 4 औरतों से मिलके बातें कर लेते हैं, इनका दुख सुख पूछ लेते हैं, इनको कोई सलाह दे देते हैं, इनको कुछ जरूरत होती है हमारी सलाह की तो इनको दे देते हैं, हमको कुछ उनसे पूछना होता तो हम पूछ लेते हैं कि भाई ये काम काकी कैसे करें।
1: एक टीम वर्क को लेकर आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका अंदर में आपका नीचे आशा सहयोगिनी और सहायिका और ANM सब लोग रहते हैं टीम, क्योंकि सबका सहयोग लेकर आप एक आगे बढ़ते हैं और सबको जहाँ पर जिस तरह जहाँ पर भी जरूरत होता है आप दिलाते हैं सहयोग। हाँ, तो उससे आपको खुशी
4: मिलती है। सब हम तीनों लोग मिलकर काम करते हैं, ये नहीं देखते कौन का क्या काम है।
1: ऐसे आपका जीवन पीरियड में आंगनबाड़ी में काम करते हुए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा?
4: हाँ,
1: कोई डिलीवरी केस हो, कोई किशोरियों को लेकर कुछ हुआ, कभी हादसा हो चाहे कुछ हो?
4: नहीं, मेरा कभी कभी कोई हादसा वगैरह कोई
1: ऐसे होता तो आप क्या करते?
4: पर मेरे साथ में कभी हुआ ही नहीं सर ऐसा।
1: मान जो होगा तो क्या करेंगे आप?
4: सोचेंगे जब

0: आपका चलते मेरा डिलीवरी रुक गया और उसका डेट हुआ ऐसे लोग
1: नहीं, आपको अभी तक किसी ने
0: कोई डिलीवरी लेकर गए और अचानक उसका खुदा ना खासे कुछ हुआ जिसका चलते आपके ऊपर ब्लेम की आंगनबाड़ी का आशा कर्मी का सहयोगी का चलता हमारा
1: ये गाँव में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे ऊपर ब्लेम करेगा। मेरे को 30-32 साल हो गए इस गांव में रहते हुए।
0: इस तरह किसका न हो हमारा ये भावना है और सब अच्छा से सहयोग भावना से लेकर चले। बहुत अच्छा जानकारी दी और क्या क्या बच्चों को सिखाते आप थोड़ा एक शब्द भाषा हिसाब से हो चाहे कविता माध्यम से कैसे सिखाते उस तरह बच्चों को कैसे सिखाते तुतले आवाज में वो सुन गीत सुनाओ
1: पोएम सिखाते हाँ। उनको एक्शन कर कर
0: सुनाओ देखे
1: जैसे रेल गाड़ी मेरा नाम चुप चुप करना मेरा काम रेल गाड़ी मेरा नाम चुप चुप करना

0: करेगा, हम भी पूरी खा लेंगे। ऐसे एक्शन करते हैं तो बच्चे आराम से बोलते हैं, एक्शन करके सिखाते हैं। तो
1: और आप शहरांचल और ग्रामांचल बच्चों को जब देखते हैं तो क्या डिफरेंस आपको मिलता है, बच्चों सीखने में हो, बोलने में हो, बैठने में हो? शहरांचल बच्चे आंगनबाड़ी बच्चे और ग्रामांचल आंगनबाड़ी बच्चे में क्या फर्क
0: है? तो गांव इनके बच्चों को तो सिखाने में मुसीबत पड़ती है, शहरी बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, नहीं तो पेंसिल भी हाथ से पकड़ानी पड़ती है, बोलने का भी इनको बताना पड़ता है, बच्चे उठते का भी बताना पड़ता है इनको हर चीज़, इनके साथ थोड़ी परेशानी पड़ती है। शहर के बच्चे तो आधे काम सीखे हुए आते हैं।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते सभी को नाम का साथ धन्यवाद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ आशा सहगिन भी हमारे साथ है तो उनको भी लेंगे। अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।
2: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM, हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: नमस्कार, अल्प विराम के बाद मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि कार्यक्रम हो तो ऐसे। आंगनबाड़ी तब भरपूर होगा जब आशा कर्मी, आशा सहयोगिनी और सहायता और कार्यकर्ता और हमारा छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, मासूम मासूम बच्चे जब आते हैं और किशोर या धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जब आंगनबाड़ी में जोड़ते तो कितना खुशी लगता है और सबको करने में, कोई भी काम करने में अच्छा लगता है। सामूहिक रूप में करते हैं तो इस सामूहिक रूप कैसे करते हैं वो चीज़ बताने के लिए हमारा साथ आशा सहयोगिनी है। तो उनको क्या लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है आज?
1: अच्छा लग रहा
0: तो
1: है।
0: आपका नाम बताओ।
1: मेरा नाम मीना है, मैं आशा सहयोगिनी हूँ। मैं गर्भवती, धात्री और किशोरी वाली को सबकी जानकारी करती हूँ, उनको सलाह देती हूँ हर चीज बारे
0: में। धात्री महिला के बारे में थोड़ा बताओ।
1: धात्री महिला वो होती है जो 6 महीने अपने बच्चे को दूध पिलाती है। वो अपने 6 महीने अपने बच्चों को दूध पिलाती है और 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो वो पानी और दलिया सब वो अपने छोटे छोटे करके पिलाती है। आलू मसाला हुआ सब पानी है, दूध है, सब ध्यान से पिलाती है, ध्यान से देती है अपने बच्चों को।
0: अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ाई की?
1: मैं 12वीं तक।
0: 12वीं तक।
1: जब गर्भवती बच्चों के जब वो उसके बच्चा हो जाता है उसका वजन लेने जाती हूँ घर घर, और उसका वजन लेकर सब वो रजिस्टर में भरती हूँ और बच्चों को ध्यान देती हूँ और दूध के पिलाने की सलाह देती हूँ। उनको बार बार बच्चों को दूध पिलाओ, जब भी बच्चा मूत्रे तो उनको ध्यान दो और दूध पिलाते रहो बच्चों को ऐसे। और 6 महीने से बच्चा ऊपर हो जाता है तो आप उसके खाने का भी ध्यान रखो ताकि बच्चा कमजोर ना पड़े। माता पिता को यही सलाह देती हूँ अपने बच्चों को भरपूर मात्रा में खाना।
0: आपका बात को मानने में माताएं हो चाहे गर्भवती महिला हो चाहे किशोर हो, कितना इच्छा रहता है उन लोग मानते हैं बात को?
1: हाँ मानते, अब तो समझते भी है कि ये बहन जी हमारी यहाँ आती है, हमको समझाती है। पहले तो कोई आती भी नहीं थी, गांव में कोई घूमते भी नहीं थे, और जब भी वो गर्भवती के बारे में उनको पंजीकरण करवाना होता तब कहते भी है कि बहन जी हमारे 2 महीने ठहरे हुए, आप आओ तो हमको लेकर जाओ। तक अभी वो घर पर मिलती है तो लेकर जाते, नहीं मिलती है तो टीकाकरण महीने में एक बार होता है।
0: आपका मान सम्मान बढ़ गया। पहले मान सम्मान नहीं था इतना।
1: पहले वो ध्यान भी नहीं देते कि कौन बहन जी आई है और क्या कहेंगी और क्या पूछेंगी। अब उनको हॉस्पिटल लेते हो तो भी उनको 9 तारीख उनका वो ग्लूकोज चढ़ाती हूँ, जो खून की बीजी की कमी हो तो उनको ग्लूकोज चढ़ाती हूँ। तो ध्यान में रखती है कि बहन जी समझदार है, बहन जी हम लोगों को लेती है, कोई कमी है तो हमारी जाँच भी करती है, हमारे आंगनबाड़ी पर लेकर हमारा वजन करती है और जो भी काम है हमको शिक्षा देती है। पोषण की थैली भी हमारे समय पर हमको ला कर देती है।
0: अच्छा, आप एक तंदुरुस्त बच्चा के लिए जो डिलीवरी होता है ना, तो 9 महीने तक आप जो उसको संभालते हैं खासकर, क्योंकि तो अंदर में है तो उसको हम जैसे स्वास्थ्य के लिए भोजन और माता को क्या क्या सावधानी वो बताते हैं, लेकिन अंदर में जो आत्मा है, जो चेतन शक्ति है, जो जीवन है, माँ बाप तो शरीर को बना देते हैं, ठीक है, पुतला तो बना देते हैं, लेकिन उसका अंदर में जो चेतन शक्ति प्रवेश करता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीवन जब प्रवेश करता है तब वो चुटपुर करता है अंदर में आने के बाद
1: फिरने लगता है।
0: इसका पहले तो आपको शांत रहता था
1: वो सर,
0: जब उसमें अंदर में चेतन शक्ति आता है तो उसमें माँ को पता चलता है अभी ये
1: कि उसके गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है
0: और उसको चुटपुर तरह उनको लगता होगा,
1: उनको लगता है।
0: आप तो अनुभवी है ना, आपको तो पता होता होगा। तो उस समय जो आत्मा आई, जहाँ से भी आई, जो जीवन चेतन शक्ति, उसको हम एक तेजवान, सुदृढ़ और अच्छा इंसान बने, नाम रोशन करें, उसके लिए आप क्या सलाह देते हैं? उसका बुद्धि तेज हो, शांत मन हो, बहुत सुंदर बच्चा हो।
1: माता जब समय पे खाएंगी पिएंगी, समय पे आराम करें भी और समय के हर बात को समझेगी तब उसका बच्चा सही समय पर और सुरक्षित और अच्छा बल वाला होगा। ध्यान नहीं देती है, उसके घर में लड़े झगड़े होते हैं किसी के घर में तो बच्चों में परिवर्तन आता है उसकी माओ के। जब झगड़े होते हैं माँ बापों के बीच में तो अंदर वो पेट पे पलने वाला बच्चों पे परिवर्तन आता है।
0: गर्भवती समय में झगड़ा करना नहीं चाहिए,
1: झगड़े नहीं करना, ध्यान से बोलो, ध्यान से समझाओ, ध्यान से रहो और वो अपने ध्यान से सब समझे और खाना पीने का भी ध्यान रखे और आराम करे, दवाई भी समय पे ले, सब वो काम समय पे करेंगे तो उसका बच्चा अच्छा बनेगा। नहीं तो ऐसे लड़े झगड़े में ऐसे रहेंगे तो वो परेशान, क्योंकि माँ परेशान होगी तो उसके अंदर का बच्चा भी वो भी ऐसा ही होगा।
0: तो टीवी देखना चाहिए ज्यादा समय, मोबाइल में ज्यादा समय लगना चाहिए गर्भवती महिला को, कहेंगे उसका बच्चा अच्छा बने ऐसे?
1: नहीं नहीं, वो खान पान का भी ध्यान हो, अच्छी अच्छी बातें सुनो।
0: अच्छा बात सुनो,
1: अच्छी बातें सुनो तो अच्छा परिवर्तन आता है। वो माँ अच्छी सुनेगी तो उसके बच्चों भी अच्छे परिवर्तन आएंगे। अगर माँ समझदार होगी तो बच्चा अच्छा होगा। सही बात है ये तो
0: सही सुनो, सही बोलो और सही करो, है ना?
1: हाँ।
0: तो जाकर बच्चों को आप वो प्रभाव पड़ेगा। और इतना करने के बावजूद भी कोई कोई लड़का खराब बनता है, चोर बन जाता है, डकैत बनता है, इतना हो जाता है, खराब नाम बदनाम करता है, तो ये क्यों होता है?
1: छोटी बातों में जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ ध्यान नहीं देती, तब बच्चा बड़े होकर ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो माँ ध्यान देती है बच्चों पे, ऊपर छोटे छोटे होते हैं तब ध्यान देती है, तब बच्चों पे ऐसे समय नहीं देखना पड़ता उनको।
0: क्या ध्यान देते
1: हैं?
0: जैसे
1: बच्चे को चोरी भी कर लेते हैं या किसी को बडाट लेते हैं या कोई बदमाशी करते हैं, उनको ध्यान दो, सही बात है, उनको समझाओ हर बात के लिए कि बेटा ये गलती है तुम्हारी, ऐसे मत करो, ध्यान से काम करो, चोरी मत करो, कोई भी खाना खाना हो या मांग के खाओ, चुराओ मत, किसी से झगड़ा मत करो, ऐसे माँ बाप सलाह देते अपने बच्चों को।
0: मैंने नैतिक शिक्षा देना चाहिए उसको, बौद्धिक शिक्षा देना चाहिए और रामायण पुराण जो सुनाना चाहिए माता को,
1: ताकि उसमें कोई अंतर पड़े।
0: लेकिन आजकल तो बहुत टीवी और मोबाइल सब एंड्रॉइड फोन आ गया, बच्चे क्या करते हैं, माँ क्या करते हैं, बच्चों को दे देते हैं,
1: फिर उसको छोड़ देती है, फिर बच्चे क्या वो कोई भी चलाने अलग अलग वीडियो देखते हैं, अलग अलग वो नोट, फिर उसमें अलग परिवर्तन आते हैं बच्चों में।
0: तो आप उसके लिए माताओं को कुछ सलाह नहीं
1: देते? पढ़े में ध्यान दो, मोबाइल में ऐसे लगा के दो बच्चों को, बच्चों ध्यान से सुने और बच्चा अच्छा समझदार बने।
0: तो आप माने जब आंगनबाड़ी में आते हैं, हाँ, आपका ड्यूटी क्या रहता है वो बता?
1: मेरे ड्यूटी ये रहता है कि गांव में सर्वे करना, जो भी कोई भी मिले।
0: सुबह कितने बजे आप आते हैं?
1: सुबह 8 बजे।
0: क्या करती
1: हूँ? आजी पढ़ती हूँ, फिर 9 बजे यहाँ से रवाना होती हूँ, फिर गांव की कोई भी औरतें होती उसको दवाई भी नहीं होती तो दवाई दे देती, पास हो मेरे पास तो मैं दे देती हूँ, नहीं तो मेरे पास नहीं होती तो उनको कहती हूँ आंगनबाड़ी में आप लेकर आना, नहीं आती हूँ तो मैं जब भी उसके पास जाती हूँ तो उसको देकर आती हूँ।
0: आप अपना जो सेवा कर रहे हैं बा ड्यूटी जो दे रहे हैं उसमें खुशी राजी रहते हैं ना, कि इसका दबाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुछ बोलेगी?
1: नहीं, नहीं, कोई भी नहीं बोलती है, पर कि उनको सबका काम बटा हुआ है हमारे।
0: अच्छा अच्छा
1: उनका काम वो रजिस्टर का है, मेरा काम घूमने का, इनका काम बच्चों को लाने का नहीं का, और पढ़ाने का।
0: सही में आप लोग
1: तीनों कोई झगड़ते नहीं।
0: लेकिन आपका घर में जो सास ससुर जहाँ रहते हैं, बाप जहाँ पर अपना घर होता है,
1: हाँ,
0: तो वहाँ पर संभालते बच्चों को, अपना परिवार को, यहाँ पर भी एक परिवार को संभालते,
1: संभालना पड़ता है,
0: तो दोनों काम कैसे कर पाते हैं?
1: कर पाते हैं, ये हमारी ड्यूटी समझ के कर लेते हैं।
0: कोई कोई अकेला घर संभालना बहुत चिड़चिड़ा होता है, मुश्किल होता है, लेकिन आप दोनों परिवार को मैंने गवर्नमेंट का और एक अपना गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट को संभालते हैं,
1: संभालते हैं दोनों।
0: चलो सही में सहिष्णु हमारा जो माताएं भाई बहनें के पास इतना शक्ति है जिसका चलते

0: सब चीज में, बच्चों को पालन पोषण, खाना पीना, रोना धोना सब में सहयोग देते हैं, सब काम करते हैं। तो आपका नाम बता?
1: दीपा चौहान।
0: दीपा चौहान, कहाँ से आप?
1: मैं मानपुर।
0: मानपुर से। कब से सहायक का काम लगे?
1: सर मेरे को 11 साल हो गए।
0: 11 साल। इसका पहले क्या करते थे?
1: पहले कुछ नहीं करती थी, बाहर का ही काम करती थी।
0: अच्छा, आप क्या करते हैं खासकर आंगनबाड़ी में?
1: आंगनबाड़ी में हमारा देखो सबसे पहले तो यहाँ आके हम साफ सफाई करनी है, जैसे आगे आंगनबाड़ी
0: खोलना, सफाई
1: सफाई करके
0: फिर बच्चों को बैठाना,
1: पानी भर के फिर बच्चों को।
0: मान लीजिए आपका आशा सहयोगी नहीं और कार्यकर्ता किसी ऑफिशियल काम में हो, बस नहीं रहेंगे, तो आप उस दिन कैसे संभालते?
1: संभालना पड़ता है, पढ़ाते हैं, पढ़ाई पढ़ाई का काम, जैसे पढ़ाना, पोइम बुलाते हैं, खेल खिलाना, वो सब मैं करवाती हूँ।
0: आप कुछ सीखे कि नहीं? बच्चों को जो सिखाते हैं कार्यकर्ता है, आशा सहयोगी, आप कुछ सीखे पढ़ाने के? क्या सीखे आप?
1: हम जो कार्यकर्ता बताते हैं, जो सिखाते हैं, वो हम सीखे।
0: बच्चों को आपको कंट्रोल करना है, किस तरह आप कंट्रोल करेंगे?
1: जी हाँ, जो बच्चों को हम बताते हैं,
0: जैसे
1: जो नियम है ना, उसके हिसाब से पहले उनको ऐसे खिला के नाश्ता वास्ता दे के फिर उनको थोड़ा सा पढ़ाई करवाना।
0: क्या पढ़ाते हैं? गिनती सिखाते हैं?
1: गिनती सिखाना।
0: सिखाओ तो कैसे?
1: 1 2 3 4 ऐसे ही, मतलब
0: एक्शन का साथ सिखाते। और कोई कविता भी सुनाते आप?
1: जी हाँ,
0: सुनाओ तो।
1: सुना
0: सुना हम आज बच्चे बन जाएंगे।
1: हाथी राजा बहुत बड़े हैं, सूंड लाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, कुर्सी पर बैठो ना, कुर्सी बोली चटर पटर।
0: बहुत अच्छा, ऐसा बच्चों को सिखाते हैं, आप सीखते हैं और उसको सिखाते हैं बच्चों को।
1: बच्चों को भी सिखाते हैं।
0: बहुत अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ। आज का कार्यक्रम को सभी ने अच्छे से अच्छे सुंदर रूप में सजाए, सभी को नाम का साथ धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, हमें दीजिए इजाजत। ये था पोषण संबंधित कुछ धात्री महिला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका और बच्चों का तोतले तोतले आवाज को लेकर आज पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता, स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। पिछले सप्ताह मैंने आप सबसे कहा था कि अब कोशिश करेंगे कि दोबारा जल्दी जल्दी प्रोग्राम रिकॉर्ड हों और आप सब सुने और कुछ न कुछ सीखें, जानें, समझें अलग अलग जिंदगियों के बारे में, अलग अलग कहानियों के बारे में और अलग अलग फैमिलीज के बारे में। हमराही एक संघर्ष का नाम है, हमराही एक जज्बे का नाम है, हमराही एक जुनून का नाम है और हमराही एक हौसले का भी नाम है। तो चलिए आज की कहानी से आपको बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के रूबरू करवाते हैं। आज एक बार फिर से हम देश की राजधानी में हैं और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, तो आपको मिलवाते हैं। स्वागत है हमराही कार्यक्रम में अजंता जी और परमेश्वर जी, आप दोनों का
1: नमस्कार।
2: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, सुना आपने, परमेश्वर जी जरा हमारे सुनने वालों को बताएं अपने बारे में, आपकी दिव्यांगता कौन सी है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस तरह से आप दिव्यांग हुए और आजकल क्या कर रहे हैं।
1: मेरा तो नाम परमेश्वर प्रसाद है
0: जी,
1: और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ
0: जी,
1: और मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई पटना से
0: जी।
1: उसके बाद 11th-12th हमारा वाराणसी यूपी इलाहाबाद बोर्ड से
0: जी।
1: तत्पश्चात मैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हम जॉब के लिए प्रयास किया और पहली बार में ही मैंने जॉब में सक्सेसफुल हो गया।
0: क्या बात तो, है वाह।
1: तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MES में मैं कार्यरत हूँ
0: जी,
1: हेड ऑफ क्लर्क के पद पे
0: जी।
1: और इस समय मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी में जुड़ा रहता हूँ। मेरे बचपन से आंखें थी, 10 साल के बाद हमारा आंख जो है रोशनी धीरे धीरे घटता गया। घटने का कारण यह है कि बचपन में क्या हुआ कि जैसे आई फ्लू होता है तो गांव में क्या होता है कि झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना।
0: बिल्कुल होते हैं जी।
1: तो हमारे पेरेंट्स दिखा दिए, इधर उधर दवा डाल दिए, जबकि आंख कान नाक इतना नाजुक होता है,
0: बिल्कुल
1: बिना अच्छे डॉक्टर से सलाह लिए बिना दवा नहीं डालना चाहिए कोई
0: जी।
1: इसी के वजह से हमारा रिएक्शन आंख में जो है इन्फेक्शन हुआ, इसी से रोशनी चली गई।
0: अच्छा,
1: तो ब्लाइंड होने के बाद घर वाले सोचे कि अब क्या होगा, इसका लाइफ कैसे जाए गुजरेगा। तो फिर धीरे धीरे ब्लाइंड स्कूल के बारे में पता चला, पहले पटना में, उसके बाद उत्तराखंड में देहरादून।
0: अच्छा,
1: तो वहां तो मेरा नामांकन नहीं हुआ लेकिन मैं पटना में ही अपना शिक्षा दीक्षा शुरू हुआ। तो आज मैं पटना से वाराणसी और उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली में ही मैं अभी जॉब में लगा हुआ हूँ। और हमारा फैमिली और मैं दिल्ली कैंट में ही है, गवर्नमेंट फ्लैट है यहाँ।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है परमेश्वर जी। परिवार में एजुकेशन का स्तर कैसा है आपके?
1: मिला जुला ठीक है, ना ज्यादा हाई फाई है।
0: घर में इतनी समझ थी कि भाई अब इसकी आंखों की रोशनी चली गई है तो इनकी पढ़ाई करवाना जरूरी है, या फिर किसी ने सलाह दी तो फिर पता चला?
1: नहीं, हम लोग तो गांव में रहते थे, हालांकि हम जहाँ रहते वहाँ गांव नहीं है, टाउन ही है, लेकिन गांव का मानसिकता तो आप जानते ही हैं
0: जी। हाँ,
1: बहुत लोग बोलते थे कि इसको कुछ इधर उधर भेजा करो, गाने में ना गवाओ, 2-4 पैसे मिल जाएंगे, घर में बैठ के क्या करेगा
0: जी।
1: तो हमारे घर में केवल हमारे पापा थे वो पढ़े लिखे थे, बाकी सब शिक्षा से वंचित थे।
0: जी,
1: तो उनका प्रयास रहता था कि इनको कहीं ना कहीं हम जुगाड़ करेंगे। तो वो इस जुगाड़ में रहते थे कि इनका कहीं जुगाड़ लगे और कोई व्यवस्था हो।
0: जी,
1: तभी पता चला कि एक ब्लाइंड स्कूल भी इन लोग का है
0: जी।
1: तो हम पहले देहरादून गए, वहाँ बहुत छोटे थे, एडमिशन हुआ नहीं, तो एक साल मुझे बैठना पड़ा। फिर दोबारा पटना में एडमिशन हुआ, तब हमारी शिक्षा वहां से आगे बढ़ा।
0: जी। और बनारस में आप कहाँ, दुर्गा कुंड में पढ़े हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, वहाँ मेरा 11th 12th हुआ है
0: पोद्दार स्कूल में।
1: जी।
0: आजकल तो सुना है वो 8वीं तक कर दिया है स्कूल।
1: हाँ, वो स्कूल का मामला क्या है कि वो कोई ट्रस्ट चलाता है उसको, और वो ट्रस्ट वाले मड़वाड़ी हैं, तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये बिल्डिंग, उनका उनका मानना है कि ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी के लिए यूज किया जाए। एक अच्छे जगह में है और बढ़िया बिल्डिंग है, जगह भी पर्याप्त है। आज वो स्थिति ऐसी हो गई कि 12वीं से स्कूल जो अब 8वीं तक चली गई है।
0: बिल्कुल, मुझे भी एक बार मौका मिला है उस विद्यालय को जानने समझने का,
1: अच्छा,
0: 2019 में। खैर, तो श्रोताओं, अब आपको अजंता जी से भी मिलवा देते हैं। जी अजंता जी, अभिवादन का जवाब तो दे ही दिया है, लेकिन अब श्रोता चाहते हैं जरा जाने समझें आपकी जिंदगी के बारे में। जी बताएं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर आपका, आपने हमें मौका दिया कि हम लोगों से जुड़ सके। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग क्लब को बहुत बहुत थैंक्स है मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से, और आपको भी स्पेशली। मैं बेसिकली मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ, काठमांडू से। मेरी वेल एजुकेटेड फैमिली है। मेरे फादर मदर दोनों पढ़े लिखे थे, मेरे दादा दादी भी थोड़ा बहुत ही सही उस जमाने का। दादी मेरी 5th पास थी और मेरे दादाजी 8th पास थे। तो ब्लाइंड में बाय बर्थ नहीं हूँ, लेकिन 6 मंथ की जब मैं थी तो मुझे मेनिनजाइटिस हो गया, और ड्यू टू मेनिनजाइटिस मेरे ब्रेन में पानी भर गया, और डॉक्टर की थोड़ी सी लापरवाही कह सकते हैं कि पानी की जगह ऑप्टिक नर्व का ब्लड सूख गया, बिकॉज उन्होंने ब्लड निकाल लिया मतलब पानी की जगह पे, तो मैं ब्लाइंड हो गई। ब्लाइंड हुई तो पहले मैं टोटली ब्लाइंड हुई। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी ना, 1.5 2 साल की रही होंगी, तो मैं दीवार को छू छू के चला करती थी। मुझे बचपन बस इतना याद है, लेकिन मेरे फादर मदर हारे नहीं, उन्होंने सब जगह घुमाया मुझे। यूएस से भी डॉक्टर्स आया करते थे नेपाल, क्योंकि आप सबको पता है कि उस कंट्री को सब मदद करते रहते थे पहले, तो
0: जी
2: नेपाल में आइस के लिए भी स्पेशलिस्ट आते रहते थे।
0: जी
2: तो वहां उन्होंने, मेरे जो ग्रैंडफादर है उनके एक फ्रेंड थे, वो भी एक अच्छे आइस स्पेशलिस्ट थे नेपाल में काठमांडू में, तो उनकी हेल्प से कहो या सोर्स फोर्स से उन्होंने मुझे बाहर के डॉक्टर्स को भी दिखाया। उनका
0: जी
2: यही कहना था कि नर्व्स पैरालाइज लाइट फॉलोज, रिपोर्ट
0: अच्छा
2: हमेशा यही रहती थी, क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स तो पैरालाइज हो ही गई ना, ब्लड है ही नहीं।
0: बिल्कुल
2: लेकिन सबका ये भी कहना था कि जैसे जैसे ये बड़ी होगी ना, थोड़ी बहुत तो इसकी विजन आएगी, तुम
0: अच्छा
2: इसको ग्रीन वेज और तुम अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एग फिश वगैरह खिलाओ। तो ऐसा ही मेरी फैमिली भी करती थी। तो धीरे धीरे फिर मेरी ना रोशनी मुझे दिखने लगा। फिर मेरे, मुझे
0: अच्छा
2: याद है पापा ने ना मेरे को सबसे पहले ब्लू कलर का टूथब्रश दिखाया और मुझे बताया कि ये नीला है, इसको ब्लू बोलते हैं, तो तुम ब्लू जानते, तब तो मैं स्कूल जा चुकी थी, तो ये ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा थोड़ी देर बाद और भी चीजें दिखाने का फिर चीजें पूछी, तो मैं सही पहचान पा रही थी। वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उन लोगों को था कि भले ही फुल साइटेड ना हो, बच्ची को कुछ तो दिखे। फिर सर ब्लॉक्स वगैरह से भी जो कैपिटल लेटर होते हैं ना, वो सब भी थोड़ी थोड़ी, मैं जब बड़ी हुई एकदम से नहीं, तो मैं 6th 7th में आई, तो पापा ने मेरे को ब्लॉक से ABCD की भी पहचान कराई। मैं ब्लाइंड स्कूल से तो नहीं पढ़ी हूँ, मैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन से काठमांडू में पढ़ी हूँ, नर्सरी से ही टाइम से। और फिर 7th 8th में आते आते मेरी विजन और अच्छी हो गई, जब तो उन्होंने मुझे ये ब्लॉक्स वगैरह से पढ़ना सिखाया, फिर बड़े बड़े साइन बोर्ड पढ़ना सिखाया। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे करके मतलब मेरा एजुकेशन भी हुआ। मैं 8th तक नेपाल में पढ़ी हूँ। फिर क्लास 9 में, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है और नेपाल में मैथमेटिक्स का कुछ अच्छा सोर्स भी नहीं था उन दिनों में ब्लाइंड के लिए,
0: अच्छा
2: तो
0: जी,
2: मुझे ना वहां से भाग के, कह सकते हो मतलब मैं मस्ती में बात करती हूँ, छुआना
0: आगे भी
2: चाहती
0: तो
2: नहीं
0: अच्छे
2: थी।
0: काम के लिए भागे ना जनता जी।
2: हाँ, तो मैं जो है इंडिया आई कि इंडिया में मैथ्स जो है 8 तक होता है, अगर 9 से आप कोई और सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो पता
0: जी
2: नहीं कैसा जुनून था कि सितार सीखूं, सितार
0: ओ
2: सुनती थी कभी कभी ना, अच्छा लगता था। तो मैं
0: जी
2: आई थी तो मैंने यहाँ राष्ट्रीय ब्रजानंद कन्या विद्यालय है विकासपुरी में दिल्ली में, वहाँ एडमिशन लिया 9 से। और मैं सितार तो खैर नहीं सीख पाई ज्यादा, क्योंकि वहां पे भी इतने सोर्सेस नहीं रहे, रिसोर्सेस नहीं रहे जो भी है। फिर मैं उस सपने को भी तोड़ दिया, फिर मैंने पढ़ाई की वहां 12th तक, फिर लक्ष्मीबाई कॉलेज जो DU का है वहां से मैंने ग्रेजुएशन की। मास्टर्स इन सोशल वर्क करना चाहा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई,
0: वो भी सपना टूट गया।
2: हाँ वो कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई कि उन दिनों रिलैक्सेशन थे नहीं, और आपको पता है कि पहले परसेंटेज बनाना बहुत मुश्किल होता था, है ना। अब तो बहुत इजी रह गया पढ़ाई, पहले के टाइम में 2001-2 के टाइम में हमारे लिए पढ़ना और सब कुछ बहुत थोड़ा टफ सा था, तो उतने परसेंटेज बना ही नहीं पाई मैं कि उसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो फिर मैंने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से कंप्यूटर ट्रेनिंग की, और फिर उसी की वजह से 2003 में, छोटी एज थी मेरी, मैं वहां पे अजंता आदर्श अंध विद्यालय नाम का स्कूल है सादिक नगर में 8 तक,
0: क्या नाम
2: तो जनता आदर्श अंध विद्यालय,
0: है? जनता में
2: हाँ
0: अजंता।
2: बिल्कुल जनता में अजंता पहुंच गई एज अ पार्ट टाइम कंप्यूटर ट्रेनर। फिर शायद उन्हें मेरा काम अच्छा लगा, वट एवर, उन्होंने 2005 में मुझे रेगुलर किया, और कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश भी मेरे लिए दिया कि आपकी इंग्लिश ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ाओ यहाँ पे। तो फ्रॉम दैट डे आई एम वर्किंग एज अ कंप्यूटर ट्रेनर एंड इंग्लिश एजुकेटर इन जनता आदर्श अंध विद्यालय। मीनवाइल फिर मैंने शालिनी खन्ना मैम को किसी की एडमिशन के लिए एक बार कॉल किया 2003 में ही, तो उन्हें भी पता नहीं थोड़ा ठीक लगा, वाट एवर, उन्होंने बोला तुम काम कर सकते हो, इंग्लिश क्लास ले सकते हो। मैंने बोला यस। बोले अच्छा आओ मिलो मुझसे जरा। तो फिर नवंबर 5 में मैंने जनता आदर्श ज्वाइन किया था, और दिसंबर 31 को मेरा फर्स्ट डे था नैव इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज में एज पार्ट टाइम इंग्लिश टीचर।
0: करीब करीब आप मतलब 23 सालों से जॉब कर ही रहे हैं एक तरह से, है
2: बिल्कुल
0: ना? जी बताएं,
2: यस
0: आगे बताएं। जी
2: बिल्कुल। बस तो पहले मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी नैव इंडिया सेंटर में, फिर 2015 से मैं मोबिलाइजेशन पर्सन और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर बनी, और अब मैं साथ में एडमिशंस भी देखती हूँ। मेरी अगर हॉबी की बात करूँ तो मुझे ट्रैवल, कुकिंग, ये सब बहुत पसंद है, और मैं मूवीज भी देखना पसंद करती हूँ, पुराने कम देखती हूँ नए, और गाने भी मेरे को ज्यादातर पॉप टाइप के ज्यादा पसंद आते हैं। और बस, और मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, ठंडा मौसम पसंद है, हाँ
0: आप नेपाल की जो हैं।
2: कह सकते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अजंता जी, फिर मतलब ये जो स्कूल में पढ़ाने का और नैब से जुड़ने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
2: बहुत बढ़िया। शुरू में थोड़ा लगा, जब मैं स्कूल में टीचर बनी ना, तो मुझे लगा मैं तो MNC के लिए बनी हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर फील्ड से थी, टेक्नोलॉजी से थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कंप्यूटर टीचर बनूँ। हाँ बचपन में जब खेलते हैं ना घर में, तो मैं टीचर टीचर खेल ज्यादा खेलती थी, तो पापा बोलते थे तो बाद में ना टीचर बनेगी, मैं बोलती थी नहीं मैं डॉक्टर, मेरे को ये तो पता नहीं था ना मैं ब्लाइंड तो डॉक्टर नहीं बन सकते, मैं बोलती थी

0: का डॉक्टर बनूंगी, लेकिन बाद में मुझे भी लगा कि मैं किसी एमएनसी में जाऊंगी, किसी बढ़िया कॉल सेंटर में कहीं अच्छी जगह पे जाऊंगी। फिर जब मैं टीचर बनी तो शुरू में मुझे थोड़े दिन लगा, लेकिन बाद में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि वहां पे हमेशा आप यंगस्टर्स से जुड़ते हो, और जब आप यंगस्टर्स से जुड़ते हो ना तो हमेशा यंग रहते हो, आपकी जो भी फीलिंग्स होती है ना वो बूढ़े होने ही नहीं देते आपको।
1: अच्छा, गवर्नमेंट जॉब का भी सपना था आपका?
0: नहीं सच बताओ ना तो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन मेरा एक चीज था कि मुझे ना बैठना नहीं है, अगर मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊं तो मुझे काम मिले, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से ये सिखाया है कि आप अपने लिए सेल्फ हेल्प पे बिलीव करो। मुझे उन्होंने कभी ब्लाइंड बन के रहने ही नहीं दिया। जो पनिशमेंट भाई को मिली वो मुझे मिली, जो चीज वो भाई से एक्सपेक्ट करते थे कि वो सीखे वो चीज उन्होंने मुझसे भी की। उन्होंने कभी इसको बैरियर बनने ही नहीं दिया मेरे ब्लाइंडनेस को ना। तो मुझे भी था कि भाई मैं अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी तो फिर मुझे काम मिले, ऐसा नहीं कि भाई आप आ रहे हैं बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रही गवर्नमेंट जॉब वाले ऐसा ही करते हैं, लेकिन अपनी जो भी आपकी एबिलिटी है उस हिसाब से काम मिले ना तो मजा आता है, फिर जॉब पे जाने का एक अलग वो रहता है। तो प्राइवेट जॉब में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क देते हैं ना तो मुझे मजा आता है। गवर्नमेंट जॉब की एक दो एग्जाम्स दिए मैंने, बैंकिंग के दिए, और एक बार मैंने ESIC का भी दिया था, और एक बार मैंने EEO का दिया था, पर मैंने इतने सीरियसली दिया ही नहीं था कि मेरा हुआ ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है ही, तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की शादी के बाद तो और भी। हाँ जी
1: जी, तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा ही प्रोग्राम, आज अजंता जी और परमेश्वर जी के साथ। देखिए श्रोताओं, यही इत्तफाक होता है, यही जिंदगी है। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे सपनों के सच होने की, और इस प्रोग्राम में कुछ कुछ बात ये हो रही है कि सपने अधूरे रह गए। ऐसा ही होता है हम सबके जीवन में भी। चलिए आगे अब बढ़ाते हैं बातचीत को। तो अजंता जी, बताएं अब फिर मेन मुद्दा जो है हमारे इस प्रोग्राम का, जिसके लिए श्रोता भी इंतजार करते हैं। ये सब तो एक जरूरी हिस्सा होता है कार्यक्रम के उस हिस्से तक पहुंचने का, जिस हिस्से के पीछे कोई ना कोई किस्सा छुपा हो। तो अब मुद्दा
0: बिल्कुल
1: ये है कि आप दोनों के मिलने का क्या किस्सा है, ये बताएं जरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल। उससे पहले मैं आपसे आपको एक बार करेक्ट कर दूं, सपने सर मेरे अधूरे नहीं रहे, क्योंकि मुझे सोशल वर्कर बनना था ना।
1: नहीं, आपने
0: तो
1: कहा ना लेकिन कि आपको सितार का सपना और मैथ्स का सपना।
0: यस यस यस हाँ, सितार का तो टूट गया, लेकिन आज बीइंग सोशल वर्कर मैं बहुत
1: जी
0: खुश हूँ। मैं आज
1: बिल्कुल
0: लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला पाती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी मतलब एडमिशन के लिए मुझे अप्रोच करते हैं, और बड़े बड़े लोग भी करते हैं, है ना। तो
1: बिल्कुल
0: ये है कि मुझे मजा आता है। और जो आपने पूछी है, जिस पे हम जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, तो आप किससे पहले सुनना चाहेंगे, मुझसे या परमेश्वर जी से? ओके,
1: आप ही से अभी तो हम बात कर रहे हैं।
0: तो
1: जी
0: मेरे पेरेंट्स को था कि अब जॉब भी कर रही है, चल ठीक है प्राइवेट जॉब ही सही। और ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि ना नेपाल में जल्दी ब्लाइंड लड़कियों की ब्लाइंड से शादियां नहीं होती है ना। अब थोड़ा होने भी लगा, पहले नहीं मैंने देखे। सबको रहता है कि एक्साइटेड, चाहे ब्लाइंड लड़का भी हो चाहे ब्लाइंड लड़की हो, एक्साइटेड चाहिए, है ना। और मैं थोड़ी सी अलग थी, मेरे मन में ये था कि अपने जैसा होगा तो हमें ज्यादा समझेगा, क्योंकि एक्साइटेड होगा तो थोड़ा सा उसको लगेगा कि ठीक है ये काम मैं जल्दी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लाओ ये मेरे को दे दो ये कर दो। वो हो सकता है सिंपथी ना दे रहा हो हमें, लेकिन कभी कभी ऐसा लगने भी लगता है कि नहीं यार हम भी तो साथ साथ में काम करेंगे ना, जब पार्टनर है तो फिर हम ऐसा क्यों सोचें। तो मेरा शुरू से ही था कि मुझे अगर मैं शादी करूंगी तो मेरे को ब्लाइंड चाहिए। तो ऐसे ही फिर मैंने पेरेंट्स को मनाया, पहले तो वो साइटेड के लिए कह रहे थे कि मतलब थोड़ा तो होता ही है हर किसी का मन में। तो फिर एक फ्रेंड है हमारे, मतलब मेरा एक फ्रेंड है मनीष, मनीष गुप्ता, वो भी लेट ब्लाइंड थे, हम AICB में मिले थे। तो एक दिन उनका फोन आया कि यार अजंता क्या हाल चाल, शादी वादी नहीं करोगे? मैंने बोला इतना बोल रहे हो तो ढूंढ के दिखाओ।
1: मनीष जी, आपके मनीष जी आपके मित्र थे और AICB में मिले वो आपको?
0: हाँ मिले थे तो फोन पे बात होती थी हमारी। AICB में
1: ये
0: हम
1: कौन से
0: टू
1: सन की
0: थाउजेंड
1: बात
0: टू
1: है?
0: थ्री में ये 2002-03 से मतलब हम लोग जानते थे एक दूसरे को।
1: ओके
0: तो वो क्राइसिस यूनिट में थे और मैं कॉलेज गोइंग के लिए थी AICD में, तो हमारी बातचीत बीच बीच में होती रहती थी। तो वो बोल रहे थे अब तो शादी वादी कर लो, ये 2012 की ही बात है, अप्रैल की। तो मैंने उन्हें बोला अच्छा ढूंढो लड़का कोई हो, तो फिर उन्होंने वाकई में परमेश्वर जी को ढूंढ निकाला और फिर हमारी फोन पे बात कराई। परमेश्वर जी की अपना बताएंगे, उनके थ्रू, एक मीडिएटर के थ्रू ही वो भी मिले मनीष जी तक, और बस फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर पहले फोन पे बात हुई, फिर उसके बाद लगा कि सुइटेबल कैंडिडेट है, तो हम मिले भी। और बहुत सारी चॉइसेस हम दोनों की मिलती जुलती है, खाने पीने से लेके सोच में भी, और कुछ कुछ चीजें अपने हॉबीज में भी। तो लगा कि हाँ ही इज गुड कैंडिडेट फॉर मी, तो बस।
1: तो क्या परमेश्वर जी के अलावा कोई और भी बातचीत हुई थी किसी और के बारे में भी, या बस इन्हीं के बारे में बात हुई और इन्हीं को अपना लिया?
0: नहीं, पहले भी और दो चार लोगों के बारे में लोगों ने बताए थे, लेकिन उनसे ना बात बनी नहीं, जमी नहीं, मुझे लगा नहीं कि हाँ। लेकिन परमेश्वर जी की सबसे अच्छी बात है कि उनका मन बहुत अच्छा है, मन के बहुत साफ पर्सन है ये, और इनका मन ही देख के, बस मैंने और कुछ नहीं देखा, सिर्फ इनका मन देख के शादी किया था।
1: अच्छा, तो
0: हाँ जी,
1: आप दोनों को मिलवाने में, मतलब ये कहना चाहिए, मनीष जी का हाथ है।
0: हाँ, मनीष जी और एक प्रवीण जी है परमेश्वर जी के दोस्त, इन दोनों का।
1: ओके, तो जब आप हौस खास से जुड़ गए थे तो
0: हाँ जी,
1: फिर वहां भी प्रयास हुए होंगे शालिनी मैम वगैरह के माध्यम से भी?
0: हाँ, देखो लाइफ में क्रश सबका होता है, मेरे भी क्रश थे, मुझे भी कुछ लोग अच्छे लगते थे, लेकिन ये था कि लोगों की सबकी थिंकिंग अलग होती थी, है ना। उन लोगों को था कि नहीं ब्लाइंड से नहीं करना है, ब्लाइंड को पता नहीं चीजों की पता नहीं चलती, जो भी है वॉट एवर। तो फिर शालिनी मैम लोग मुझे एक दो कैंडिडेट उन्होंने भी बताए हैं, और अच्छे अच्छे कैंडिडेट बताए उन्होंने भी, बट वही वाली बात है ना, संयोग जहाँ होता है ना वही होता है। मुझे इतना इंटरेस्ट आया नहीं, इंटरेस्ट मुझे सीधा परमेश्वर जी के ऊपर आया जब उनसे मिली, मैं बात किया मैंने तब।
1: मेरा पूछने का मतलब खैर वो नहीं था, हालांकि आप उस ओर भी
0: हाँ
1: ले गए
0: हाँ
1: तो अच्छी बात है। मतलब मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि मैम ने भी कहीं ना कहीं बात की होगी, आप आपसे पूछना शुरू किया होगा कि भाई शादी वगैरह का
0: हाँ
1: क्या।
0: देखो, अरे नहीं, बहुत शालिनी खन्ना मैम का ये है कि वो मेरी बॉस बहुत कम, मेरी एक एल्डर सिस्टर कह सकती हूँ, मैं उनसे हर तरह की बातें कर लेती हूँ। मैं उनकी एम्प्लॉय जरूर हूँ, लेकिन मैं उनको उस नजर से, मतलब रेस्पेक्ट है मेरे मन में उनके लिए पूरा पूरा, लेकिन मैं उनसे ना अपनी कुछ भी कह सकती हूँ। कल को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम भी हुई तो मैं उनके सामने जाके रो सकती हूँ, गुस्सा आया तो मैं अपना गुस्सा भी दिखा सकती हूँ उनको, और वो समझती भी है कि ये गुस्से में है ना। मतलब हमारी जो पहचान है, हमारी जो बॉन्डिंग है, वो इतनी अब डीप हो चुकी है कि मैं उनसे कुछ भी कह दूंगी या कुछ भी उनको बोल दूंगी तो वो मुझे समझ लेती हैं। उन्होंने बिल्कुल सोचा है मेरे लिए, मतलब सोचा था तब, और ट्राई भी किया था, लेकिन वही कि परमेश्वर जी से होनी थी ना, इसीलिए परमेश्वर मिलना था, तो फिर और कहीं
1: मिल
0: कोई
1: जब
0: और ईश्वर
1: बात ही
0: मिला ही नहीं।
1: परमेश्वर परमेश्वर पे ही जब बात आ गई तो फिर उससे आगे बचा कौन?
0: सही बात है,
1: आपने कहा क्रश की बात की आपने अजंता जी, फिर आपने ये
0: बिल्कुल।
1: किया कि ब्लाइंडनेस कहीं ना कहीं आड़े आ गई,
0: हाँ
1: इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि वो जो भी थे, जो लोग वो दृष्टिवान थे, मुख्य धारा के लोग थे?
0: नहीं, थे तो वो भी हमारी तरह विजुअली इम्पेयर्ड, बातचीत उनकी भी अच्छी थी, लेकिन उनका ये था कि शादी नहीं, टाइम पास, और टाइम पास मुझे करना नहीं था। हाँ मतलब बातचीत करो ऐसे ही।
1: बिल्कुल।
0: हाँ वो, मैं उस टाइप की लड़की शुरू से नहीं रही। हाँ मेरा था कि भाई बातचीत मीन्स ठीक है, मतलब गुड फ्रेंड्स अलग चीज होती है, अगर आप पर वैसे बात कर रहे हो घंटों घंटों फोन पे करना चाहते हो ये सब है तो फिर नहीं। अगर आप मैरिज के हिसाब से सोचते हो तो उस हिसाब से बात करो। पहले मैरिज के हिसाब से बात करते थे, फिर उनको लगता था कि नहीं।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब आपकी ऐसी इच्छा है तो परमेश्वर जी से भी पूछ लेते हैं को इतनी जनता के बीच में अपनी अजंता को ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई या नहीं हुई।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल,
1: परमेश्वर जी, बताएं जरा।
0: मुश्किलें नहीं थी। मेरा भी जो दोस्त था प्रवीण, तो उन्होंने मनीष से बात की होगी, तो उन्होंने बोला कि एक लड़की है, तो ठीक है बात कराओ फिर मेरी।

0: पैर वैर दब जाते थे, तो आम लड़कों की तरह मैं लड़कियों के पास भी थप्पड़ जड़ देता था। बाद में लोग समझाए कि नहीं, ये सब पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, सब
1: नहीं,
0: ये दिल्ली में थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा।
1: ये दिल्ली है, ये पटना ना ही। हाँ
0: बोले नहीं, किसी लड़की वड़की पर हाथ मत उठाया करो, फिर महंगा पड़ जाएगा, सोचो समझो। फिर मैं समझ में आ गया मुझे कि ये अपराध है लड़कियों पर हाथ उठाना। तो फिर इन सब चीजों से मैं दूर ही रहता था ज्यादातर, लेकिन सोचा अब जब जॉब लग गया है तो कुछ करना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: तो 1-2 महीना हमारी बातचीत चलती रही,
1: नहीं,
0: लेकिन
1: पहले
0: मैंने
1: तो ये
0: थोड़ा कॉल
1: बताइए कि फिर अजंता जी का कॉल आया या आपने ही किया?
0: देन का ही आया।
1: इनका ही आया था, ठीक है। एक
0: तो
1: दो महीने बातचीत हुआ फिर।
0: बातचीत होते रही, तो बोले मिलने आओ कभी। तो मैंने बोला कि ऐसा है, बाहर ही मिलते हैं, कहीं चाय वाय पीते हैं।
1: जी
0: घर में एक कमरा लेकर रहती थी और मैं दिल्ली कैंट में था, तो मुझे लगता था कि भाई मिलना एक अलग ठीक नहीं है, हम बाहर ही मिलते हैं कहीं।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो हम एक लड़के को लेकर गए थे कि चलो जरा मिल के आते हैं, कैसा क्या व्यवहार है। तो लेकिन हमको जाना था कहीं, और चले गए जहाँ रह रहे थे कमरे में, वहीं चले गए।
1: अच्छा।
0: हमारे साथ एक मीडिएटर था, वो बात करता रहा करता रहा करता रहा। हमें कहा ठीक है, बातचीत से लगा कि हाँ हमारी यहाँ जो है विचार स्वभाव मिल रहा है, मन भी मिल रहा है, फिर आगे बात बढ़ानी चाहिए। फिर हम 1-2 महीना बात करते रहे करते रहे, और घर वालों को सूचित किए। उस बीच में बोली कि क्या हुआ, क्या सोचा, जल्दी करो। मैं कहा इतना जल्दी है तो कहीं और देख लो। फिर
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स थोड़ा गांव में रहते हैं ना, तो यहाँ आने में तो उनको दिक्कत थी, तो मेरा विचार था कि वो यहाँ आए, सब कुछ देखें समझें, तब अपना राय सलाह दे। करना तो मुझे ही था, क्योंकि वो तो चाहेंगे नहीं कि ब्लाइंड ब्लाइंड से करे, उनका भी सोच
1: बिल्कुल।
0: यही था कि साइटेड से करे, क्योंकि वो दिल्ली में तो थे नहीं, तो अपने हिसाब से चाहते थे ना। फिर पेरेंट्स जैसे तैसे आए, बातचीत हुई, उन्होंने खुद अपने से देखा के बाद तब हाँ में हाँ मिली, तब बात बढ़ी आगे शादी की।
1: आपकी जॉब कौन से साल में लग गई थी?
0: जो मेरी 2010 में लगी थी, 12 मई 2010 में।
1: 10 में लगी थी। अच्छा, फिर ठीक है।
0: हाँ,
1: और शादी तो खैर 12 में हुई ना आप दोनों की,
0: दिसंबर में।
1: तो 1-2 महीना बातचीत में फिर आपको ये समझ में आ गया कि भाई आपकी जीवन संगिनी, जीवन साथी बन सकती हैं।
0: बन सकती है जी। नहीं, मेरा एक ये था कि पेरेंट्स एक बार खुद से देख ले, क्योंकि बिना पेरेंट्स के हम आगे नहीं बढ़ते थे। जो भी सोचते थे, पेरेंट्स की अनुमति के बगैर हम कोई काम करते नहीं थे। तो उनको आने तक इंतजार किया, आए भी, बातचीत भी हुई, देखे भी, तब फिर आगे बढ़ी बात है।
1: शादी दिल्ली में हुई कि बिहार में हुई?
0: नहीं, शादी तो दिल्ली में हुई थी। हमारा वो चौपाल धर्मशाला है, वहाँ ये फिल्म स्थान, यहाँ दिल्ली में ही, वहाँ पर हमारी शादी हुई। और वही मंदिर है, आर्य समाज मंदिर, वहाँ शादी हुई, और धर्मशाला में हम लोग पार्टी वार्टी थी।
1: लेके जाते हैं बिहार कभी?
0: अभी तो रक्षाबंधन में घूम के आए वहां, चलता
1: अच्छा, अभी घूम के आई हैं, मतलब आना जाना वहां भी लगा हुआ है।
0: रहता है।
1: बहुत बढ़िया।
0: नेपाल
1: और
0: भी
1: वो
0: जाना आना होता है, बिहार भी जाना आना होता है।
1: बहुत बढ़िया, नेपाल और बिहार को दिल्ली ने जोड़ के रखा हुआ है
0: जी,
1: ना? तो
0: लेकिन नेपाल जाना थोड़ा, अब वहां तो वाई एयर जाना पड़ता है, तो थोड़ा बिहार इतना तो नहीं जा पाते हैं, पर हाँ जाते रहते हैं। साल में 2 बार तो यात्रा हो ही जाती नेपाल की।
1: 14 साल हो गए आप लोगों की शादी को, तो कोई मुश्किल, कोई कठिनाई शादी के बाद जीवन में महसूस हुई?
0: नहीं, शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, और हम एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह भी रहते हैं, घर परिवार की तरह भी रहते हैं, मौज मस्ती में है, अच्छी चल रही है। हाँ
1: अच्छी चल रही है।
0: जी,
1: तो आपकी हिम्मत नहीं हुई और इनकी हिम्मत हो गई कुल मिला के, मतलब ये जो ज्यादा श्रेय है वो तो अजंता जी को जाना चाहिए एक तरह से।
0: कह सकते हैं।
1: आप तो सोच के बैठे थे, अब इनका कॉल, ये भी अगर ऐसा सोच लेते मान लो फिर।
0: हाँ, तो फिर तो हमें और ढूंढना पड़ता, फिर थोड़ा और टाइम
1: हाँ
0: लगता, तो 12 नहीं बल्कि फिर 14 में होता।
1: अच्छा, परमेश्वर जी ये बताइए कि शादी के बारे में

0: कभी कोई ऐसी बात आई थी आपके परिवार में, जीवन में, मन में, शादी गांव में करनी है, ब्लाइंड से करनी है या साइटेड से करनी है या करनी ही नहीं है, कुछ इस तरह के विचार भी थे क्या मन में कभी?
1: नहीं, ये सब प्लान हम स्कूल में बना लिए थे।
0: अच्छा, पहले ही? वाह, क्या
1: ये हमें
0: मना
1: शादी,
0: बताएं जरा।
1: पहले हमें जॉब करना है, 2 साल तक हम खुद खाएंगे खिलाएंगे, जितना मौज मस्ती करना हो तब करेंगे, क्योंकि ये मौका परिवार में बनने के बाद नहीं मिलता है। जो अकेले में एंजॉय होता है ना, फैमिली लाइफ में वो नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: और वैसा ही हमने किया भी, 10 में हमारी 2010 में जॉब लगी, 2 साल तक हमने खूब खाया पिया उड़ाया, कुछ सेव भी किया।
0: बचाया नहीं।
1: उसके बाद लगा कि अब जो है,
0: हाँ
1: अब हमारा काम पूरा हो गया है, तो अब परिवार के विषय में भी सोचना चाहिए। फिर हम अपने दोस्तों को इधर उधर बोलने लगे कि अब ढूंढो देखो। और मुझे तो ब्लाइंड से करने का था मन था, क्योंकि हम ब्लाइंड के विषय में जान चुके थे, लेकिन ये घर वाले का केवल दबाव था कि ब्लाइंड हो कैसे, अगर दोनों ब्लाइंड हो तो कैसे चलेगा, और कैसे चलेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि वो अपने पास देखते नहीं थे ना, क्योंकि हम दिल्ली में रहते थे, वो बिहार में थी। उनको लगता था कि कैसे काम करेगा, कैसे जाएगा आएगा। उन्होंने हम बहुत कन्विंस किया कि नहीं, दिल्ली में अगर हम साइटेड से करते हैं तो कल को क्या कर रही है नहीं कर रही है हमें तो कुछ पता नहीं चलेगा,
0: सही है।
1: तो कल को कुछ हो जाएगा तो फिर हाथ पे हाथ धर के रोते रहोगे। और ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड के फीलिंग जानता है,
0: बिल्कुल।
1: तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, 2 दिन 4 दिन भाग के जाएंगे, फिर तो आना ही है ब्लाइंड के पास।
0: अच्छा,
1: एक्साइटेड तो अगर जो कर दिया तो कर ही देगा। क्योंकि हम और दो तीन घटना हम सुन चुके थे, दिल्ली में देख भी
0: मैं
1: चुके थे। हाँ
0: वही पूछने वाला था कि भाई ऐसे केस सुने हैं क्या आपने? जी।
1: जी, मैंने बुराड़ी में सुना था एक दो केस।
0: चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल उसकी चर्चा तो रहने देते हैं अपन, लेकिन
1: हाँ
0: चलिए
1: लेकिन
0: कुछ तरह
1: ठीक
0: की
1: है।
0: अच्छी बात है। अच्छा, कोई और भी जीवन में किसी और के बारे में भी प्रस्ताव आया था या सीधा बस मैडम के बारे में ही प्रस्ताव आया था
1: नहीं,
0: शादी?
1: शुरू शुरू में हमारे दोस्त लोग थे, वो थोड़ा इन सब चीजों में एक्टिव थे पहले से ही,
0: जी
1: शादी वादी तो नहीं, वहाँ पे प्यार प्रसंग में थे वो लोग।
0: नहीं, आपके जीवन में सीधा जो आपको आपके दोस्तों ने बताया, जनता मैडम के बारे में बताया या कोई और भी किसी के बारे में आपको बताया था कि भाई ये भी है वो भी है ऐसे?
1: हाँ, अब हल्का फल्का एक दो लड़कियों से मुलाकात हुई थी पहले, लेकिन जिनसे मुझे नहीं करना था वो मुझे जोर लगाया, लेकिन उसके हुआ नहीं, उसे करना ही नहीं था मुझे, उसमें बहुत सारी कमियां थी। और जिसको जिसको हम चाहे उसकी शादी कहीं और हो गई, इसलिए
0: बहुत बढ़िया।
1: मैंने फिर सोचा जब होगा तब होगा, देखा जाएगा।
0: तो ये सब अजंता मैडम को पता है कि नहीं पता?
1: हाँ, हम जो भी करते
0: अच्छा।
1: हैं ओपनली करते हैं।
0: चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुन रहे हैं आप हमारा ही प्रोग्राम अजंता जी और परमेश्वर जी के साथ। उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बाकी वो तो खैर आपकी प्रतिक्रिया बताएंगी। चलिए, बातचीत को अब आगे लेकर के चलते हैं। जी अजंता जी, तो ये कब सोच लिया आपने, चलिए मैथ्स पढ़ना और सितार सीखना, आगे की एजुकेशन लेने के लिए इंडिया आ गए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये फिर कब आपने तय कर लिया कि अब रहना तो दिल्ली में ही है, भारत में ही है, वापस नहीं जाना है?
1: देखिए, कभी कभी ना, मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो है चाहते ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो मेरा ना इंडिया में रहने से मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन हर किसी को लगता है ना अपने पेरेंट्स के आसपास रहें, है ना, ताकि हम जल्दी से उनके पास प्रॉब्लम में भी जा सके और वो भी हमारे पास आ सके, खुशी में भी जा सके। बट थोड़ा सा इस बात का दुख मुझे हमेशा से ही है, लेकिन ये सच्चाई भी मैं जानती थी कि बेटर लाइफ अगर जीना है तो हर कोई आजकल ब्लाइंड ही क्यों, साइटेड लोग भी तो अब्रॉड में जाके कर रहे हैं, इधर जाके कर रहे हैं। तो मैं इंडिया में अब सेटल हो जाऊंगी तो एटलीस्ट इंडिया में ब्लाइंड के लिए फैसिलिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। इसीलिए फिर मैंने ये मन में सोच लिया था कि नहीं, मैं यहीं पे करूंगी। और जहां तक रही बात शादी की, तो मुझे पता था कि इंडिया में लड़के ज्यादा मिल जाएंगे, मतलब नेपाल के कंपेरिजन में ब्लाइंड
0: बिल्कुल।
1: लड़के मिल जाएंगे। तो फिर बस वही था मेरे मन में। और मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, नो डाउट। मेरा ससुराल, सच बताऊं तो मेरा दूसरा मायका है, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं और दीदी जो इनकी हैं दोनों बहुत अच्छी, मतलब फैमिली मेरे को एकदम अच्छी मिली है, इनके मन के साथ साथ अच्छी फैमिली भी ब्लेस की है गॉड ने मेरे को।
0: नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई ये फैसला आपने कब कर लिया था कि मुझे अब वापस नेपाल जाना नहीं है। आपने बताया कि जाने का मन तो था पूरी की भाई, अब तो यार इंडिया में ही रहते हैं चलो, ये कब तय हो गया था? जब आपकी जॉब लगी तब हुआ था या उससे पहले ही ये तय हो गया था?
1: थोड़ा सा उसके बाद जॉब लगी और मैंने फिर भी सिचुएशन देखे लोगों को करते हुए, और यहाँ पे मतलब नेपाल से और भी मेरे सीनियर एक, मैं आई हूँ डॉक्टर श्वेता सिंह है एक विजुअली इम्पेयर्ड, उनकी मम्मी की वजह से, मतलब श्वेता दीदी मेरी नेपाल में सीनियर रही हैं।
0: असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शायद वे, है ना?
1: हाँ नहीं, प्रोफेसर नहीं, वो रीजनल असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं। हाँ
0: डायरेक्टर हैं इग्नू में, है ना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही।
0: जी
1: हाँ तो उन्हीं की हेल्प से मैं यहाँ आई हूँ, और उसमें आंटी ने बहुत हेल्प की मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने में, कि समझाने में कि भेज दो कुछ नहीं होगा ये वो। पहले थोड़ा पेरेंट्स को लगता है मैं अकेली बेटी हूँ, मेरा एक भाई है बस, हम दो भाई बहन है, तो
0: जी
1: पेरेंट्स की बचपन से ही मैं बहुत ही एकदम क्या बताऊँ, मतलब लाडली बोलते हैं ना हिंदी में, एकदम एडोरेबल चाइल्ड हूँ।
0: बिल्कुल
1: उन्होंने
0: बिल्कुल
1: हाँ मुझे प्यार भी उतना ही दिया, सब कुछ दिया, मतलब मेरे को बैरियर मेरी लाइफ में कोई सी भी चीज को बनने नहीं दिया, तो उनको लग रहा था, बट आंटी ने बहुत कन्विंस किया कि नहीं जाने दो कुछ नहीं होगा चलो आप लोग। फिर मैं आई यहाँ पे इंडिया, तो मतलब तब तो था कि नेपाल वापस जाना है, लेकिन फिर जॉब लगने के बाद देखा अरे छोड़ो यही रहते हैं यहीं पे, और मतलब सब फ्रेंड्स भी मेरे यहाँ बन गए, अच्छी अच्छी मेरी सब फ्रेंड्स हैं, स्कूल की फ्रेंड्स भी हैं और बाकी लोग, क्योंकि मेरा ना मिजाज ही ऐसा है, मतलब मेरा नेचर फ्रेंडली है तो तुरंत दोस्त बना लेती हूँ मैं। हाँ लेकिन ये जरूर है कि मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स वही हैं जो कि मतलब पॉजिटिविटी को लेके चलते हैं, अगर किसी में नेगेटिविटी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी नेगेटिविटी को मार सकूं, अगर नेगेटिविटी को मैं किल नहीं कर पाती हूँ उसकी, तो फिर उसे हाय हेलो तक ही मैं सीमित रहती हूँ।
0: अच्छा, बहुत खूब। अच्छा अजंता जी, बताइए मुझे कि देखिए काम तो लगभग सबके जीवन में ही है ना,
1: हाँ
0: और अपने अपने तरीके से हम लोग वक्त निकाल लेते हैं सारी चीजों के लिए, सारी चीजें हम मैनेज भी करते हैं, लेकिन
1: हाँ जी
0: कभी कभी कोई मामले आपके, जब अभी आपने बात की निराशा की, है ना, तो कभी आप जब अकेले में सोचते हैं या कभी वक्त मिलता है खुद से जब बात करते हैं, तो क्या आपको भी किसी बात का दुख होता है या कोई निराशा आप पर हावी होती है या कोई चीज है ऐसी जो आपको परेशान करती है?
1: देखो जो रियलिटी है ना वो ये है कि मैं जब सच बताऊं आपको भी हंसी आई और श्रोताओं को भी, मैं ना सबसे ज्यादा निराश तब होती हूँ जब मैं बस का वेट कर रही हूँ और मेरे को थोड़ा बहुत विजन है, तो जैसे मैं एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज हेल्प मी टू टेक दिस बस बोल रही हूँ, और लोग धीरे धीरे पीछे सरक रहे हो, एकदम से नहीं सरकते, जैसे धीरे धीरे करके ना स्टेप बाय स्टेप पीछे हटते हैं, कुछ नहीं बोलते, एकदम क्वाइट से पीछे हटते हैं, और फिर मुझे लगता है कि यार मैं ब्लाइंड नहीं होती ना तो ये चीज नहीं देखने को मिलता आज, है ना, मेरे को ब्लाइंडनेस कभी मेरे मतलब बुरा नहीं लगता है, मुझे सिर्फ बुरा लगता है कब, जब लोग आंखों के सामने सामने ना डिच करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी वर्क प्लेस में मैं देखती हूँ कि लोग इशारे में कई चीजें बोल जाते हैं, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है कि कुछ ऐसे मेरे कलीग्स होंगे जो कि इशारों इशारों में ही बहुत कुछ मेरे से, मतलब चुप चुप अरे छोड़ो रहने दो मत बचाओ टाइप के इशारे करते हैं, है ना, तो मेरे को इतना नहीं दिखता, लेकिन मेरे साथ वाले अगर देख के मुझे बताते तो मुझे लगता हाँ ये है, अगर मैं ब्लाइंड नहीं होती तो ऐसा होता, बाकी तो निराशा मेरी लाइफ में है नहीं, मैं निराशा को भी तुरंत हटा डिलीट करने में बिलीव रखती हूँ, और निराश होना तो लाइफ में है नहीं ना, देखो चैलेंज है, चैलेंज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो।
0: जी, तो जब आप दोनों बैठे होते हैं तो फिर किस तरह की चर्चाएं होती हैं?
1: हम लोगों में ज्यादातर तो कभी न्यूज को लेके होती है, कभी किसी प्लेस को लेके होती है, कभी अपनी फैमिली के, दोनों की फैमिली के बारे में भी बातचीत होती है, और फिर कभी ये भी बात होती है कि चलो अब ऐसा करना है वैसा करना है, फ्यूचर के बारे में भी, हम लोग बात करते हैं, और कभी कभी फिर ये भी होता है कि जैसे हमने ये नहीं किया है ना, मतलब हर तरह की बातें होती है हम लोगों में।
0: अच्छा, आपने ब्लाइंड फील्ड के सारे तौर तरीके इंडिया में ही आके सीखे होंगे मेरे ख्याल में, है ना?
1: सॉरी,
0: आपने जैसे ब्लाइंड फील्ड में कैसे एडजस्ट होना है, क्या सीखना है, ये सारी चीजें तो आपने इंडिया में आके ही सीखी होंगी ना?
1: रियली रियली यू कैन से, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ ना नेपाल में, वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन था, और मैं हॉस्टल में भी नहीं रहती थी, मैं डे स्कॉलर थी। सुबह 35 to 40 minutes का मेरा ट्रैवल होता था बस से, स्कूल बस से। तो मैं हॉस्टल में मतलब ब्लाइंड लोगों के साथ ज्यादा मतलब क्लास में ही जो ब्लाइंड फ्रेंड्स थे वो होते थे, हॉस्टल के लोगों से मैं बातचीत करती थी, मिलती भी थी, पिकनिक वगैरह भी स्कूल ले जाता था तो तब मिलते थे। बट सही तरीके, सही मतलब एक जो रियलिटी है कि ब्लाइंड के साथ कैसा लगता है, वो मैंने यही इंडिया में आके ही सीखा है।
0: यही आके सीखा है ना?
1: यस
0: तो घर में जो जैसे काम काज नॉर्मल जो होते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाना, ये सब, तो ये सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं कि सर भी कुछ कुछ संभाल लेते हैं चीजें?
1: अरे ये बहुत संभालते हैं, ही इज वेरी गुड कुक, ही इज
0: अच्छा,
1: वेरी गुड इलेक्ट्रीशियन, इनके अंदर तो बहुत टैलेंट है हमारे घर
0: अच्छा
1: में। हाँ, छोटे मोटे बल्ब लगाने हो, ट्यूब लगानी हो, या फिर फैन गंदा होता है तो खोलना है, फिर उसको धो धा के वापस लगाना। परमेश्वर जी के अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। इन्होंने मुझे कुछ चीजें बनाना भी सिखाया, जैसे कढ़ी। कढ़ी ना मुझे खाना पसंद था ना बनाना, इन्होंने मुझे खाना भी सिखा दिया और बनाना भी सिखा दिया, और भी बहुत
0: वाह,
1: सारी चीजें। जब
0: क्या
1: ये
0: बात।
1: कभी हाँ चाय बनाते हैं, मैं जब घर आती हूँ इनके हाथ की चाय पीती हूँ ना, तो सारी मेरी थकान जो है खत्म हो जाती है, मैं एकदम रिचार्ज हो जाती हूँ।
0: ये तो मैडम हर पत्नी का है ना, चाहे मतलब चाय अच्छी भी ना हो तो भी पति के हाथ की मिल जाए तो फिर ये तो मेरे ख्याल से ज्यादातर घरों में होता होगा ये तो।
1: हो सकता है,
0: ये
1: लेकिन मेरा तो मतलब मुझे तो मजा आता है इनकी।
0: तो मजाक की बात रही, लेकिन वाकई में आप जब इतना कह रहे हैं तो परमेश्वर जी बनाते ही होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है रोज की ड्यूटी इन्हीं की लगा रखी है आपने?
1: नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है,
0: जी
1: हम लोग मिलके करते हैं सब कुछ,
0: जी
1: है ना। हाँ, और हमारी एक आप कह सकते हैं एडॉप्शन हमने लीगली तो नहीं की है, हमारी फैमिली से ही है। परमेश्वर जी की तीन
0: जी
1: सिस्टर है, तो बीच वाली सिस्टर की डॉटर है, उसको
0: जी
1: अब
0: क्या
1: हमने अपना बेबी बना लिया है, 12th में पढ़ती है अभी।
0: वाह,
1: हाँ,
0: तो
1: ट्वेल्थ
0: वो आप
1: में
0: दोनों के
1: पढ़ती
0: साथ पूरा एकदम एडजस्ट हो गई है?
1: है एकदम। अब वो वापस उन लोगों के पास जाना ही नहीं चाहते, हम जाते हैं तभी जाती है वो बिहार,
0: सालों से है
1: नहीं
0: आपके?
1: नहीं 2013 में नवंबर से हमारे साथ है।
0: वाह, बहुत खूब, ये बहुत नेक काम किया है
1: हाँ,
0: आपने।
1: छोटी सी थी तो मैंने ऐसे खेल खेलने वाला, रहोगी हमारे साथ, बोली हाँ। तब उसको मगी आती थी, मुझे हिंदी कम्युनिकेशन भी इतने अच्छे से नहीं होती थी, पर हाँ टूटी फूटी मैं भी मगी समझती थी और थोड़ी बहुत वो भी हिंदी। और मामा जी तो थे ही साथ में, मेरे मदर इन लॉ वगैरह आए थे, तब हमें नेपाल जाना था, पहला दशहरा था शादी के बाद ना, तो हम नेपाल जा रहे थे, तो मम्मी
0: जी
1: लोग आए थे, तो दीदी भी आई थी, वो बेबी भी आई थी। तो फिर
0: जी
1: मैंने उसको ऐसे खेल खेल में बोला, तो इसने बोला हाँ मैं रहूंगी। अब दीदी जब जाने लगी तो उसके कपड़े वगैरह पैक करने लगी, तो जोर से रोने लगी, क्योंकि
0: अच्छा।
1: उसको उम्मीद थी कि मामी रोक लेगी, और तब से वो हमारे साथ है। और मेरे लिए मेरी मतलब जो संतान कहना चाहिए वो यही है, मतलब हम
0: वाह,
1: दोनों
0: बहुत
1: के लिए।
0: बहुत खूब। तो मतलब कुल मिला के आप दोनों का जीवन उसको भी संभालने में और पालने में और बड़ा करने में एक तरह से बीत रहा
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल
0: ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर जी,
1: यस
0: काफी कुछ तारीफ कर दी अजंता जी ने आपकी है।
1: जी सर।
0: तो ये क्या आपको शौक था या आपने ये मजबूरी में सीखा सब?
1: नहीं, मुझे शौक है, क्योंकि मैं बचपन से ही रेडियो सुनना, टीवी देखना बहुत पहले से ही है।
0: नहीं, कुकिंग
1: तो
0: वगैरह करना खासकर?
1: कुकिंग वगैरह में क्या हुआ कि मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट है होम साइंस, तो होम साइंस वहाँ अनिवार्य है, लेना पड़ता है, तो 9th से, तो होम साइंस में मुझे इंटरेस्ट था, वहाँ थ्योरी थ्योरी प्रैक्टिकल वगैरह सब कराते हैं बढ़िया से, इस वजह से हमने सीख लिया। तो अशोक भी था,
0: अच्छा,
1: हम लोग सारा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, अब गड़बड़ी कुछ हो गए घर में तो मैकेनिक को बुलाओ, या अभी तो हम गवर्नमेंट फ्लैट में हैं तो कंप्लेन करो, कब आएगा नहीं आएगा, हम
2: मुझे सारे काम आते हैं, मतलब लाइट इंजीनियर से लेकर इलेक्ट्रिशियन, प्रेस करना, सिलाई करना।
0: ये बहुत सारे लोगों का एक एक जिज्ञासा रहती है परमेश्वर जी, कि ब्लाइंड व्यक्ति मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कामकाज कैसे कर लेता है, तो थोड़ा आप
2: हाँ,
0: समझा पाएं तो कुछ लोगों
2: एक
0: को
2: बार
0: हो
2: मैं
0: सकता
2: घर में,
0: जैसा
2: एक
0: हो
2: बार मेरी
0: मदद।
2: मम्मी बोली, उनको कुछ सिलना था, तो बोले सुई में धागा डालना है। मुझे थोड़ा कम दिख नहीं रहा है, बड़े लोग को थोड़ा हो रहा है ना कि आँख कम दिखता है, तो थोड़ा एजेड होने के बाद, तो मैं कहा दिखाओ मुझे। मैं डाल रहा था, हमारे अगल बगल जितने भी पड़ोसी थे छत पर से देख रहे थे, मैं वही पकड़ा और डाल के दे दिया। अब उन लोग सोचने लगे कि भाई कैसे डाल दिया, तो बिना हाथ से ही कुछ लिए, बिना हाथ से कैसे डाल दिया। हम लोग को देख रहा है, दो दो आंख फिर भी नहीं डाल पा रहे, ये तो बिना देखे ही हाथ से कोई भी सुई हो, मैं हाथ से ही डाल के धागा सिलाई करता हूँ।
0: जी
2: कोई नीडल नहीं, कोई थ्रेडर नहीं, हाथ से
0: हम
2: ही।
0: पूछ रहे थे जो लाइट संबंधित, बिजली संबंधित जो काम काज हैं
2: जी
0: वो आप कर लेते हैं, तो कभी करंट वरेंट आने का डर नहीं लगता है?
2: हाँ, पहले एक दो बार करंट खाए हैं, तब से यह सबक मिल गया कि हमें पहले उधर से पहले लाइट काट के करना है,
0: अच्छा, तो वो सब कुछ आप कर लेते हैं, काटना, जोड़ना, लगाना सब?
2: सब कर लेते।
0: बहुत अच्छी बात
2: अगर
0: है।
2: देखना पड़ता है कि पहले हमारे यहाँ वायरिंग कैसी है, तो वहां से हम लाइट को पहले डिस्कनेक्ट करके ही करते हैं। कई जगह वायरिंग ठीक नहीं होता, तो इधर से लाइट आ रही है, उधर से लाइट आ रही है, इधर हाथ फंस जाए, तो ये सब का ध्यान रखना
0: थोड़ा
2: पड़ता है।
0: थोड़ा बहुत आपको शायद दिखाई भी देता है ना?
2: लाइट वेट थोड़ा दिखता है, मतलब मुझे 2012 तक भी थोड़ा बहुत दिखा है, धीरे धीरे रोशनी चली गई, अब तो लगभग केवल लाइट दिखता है बस। दिन रात का बस अभी पता लग जाता है कि दिन है रात। थोड़ा पहले सब कुछ मैंने देखा है दुनिया पूरी, तो कभी कभी लगता है कि हाँ, अब जो वो लोग नहीं देखे होंगे उनका तो कोई बात ही नहीं है, हमने देख रखा है सब कुछ। तो कभी कभी मन के अंदर आ जाता है उसका तस्वीर कि 500 का नोट ऐसा है तो ऐसा होगा, इस तरह होगा।
0: पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अच्छा,
2: हाँ, तो अब हमने ब्लाइंडनेस एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी हम यात्रा करते हैं तो खुद ही घूम लेते हैं, अकेला जहाँ आना हो, दिल्ली, मुंबई, बिहार, नेपाल वाल, तो खैर अब फैमिली साथ जाते हैं, लेकिन इतना सक्षम है हम कहीं भी अकेले जा सकते हैं और जाते भी। बचपन से हमने स्कूल अपने खुद ही गया आया, दिल्ली, बिहार, पटना, बनारस। पेरेंट्स को पता नहीं लगा कि बनारस में कब दिल्ली आ गया, कब एडमिशन ले लिया, तो नहीं तो वो परेशान होते थे कहाँ ले जाऊँ, कैसे करूँ, किससे मिलूँ। वो एक बार केवल हमें पटना में एडमिशन करा दिए, उसके बाद मैं खुद ही रास्ता बना लिया।
0: बहुत बढ़िया। कब दिल्ली आ गए, कब अपने लिए लड़की पसंद कर ली चलिए, बहुत खूब, आप दोनों से मजा आया बात करके। तो
2: हम
0: श्रोताओं
2: लोग, हमें भी मजा आया बोला।
0: जी, आपने सुना हमराही कार्यक्रम में अजंता जी और परमेश्वर जी को, तो अब लगभग कार्यक्रम के अंत में हैं हम लोग। परमेश्वर जी कुछ सुनने वालों को कहना चाहते हैं आप अपनी ओर से?
2: मैं यही कहूंगा कि अपने आप को ब्लाइंड ना समझें, और जो ब्लाइंड हैं और डिपेंडेंट ना रहें किसी पर, प्रयास करें, आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा।
0: वाह, जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा, ये परमेश्वर प्रसाद जी का कहना है। जी अजंता जी, आप भी अपनी
2: जी
0: जिंदगी के कुछ अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ चाहें तो साझा कर सकते हैं, जो भी देखा है, समझा है, जाना है दृष्टिबाधित समाज के बारे में। जी
1: बिल्कुल, देखो मैं ये कहूंगी कि ब्लाइंडनेस को लेके ना, सबसे पहले तो अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करो, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे वो लेट ब्लाइंडनेस आई हो। एक्सेप्टेंस जहाँ होती है ना, फिर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी बात, पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चे को आप बेचारा मत समझो, बेचारा, अरे क्या होगा, वो कोई बेचारा नहीं होता, वो भी बहुत बदमाशियां करता है, बहुत चीजें सीखता है, बहुत अच्छा होता है, पर बेचारा नहीं होता है ना। अपने बच्चे को और बच्चों की तरह समझो, और उसको बस चांस दो कि वो चीजें करे, उसको घर में मत बिठाओ, कोने में मत रखो। और अपने जैसे लोगों को बस ये, मैं यही कहूंगी कि काम से मत घबराओ, काम पकड़ो और काम करो, लाइफ में काम करने में बहुत मजा है, और मस्त रहो।
0: क्या बात है, मस्त रहो, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजंता जी और परमेश्वर जी आप दोनों का प्रोग्राम के लिए, वक्त निकालने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें साझा करने के लिए जी।
1: हाँ, आपको भी और रिकॉर्डिंग क्लब को, पूरी टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम भी लोगों से जुड़े। कभी हम भी औरों की सुनते थे और लोग हमें सुनेंगे।
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये हमारा ही प्रोग्राम का काम यही है।
2: मुझे रिकॉर्डिंग क्लब के लिए मुझे ये कहना है कि मैं आपका सारा मैसेज सुनता हूँ, तो मुझे कभी लगा कि एक बार कंट्रीब्यूशन के बाद हो रही थी,
0: जी
2: तो मैंने भी कोशिश सोचा कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन मैं
0: जी
2: जान पहचान था नहीं किसी से, तो मैं कंट्रीब्यूशन दूँ किसको दूँ किसे कहूँ,
0: जी
2: मैं केवल मैसेज सुन के रह गया। लेकिन मुझे मेरा भी इच्छा था कि आप लोग के साथ जुड़कर मैं भी योगदान करूँ।
0: जी
2: आपका
0: बहुत
2: कार्यक्रम बढ़िया है, बहुत
1: करेंगे,
2: सारे कार्यक्रम मुझे अच्छा लगा, मैं सुनता रहता हूँ।
0: जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत बहुत खूब। बस ऐसे ही अब बातचीत हो गई है तो जुड़ गए हैं हम सब आपस में,
1: हाँ
0: और श्रोताओं यही बस रिकॉर्डिंग क्लब ऐसे ही चलता है हमारा, लेकिन फिलहाल ये रेडियो मधुबन का कार्यक्रम है हमराही, और हमराही कार्यक्रम भी आप लोग सुनते होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप दोनों ने भी सुने होंगे हमराही कार्यक्रम तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुने हैं, और रेडियो मधुबन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारा ही प्रोग्राम चला के, मतलब उन लोगों ने और लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। कई लोग अभी सोचते हैं शादी कैसे होगी, जैसे मेरे में तो हर यंगस्टर्स के साथ जुड़ी हूँ, वो कॉलेज वाले बच्चे हों स्कूल वाले, तो
0: जी
1: मैं उन्हें भी कहती हूँ कि तुम लोग ना कभी मौका मिले रेडियो मधुबन का हमारा ही सुनना, मजा आएगा, तुम्हें बहुत
0: ये
1: एक्सपीरियंस मिलेगा।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए परमेश्वर जी, अजंता मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इस कार्यक्रम के लिए, वक्त निकालने के लिए हमारे साथ, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। श्रोताओं
1: हाँ,
0: जी
1: तो हमारी तरफ से भी आपको, टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक स्पेशल धन्यवाद मैं यहाँ हसीबा को करूंगी। हसीबा मेरी स्टूडेंट रही है नैब इंडिया सेंटर की, और उसी ने मुझसे पहले कहा था कि मैम आप जुड़ोगे, मतलब आओगे, इंटरव्यू दोगे, तो मुझे भी शुरू में लगा कि बात करना चाहिए, लेकिन जो क्रेडिट है ना, मतलब हम तीनों को मिलाने का इस प्रोग्राम के जरिए, उसमें हसीबा का भी हाथ है, तो हसीबा को भी बहुत बड़ा थैंक्स।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। और एक बात और, आप में से भी कोई भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, आप दोनों में से, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों में से कोई भी एक बस केवल दिव्यांग होना चाहिए, तो फिर आपकी भी कहानी हमराही के माध्यम से दुनिया तक लाने का वादा हमारा रहा। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ, तब तक रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
4: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ 1 घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से 1 घंटा डिस्टर्ब रहे, अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

शांति। आज 24 सितंबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में सबके साथ तोड़ निभाते हुए कैसे चलना है। तुम सभी परमात्मा के बच्चे हो तो आपस में भाई बहन जरूर हो, परंतु ये कहने की बात नहीं है कि तुम घर में जाकर के कहो कि ये पति मेरा भाई है। बाबा कहते हैं यही दिस सर्विस का आधार बनता है। ये कहने की बात नहीं होती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबके साथ विशाल बुद्धि बन तोड़ निभाना है, अंदर में समझना है। बाकी कहने की बात नहीं है, संसार के अंदर युक्ति से ही चलना होता है। बाबा कहते इस समय बाप सचखंड स्थापन करने आए हैं तो तुम्हें सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं, ये नॉलेज सुनाते हैं।

बाकी तुम्हें जाकर के सबको संदेश जरूर देना है, लोग प्रदर्शनी देखेंगे समझेंगे तो अंदर में आएगा कि आगे भी सुने। और आगे सुनते हुए बाबा कहते जब ट्रुथ को समझ जाएंगे, सत्य क्या है उस बात को समझ जाएंगे तो फिर आगे डिबेट नहीं करेंगे। तो सत्य पर तुम्हें सब कुछ छोड़ना है। परमात्मा भी आकर हम बच्चों को सत्य सुनाते हैं, सच्चा बाप सत्य ज्ञान सुनाते हैं, वही सत्य ज्ञान तुम्हें सबको देना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे सत्य बाप सच खंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो इसलिए नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। सदगति की जो श्रेष्ठ मत मिलती है वो सबसे न्यारी है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है कि हम सब भाई भाई हैं व भाई बहन हैं। बाकी ऐसे नहीं कि स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया है। युक्ति से चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहे सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है, समझने की बात है कि ये रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे, गीता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच किसके प्रति, भगवान के है सब बच्चे। वह भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स है। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल न सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। हम बाबा की ये स्कूल खुली है, जो भी जिसको भी संदेश मिलेगा आते जाएंगे, स्कूल में पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है, वह है ही ट्रुथ, वह सत्य ही बताएंगे। फिर उसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता, तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर। बाबा कहते तुमने सब छोड़ दिया उस सत्य पिता के ऊपर। पहले पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सबसे बड़ी सत्ता है। तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन। वह जब यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो ये वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वॉइसलेस दुनिया होनी है। ये मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वॉइसलेस था। बुद्धि चलती नहीं, क्यों क्यों नहीं चलती है? बाबा कहते गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए ये किसको भी पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं इसीलिए पहले पहले ये समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवान वाच, वह तो है ही ट्रुथ,
बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है, वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है, तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? बाप का परिचय देते हुए पूछना है, उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए। अभी तुमको निश्चय है हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते अभी तुमको निश्चय है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी है फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ के आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे, बाकी जो आत्माएं हैं वो अपना हिसाब चुक चुक कर वापस चली जाएगी। ये कयामत का समय। अब ये बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो, पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। बाबा कहते तुम भी अपना पुरुषार्थ करते हो, किस लिए? पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, सतयुग में भी सब अपने को मालिक तो समझेंगे ना, क्यों? बाबा कहते हैं जिस तरह से इस समय भारत के लोग सारी प्रजा अपने को भारत के मालिक ही समझते हैं, तो बाबा कहे मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, तुम समझते हो अभी सब नरकवासी है, अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं, सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना, सब पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर हे भगवान ये जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है, तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर हे भगवान नहीं निकलेगा। मनुष्य को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, हे प्रभु हे ईश्वर हे भगवान, तुम जानते हो वह हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है, बाप से तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है ना, बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चित्ता पर बिठाए, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चित्ता पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं फिर ज्ञान चित्ता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता। बाप ने समझाया है तुम आत्माएं वहां शांति धाम और सुखधाम में रहती है। सुखधाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी, वहां देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने, हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है।
वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहां हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे, विचार तो करो। वो दुख हरता सुख करता है, सबको मुक्ति देता है, तो इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगे, विचार तो करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए, अपने ही मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं ये पतित पावन, आओ। इसलिए कहते हैं घर ले चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरुए कफनी की जो पहरवाइश है वह है हठ योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है, एक ऑरा बना रहता है। तुम भट्ठी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफेद पसंद करते हैं, मनुष्य मरते हैं तो सफेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप हैं, ये बातें समझने में टाइम लेती है, प्रदर्शनी में इतना नहीं समझा सकेंगे। सतयुग में एक बाप, इस समय तुमको तीन बाप, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा के तन में। तो प्रजा पिता भी हो गया, वह भी तो बाप है सबका। अच्छा, आप तीनों बाप में उच्च वर्षा किसका, निराकार बाप वर्षा कैसे दिए, वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव आदि देवी, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका पिता हूं, बाप हूं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। आपस में बाबा कहते कोई भी प्रकार के काम विकार के वशीभूत कर्म कर न सके। अगर दोनों के आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि यह हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। बाबा कहते वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती है, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं, इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा बाप को बाप कहना पड़ेगा ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं वह भाई बहन नहीं समझेंगे, जो बीके बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे,
इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं, तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। वह हमारा बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं, लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे ये तो पति को भाई सासू को बहन कह देते, ये क्या है। ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते भी है प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, यानी श्रेष्ठ गति की मत तुमसे ही मिलती है। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है, कहां कोई मूंजे नहीं। प्रदर्शनी में तो पहले पहले तुम बच्चों को ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ भगवान कौन, निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण। जो गीता में भगवान वाच है वह शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे या श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का पहला प्रिंस, ऐसे तो कह नहीं सकते श्री कृष्ण जयंती सो शिव जयंती। शिव जयंती के बाद फिर श्री कृष्ण जयंती, शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वह है समझने की बात। शिव जयंती फिर गीता जयंती फिर झट से है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना, बच्चों की बुद्धि में आया है ना। जब तक शिव परमात्मा न आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी हैं। श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस था तो जरूर सतयुग में होगा ना, देवी देवताओं की राजधानी होगी जरूर। सिर्फ एक श्री कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी है श्री कृष्णपुरी और फिर यह है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो है नहीं। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना, कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी। नई दुनिया में थोड़ी है कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य है, सतयुग में बहुत थोड़े हुए हैं। यह भी तुम समझ सकते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने तो कोई लड़ाई की नहीं, दैवी संप्रदाय सतयुग में ही होते हैं। आसुरी संप्रदाय यहाँ है, बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई न कौरवों और पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो, बात कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो वायलेंस बन जाए। हाँ बाबा कहे अगर लड़ने का नाम ले तो हिंसक बन जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस, अहिंसक रीति से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल्प पहले मुआफिक, इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा, सब हिसाब किताब चुक तो कर जाएंगे, फिर क्लास ट्रांसफर हो
नंबरवार जाकर बैठते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर वहां राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं, बाबा कहते कितनी समझ की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी भी संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और संबंध गुप्त है, गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले ही मूंज जाए। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझाने मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। आज का व्यक्ति इशारा, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अगर देने के बाद यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना दिया, मुझे इससे कुछ मान शान व महिमा मिलनी चाहिए, तो यह भी लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर ये लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं है, यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं है। अच्छा, ओम।